0: 9 जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए।
1: ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है।
0: होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
2: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
1: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है।
0: स्टेल्थ तकनीक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती करती है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं।
1: वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
2: चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जेनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शिगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रेडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारी जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
1: चीन का J20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं, बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
2: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है। हमने बहुत पैनी नज़र रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
1: बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना, और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है। और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके।
0: भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे Sukhoi-30 MKI ने चीन के J20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से Sukhoi-30 MKI ने चीन के J20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया।
1: तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है, बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता, बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
2: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा शत प्रतिशत तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा। रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रेडार काम करते हैं। एक रेडार एल बैंड पर काम करता है, एक रेडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रेडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
1: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहां विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है।
0: ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है।
1: भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही फिफ्थ जेनरेशन ना हो, लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर फिफ्थ जेनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफेल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफेल 4.5 जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है। J-20 मैक 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J-20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J-20 हथियार अंदर छिपाता है, जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है, जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वही राफेल एयर टू एयर मेट्रियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ राफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेट्रियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। राफेल में थैलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। राफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है, जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है।
0: स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता, बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है। और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है।
1: राफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
2: भारत ने जब फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल राफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकम इन आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। राफेल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं, यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं। तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं। तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
1: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। राफेल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। राफेल का थैलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि राफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। राफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है, जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
2: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि

0: तार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यह पैसिव है, जैसे कहते हैं ना, सुप्त मोड में है, स्लीप मोड में है। तो दुश्मन का जो मिसाइल है या दुश्मन का जो टारगेट है, वहाँ से जो गर्माहट आ रही है, इन्फ्रारेड वेव्स आ रहे हैं या नॉर्मल विजुअल लाइट जो आ रही है, जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या TV में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
1: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता, बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है, और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
5: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present, every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
4: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल. किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल. क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां. काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट. भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त. कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज. हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश. भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन. पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु. बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी. भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार. बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री. स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान. पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी. पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी. मानसूनी सीजन के 2 महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड. खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ. कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत. एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग. रियल हीरोज को पहनाई फूल माला.

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना वो पूरी कर देते हैं। देखिए, पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है, ऐसे में हम आपको भारत के आध्यात्मिक धरोहर जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे, जो केवल देखिए मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक है। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर चलते हैं जहां स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी, यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। देखिए मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति।

मध्य प्रदेश की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमा शंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों को पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ, कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य हैं शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में तब्दील कर देता है।
2: का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यह सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है। जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: सावन के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में जोरदार तैयारियां। काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट। भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए उमड़ेंगे भक्त। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज। हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ देश प्रेम का संदेश। भोले के भक्तों की सुरक्षा सेवा में मुस्तैद जिला प्रशासन। पवित्र सावन महीने में बाबा केदार के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। बारिश भूस्खलन की बाधाओं पर आस्था भारी। भक्तों को सुगम सुलभ दर्शन कराने में जुटे सेवादार। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने असम के बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। स्थानीय लोगों के साथ पहुंचा रहे हैं जरूरी सामान। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। पर्यटकों को लुभा रही है चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। मॉनसूनी सीजन के दो महीने में ही टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। खूबसूरत फूलों के बीच सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन कर लौटे खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे लोग। रियल हीरोज को पहनाई फूल माला है।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: 9 जुलाई की ये सैटेलाइट तस्वीरें हिंदुस्तान की सरहद के करीब पनप रहे उस खतरे की तस्दीक कर रही हैं जिसे ड्रैगन के उकसावे का नतीजा माना जा रहा है। खबर है कि चीन ने भारत से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एयरबेस पर अपने फ्रंटलाइन J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के सामने मौजूद चीनी एयरबेस पर अब J-20 की नियमित मौजूदगी देखने को मिल रही है। नौ जुलाई 2026 को शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन में मौजूद होतान एयरबेस के रनवे पर 8 J-20 लड़ाकू विमान देखे गए। ये बेस लेह से 389 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और उत्तरी लद्दाख में भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। वहीं 25 जून की तस्वीर में तिब्बत के ल्हासा इलाके में मौजूद दमशुंग एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर 4 J-20 विमान दिखाई दिए। ये बेस अरुणाचल प्रदेश के तवांग से 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। होतान और दमशुंग पर J-20 की मौजूदगी बताती है कि भारत के सामने ऊंचाई वाले एयरबेस से पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स का संचालन अब किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं बल्कि चीन की नियमित रणनीति बन चुका है।
1: अभी हाल में आए हुए कुछ खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में J-20 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमानों को तैनात किया है। गौरतलब बात है कि इसके पहले भी खोतान से और दोनशुन से J-20 के ऑपरेशंस को नोटिस किया गया था। गलवान के बाद भी चीन ने तिब्बत के अलग अलग एयरबेसेस में खोतान दोनशुन में J-20 को तैनात किया था। 2021, 22, 23, 24 से हर साल चीन साल में दो बार टेम्पररी बेसिस पर 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए J-20 को तिब्बत में एयर एक्सरसाइज के लिए भेजता है। देखा यह गया है कि J-20 का जो परमानेंट एयर बेसिस हैं सब ईस्ट चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी के साथ या सी ऑफ जापान की तरफ हैं। तो J-20 तिब्बत में आते हैं, एक्सरसाइज करके वापस चले जाते हैं। भारत की एयरफोर्स, हमारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इन कार्रवाइयों पर बहुत पैनी नज़र रखी हुई है और ज़रूरत के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स भी अपनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स जैसे कि S-400 है, आकाश है, पिचोरा है, उनका रीडिप्लॉयमेंट करती रहती है।
0: J-20 चीन का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है। भारत की सीमा के पास J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती एक गंभीर रणनीतिक और हवाई सुरक्षा चुनौती है। स्टेल्थ टेक्निक, लंबी मारक क्षमता और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस J-20, लेकिन चीन ने इसकी तैनाती कर दी है भारतीय सरहद पर। अब सवाल यह है कि इतने बड़े J-20 की तैनाती यहां पर करना, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या J-20 का मुकाबला करने के लिए भारत के पास भी इसी तरह का फाइटर जेट है? तो आज रण क्षेत्र में चर्चा इसी की करेंगे कि अगर चीन भारतीय सरहद पर J-20 की बड़े पैमाने पर तैनाती करता है और इमरजेंसी जैसे हालात बनते हैं तो फिर भारत के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीकें मौजूद हैं जो कि इसका मुकाबला कर सकती हैं? वैश्विक एयर पावर की रेस में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए चीन अपनी वायुसेना को बड़ी तेजी से एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। चीनी एयरफोर्स के बेड़े में इस वक्त फिफ्थ जेनरेशन के दो फाइटर जेट्स हैं, एक J-20 और दूसरा J-35। J-20 को मुख्य रूप से एयर सुपीरियबिलिटी मशीनों के लिए और J-35 को मल्टी रोल भूमिका के लिए डेवलप किया गया है।
1: J-20 चीन दावा करता रहता है कि ये J-20 जो है एक असली फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, यानी वो भारत के रडार पर पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यह शायद दावा असल में इतना खरा ना हो, क्योंकि गलवान के बाद जब भी J-20 को चीन ने खोतान दोनशुन इलाके में डिप्लॉय किया, शीगात्से में डिप्लॉय किया, तो हमारे जो रडार कंट्रोलर्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन था कि J-20 को आप तब नहीं देख सकते अगर वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर वो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रहा है, यानी हमारा जो रडार है उसको साइड से देख रहा है, तो फिर हमारे कंट्रोलर्स उसको देख पा रहे थे। कुछ हमारे जो प्रोफेशनल रडार कंट्रोलर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक्स बैंड, के बैंड, के यू बैंड, एल बैंड, एस बैंड रडार का इस्तेमाल करते हुए J-20 को हमारे जो फाइटर कंट्रोलर्स थे वो कुछ हद तक ढूंढ पा गए थे। तो इतना बड़ा खतरा स्टेल्थ विमान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं J-20 की, इतना बड़ा खतरा शायद भारत के लिए ना हो।
0: चीन का J-20 माइटी ड्रैगन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका लो ऑब्जर्वेशनल डिजाइन और आधुनिक सेंसर इसे मुश्किल हवाई वातावरण में काम करने के लिए तैयार करते हैं। J-20 की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं बल्कि उसे बड़ी संख्या में तैयार करने की चीन की क्षमता भी है। द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में चीन के पास करीब 50 J-20 थे। 2022 तक ये संख्या 200 तक पहुंच गई और इसके बाद उत्पादन की रफ्तार और तेज हुई और 2025 तक सालाना करीब 120 विमान बनने लगे। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के मध्य तक चीन के पास 300 से 500 J-20 का बेड़ा हो सकता है, जबकि ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट यानी RUSI का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या करीब 1000 तक पहुंच सकती है।
1: भारत सरकार और इंडियन एयरफोर्स चीन के J-20 डिप्लॉयमेंट से पूरी तरह से वाकिफ है, हमने बहुत पैनी नजर रखी हुई है। हाँ, रूस के साथ भी बातचीत चल रही है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत रशिया से Sukhoi-57 स्टेल्थ फाइटर विमान ले सकता है। रशिया ने तो 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया है। इसी तरह से अमेरिका भी बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान अमेरिका से खरीद ले। अमेरिका से अगर हम एक फाइटर विमान खरीदते हैं जैसे कि F-35, तो उसका कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका चाहेगा कि भारत जो है रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत थोड़ा अमेरिका के शरण में चला जाए। तो F-35 खरीदना जो है वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी होगा। हाँ, भारत में DRDO, HAL और एयर डिफेंस एजेंसी जो है ADA, वो डेवलप करने की कोशिश कर रही है AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
0: चीन के बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रन से भारत के सामने भविष्य में हवाई सुरक्षा की चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। हर साल 125 विमान बनाने की क्षमता ये बताती है कि किस तरीके से चीन ने इस तकनीक में विकास किया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि खाड़ी युद्ध के बाद चीन ने हवाई युद्ध की ताकत को समझा, उसे पहचाना और यही वजह है कि चीन ने सबसे ज्यादा निवेश इसी में किया है और यही एक बड़ी वजह है कि चीन बड़ी मात्रा में इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहा है। चीन के J-20 फाइटर जेट को लेकर हलचल मची हुई है। क्या वो वास्तव में बहुत बड़ा खतरा है और क्या उससे निपटना बेहद मुश्किल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि स्टेल्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं, इसका मतलब होता है विमान की रडार पहचान क्षमता को इतना कम करना जिससे दुश्मन के सेंसर उसे देर तक पहचान ही न सके। भारतीय वायुसेना पहले भी ये बता चुकी है कि कैसे चीन के स्टेल्थ विमानों को पकड़ा जा सकता है। साल 2018 में हमारे सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 को डिटेक्ट किया था और तत्कालीन एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने भी इस बात को बताया था कि किस तरीके से सुखोई 30 एमकेआई ने चीन के J-20 विमानों को डिटेक्ट कर लिया। तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ के बयान ने ये संकेत दिया है कि भारत सिर्फ स्टेल्थ विमान के खिलाफ पारंपरिक रडार पर निर्भर नहीं है बल्कि सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली विकसित कर चुका है। आधुनिक लड़ाई में सिर्फ दो विमानों के बीच मुकाबला नहीं होता बल्कि अब की लड़ाई सिस्टम बनाम सिस्टम से होती है। यानी स्टेल्थ विमान को पहचानना सिर्फ रडार की ताकत का सवाल नहीं, ये कई और चीजों पर भी निर्भर करता है। रडार की फ्रीक्वेंसी, विमान की ऊंचाई, उड़ान दिशा, दूरी, मौसम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर गतिविधियां, सेंसर नेटवर्क की गुणवत्ता, यानी किसी भी स्टेल्थ विमान का पता लगाना एक सिंगल रडार बनाम विमान की लड़ाई नहीं होता। आधुनिक हवाई युद्ध में असली ताकत होती है नेटवर्क सेंसर सिस्टम।
1: कोई भी स्टेल्थ फाइटर विमान हमेशा 100% तो कभी भी छुप नहीं सकता। दिन की रोशनी में तो वो सूरज की रोशनी में ही नजर आ जाएगा, रात के अंधेरे में अगर छुप छुप के जाने की कोशिश करेगा तो उसका जो इंजन का एग्जॉस्ट है, उसकी जो गर्माहट है, ऑरेंज ग्लो है, वो दिख जाती है। स्टेल्थ फाइटर विमान अपने को रेडार से छुपा सकता है, लेकिन अगर भारत के पास बहुत बढ़िया इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हैं तो वह इंफ्रारेड डिटेक्टर्स से छुप नहीं सकता। तो स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढने के लिए कई सारे तरीके हैं। सबसे कॉमन तरीका जो अख्तियार किया जाता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर रडार काम करते हैं। एक रडार एल बैंड पर काम करता है, एक रडार एस बैंड पर काम करता है, कोई दूसरा रडार युद्धभूमि में एक्स बैंड, के बैंड या के यू बैंड पर काम करता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हुए, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करते हुए एक एक्सपर्ट फाइटर कंट्रोलर J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान को ढूंढ ही लेता है।
0: लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां या फिर हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। यहाँ विमान की कागजी स्पीड नहीं बल्कि कोल्ड स्टार्ट क्षमता और पेलोड कैपेसिटी यानी हथियार ले जाने की क्षमता मायने रखती है। रफाल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के हिसाब से ही ढाला गया है, जो लेह की जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है। तिब्बत और शिनजियांग के एयरबेस अत्यधिक ऊंचाई पर हैं। पतली हवा के कारण J-20 अपनी पूरी क्षमता से भारी हथियार और पूरा ईंधन लेकर उड़ान नहीं भर सकता, जिससे इसकी मारक क्षमता सीमित हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि चीन के पास मौजूदा 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और भारत के पास ये तकनीक फिलहाल नहीं है। भारत का अपना AMCA फिलहाल अभी निर्माण के दौर में है, जिसको शामिल करने में यानी भारतीय वायुसेना में शामिल करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि भारत चीन के इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से निपटने की तकनीक नहीं रखता है। भारत के पास भी ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसका मुकाबला करने के लिए सक्षम है। भारतीय वायुसेना के पास J-20 का सामना करने के लिए रफाल जैसा ताकतवर फाइटर जेट है, जो भले ही 5th जनरेशन ना हो लेकिन इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो कई मोर्चों पर 5th जनरेशन के प्लेन को टक्कर देने का दमखम रखता है। चीन के J-20 माइटी ड्रैगन और भारत के रफाल के बीच सीधी तकनीक तुलना को समझते हैं। चीन का J-20 फिफ्थ पीढ़ी का फाइटर जेट है, वहीं भारत का रफाल 4.5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। J-20 रडार पर कम दिखने के कारण पहले हमला करने की क्षमता रखता है, J20 Mach 2.0 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है, वहीं रफेल Mach 1.8 की रफ्तार से उड़ान भरता है। यहां J20 बिना आफ्टर बर्नर के तेज गति से उड़ान भर सकता है। हथियार स्टोरेज की बात की जाए तो J20 हथियार अंदर छिपाता है जो करीब 1500 से 2000 किलोग्राम तक के माने जाते हैं। वहीं रफेल बाहरी हार्ड पॉइंट्स की मदद से 9500 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। यह रफेल अपने वजन के मुकाबले बहुत भारी हथियार उठाने की अद्भुत क्षमता रखता है। J20 में एयर टू एयर PL-15 का इस्तेमाल होता है जिसकी अनुमानित रेंज करीब 200 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं रफेल एयर टू एयर मेट्रियोर मिसाइल का इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज भी करीब 200 किलोमीटर है। यहाँ रफेल का पलड़ा भारी है क्योंकि इसमें इस्तेमाल मेट्रियोर का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर से ज्यादा है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इस दायरे में आने के बाद दुश्मन का विमान बचकर नहीं भाग सकता। चीन के J20 में टाइप 1475 या KLG-5 ISR रडार लगा है। रफेल में थेलिस RBE-2 ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ फ्रांसीसी रडार तकनीक और सॉफ्टवेयर चीनी रडार की तुलना में ज्यादा जांची परखी और विश्वसनीय है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो J20 में जापानी या अमेरिकी सिस्टम की नकल पर आधारित EW है। रफेल में स्पेक्ट्रा इंटीग्रेटेड EW का इस्तेमाल हुआ है। स्पेक्ट्रा दुनिया का सबसे घातक रक्षात्मक सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से जाम कर सकता है। स्पेक्ट्रा दरअसल पूरी तरह से पैसिव मोड में काम करता है। ये खुद कोई रडार तरंग नहीं छोड़ता बल्कि J20 के रडार उसके रेडियो कम्युनिकेशन और उसकी मिसाइलों से निकलने वाले बेहद कमजोर सिग्नल्स को भी 360 डिग्री एंगल पर कैच कर लेता है और इसका नतीजा ये है कि J20 को भनक तक नहीं लगती कि उसे कोई ट्रैक कर रहा है। और अगर हम रफेल की बात करें तो रफेल में ये ताकत है कि वो J20 को पकड़ सकता है और उसे पहचान सकता है। रफेल खुद एक पांचवी पीढ़ी का पूरी तरह से स्टेल्थ विमान नहीं है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम J20 जैसे स्टेल्थ विमानों के सबसे बड़े फायदे यानी अदृश्य रहने की क्षमता को पूरी तरह से बेअसर यानी फेल कर सकता है।
1: भारत ने जब फ्रांस से रफेल विमान खरीदे थे तो इंटीग्रेटेड पैकेज का बहुत अहम हिस्सा था स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज है। ये दुश्मन के फायर कंट्रोल रडार को जैम कर सकता है, ये दुश्मन के सर्वेलांस रडार को जैम कर सकता है। दुश्मन अगर कोई एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल रफेल की तरफ लॉन्च करती है तो उसके इनकमिंग आने वाली दिशा को निर्धारित करके स्पेक्ट्रा जो है ऑनबोर्ड इंफ्रारेड फ्लेयर्स को डिप्लॉय कर सकती है। रफाइल में चेफ डिस्पेंसर्स भी लगा सकते हैं यानी एक तरह की एल्युमिनियम फॉयल्स होती हैं, तो अगर दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो स्पेक्ट्रा जो है वो चेफ डिस्पेंसर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है वो हवा में ब्लूम हो जाती हैं, तो दुश्मन की जो इनकमिंग इंटरसेप्टर मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसका निशाना भटक जाता है।
0: स्टेल्थ तकनीक किसी विमान को सिर्फ रडार तरंगों से छुपा सकती है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण वो अपनी गर्मी को पूरी तरह से नहीं छुपा सकती। रफाल का IRST इसी कमजोरी का फायदा उठाकर J20 को कई तरह से ट्रैक कर सकता है। सबसे पहला है थर्मल सिग्नेचर को पकड़ना। J20 का डबल इंजन बेहद ज्यादा गर्मी पैदा करता है। हवाई घर्षण के दौरान J20 के पंखों के कोने और उसकी नोज कोन अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रफेल का थलिस FSO इस थर्मल कॉन्ट्रास्ट को आसमान के ठंडे बैकग्राउंड में दूर से ही पहचान सकता है। दूसरा है पैसिव मोड। इसमें दुश्मन के विमान के RWR यानी रडार वार्निंग रिसीवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता। इससे J20 के पायलट को हवा में भनक तक नहीं लगती कि रफेल उसे ट्रैक कर चुका है। तीसरा है FSO के दोहरे सेंसर की जुगलबंदी। रफेल के कॉकपिट के ठीक आगे नोज पर दो विशेष सेंसर लगे होते हैं। लेफ्ट साइड सेंसर में एक लॉन्ग रेंज थर्मल कैमरा लगा है जो आसमान में करीब 100 किलोमीटर दूर चल रहे J20 की थर्मल इमेज बना लेता है। राइट साइड सेंसर अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि थर्मल कैमरा लक्ष्य पकड़ता है, यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा करीब 40 किलोमीटर की दूरी से J20 की वास्तविक वीडियो फोटो दिखाकर उसकी पहचान पक्की करता है। इसमें लगा लेजर रेजर फाइंडर बिना रडार के ही J20 की सटीक दूरी माप लेता है। चौथा है साइलेंट मिसाइल अटैक। जब राफेल का IRST सिस्टम बिना रडार के J20 को लॉक कर लेता है तो पायलट माइका IR मिसाइल फायर कर सकता है। ये मिसाइल हीट का पीछा करते हुए टारगेट को नष्ट कर देती है और दुश्मन विमान के कॉकपिट में कोई रडार वार्निंग अलार्म भी नहीं बचता।
1: राफेल विमान में दुनिया का बेहतरीन IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुश्मन के मिसाइल या दुश्मन के टारगेट से जो इंफ्रारेड सिग्नेचर निकल रही है या जो विजिबल रेंज में भी जो वेव्स निकल रही हैं उनको ट्रैक कर लेता है और उनकी दिशा और दूरी बता सकता है। तो इससे होता क्या है कि दुश्मन को पता नहीं लगता, क्योंकि IRST में किसी रेडार से ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे एक रेडार ट्रांसमिट करता है और फिर वापस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव करता है। उससे पता होता है कि टारगेट कहाँ है या दुश्मन का मिसाइल कहाँ से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन IRST में कोई ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है,

0: रही है जो कि हम दिन की रोशनी में देखते हैं या टीवी में जो लाइट देखते हैं, उसको भांपते भांपते ये दुश्मन को, दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लेता है।
1: किसी भी हवाई युद्ध का नतीजा सिर्फ स्टेल्थ तकनीक से तय नहीं होता बल्कि पायलट की ट्रेनिंग, नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों के तालमेल पर भी निर्भर करता है। यही वो क्षेत्र है जहां भारत लगातार अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात का अंदाजा है कि चीन ने किस तरीके से अपनी स्टेल्थ तकनीक विकसित की है और एक न एक दिन भारत का मुकाबला चीन की स्टेल्थ तकनीक से होगा ही, और इसीलिए भारत ने खुद को उस हिसाब से तैयार करना शुरू भी कर दिया है। दरअसल भारत के पास नेत्रा एवॉक्स, फाल्कन एवॉक्स जैसी तकनीक है जो कि स्टेल्थ विमानों को ही ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड रडार और इसरो के सैटेलाइट हैं। ये तमाम नेटवर्क मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। रण क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: आइए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
6: ये क्यूट वायरल वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। अपनी दो सहेलियों को ये लड़की डांस के स्टेप सिखा रही है, जिस तरह से वो अपनी हम उम्र लड़कियों को स्टेप सिखा रही है और उसकी सहेलियां उसे अपना डांस टीचर मान सीख भी रही हैं, उनकी लगन और तन्मयता प्रभावित कर रही है। यही नहीं, ये स्टेप सीखने के लिए जरा देखिए तस्वीरों में बाकायदा उन्होंने अपने जूते चप्पल उतार रखे हैं और शास्त्रीय नृत्य के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। बारिश के बीच ये तस्वीरें सुखद लग रही हैं। बहाव के बीच बने इन छोटे छोटे सीमेंटेड स्टैंड्स पर ये बकरियां एक एक कर कूदते हुए नदी नाला पार कर रही हैं। उनके पीछे एक महिला भी रास्ता पार कर रही है। बकरियां पूरे अनुशासन के साथ एक दूसरे को मौका देते हुए आगे बढ़ती हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये तस्वीरें सिखा रही हैं कि जब आप दूसरों को मौका देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती में प्यार और झगड़ा दोनों बराबर लेवल का होता है। इन दोनों बच्चों का झगड़ा देखिए जरा। पहले एक बच्चा अपने साथी की साइकिल गिरा देता है तो साथी भी देर नहीं करता, वो उसकी भी साइकिल गिरा देता है। फिर क्या था, झगड़ा तो बढ़ना ही था, अब साइकिल चलाना तो वो भूल ही गए। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वायरल वीडियो लोगों को अपने बचपन की यादें तरोताजा कर रहा है। इस वायरल वीडियो में मासूम सी नन्ही लड़की की मासूमियत और बारिश में उसके भीगने के दृश्यों ने वातावरण को और भी खूबसूरत बना दिया है। बच्ची को बारिश हो रही है ये कंफर्म करने के लिए अपना सिर भिगवाना पड़ा है। उसकी बारिश में ये क्यूट हरकत सबको लुभा रही है। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं मानो बारिश ने उसे सरप्राइज दिया हो। अब इस नन्ही बेटी का वीडियो देखिए। बेटी अपने पिता को डांट रही है और पिता मानो महसूस कर रहे हैं कि इस डांट के पीछे असल में बेटी का आई लव यू कहने का ही एक तरीका है। जब बेटी उन्हें प्यार से डांटती है तो पिता मुस्कुराने लगते हैं। बाप बेटी का ये डांटना मुस्कुराना लोगों को बता रहा है कि यही एक परिवार का एकदम सच्चा और बिना दिखावे वाला प्यार होता है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।

0: कम से कम लोगों को
1: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: सावन के पहले सोमवार पर भोलेनाथ की भक्ति में डूबे भक्त, काशी विश्वनाथ से महाकाल, उज्जैन केदारनाथ से बैद्यनाथ धाम तक उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहे देश भर के शिवालय। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का दिख रहा अनोखा अंदाज, सहारनपुर में 12,000 लड़ियों से दुल्हन की तरह सजा कांवड़ मार्ग, वहीं हरिद्वार में 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ के जरिए भक्ति के साथ दिया गया देश प्रेम का संदेश। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, 13 गोल्ड जीतकर कुल 39 पदकों की चमक के साथ चौथे पायदान पर खत्म किया सफर। कॉमनवेल्थ का झंडा भारत के नाम, 2030 की मेजबानी के लिए अहमदाबाद तैयार। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहले ही वीकेंड में दुनिया भर से 927 मिलियन डॉलर की कमाई कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभिनेता टॉम हॉलैंड की वापसी को दर्शकों का मिल रहा है जबरदस्त प्यार। बोलिविया में भव्य लोक नृत्य उत्सव का हुआ आयोजन, कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर, करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है, माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलों, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है, साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है, उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाह रहे हैं। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा है महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया
और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी, भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया, जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा, तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा, राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा
और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा। जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसल हो गया, टिकट तो कैंसल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसल है। तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलियों में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया, अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। हनुमान जी के लिए

0: इसलिए कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दूसरी बात और सुनिए, हनुमान जी पोस्टमैन तो है ही है, एक बात और बहुत ध्यान पूर्वक सुन लो, वर्तमान में कलिकाल में कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप में है तो वो केवल हनुमान जी है, क्योंकि अजर अमर है, अजर अमर गुण निधि सुत हूं, सप्त चिरंजीवियों में एक है, इसलिए वर्तमान में कोई जीवंत देवता प्रत्यक्ष देवता सन्मुख है तो वो हनुमान जी है भैया। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को राम जी भी प्राप्त होंगे। और हनुमान
1: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली है मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: आज सावन का पहला सोमवार, जलाभिषेक के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त, आस्था अपार देखने को मिल रही है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड के साथ जीते कुल 39 पदक, चौथे पायदान पर भारत, अब 2030 में भारत करेगा मेजबानी। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की वीकेंड पर बम्पर कमाई, दुनिया भर में 927 मिलियन डॉलर की कमाई का बनाया रिकॉर्ड।

बोलिविया में भव्य लोक नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर। करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज भगवान शिव को अति प्रिय सावन महीने का पहला सोमवार है। इस अवसर पर देश भर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने के शिव मंदिरों में आज महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है, उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की खास पूजा हो रही है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें, आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जलाभिषेक की विशेष मान्यता है। आज के खास दिन लाखों की संख्या में भक्त वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में दर्शन और पूजन करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसकी शुरुआत तड़के सुबह से ही हो चुकी है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर, गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर, अयोध्या के नागेश्वर नाथ और क्षीरेश्वर नाथ मंदिरों में भी तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। पहला सोमवार होने के साथ ही आज सावन की पंचमी तिथि भी है और ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार देर रात से ही लगनी शुरू हो चुकी है। हर जगह पर श्रद्धा और भक्ति का उत्सव नजर आ रहा है, क्योंकि सनातन परंपरा में सावन का महीना और विशेष रूप से इसका पहला सोमवार अत्यंत पावन माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और मान्यता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अलग अलग मंदिरों से, शिवालयों से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर चाहे वो जैन का महाकाल मंदिर हो या फिर देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर, तो वहीं वाराणसी के धाम में भी आपकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जलाभिषेक करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनमें खासा जोश, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आज सावन का पहले सोमवार के दिन कुछ इसी तरह से पूरे देश भर के शिवालयों में धूम देखने को मिल रही है। और इसी बीच हमारे संवाददाता मनीषा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, रोशनी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई हैं और संदीप उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीषा के पास चलते हैं। मनीषा, दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें शिवालयों में किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं?
1: बिल्कुल गीतिका, आज पहला सोमवार है सावन को और ऐसे में हर एक शिवालय में जो नजारा है वो बेहद ही अद्भुत जो है वो होने वाला है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के आपको चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये मंदिर प्रांगण की तस्वीरें है गीतिका, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर, उनकी जो भीड़ है वो सुबह से यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि 2 बजे मंदिर जो है वो खुल गया था भक्तों के लिए, लेकिन मंदिर जो है वो 2 बजे खुल गया था दीपाली, लेकिन उसके बाद जो है लगातार इसी तरीके की भीड़ मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर जो है वो लगातार मिलने वाली है। हालांकि जो भक्त है वो यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि इस मंदिर की जो खासियत है, जो मान्यता है, वो वाकई में बेहद ही पुरानी है। 800 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है और उसी के साथ इसकी मान्यता भी उतनी ही पुरानी है। लोग विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना 800 साल पहले हुई थी। मराठा सैनिक थे अप्पा गंगाधर, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। उन्होंने भगवान शिव से यह आशीर्वाद मांगा था कि अगर युद्ध में उनकी जान जो है वो बच जाती है तो वो एक बड़ा सा शिवालय जो है वो जरूर स्थापित करेंगे। और उसी के बाद जब उनकी जान बची तो उन्होंने इतना बड़ा जो चांदनी चौक में शिवालय है उन्होंने ये जो है इसका स्थापना जो है वो करी थी। और तभी से ये जो पूरा मंदिर है वो इतिहास से भी जुड़ा है, विश्वास से भी जुड़ा है और आस्था से भी जुड़ा है कि किस तरीके से लोगों को लगता है कि जिस तरीके से भगवान शिव ने अप्पा गंगाधर की जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करी थी वैसी ही वो हमारी भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसी आस्था के साथ यहाँ पर भक्तों का तांता आपको जो है वो मंदिर परिसर के अंदर दिखने वाला है। ये मंदिर गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ केवल भगवान शंकर ही नहीं बल्कि माता गौरी भी जो है उन जो है उपस्थित है और इसी कारण जो है यहाँ पर जोड़े में लोग सबसे ज्यादा आपको नजर आते हैं। कहते हैं कि जो जोड़े में यहाँ पर आएगा उन पर विशेष कृपा जो है जरूर रहेगी दीपाली। तो आज बेहद ही सुंदर जो है वो दिन है, पहला सोमवार है और ऐसे में
0: बिल्कुल मनीषा और आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच काशी से हमारे साथ रोशन जुड़ चुके हैं। काशी, भगवान शिव की नगरी से आप जुड़े हुए हैं, क्या कुछ तस्वीर यहाँ से देखने को मिल रही है, जरा दिखाइए।
2: जी देखिए, बिल्कुल काशी विश्वनाथ की नगरी, काशी में आज का दिन इसलिए बेहद खास है क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ये शिव की नगरी भी कही जाती है, भोलेनाथ की नगरी कही जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ कड़ कड़ में शंकर है। और जब काशी नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी शिव भक्तों की नगरी हो तो भला शिव भक्त आज के दिन को कैसे भूल सकते हैं। और न केवल बनारस के काशी के शुभक्त करके सुबह से ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, बल्कि देव दुनिया से भी जो तमाम सनातनी है, तमाम शुभक्त है, वे आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन दर्शन लेने भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि ये पूरा महीना सावन का भोलेनाथ बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ कैलाश को छोड़कर आज पूरे एक काशी वास करते हैं और यही कारण है कि आज देश दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए। और जो भक्त आते हैं वे गंगा स्नान करते हैं, अपने पात्रों में जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं और सीधे काशी विश्वनाथ धाम आते हैं, क्योंकि विश्वनाथ धाम का जो बड़ा स्वरूप है, जो
0: जी
2: यहाँ पे इतना बड़ा इसको
0: जी रोशन, बिल्कुल। और बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच उज्जैन से, महाकाल की नगरी से संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है।
3: जी दीपाली, आज सावन का पहला सोमवार है और पूरे वर्ष भर श्रद्धालु आज के दिन का इंतजार करते हैं। तड़के 2:30 बजे से जो भगवान महाकाल के दर्शन पूजन शुरू हुए हैं, वो खास तौर से जो महाकाल ज्योतिर्लिंग को माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भस्मारती केवल यही होती है। और मैं अभी महाकाल मंदिर परिसर में खड़ा हूँ और आपको दिख रहा होगा कि जो महाकाल का शिखर है, भगवान महाकाल जहाँ विराजमान है, उस शिखर के दर्शन हमारे देश भर के दर्शक कर रहे होंगे। और मैं कोटि तीर्थ कुंड पर खड़ा हूँ और 2:30 बजे से जो दर्शन का प्रारंभ सिलसिला शुरू हुआ, पंचामृत पूजन किया गया, फिर भस्मारती की गई और फिर भगवान का श्रृंगार किया हुआ, लाखों की संख्या में देश और दुनिया से सारे लोग हमारे साथ आए हैं और देश भर से श्रद्धालु हमारे पास आए हैं। तो कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी मौजूद हैं जो पूरा वर्ष इंतजार करते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप पूरा वर्ष इंतजार करते हैं दर्शन करके, आपको कैसा लगा?
4: बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, महाकाल बाबा के दर्शन हुए, राजा धीराज महाराज महाराज और महाकाल महाराज जिनकी हम साल भर इंतजार करते हैं, सावन सावन के उपवास करते हैं, सोमवार को दर्शन हो जाए। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, पर ये व्यवस्था बहुत अच्छी
3: है। आप किस तरह के मतलब व्रत त्योहार उपवास करती हैं और क्या भगवान से मांगा आपने?
5: पहला सोमवार है और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया, बस वही चाहते हैं कि महाकाल अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे।
3: जैसा कि आप दीपावली
0: संदीप जरा ये भी बताइए कि वहाँ पर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, पालकी निकाली जाती है वहाँ पर, ये भी परंपरा बताई जाती है, क्या कुछ उससे जुड़ी हुई तैयारियां की गई हैं?
3: देखिए, ये बहुत अच्छी बात पूछी दीपावली आपने। उज्जैन में उज्जैन के राजा महाकाल माने जाते हैं, भगवान महाकाल, बाबा महाकाल को उज्जैन के राजा माना जाता है और ये माना जाता है कि पूरे वर्ष भर जो भगवान महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते, शिव के दर्शन नहीं कर पाते, तो राजा के तौर पर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने स्वयं भगवान महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और ये शाम को 4 बजे से बड़े लाव लश्कर के साथ, धूमधाम के साथ, पुलिस की टुकड़ी होती है, बैंड बाजे होते हैं, झांकियां होती है और भगवान महाकाल ऐसे लोगों को जो पूरे वर्ष भर महाकाल मंदिर नहीं आ पाते हैं उनके दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं और भगवान महाकाल फिर शिप्रा जाते हैं और शिप्रा का पूजन करके वापस लौटते हैं। तो श्रद्धालुओं को घर से बैठकर दर्शन करने का मौका मिलता है और श्रद्धालु अभिभूत हो जाते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। जी दीपाली
0: जी बिल्कुल संदीप जी, और आज बेहद पवित्र दिन है, सावन का पहला सोमवार है। जीएनटी पर लगातार हम आप सभी के माध्यम से तस्वीरें जीएनटी के दर्शकों को दिखाते रहेंगे और दर्शन करवाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किस राशि की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन सी राशि होने वाली है मालामाल, क्या है मंगल के राशि परिवर्तन का हाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's K-pop to start listening now.
9: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के पूरे महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सावन के सोमवार। तो आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की और सावन के पहले सोमवार के महिमा की। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा सावन का महीना श्रावण मास जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है। लेकिन सावन के पूरे महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना और सोमवार का दिन शिव जी का दिन, इसीलिए सावन के सोमवार पर पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है। सोमवार और शिव जी का संबंध होने के कारण ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। आप पूरे सावन में पूजा ना भी करें, अगर केवल सावन के हर सोमवार पर आप पूजा करें तो भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो सावन का सोमवार पूरे सावन में सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार के पूजा का महत्व क्या है। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए, शीघ्र विवाह के लिए
और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तब भी सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को आप कुछ करें या ना करें, शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। हो सकता है व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से आप पूरे सावन में शिव जी की पूजा ना कर पाए। ऐसी स्थिति में केवल सावन के सोमवार पर अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा और पूरे सावन की तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप

मंदिर में कहीं पर भी खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन के समय में केवल जल और फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जाप करें और उनकी आरती करें। आरती के बाद आप एक वेला भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें और अगर सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो दान के बाद व्रत को समाप्त करिएगा। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ है और साथ में अगर आप सावन के सोमवार पर शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को आप पूरा कर पाएंगे। देखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर एक विशेष प्रयोग कर सकती हैं। सावन के सोमवार पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 बेलपत्र आप ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और इसके बाद एक एक करके बेलपत्र सारे शिवलिंग पर समर्पित करें और हर बेलपत्र समर्पित करने के साथ नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकती हैं। अगर ये प्रयोग करने के बाद आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान पक्ष को अच्छा रखना चाहते हैं, संतान पक्ष की हमेशा उन्नति चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा और सारे बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: पहला सोमवार जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहे देश भर के शिवालय। सावन में दिख रहे कांवड़ के अनूठे रंग, सहारनपुर में 12,000 लड़ियों से दुल्हन की तरह सजा कांवड़ मार्ग, हरिद्वार में दिखी 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड के साथ जीते कुल 39 पदक, चौथे पायदान पर भारत अब 2030 में भारत करेगा मेजबानी। फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की वीकेंड पर बम्पर कमाई, दुनिया भर में 927 मिलियन डॉलर की कमाई का बनाया रिकॉर्ड। बोलिविया में भव्य लोक नृत्य का उत्सव का आयोजन किया गया, कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर, करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में बात होने जा रही है मंगल के राशि परिवर्तन और सावन के पहले सोमवार की। सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसका आप सभी की राशियों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। इसके अलावा सावन का पहला सोमवार है, इस दिन कैसे पूजा उपासना करें ताकि शिव जी की कृपा आप सभी पर बरसे, इस शो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
2: अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप कोशिश करिए गुड़ मिला हुआ जल नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाइए और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। अगर आप नियमित रूप से गुड़ मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे तो कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि 3 अगस्त 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है।
2: दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है और किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं।
2: जी देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं और मंगल का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर और देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा। मंगल के राशि परिवर्तन की स्थिति क्या है। मंगल अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, अब मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल का मिथुन राशि में जाना ये स्थिति कुल मिलाकर मध्यम मानी जाती है, क्योंकि मिथुन के मंगल को बहुत अच्छा मंगल नहीं कहते। सिचुएशन मंगल की एवरेज रहेगी और मंगल मिथुन में सामान्यतः थोड़े कमजोर वाले हिस्से में होते हैं, तो मंगल की ये कमजोर स्थिति 18 सितंबर तक बनी रहेगी। मंगल का मिथुन में जाना बहुत अच्छी सूचना नहीं है। इस स्थिति में मंगल लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देंगे, लोगों के जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी।
0: और चलिए अब वक्त हो गया है दैनिक राशिफल के बारे में जानने का। पंडित जी से जानेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: मेष राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है।
2: देखिए, मंगल जो है ना, वो उपद्रव का, उत्पात का, निरंकुशता का स्वामी है। तो मंगल का राशि परिवर्तन राजनीति पर और लोकतंत्र पर बड़ा गहरा असर डालता है। मंगल के राशि परिवर्तन के समय मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में आ जाएंगे और मंगल शनि का केंद्र में एक दूसरे से आना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है, भयंकर दुर्घटनाएं। वायु की राशि में मंगल है तो वायु की दुर्घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट और विस्फोट, एक्सप्लोजन और आतंकवादी घटनाएं जैसी स्थिति बन सकती है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में मंगल मिथुन में ही बैठे हुए हैं, इसलिए भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है, बेवजह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लोगों का प्रदर्शन, लोगों का प्रोटेस्ट ज्यादा हो सकता है और जनता असंतुष्ट होगी तो आंतरिक अशांति फैलेगी। राजनैतिक रूप से बड़े पदों से लोगों को हटना पड़ेगा और राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। जो तटीय इलाके हैं, समुद्र तट के इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, जैसे मुंबई है, उड़ीसा का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, इन जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं से समस्या हो सकती है। यानी मंगल का ये राशि परिवर्तन एक तरफ प्राकृतिक आपदा दिखा रहा है और दूसरे तरफ ये भी दिखा रहा है कि देश में बेवजह के विवाद और बेवजह के उपद्रव बढ़ सकते हैं।
0: तो दुनिया पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये पंडित जी से आपने जाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: कर्क राशि, आपकी पारिवारिक उलझने इस समय सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सवाल लेने का। पंडित जी, आज का सबसे पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
2: जी, आज का पहला प्रश्न प्रिया रस्तोगी ने हमें जयपुर से लिखा है। 25 मई 1983 का जन्म है, 10:04 प्रातः संभल उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि क्या मेरे जीवन में मुझे कोई सरकारी उच्च पद मिल सकेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रिया जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से कानून के क्षेत्र में, प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलने की संभावना साल 2027 के आखिरी में या 2028 में दिखाई दे रही है। या तो कानून के क्षेत्र में उच्च पद मिलेगा या राजनीति में मिलेगा। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का मूंगा, चांदी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का दूसरा सवाल लेने का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
2: जी, अगला प्रश्न श्लोक गुप्ता ने हमें इंदौर से लिखा है। 23 नवंबर 2009 का जन्म है, 2:42 दोपहर में, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं अभी और मुझे किस तरह के करियर में सफलता मिलेगी। श्लोक, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और मकर राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए श्लोक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं तो उसमें बेहतर सफलता की संभावनाएं बढ़िया हैं। अच्छे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करके तकनीकी क्षेत्र में एक बेहतर करियर बना सकेंगे। एकाग्रता आपकी बेहतर हो, करियर में आपको सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है अगला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, मंगल का जो राशि परिवर्तन है तकरीबन 1.5 महीने तक देश दुनिया पर और राशियों पर प्रभाव डालता है। तो आपको बताते हैं ब्रीफली, मोटे तौर पर, कि अलग अलग राशियों पर मंगल के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखा सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन शुभ है। इनके तमाम रुके हुए काम, इनके महत्वपूर्ण काम इस समय पूरे होंगे और इनको इस समय सफलताएं बहुत मिलेंगी, लेकिन इनको जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। बाकी मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो वृष, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे। करियर में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम इस समय नहीं लेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। इनको अपने पारिवारिक जीवन का, अपने करियर का बहुत ध्यान देना होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले दुर्घटना से बचें। कोई सर्जरी या कोई शल्य चिकित्सा हो सकती है और मुकदमेबाजी आदि की नौबत आ सकती है। तो 12 राशियों में आप अगर देखें तो मेष, सिंह, कन्या और मकर के लिए राशि परिवर्तन सबसे अच्छा है। कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए सबसे बुरा है और बाकियों के लिए मध्यम है। लेकिन कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन 8 राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है।
0: तो ये तो हमने जाना कि मंगल के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
2: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो हमने मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में तो जान लिया, वक्त हो चला है ये जानने का कि अगर आपके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं।
2: देखिए, 12 राशियों में केवल 4 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल है, बाकी 8 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अनुकूल नहीं है। क्या उपाय करें इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए? मंगल का ये राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस स्तुति को सुबह शाम पढ़िए। संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करिएगा। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, अगर ऐसे लोग लाल रंग की चीजों का प्रयोग करें तो वो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं।
0: और चलिए अब बात कर लेते हैं सावन के पहले सोमवार के बारे में, जो कि 3 अगस्त को है। जान लेते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर बरसे।
2: देखिए, पूरे सावन आप पूजा करें या ना करें, समय ना निकाल पाए, लेकिन सावन का हर सोमवार बहुत मूल्यवान है। अगर आप सावन के पहले सोमवार पर व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, शिव जी का मंत्र जप, ध्यान या स्तुति करते हैं, तो संपूर्ण सावन का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को है, क्या उपाय करेंगे? प्रयास करें कि शिव जी की पूजा या तो 12 बजे के पहले प्रातः काल कर लें, या शिव जी की पूजा प्रदोष काल में सावन के सोमवार पर करिएगा। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। इस समय में शिव जी की पूजा करिए। इस समय शिवलिंग पर बेल पत्र और जल की धारा आपको अर्पित करना है, और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, और इसके पश्चात शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है, और इसके बाद शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। तो सावन के पहले सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का जप करें, और सावन के सोमवार में संध्या में अंधेरा हो जाने के बाद एक घी का दीपक शिव मंदिर में जरूर जला दें। अगर आप सावन के पहले सोमवार पर ऐसा करेंगे तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशि फल के बारे में जानने का।
2: मकर राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दूसरों के मामले में ना पड़ें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: आज सावन का पहला

0: बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर मेल करके आप अपने सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है इस मेल आईडी पर अपना प्रश्न आप पंडित जी को भेज सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न तुलिका कुमारी ने बिहार से लिखा है। 12 दिसंबर 1994 का जन्म है, 11 बजे सवेरे मुजफ्फरपुर बिहार। ये पूछ रही हैं कि मैं संतान के लिए कंसीव कब कर पाऊंगी, संतान के योग कब तक हैं, क्या मेरी कुंडली में कोई मेडिकल दिक्कत की सूचना भी है। तुलिका जी आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और मीन राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए ज्योतिष के हिसाब से मेडिकल की कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं लग रही है, थोड़ा हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर ठीक कर देंगे, कोई बहुत जटिल समस्या आपकी कुंडली में नहीं बनती है। और संतान होने का समय, कंसीव करने का समय चल रहा है आपके पास इस साल के अगस्त से लेकर और फरवरी तक का बेहतर समय है, जिस समय में आप गर्भ धारण कर सकती हैं। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का, कृष्ण मंत्र का जप करें, संतान के लिए प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जानने का कि आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न रश्मि ने देहरादून से हमें लिखा है। 10 मार्च सन 2000 का जन्म है, 9:05 सवेरे देहरादून उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, मुझे लगातार सोचने की, लगातार चिंता करने की आदत है और मेंटली मैं परेशान रहती हूँ, इसलिए स्वास्थ्य भी मेरा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरी मेंटल कंडीशन बेहतर हो और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। रश्मि आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मेष राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। चंद्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में, ये बहुत साफ तौर से दिखाता है कि बेवजह की तनाव और चिंता की आदत है आपको, और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सर में दर्द वगैरह भी आपको होता होगा या सर में भारीपन हमेशा बना रहता होगा। आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 3 अगस्त को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।

0: दिन 3 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, दूर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: सामान्यतः कोई मूर्ति देवी देवता की अगर खंडित हो जाती है तो हम उसकी पूजा नहीं करते, उसे हटा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। क्या शिवलिंग के खंडित होने के बावजूद भी उसकी पूजा की जा सकती है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? शिवलिंग पर यह नियम लागू क्यों नहीं होता? देखिए, शिवलिंग जो है वो शिव जी का निराकार स्वरूप है। इसके खंडित होने के बावजूद इसकी ऊर्जा पर, इसकी शुभता पर, पॉजिटिविटी पर असर नहीं पड़ता। इसीलिए शिवलिंग के खंडित होने पर भी इसकी पूजा की जा सकती है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जानने का कि 3 अगस्त 2026 का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 3 अगस्त सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब जान लेते हैं कि आज की आपकी गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग कौन से मंत्र का जप करें जिससे उन्हें लाभ होगा। आज की गुडलक राशि है तुला। आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में हर प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी।
1: और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पंडित जी से जान लेते हैं कि आज कौन से महा उपाय करने चाहिए।
0: जी,

0: मंत्र पढ़ते हैं, उपासना करते हैं, उस समय मन में खराब बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, तो क्या करेंगे? स्नान करके या अच्छी तरह हाथ पैर धो करके ही पूजा करिएगा। पूजा की शुरुआत करने के पहले जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपका मन शुद्ध हो। इसके बाद पूजा आरंभ करिएगा। आपके मन में बुरे और नकारात्मक विचार पूजा के दौरान नहीं आएंगे।
1: इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: क्या सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है? क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज सावन का पहला सोमवार है जिसको लेकर मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है, क्योंकि जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में भक्त शिवालय पहुंचेंगे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। कांवड़िए भी सोमवार को शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे और इसलिए जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है, विशेष व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में तो प्रशासन ने उनका सम्मान पुष्प वर्षा से किया और फूड पैकेट्स और पानी की बोतल भी दिए। देखिए तस्वीरें।

0: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इसी महीने का हर सोमवार खास होता है, लेकिन पहला सोमवार सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कल यानी 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और उनका अभिषेक करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही सुख शांति और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। सावन के पहले सोमवार को देखते हुए शिवालयों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कल हर शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अभी से खास रौनक दिखने लगी है। रविवार के होते हुए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। सावन का महीना है तो कांवड़ यात्रा भी पूरे धूमधाम से चल रही है। महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लगातार यहां पर कांवड़िये पहुंच रहे हैं। दरअसल सावन में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिससे विष निकला था, जिसका पान भगवान शंकर ने किया था और वह नीलकंठ कहलाए थे। इस वजह से उनके शरीर का ताप बढ़ गया था, तब देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया था और तब से ही यही परंपरा चली आ रही है। और तभी से ही भक्त सावन के महीने में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में सोमवार का खास महत्व माना जाता है।
1: भगवान शिव को जल से, दूध से और इच्छु रस से जैसी जिसकी कामना होती है उसके अनुरूप भगवान शिव का जो अभिषेक करते हैं। निश्चित रूप से जब श्रावण मास आता है तो शिव भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं और आकर जो है महाकालेश्वर स्वयं का दर्शन करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं।
0: देश के कई इलाकों में कांवड़ यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। प्रयागराज के संगम से गंगा जल लेकर लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से गुजरते हैं। कांवड़ियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने इस साल भी नेशनल हाईवे 19 यानी प्रयागराज से काशी तक के लिए एक लेन पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है, जबकि दूसरी लेन से गाड़ियों की आवाजाही कराई जाएगी। ये व्यवस्था पूरे सावन माह तक प्रभावी रहेगी। भदोही जिले के अलग अलग इलाके से कांवड़िये जल लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए जगह जगह विशेष इंतजाम किए गए हैं, शिविर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित, व्यवस्थित और सकुशल संपन्न हो।
2: ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 है, इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे, उनके साथ में जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए।
0: सावन के महीने में हर तरफ माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में कांवड़िये दूर दूर से सफर करके जलाभिषेक के लिए महादेव की नगरी पहुंचते हैं। ऐसे में रेल में सफर करने वाले कांवड़िया हों या फिर आम यात्री, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सात्विक भोजन की होती है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने शुद्ध और सात्विक भोजन की व्यवस्था लागू की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रेलवे फूड प्लाजा में सावन को ध्यान में रखते हुए शुद्ध और सात्विक भोजन का इंतजाम किया गया है। रेलवे की इस खास व्यवस्था से कांवड़ियों में खुशी है।
3: सात्विक और बढ़िया भोजन होता है, हम लोग पिछले बार भी खाया था, इस बार भी व्यवस्था देख रहे हैं कि बढ़िया है और हम लोग जा रहे हैं देवघर के लिए, सुल्तानगंज से जल लेकर जाएंगे पैदल।
4: रेलवे ने अच्छी व्यवस्था की है खान पान की?
3: हाँ, बढ़िया व्यवस्था की है इस बार।
5: सात्विक भोजन जो भी रेलवे दे रही है आज अच्छा भोजन दे रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के दे रहे हैं कांवड़ यात्रा वाले बम लोगों को। बहुत अच्छी व्यवस्था है जो कि पहले नहीं था ये चीज।
0: हरिद्वार के प्रसिद्ध कांवड़ मेला पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। अभी तक महज 4 दिनों में ही करीब 50 लाख से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िये यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों और शिवालयों की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा हरिद्वार बम बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से गुंजायमान है।
6: अब आपको लिए चलते हैं शिव के एक ऐसे धाम जहां पर सावन में आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। मान्यता है कि यहां पर आकर जो भी अपनी फरियाद भगवान के सामने रखता है उसकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा गरीबनाथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा गरीबनाथ की महिमा।

0: हर हर महादेव का जयकारा, बोल बम का जय घोष और बाबा गरीब नाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहा आस्था का सैलाब। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम का अपना ही महत्व है। आज ये स्थल बिहार की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि 200 साल पहले कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिवभक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो वो रोज की तरह भगवान शिव के सामने अपनी व्यथा सुनाकर मंदिर में ही सो गए। उधर घर में पत्नी ने बेटी का गौना कराने के लिए अपना मकान बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन जब रजिस्ट्री नहीं हो सकी और वे निराश होकर घर लौटे तो वहाँ ऐसा दृश्य था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब शिव भक्त ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना और भाव विभोर होकर गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर पहुंच गए। तभी से यहां के भगवान शिव का धाम बाबा गरीब नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
1: देखिए आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी वहां से भी लोग आते हैं। और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी होने की कथा दूर दूर तक फैल गई। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि बाबा गरीबनाथ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा की कृपा से उनकी बिगड़ी जिंदगी भी संवर गई। कई लोग वर्षों से लगातार यहां आकर सेवा और पूजा करते हैं।

0: लाखों कांवरिये हाजीपुर से गंगाजल लेकर करीब 82 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। पिछले साल श्रावणी मेले में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। इस बार यह संख्या 25 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए इस बार मंदिर समिति ने भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की है। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे।
1: और बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है और उम्मीद भी यही है कि इस हफ्ते ऐसा ही मौसम रहने वाला है। पूरे देश में बादल जमकर बरस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: रिमझिम बारिश, कभी बादलों के बीच से निकलती धूप, बादलों की आवाजाही के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलती रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलते रहने की संभावना है। कुल मिलाकर दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आने वाले सप्ताह का मौसम राहत भरा रहने वाला है। अलिनो के बावजूद मॉनसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार और ओडिशा में 5 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मॉनसून लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे देश के करीब करीब हर इलाके में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने केरल और गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आईएमडी के अनुसार केरल के अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुकी, कोटायम और पथानम थिट्टा जिलों में गरज चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाद, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा समेत कई जिलों में भी इसी प्रकार का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार और असम के कछार, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
8: Sage University, transforming your passion into profession.
2: आज सावन का पहला सोमवार, जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहे देश भर के शिवालय। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। सावन में दिख रहे कांवड़ के अनूठे रंग, सहारनपुर में 12,000 लड़कियों से दुल्हन की तरह सजा कांवड़ मार्ग, हरिद्वार में दिखी 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़।

0: दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड के साथ जीते कुल 39 पदक, चौथे पायदान पर भारत अब 2030 में करेगा मेजबानी।
1: फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की वीकेंड पर बंपर कमाई, दुनिया भर में 927 मिलियन डॉलर की कमाई का बनाया रिकॉर्ड।
0: बोलिविया में भव्य लोक नृत्य उत्सव का आयोजन, कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर, करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया।

0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर आप सभी के सामने।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: तो चलिए शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं सावन के साथ। आज सावन का पहला सोमवार है। इस खास मौके पर श्रद्धालु देश भर में महादेव की भक्ति में लीन है। सावन का महीना महादेव का प्रिय महीना माना जाता है, ऐसे में इस महीने पूजा अर्चना की काफी अहमियत भी मानी जाती है।
1: सावन के दौरान मंदिरों में भी आस्था अपार है। देश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ज्योतिर्लिंगों से लेकर हर शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की जा रही है। काशी, सोमनाथ, महाकाल और बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्ति का अद्भुत रंग दिखाई दे रहा है। इस तरह आस्था, श्रद्धा और भक्ति मिलकर सावन के पहले सोमवार को महापर्व बना रहे हैं।
0: और देखिए, हरिद्वार, प्रयागराज समेत दूसरे धामों में भी कांवड़ियों का उत्साह चरम पर है। कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था का सफर नहीं होता, बल्कि भक्ति, क्रिएटिविटी और समर्पण की अनगिनत कहानियों का संगम बनता है। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं, तो ये सभी रंग आगे हम आपको दिखाएंगे।
1: और साथ ही बात करेंगे ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की भी। इन गेम्स का भव्य समापन हो चुका है। भारत इस बार चौथे स्थान पर रहा। वैसे भारत के लिए ये सिर्फ खेलों के खत्म होने का जश्न नहीं, बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है। तो इन सभी के बारे में आगे बात होगी विस्तार से।
0: और देखिए, इसके अलावा आपको लेकर चलेंगे बोलीविया, जहां भव्य लोक नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कैथोलिक परंपराओं की अनोखी तस्वीर दिखाई दी। वहां करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया, तो इसके बारे में भी बात विस्तार से करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
1: सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भोले के भक्तों की कतार लगी हुई है। हर कोई इस पवित्र महीने में भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाना चाहता है। भगवान और भक्तों के बीच विश्वास की इसी डोर का नतीजा है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए आस्था का सैलाब उमड़ने लगा है। हर कोई देवाधिदेव महादेव की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।
0: और देखिए, सावन के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया, तो बड़ी संख्या में भक्त इन पलों के साक्षी भी बने। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती की गई। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से पूरी फिजा गूंज उठी।
1: सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ की मंगला आरती की गई और साथ ही बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया गया। वहीं बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भक्तों पर फूल भी बरसाए गए।
0: देवघर, सावन के पहले सोमवार पर बाबा धाम देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए 8 किलोमीटर की लंबी कतारें नजर आई। रात 12 बजे से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं द्वारा जलार्पण किया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मिल रही सुविधाओं का श्रद्धालुओं द्वारा सराहना की जा रही है।
1: सावन 2026 की कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से 221 फीट लंबा तिरंगा, कांवड़ और अग्नि 5 मिसाइल थीम वाली कांवड़ जैसे आकर्षणों के साथ आस्था और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। देश के सैनिकों और सुरक्षा को समर्पित मिसाइल और परमाणु थीम वाली अनूठी कांवड़ें भी धर्मनगरी में पहुंच रही हैं।
0: अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। जहां बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए एक और जत्था रवाना हुआ, तो वहीं अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। साथ ही श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए।
1: मानसून में चमोली की फूलों की घाटी पूरी तरह से खिल उठी है। 1 जून से 31 जुलाई 2026 के बीच 16,462 पर्यटक यहां पर पहुंचे, जो पिछले पूरे सीजन का रिकॉर्ड पार कर चुके हैं। मुख्य सीजन अभी जारी है और इसलिए इस बार पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है।
0: चीन के किंघाई प्रांत के हेनान मंगोलियाई स्वायत्त काउंटी में पारंपरिक नादम फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ, जिसमें मंगोलियाई घुमंतू संस्कृति, लोक नृत्य, पारंपरिक संगीत, घुड़सवारी, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे ऐतिहासिक खेलों की अनूठी झलक देखने को मिलती है।
1: स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में दुनिया भर से $927 मिलियन की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया है और इस फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाए हैं। ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है।

0: और देखिए जिनसे याद ही है, जिनसे अंत है, उनका नाम है महादेव। उन्हीं महादेव को आज याद करने का दिन है, उनमें समा जाने का दिन है और उनसे मनोकामनाओं की पूर्ति करने का दिन है। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है, हमारी एक खास पेशकश लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। भगवान शिव के अनेक दिव्य स्वरूपों का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। देवों के देव महादेव को श्रद्धा, भक्ति और आस्था से भरा शत शत प्रणाम। सावन के पावन पहले सोमवार पर देशभर के शिवालयों के हर रंग हम आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव के जय घोष के साथ हर जगह गूंजती हुई सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर महाकालेश्वर तक आस्था के ऐसे ही रंग आपको नजर आ जाएंगे।
1: आपको बताते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए, पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देश भर के तमाम शिव मंदिरों में आपको आज हम लेकर चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सावन के पहले सोमवार पर आइए आपको कराते हैं देश के पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दिव्य दर्शन। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर धाम तक आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा का मनोहरी श्रृंगार हुआ और फिर भव्य मंगला आरती के साथ पूरा वातावरण जय शिव शंभू के जय घोष से गूंजता हुआ दिखाई दिया।

0: और देखिए, हम तो आपसे यही कहेंगे कि किसी कारणवश अगर आप मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए हैं तो जीएनटी को देख लीजिए, क्योंकि तमाम तस्वीरें, तमाम रंग देश भर से आ रहे हैं और वही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि सावन का पहला सोमवार है तो इस मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिवमय उठी। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से लेकर महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हर जगह नजर आई, और जब बाबा के भव्य दरबार भक्तों के लिए खोला गया तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद महाकाल का अलौकिक श्रृंगार हुआ। चंदन, भस्म, पुष्प, रत्न आभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसके बाद हुई मंगला आरती, जिसमें दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया।
1: तो देखिए तस्वीरें, किस तरह से सावन के पहले सोमवार पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए, सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना भी उन्होंने की है। मंत्रोच्चार के बीच आरती की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप जीएनटी के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं।

0: तो देखिए देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। जीएनटी पर हम शिव के तमाम धामों की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर काशी विश्वनाथ धाम है एक तरफ और सोमनाथ धाम के ये लाइव दर्शन आप कर सकते हैं। काशी शिव की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि ये शिव का स्थायी धाम है। मोक्षदायिनी गंगा तट पर बसी शिव की इस नगरी का शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। मान्यता ये है कि सावन के महीने में जो काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, जिसको भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है, महादेव का जलाभिषेक करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष उसको प्राप्त होता है। तो वहीं सोमनाथ धाम की महिमा भी अपरंपार है।
1: तो वहीं आपको बता दें, सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान दिया गया है। सावन में सोमनाथ धाम के दर्शन का विशेष महत्व है। आप इस वक्त काशी विश्वनाथ और सोमनाथ धाम के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि जहां पर सोमनाथ धाम के दर्शन से जीवन में आरोग्यता और समृद्धि आती है, वहीं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से साधक को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है।
0: तो देखिए ऐसी तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आप चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ गए हैं आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचाने के लिए। मनीषा है हमारे साथ दिल्ली से, रोशन है वाराणसी से, संदीप है उज्जैन से, मुदित है हरिद्वार से। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं मनीषा लड्डा का, दिल्ली में वो मौजूद है। सुबह से लेकर अभी तक क्या तस्वीरें मनीषा आप देख पा रही हैं? सबसे पहले सावन के पहले सोमवार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करती हूं कि आप सबकी मनोकामनाएं भी महादेव जल्द पूर्ण करें।
2: बिल्कुल शुभ गुप्ता, हम आपको भी और साथ ही साथ जीएनटी के सभी दर्शकों को जो है सावन की और खास तौर पर आज पहला सोमवार है तो महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। लेकिन तस्वीरों से शुरू करती हूँ क्योंकि पहला सोमवार है तो हर एक शिवालय, देशभर के जितने भी शिवालय, जितने भी श्रद्धालु है वो उनका रुख कर रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको भगवान तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि कितनी बेहद खूबसूरती के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। और सुबह 2 बजे से ये मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया था। तो अभी जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हो ना, ये लंबी लंबी लाइनें 2 बजे से पहले ही लोगों ने लगा ली थी ताकि वो सबसे पहले जाकर शिवलिंग पर जो है जल अभिषेक जो है वो कर सके। और तस्वीरें देख सकते हैं पूरी तरीके से भक्तिमय का जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बोलबम और हर हर माधव की जो गूंज है वो लगातार जो है इस वक्त मंदिर में सुनाई दे रही है। और वाकई में खास है आज का दिन क्योंकि पूरा महीना ही बहुत बेहद ही पावन माना जाता है और हर किसी को है कि हम आज के दिन महादेव के दर्शन जरूर करें, जलाभिषेक जरूर करें, रुद्राभिषेक जरूर करें। और ये मंदिर वाकई में बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। हम मैं ही लगातार इतने समय से आ रही हूँ तो मैं यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूरी होते हुए भी सुनती हूँ कि लोग जब बताते हैं ना कि महादेव ने हमारी पुकार सुनी। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दूं कि क्यों ये मंदिर इतना खास है। शगुप्ता, 800 साल पहले का ये मंदिर है, 800 साल से जो है 800 से ज्यादा साल इस मंदिर को जो है वो हो चुके हैं। और कहते हैं कि मराठा सैनिक जो थे अप्पा गंगाधर, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ये उन्हीं के द्वारा जो है ये मंदिर की स्थापना की गई क्योंकि उन्होंने महादेव उन्होंने मांगी थी कि युद्ध में उनका जीवन बचा लेना, अगर उनका जीवन बच जाएगा तो उन्होंने बोला था कि मैं आप ही के नाम से जो है एक बड़ा सा शिवालय जो है वो जरूर खोलूंगा। और महादेव ने उनकी पुकार जो है वो सुनी और उसके बाद अप्पा गंगाधर ने जो है इस मंदिर की स्थापना करी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर आस्था, विश्वास और इतिहास तीनों का एक बहुत ही बेहतरीन संगम है जो दर्शाता है। ये लोगों की भीड़ बताती है कि वही आस्था देखते हुए कि जिस तरीके से भगवान शिव ने अप्पा गंगाधर की जो है मनोकामना पूर्ण करी वैसी ही वो हमारी भी करेंगे। तो आप लंबी लंबी कतारें देख सकते
1: जी। बिल्कुल मनीषा, और बहुत जरूरी जानकारी आपने दी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रोशन के पास चलते हैं जो कि वाराणसी में मौजूद हैं। रोशन, किस तरह की तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही हैं, जरा हमें भी दिखाइए और जीएनटी के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाइए, उनका दर्शन करवाइए। आज सावन का पहला सोमवार है और आज की तस्वीरें हैं वो काशी में देखते ही बनती हैं।
3: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तस्वीरें काशी से देखने को मिलती है। वर्ष में आज सावन के पहले सोमवार के दिन ही ऐसा नजारा होता है क्योंकि आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व है। और इस समय हमारी मौजूदगी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले गदौलिया चौराहे जिसे नंदी चौराहा कहते हैं वहां पर है, और देख सकती हैं कि जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ कतार और श्रद्धालुओं की जो अपार भीड़ है वे नजर आ रही है, और भक्त जो घंटों कतार में खड़े होके यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर आगे तक ये लाइन जा रही है और गंगा घाट से लेकर ये कतार सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंच रही है और घंटों से लोग यहाँ पे अपनी बारी के इंतजार में हैं। हालांकि आज मौसम बहुत सुहाना है, भगवान भास्कर सुबह से ही दर्शन नहीं दिए हैं, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। और चूंकि मंदिर की तरफ से बहुत सारे इंतजाम भी किए गए हैं, हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रही हैं आप?
4: मैं भदोही से आ रही हूँ।
3: तो आज सावन का पहला दिन है, सोमवार है, किस तरह से बाबा के दर्शन अर्पण करती हैं, किस तरह से पूजा करती हैं?
4: श्रद्धा से करती हूँ, दिल से ही करती हूँ, बस दर्शन हो जाए आज वही बहुत।
3: कितने देर से कतार में?
4: हम 2 घंटे से।
3: 2 घंटे तो थकान हो रहा है, दिक्कत हो रही
4: है, कमर टेढ़ हो गई है दर्शन के लिए,
3: बस अब दर्शन हो जाए,
4: बस जल्दी से भगवान दर्शन दे दे और कुछ नहीं।
3: आप कहाँ से आ रहे हैं?
5: हम प्रयागराज से।
3: कब से कतार
5: हो गए? 6 घंटे हो गए, सुबह 6 बजे से लगे हैं।
3: गंगा जल लेके जा रहे हैं, स्नान करने?
5: हाँ, गंगा जल लेके जा रहे हैं। 4 नंबर गेट से हो सकता है एंट्री हो, आराम मिले।
3: देखिए जो भक्त हैं कोई 2 घंटे से, कोई 6 घंटे से लगातार कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी के इंतजार में।
0: महादेव आज परीक्षा तो आपकी जरूर लेंगे, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए अपनी बारी का, मैं दर्शन देता हूं, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो रहा है इसमें क्योंकि भगवान जो है वो भी अंदर बैठे हैं और इसी इंतजार में है कि कब भक्त जो है मेरे दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचेंगे। चलिए तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है, दिल्ली की तस्वीरें आपने देख ली, वाराणसी की देख ली, आप सीधे चलते हैं हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुदित वहां पर मौजूद है, मुदित दिखाइए जरा आज सावन के पहले सोमवार पर यहाँ कैसी रौनक दिखाई दे रही है?
6: देखिए यहाँ की ऐसी रौनक आप देख सकते हैं, पूरी यहाँ पर भीड़ है, सुबह 4 बजे से यहाँ पर कतारें लग गई थी और जो अभी तक लगातार चली आ रही है। अब भीड़ का ये आलम है कि जो जितनी भीड़ कम हो रही है उससे ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, ये है क्योंकि यहाँ पे कांवड़ का मेला भी चल रहा है। कांवड़ के मेले के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि दक्षेश्वर महादेव मंदिर माना जाता है कि भगवान शंकर की ससुराल है और पूरे सावन में भगवान शंकर यहीं पर रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर जलाभिषेक करता है, ये माना जाता है कि थोड़ा सा जल भी अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाए तो भगवान शंकर खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं जो होती हैं पूरी होती हैं। इसके लिए सुबह से ही यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हैं, जो यहाँ पर लगातार लोग आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िया भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो जलाभिषेक कर रहे हैं ताकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो सके।
1: जी बिल्कुल, आप मुदित आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनीषा ने दिल्ली से जो तस्वीरें दिखाई हैं वो देखते ही बन रही हैं। मनीषा यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है क्योंकि आज पंचमी तिथि भी है सावन के पहले सोमवार के साथ, तो किस तरह के विशेष इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं?
7: दीपाली अगर मैं विशेष इंतजाम की बात करूं तो इंतजाम ये है कि भक्तों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हर कोई जो है जलाभिषेक करना चाहता है, महादेव के दर्शन करना चाहता है, तो सबसे बड़ा इंतजाम ये होता है कि आप किस तरीके से भक्तों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो भक्तों की सुरक्षा वाकई में बेहद ही तरीके से इन्होंने जो है इंतजाम करे, आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें मेरे आसपास आपको जो है दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है वो दिख जाएगी और लगातार इसी तरीके की जो लंबी लंबी कतारें हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर नजर आने वाली है उसके लिए इन्होंने लगातार जो है यहाँ पर इस तरीके से आपको बाउंसर, सेवादार और पुलिसकर्मी सभी के सभी जो है वो तैनात नजर आएंगे, तो ये इनके सुरक्षा के विशेष इंतजाम जो है किए गए। हालांकि भगवान का जो श्रृंगार है वो रात के समय पहले से ही कर दिया गया था जब मंदिर जो है वो खुले और 4 बजे आरती हुई और अब 2 बजे के करीब जो है यहाँ पर जो है आरती वापस होगी, तो लेकिन ये आप आरती देख सकते हैं कि लोग जितने भी श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से बीच बीच में जो है वो आरती कर देते हैं, तो इंतजाम कुछ इस तरीके से है। भंडारे का व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पे की गई है, जो व्रत वाले हैं उनके लिए भी खासा जो है खाने के इंतजाम यहाँ किए गए और बहुत सारे जो है यहाँ पे कांवड़िए जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे कर आ रहे हैं। हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थलों से जो है बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर जो है वो यहाँ पहुंचे, तो उनके लिए खास इंतजाम, उनके लिए अलग से जो है वो जगह बनाई गई है ताकि जितने भी यहाँ पर भोले के जो भक्त हैं, जो भोले यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा माहौल है वो वाकई में शिवमय हो चुका है। हर एक आपको वर्ग यहाँ पर नजर आने वाला है, चाहे वो बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या युवा की बात की जाए, हर कोई आपको यहाँ पर जो है हाथों में बेलपत्र, धतूरा, भांग, फूल, गंगा जल लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और मंदिर बेहद ही भव्य और आकर्षक तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें दिखाती कि किस तरीके से फूल से मंदिर को पूरा जो है वो सजाया गया है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी इतनी खूबसूरत है जितनी अंदर की तस्वीरें जो है मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। और इसी आस्था के चलते भक्तों का उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ये आरती बीच बीच में जो हो रही है ना, और साथ ही साथ जो जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं वो इन भक्त
0: बिल्कुल। चलिए मनीषा, लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। देखिए इसी बीच बाबा के धाम की रौनक भी देखते ही बनती है। देखिए काशी विश्वनाथ धाम की ड्रोन तस्वीरें जो शिव भक्तों का उत्साह साफ बयां कर रही हैं। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, चूंकि सावन का पहला सोमवार है, इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्से से ऐसी ही उत्साहपूर्ण तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीरें देख सकते हैं, विहंगम दृश्य यहां पर नजर आ रहा है। ड्रोन से कैप्चर की गई ये तस्वीरें आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल की एक रिपोर्ट आई है, वो आपको दिखाते हैं।
8: सावन का पावन महा भोलेनाथ को अति प्रिय है, यही वजह है कि आज सावन के सोमवार के पहले दिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश और विदेश से शिव भक्त पहुंच रहे हैं, बल्कि परंपरानुसार जो स्थानीय यादव बंधु हैं वे भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सीधे गंगा स्नान करने के बाद यादव बंधु अपने पात्रों में जल लेकर बाबा के दरबार विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं जो सामान्य शिव भक्त हैं, आस्थावान हैं, और साथ ही साथ कांवड़िया भी अपनी कांवड़ लेकर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन बाबा के दर्शन कर लेने से भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मंगला आरती के बाद से ही बाबा के द्वार आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और अब से लेकर शयन आरती तक बाबा के दर्शन भक्त पा सकेंगे। और यही वजह है कि आज लाखों की भीड़ को देखते हुए कुल 6 द्वार प्रवेश और निकास के बनाए गए हैं। तो आज के इस महापर्व पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए
1: संदीप कहां
8: जो भक्त हैं वे पूरे देश और दुनिया से पहुंच रहे हैं और पूरी की पूरी जो काशी नगरी है वह हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ गुंजायमान होती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।
1: तो ये तो काशी की विश्वनाथ धाम की तस्वीरें आपने देखी। देश भर के शिवालयों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब आपको लिए चलते हैं सीधा उज्जैन, जहां से हमारे सहयोगी संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जीएनटी के माध्यम से लोगों के दर्शन करवाए।
9: जी, मैं उज्जैन की महाकाल की नगरी उज्जैन से बोल रहा हूँ और अभी इस समय हम महाकाल मंदिर के प्रमाइसिस में, मेरे पीछे आपको महाकाल मंदिर का शिखर के दर्शन हो रहे होंगे। गर्भगृह में भगवान महाकाल है, उनके द्वितीय भाग पर भगवान ओंकारेश्वर और जो शिखर है उस पर नागचंद्रेश्वर है। उज्जैन का मंदिर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भस्म आरती होती है। 9 बजे पट खुलने के बाद लगातार लाखों लोग दर्शनों का सिलसिला चल रहा है और सोमवार सावन का पहला सोमवार है। लाखों भक्त देश और दुनिया से यहाँ इकट्ठे है और महाकाल के दर्शन करके अपने आप को धन्य पा रहे हैं। लगातार दर्शनों का सिलसिला जारी है। सुबह हरिओम जल हुआ, फिर पंचामृत पूजन हुआ, फिर उसके बाद भस्म आरती हुई, फिर भगवान का श्रृंगार हुआ। भगवान शिव को, महाकाल को लोग जल चलाकर प्रसन्न हो रहे हैं। ये पूरा वर्ष इंतजार करते हैं आज के दिन का, सावन के दिन का, जिससे महाकाल भगवान शिव की पूजा कर सके, अपने मनोव्रत पूरे कर सके और पूरे महीने लगातार उनके उपवास होंगे, तरह तरह की पूजन होगी, विधान होगा और ये कोटी तीर्थ के जल से भगवान के पूजन की शुरुआत होती है। शाम को राजा महाकाल की सवारी भी निकलेगी। राजा महाकाल, क्योंकि उज्जैन के राजा महाकाल कहलाते हैं और वे अपने प्रजा को दर्शन देने निकलते हैं। सावन के साल में ऐसा मौका होता है कि सावन के प्रत्येक सोमवार को दर्शन देने निकलते हैं और ऐसे लोग जो पूरे वर्ष भर दर्शन करने नहीं आ पाते राजा महाकाल उनके दर्शन उनको दर्शन लेते हैं, उन्हें कृतार्थ करते हैं, भक्त और श्रद्धालु भी उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझते हैं। जी
0: जी चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जीएनटी पर ये खास पेशकश दिन भर जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, लौटते हैं वापस।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
11: सावन के सोमवार पर शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। क्या सावन का सोमवार जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देता है? क्या है सावन के सोमवार का पूजा विधान और सावन के सोमवार पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
12: No.
13: Oh no.
12: Welcome to Get Real.
13: I got something to say.
12: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
13: Oh my god.
14: It's got to be deliciously desperate.
15: Why do these girls forgive him?
16: Well, she has a soft spot for troubled men.
14: Boo bloody hoo.
12: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
15: Love runs deeper than we know.
12: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney Plus.
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
19: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: आज सावन का पहला सोमवार, जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहे देश भर के शिवालय। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। सावन में दिख रहे कांवड़ के अनूठे रंग, सहारनपुर में 12,000 लड़ियों से दुल्हन की तरह सजा कांवड़ मार्ग, हरिद्वार में दिखी 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। केरल में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड के साथ जीते कुल 39 पदक, चौथे पायदान पर भारत, अब 2030 में भारत करेगा इन खेलों की मेजबानी।
21: बोलिविया में भव्य लोक नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया, कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर, करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका बहुत स्वागत है। आज सावन का पहला सोमवार है और हर शिव भक्त की एक ही कामना है कि महादेव का जलाभिषेक और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। और यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में सुबह होते ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और पूजा की थाली लिए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए नजर आए।
1: देखिए देश भर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें देख लीजिए। प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में तड़के से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए सभी नजर आए। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिव भक्ति का अद्भुत नजारा यहां भी नजर आया। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तों ने जलाभिषेक के साथ बाबा का पूजा अर्चन किया, सुख समृद्धि की कामना की। और राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी मनीषा भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन सावन के पहले सोमवार पर यहां पर आस्था का कैसा सैलाब उमड़ा वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पित किए और महादेव का अभिषेक यहां पर किया। और चलिए तस्वीरें तो आ ही रही हैं, काशी विश्वनाथ और सोमनाथ की तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। अगर आपने दर्शन नहीं किए तो ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। जीएनटी की स्क्रीन के माध्यम से आपको महादेव के दर्शन हम करवा रहे हैं।
0: तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर आरती की जा रही है, पूजन किया जा रहा है, यहाँ पर जल अभिषेक, यहाँ पर दुग्ध अभिषेक हुआ भगवान शिव का, यहाँ पर किस तरह से मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन हुआ है, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शिव दर्शन की तस्वीरें यहाँ जीएनटी आपको दिखा रहा है। आज सावन का पहला सोमवार बेहद पवित्र दिन माना जाता है और देश भर में इस दिन का पूरे साल इंतजार किया जाता है। श्रद्धालुओं के यहाँ पर अपार आस्था देखने को मिलती है। देश भर के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए दिखाई देते हैं। तो वहीं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जीएनटी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, घर बैठे आप दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में भक्त सुबह से महादेव के अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
1: और देखिए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहा। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हर श्रद्धालु के मन में देखिए यही कामना होती है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी वो अर्पण कर सके शिव भगवान उसको मंजूरी जरूर दे। और देखिए आपकी भी किसी प्रकार की कोई मनोकामना है तो आज आप जीएनटी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भोलेनाथ हैं तो आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। और देखिए कण कण में शिव है, रज रज में शिव है, पूरी बीच में भक्त और भगवान के पावन संबंध की एक और तस्वीर देखने को मिली। जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उन्होंने रेत से महादेव की सुंदर आकृति बनाई है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और महादेव संग सेल्फी लेते हुए यहां पर वो नजर भी आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसको एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है। महादेव का आज दिन है तो महादेव को आप इस माध्यम से भी याद कर सकते हैं।
0: तो देखिए अलग अलग तरीके से लोग अपनी भक्ति, अपने उत्साह जाहिर करते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और खासा जोश श्रद्धालुओं में बना हुआ है। इसी बीच सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कुछ इस तरह से यहाँ पर चित्र उकेरा है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दुधेश्वरनाथ मंदिर में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। भक्त दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासा जोश, खासा उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है।
1: और देखिए अगली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीर है। मन कामेश्वर मंदिर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, कहते हैं यहाँ पूजा करने से महादेव भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर यहां अभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, सुबह से भक्त यहां पर पहुंचे हैं। अपने आराध्य को किस तरह से वो प्रसन्न करने की कोशिश में है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, जिसके सामर्थ्य में जो आता है उस हिसाब से अपने भोलेनाथ को वो प्रसन्न करता है।
0: तो देखिए, देश भर के शिवालयों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, संदीप हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको उज्जैन लिए चलते हैं। संदीप, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। अगर श्रद्धालु मौजूद हों तो जरा उनकी भी तस्वीरें दिखाइए।
2: जी, उज्जैन में महाकाल की जो सावन की तैयारियां लगभग पूरे 2-3 माह पहले से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कलयुग में महाकाल ही अधिष्ठाता है, महाकाल ही देव के महादेव है। और महाकाल की 2:30 बजे से जो प्रारंभ हुई आरती, श्रृंगार, भस्म आरती, ये लगातार 11 बजे तक चलेगी। हमारे साथ महाकाल मंदिर के जो पुजारी हैं ओम गुरु वो मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह से पूजन पाठ शुरू हुआ, किस तरह से पट खुलने के बाद क्या क्या विधि विधान हुआ, क्या क्या विधि विधान पूरे हुए। महाराज जी,
3: आज 2:30 बजे बाबा महाकालेश्वर के पट खुले गए। पट खुलने के बाद बाबा को जल से स्नान कराया गया। आज विशेष पूजा की गई, सावन के पहला सोमवार था। बाबा को गंगा जल से स्नान कराया गया, फिर पंचामृत से स्नान हुआ, दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से स्नान, फिर भगवान को केसर से स्नान कराया गया, रुद्र से स्नान कराया गया। और बाबा का आज विशेष श्रृंगार किया गया, बाबा को भस्म चढ़ी, उसके बाद बाबा को महाकाल को भांग का विशेष श्रृंगार हुआ।
1: जी, चलिए लौटती हूँ आपके पास संदीप। मनीषा का रुख करना चाहूंगी। मनीषा, ये बताइए कि आज का दिन देखिए एक तो बहुत ही उत्तम दिन है, कितने पहर की पूजा यहाँ पर की जाएगी और व्रतियों के बारे में चूंकि आपने जानकारी दी थी, किस तरह के विशेष इंतजाम उनके लिए यहाँ पर किए गए हैं?
4: गुप्ता, जितनों ने भी व्रत रखा है उनके लिए यहाँ पर भोजन का जो है इंतजाम किया गया है। व्रत वाला खाना जो है वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही जो है वो बन रहा है, ताकि जो भी यहाँ से दर्शन कर जा रहे हैं वो नीचे जाके जो है भोग जरूर ले सके, प्रसाद जो है वो जरूर ग्रहण कर सके। लेकिन अगर बात मैं यहाँ की करूँ कि किस तरीके से जो इंतजाम है वो आज के दिन कर रखे हैं यहाँ पे, तो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो नजारा है वो यहाँ का जो है वो देखने को मिल रहा है। दिन के लगभग जो है इस वक्त 10 बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो लंबी लाइनें हैं ये बिल्कुल भी किसी तरीके से कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हर कोई जो यहाँ पे भक्त आपको नजर आएगा वो मन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया है, अपने दुख लेकर आया है। सिर्फ यहाँ से जो है कि हमारी जितनी भी मनोकामना है परिवार के प्रति जो भी चीजें हैं वो लेकर आए, लेकिन जब भी वो यहाँ से लौटते हैं तो मन में सिर्फ और सिर्फ विश्वास लेके लौटते हैं कि महादेव उनकी पुकार जो है वो जरूर सुनेंगे। और उसी को देखते हुए जो आस्था है वो कभी किसी तरीके से कम होती हुई नहीं दिखेगी। चेहरा आप इनके देखेंगे तो किसी तरीके की आपको यहाँ पर जो थकान है वो महसूस नहीं होगी, जबकि ये लोग 2-2, 3-3 घंटे का लंबे इंतजार के बाद यहाँ मंदिर के अंदर जो है वो पहुंचे रहे। और वाकई में 2-3 घंटे इंतजार करना अपने आप में बेहद ही लंबा समय माना जाता है। और अभी मौसम की बात करूं तो मौसम भी कुछ उस तरीके से साथ नहीं दे रहा। हालांकि आज जो है दिल्ली NCR में बारिश का अलर्ट है, बारिश जो है वो हो सकती है, लेकिन क्योंकि हर सावन के दिन जो है बारिश जरूर देखी जाती है, कहते हैं कि हर हर महादेव की जो असीम कृपा है वो भक्तों पर जरूर पड़ती है, तो बारिश जरूर होती है, लेकिन अब भी बारिश नहीं हुई है और उसी की वजह से उमस जो है वो लगातार बनती जा रही है। तो जितने भी भक्त जो मंदिर के बाहर इस वक्त खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपने महादेव का चेहरा देखने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, उनके लिए वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतना लंबा इंतजार करके वो यहाँ पर पहुंचे रहे। और लेकिन जैसे ही वो मंदिर में दाखिल होते हैं, मंदिर प्रांगण में जैसे ही वो कदम रखते हैं, चेहरे पे सारी थकावट आपको दूर होती हुई दिखेगी, सिर्फ खुशी दिखेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी कि किस तरीके से हम यहाँ आ गए। चलो भक्तों से भी एक बारी बात करते हैं, कितना लंबा इंतजार किया ये बताओ।
5: हाँ जी,
4: कितना लंबा इंतजार?
5: 2 घंटे
4: जी। चेहरे पे तो मुस्कान है आपकी?
5: जी बिल्कुल होगी।
4: क्या कुछ मांगना है महादेव से?
5: हाँ जी, जो मांगना था वो तो मिल गया ऑलरेडी, बस बाकी आगे लाइफ अच्छी कटे यही मांगेंगे जी।
4: कि किस तरीके से जो मांगना है वो मिल गया है।
0: और जब बात आस्था की आती है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती है, उसकी एक वानगी हम आपके माध्यम से देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए। इसी बीच हमारे साथ मुदित हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। मुदित, वहां पर हरिद्वार में लोग पहुंच रहे हैं, कांवड़िए पहुंच रहे हैं, कांवड़ यात्रा जारी है, गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ तैयारियां की गई है?
6: देखिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे
0: ठीक है, मुदित के पास लौटेंगे। इसी बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की कतारें किस तरह से लगी हुई हैं। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
1: और चलिए, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें तो आ ही रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कांवड़ मेले के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। सावन महीने में केदारनाथ धाम में शिव भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों का प्रशासन की ओर से भव्य स्वागत हो रहा है। अलग अलग तरह के कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस कांवड़ यात्रा में 221 फीट लंबा तिरंगा देशभक्ति का संदेश देता कैसे नजर आया, वो दिखाते हैं आपको।
7: भगवान भोले शंकर के प्रति सावन मास में हर तरफ भक्तिमय उल्लास का वातावरण बना हुआ है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक शानदार छटा दिखाई पड़ रही है। अलग अलग तरह के आकर्षक कांवड़ दिखाई पड़ रहे हैं, तो कांवड़ियों के स्वागत भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में भी सावन में बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा धाम गूंज रहा है। यहां पहुंचकर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर यहां भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पूरा धाम सावन की भक्ति से सराबोर है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद भी यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी सुविधा, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को लेकर अपनी खुशी जता रहे हैं।
8: दर्शन व्यवस्था अच्छी है, दर्शन के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है, एकदम आराम से दर्शन हो जाता है। हर हर महादेव व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, मुझे यहाँ आके बहुत ही सुकून मिला, बिल्कुल दोबारा जरूर आऊँ। भोलेनाथ बुला, जय केदारनाथ।
9: श्री केदारनाथ धाम में यदि मैं बात करूँ, पिछले 2 से 3 दिन में लगातार जो कांवड़ी श्रद्धालुओं का जो संख्या है, 3,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन कर दिए।
7: सावन के इस पवित्र महीने में हरिद्वार में गंगा जल भरने वालों का हर दिन तांता लग रहा है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए यहां सुविधा और सुरक्षा की दुरुस्त व्यवस्था की गई है। यहां जल भरने के लिए आने वाले शिव भक्तों का फूल मालों से स्वागत किया जा रहा है, साथ ही उनके बीच खाने पीने के सामान सब भी बांटे जा रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह भुल्लर खुद व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे नजर आ रहे हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधक, ट्रैफिक और चिकित्सा सहायता को प्राथमिकता दे रहा है।
10: कांवड़ मेले में लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, और सभी संस्थाओं के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार उनकी सुविधाएं बनी रहे, उनको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए तैयारियां की गई हैं कि कांवड़ जो भी कांवड़िया यहाँ दूरी तय करके यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो, उनकी यात्रा सफल।
7: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में अलग अलग तरह के कांवड़ लेकर श्रद्धालु जाते दिखते हैं। अब देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को ही देख लीजिए। इसे यूपी के बागपत के कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
11: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है,
12: अपना अपने आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेकर जा रहे। बस यही है कि अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे, यही सब।
7: इस दल में शामिल हर कांवड़िया देशभक्ति की भावना से भरा नजर आ रहा है। 26 लोगों का ये दल इस तिरंगा कांवड़ के जरिए देशभक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए मनीषा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनीषा, अगर पॉसिबल है तो जरा श्रद्धालुओं से बातचीत कर लीजिए, उनसे जानिए कि कितने उत्साहित हैं आज के पहले दिन को लेकर।
4: बिल्कुल गुप्ता, श्रद्धालुओं को ही आज दिन है क्योंकि ये हकदार भी है, क्योंकि लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है और उसके बाद भी लंबी लंबी लाइनों में जो है ये लोग यहाँ पर पहुंचे रहे। और हरा रंग यहाँ पर मैं मंदिर में देख रही हूँ, सबसे ज्यादा जो लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं वो हरे सूट या फिर हरे रंग की साड़ी में नजर आ रहे हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला सोमवार है, ये उसी का रंग है जो आप पे चढ़ चुका है।
13: हाँ बिल्कुल सच बात है, आज सावन का पहला सोमवार है, इसी कारण हमने हरी तैयारी रेडी कर रही है।
4: कहते हैं कि आज के दिन अगर जल अभिषेक कर दिया तो मतलब समझो सब कुछ महादेव ने सुन लिया।
13: सुन लेते हैं आज के दिन, अगर जो भी सच्चे मन से भक्त अपने दरबार पे आता है उनके दरबार पे, तो
4: पहले सुनी आपकी?
13: हाँ सुन लिया हमारी,
4: सुनी आपकी। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है लड़कियाँ भी नजर आ जाएंगी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर अविवाहित लड़कियाँ हैं, जो महिला है वो नजर आ जाएगी कि किस तरीके से व्रत रखा आज पहले, ये बताइए।
14: व्रत लगाया हमने भोले बाबा के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा, पहली बार इस मंदिर में आए हम दर्शन के लिए और बहुत अच्छा ही लग रहा है।
4: किसने बोला कि इस मंदिर में जरूर जाओ?
13: मेरी फ्रेंड है, सभी बोलते हैं वैसे तो। हाँ जी,
4: कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत रखोगे तो अच्छा वर मिलेगा, तो उस मनोकामना के साथ भी पहुंची हो यहाँ पे?
13: इसी के लिए वजह
4: पहुंचे शर्मा रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कोई अपनी अपनी मनोकामना जो है वो यहाँ पर लेकर जो है जरूर पहुंचा है। और भी भक्त इनसे बात करते हैं, आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हो आज?
15: बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम मंदिर आए इसलिए।
4: गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा?
15: नहीं लग रही है, तो भगवान के लिए कुछ नहीं लग रही,
4: भगवान के लिए कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरे पे जो है इनकी मुस्कुराहट है, पूजा कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती लेकिन चेहरे पे खुशी ज्यादा दिख रही है मुझे।
15: बहुत
4: दर्शन कैसे हो?
15: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव।
4: जी कब से आ रहे हो आप?
15: मेरे को तो कई साल हो गए, मेरा तो मम्मी का घर यही है बचपन से।
0: ठीक है मनीषा, बहुत अच्छी तस्वीरें, बहुत सुंदर तस्वीरें, आस्था और भक्ति की तस्वीरें आपने दिखाई हमें जीएनटी के माध्यम से, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि महादेव की असीम कृपा आप सबको भी यूं ही प्राप्त होती रहे। फिलहाल रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जीएनटी पर लगातार जारी है, इजाजत दीजिए।

0: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
12: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
13: Sage University, transforming your passion into profession.
14: आज सावन का पहला सोमवार जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त हर हर महादेव के जय घोष के साथ गूंज रहे देश भर के शिवालय सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई मंगला आरती बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर सावन में

रावण के अनूठे रंग, सहारनपुर में 12,000 लड़ियों से सजाया गया कांवड़ मार्ग, हरिद्वार में दिखी 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। केरलम में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद। लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले। बोलिविया में भव्य लोक नृत्य का आयोजन किया गया, कैथोलिक परंपराओं की दिखी अनोखी तस्वीर, करीब 87,000 कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लिया हिस्सा।

है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन के पूरे महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सावन के सोमवार। तो आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की और सावन के पहले सोमवार के महिमा की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात के 10:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात के 10 बजे तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के सोमवार की। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा पूरा सावन का महीना श्रावण मास जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है, लेकिन सावन के पूरे महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। सावन का महीना शिव जी का महीना और सोमवार का दिन शिव जी का दिन, इसीलिए सावन के सोमवार पर पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा मिल जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो तमाम समस्याओं से मुक्ति पा जाता है।
सोमवार और शिव जी का संबंध होने के कारण ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। आप पूरे सावन में पूजा ना भी करें, अगर केवल सावन के हर सोमवार पर आप पूजा करें तो भी आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो सावन का सोमवार पूरे सावन में सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार के पूजा का महत्व क्या है। भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हो तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तब भी सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सावन के सोमवार को आप कुछ करें या ना करें, शिव जी की पूजा जरूर करिएगा। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। हो सकता है व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से
आप पूरे सावन में शिव जी की पूजा ना कर पाए। ऐसी स्थिति में केवल सावन के सोमवार पर अगर आप शिव जी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा और पूरे सावन की तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। सावन के सोमवार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि सावन के सोमवार की सामान्य पूजा विधि क्या है। देखिए, प्रातः काल 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो सुबह 12 बजे के पहले या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा, घर से नंगे पैर जाइएगा और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइएगा, मंदिर का जल मंदिर में ना चढ़ाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और अगर संभव हो तो भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। मंदिर में कहीं पर भी खड़े होकर या बैठकर शिव मंत्र का, नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। दिन के समय में केवल जल और फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान के मंत्रों का पुनः जाप करें और उनकी आरती करें। आरती के बाद आप एक वेला भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें और अगर सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो दान के बाद व्रत को समाप्त करिएगा। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ है
और साथ में अगर आप सावन के सोमवार पर शाम के समय में शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को आप पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में अशांति से बचें, धन की हानि हो सकती है, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दूसरों के मामले में ना पड़ें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो सावन के सोमवार पर एक विशेष प्रयोग कर सकती हैं। सावन के सोमवार पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 बेलपत्र आप ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और इसके बाद एक एक करके बेलपत्र सारे शिवलिंग पर समर्पित करें और हर बेलपत्र समर्पित करने के साथ नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग आप सावन के किसी भी सोमवार को कर सकती हैं। अगर ये प्रयोग करने के बाद आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर संतान पक्ष को अच्छा रखना चाहते हैं, संतान पक्ष की हमेशा उन्नति चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा और सारे बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Good news today, Pat.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो, भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा, भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है। माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी।

चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हमारी प्रार्थना है तुम्हें महान बनना है तो याद रखना, आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलो, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है। साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है, एक ही उपाय है, क्या? प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज, आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन?

बच्चा हनुमान जी से, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम राम राम राम राम राम कहता हूं, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। है? महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे, परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है, हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों, हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा, राम जी से मिलवाएंगे? परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन हैं। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम राम राम राम राम राम जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। पांच चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार विभीषण, पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में।
और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी, भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय, जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया, जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और पांचवी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? आहाहा, पांचवी बार राम सेतु के समय पर किया। आहा, राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं, बानर भालू अंगद दधीमुख केहरी नल नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा, तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा, गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा, राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन, वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे, महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा हूं? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा? आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया। रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया,
लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सम में रखा होगा। जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम में नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। आहा, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसल हो गया, टिकट तो कैंसल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसल है। तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या बोले? द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली, जोर से बोला। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
11: सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था मगर

0: करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिर में जुटे भक्त। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, रस्सी, लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर, 30 सीसीटीवी से सुरक्षा। केरल में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम, रणजी से लेकर आईपीएल के मैचों की होगी मेजबानी, 135 रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: आज है सावन का पहला सोमवार, शिवनगरी काशी से लेकर उज्जैन के महाकाल तक शिव भक्तों का रेला। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल।

0: सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। शिव भक्तों और कांवड़ियों की आस्था से पटी मंदिर की गलियां। इस दौरान खूबसूरत फूलों से सजा बाबा विश्वनाथ का दरबार, फूलों की खुशबू से महका मंदिर परिसर। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती की गई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई, भक्त झूमते हुए नजर आए। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का हुआ अलौकिक श्रृंगार, हर हर महादेव के नारों से गूंजा परिसर। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक दिखे भक्त। मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विधि विधान से हुआ दुग्ध अभिषेक, आस्था से सराबोर हुआ पूरा माहौल। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्र अभिषेक, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। 12 बंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लगी लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने गंगा जल से किया जलाभिषेक। नोएडा के शिव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। पुरी के लोकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दूध अभिषेक। सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतारें, बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। मधेपुरा में सावन के पहले सोमवार पर सिंहेश्वर नाथ धाम पर लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में विधि विधान से पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतारें, भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगा जल बेलपत्र से बाबा का अभिषेक किया, लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार को उमड़ा आस्था का मेला, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रोहतास के तिलेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का लगा मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। सावन के पहले सोमवार पर पटना के शिवालयों में सुबह से लगी लंबी कतार, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। रायसेन के शिव गुफा मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का दुग्ध अभिषेक। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक, सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर सारण के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव, विधि विधान से पूजा की। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा की। सवाई माधोपुर के महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। 50,000 लीटर से यदुवंशी समाज ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, 9 दशक से भी पुरानी है ये परंपरा। लखनऊ के चंदेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की लगी लंबी कतार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और जटायु ड्रोन वैन से श्रद्धालुओं की निगरानी। देशभर के शिवालयों में सुबह से ही लगी भक्तों की कतार, इस सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार। कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का रेला, गुब्बारों से सजाया गया मंदिर परिसर। आनंदेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव के जय घोष ने माहौल में खोली दिव्यता, भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए ललाहित दिखे भक्त। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, लगी लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर श्यामनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ की जलाभिषेक के लिए देर रात से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें। श्यामनाथ मंदिर में शिव भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके धन्य हुए भक्त। हर हर महादेव की जय घोष से गूंजा श्यामनाथ मंदिर परिसर, सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस रही मुस्तैद, श्यामनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन में वॉलंटियर्स ने संभाली कमान। सुरक्षा और व्यवस्था का बेहतर तालमेल देखने को मिला, पुलिस और स्वयंसेवकों के सहयोग से श्रद्धालुओं ने सुगमता से किए बाबा के दर्शन। सहारनपुर में कांवड़ मार्ग को हजारों रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात के समय रोशनी से जगमगाता दिखा रास्ता, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तकरीबन 10 से 12,000 लाइट से चमका कांवड़ मार्ग, लाइटों की चमक के बीच शिव भक्त उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा पूरी। खूबसूरत सजावट देखने के लिए उमड़ रहे हैं स्थानीय लोग, मोबाइल में कैद कर रहे हैं खूबसूरत नजारे। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर 6 से 7,000 लाइटें लगाई गई हैं, कांवड़ियों ने भी इस व्यवस्था की जमकर तारीफ की। दिनभर पैदल चलने के बाद रात में जगमगाते हुए कांवड़ मार्ग से गुजरकर श्रद्धालुओं को मिल रही है नई ऊर्जा, सहारनपुर की यह सजावट कांवड़ यात्रा को बना रही है यादगार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will lead.
3: From the first pitch of the season to the stretch run.
4: And that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेगजेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटे भक्त। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार, फूलों से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से सुरक्षा। केरलम में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम। रणजी से लेकर आईपीएल मैचों की होगी मेजबानी। 135 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज भगवान शिव को अति प्रिय सावन महीने का पहला सोमवार है। इस अवसर पर देश भर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने के शिव मंदिरों में आज महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है, उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गुजरात के सोमनाथ धाम हो, श्री शैलम में स्थित मल्लिकार्जुन धाम हो, या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, या फिर खंडवा के ओंकारेश्वर से लेकर उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ तक, महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ धाम से लेकर महाराष्ट्र के ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक, तो वहीं झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम, गुजरात के नागेश्वर, तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित रामेश्वरम, तो महाराष्ट्र के गणेश्वर मंदिर में किस तरह से पूजा की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों पर आज महादेव के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह श्रद्धा और भक्ति का उत्सव नजर आ रहा है, क्योंकि सनातन परंपरा में सावन का महीना और विशेष रूप से इसका पहला सोमवार अत्यंत पावन माना गया है। आज अपने स्पेशल शो में हम आपको देश के हर कोने में स्थित महादेव के ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताएंगे और बताएंगे इन ज्योतिर्लिंगों पर पूजा का महत्व क्या है। का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर माने जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं, जो केवल मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक हैं। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं।
1: जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयं भू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए। और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव, यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभू महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी है, भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं, इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।

तो सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति। देखिए

की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रकृति और अध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम जहाँ पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर है, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मांधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3,500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो शिव के दर्शन के लिए निकले, लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। महादेव केदारखंड आ गए और भैंसों का रूप धारण कर मवेशियों के झुंड में शामिल हो गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहां त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है 6ठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमाशंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि काप उठी तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमाशंकर कहा गया।

0: भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर के साथ साथ मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, ऐसी अविनाशी काशी के हृदय में विराजमान है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। गंगा के पावन तट पर बसी काशी के बारे में मान्यता है कि ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है और इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया ताकि वे सदा अपने भक्तों के बीच रह सके। मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय भी काशी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं।
1: 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था, महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों के पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ हैं, और कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में बदल देता है।
2: महादेव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के नवे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं। पर ऐसा हो नहीं सका, कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्रयंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्रयंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा।
3: ये मंदिर त्रयंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल।
2: जितना पावन महादेव का ये धाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र।
4: 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है, लेकिन खाली दो ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है।
2: घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मार कर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यह सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग

बारह ज्योतिर्लिंग, बारह धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास, सावन का पावन महीना, इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ खेलों के खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
2: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
3: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
2: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
2: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70

0: गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
3: Swing and a foul out of play off to the left.
2: Big 12 Radio.
4: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
2: Talk Sport.
5: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
2: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
1: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
13: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटे भक्त।

0: मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर ओर भोले के जयकारों की गूंज।
1: सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, एकता सामूहिक सहभागिता का दिया संदेश।
0: सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, रस्सी लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से सुरक्षा।

जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम। रणजी से लेकर आईपीएल मैचों की होगी मेजबानी। 135 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार।

0: नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। जो तस्वीरें आपको सुबह से हम जीएनटी पर दिखा रहे हैं, उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और सावन का चूंकि पहला सोमवार है, तो वही तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आज महादेव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन है। वैसे तो सावन का पूरा महीना शुभ माना जाता है, शिव के जप तप ध्यान के लिए उत्तम दिन, लेकिन इसमें सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। आज का दिन भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है और यही वजह है कि देशभर के शिवालयों में सुबह होते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, पूजा की थाली लिए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए कतारों में नजर आ रहे हैं।
1: तो वहीं आपको बता दें, बद्रीनाथ, अयोध्या, मुजफ्फरपुर, झांसी, दिल्ली, बाराबंकी, मधेपुरा और पुरी से लेकर देश भर के महादेव के मंदिरों में आज सुबह से ही कुछ अलग ही छटा नजर आ रही है। शहर शहर रौनक नजर आ रही है। देश भर से आई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव के प्रति उनके भक्तों का समर्पण कितना गहरा है। तड़के से ही शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव के लिए प्रिय बेलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देशभर के शिवालयों में तो आस्था का सैलाब नजर आ ही रहा है। भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी श्रद्धा और भक्ति की ऐसा ही उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। सुबह से ही बाबा के इन धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, देवघर का बैद्यनाथ धाम हो या वाराणसी का बाबा विश्वनाथ धाम, औरंगाबाद का घृणेश्वर धाम हो या फिर नासिक का त्र्यंबकेश्वर धाम, तमाम ज्योतिर्लिंगों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं।
0: और देखिए, भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, भांग, धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी नजर आए।

0: शिवत्व की पावन यात्रा का आज पवित्र दिन है। सावन के पहले सोमवार पर पूरा देश शिवमय हो रहा है। काशी से केदारनाथ तक, उज्जैन से देवघर तक और हरिद्वार से लेकर सोमनाथ तक हर हर महादेव, बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयकारे शिवालयों में गूंज रहे हैं। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में भक्ति की गूंज है और कांवड़ मार्ग भक्तिमय हो गया है। सुबह की पहले किरण से पहले ही शिव मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतार लग गई। द्वार खुले तो महादेव की जय जयकार के साथ भक्त भगवान को खुश करने में जुट गए। बाबा की नगरी काशी में आस्था का समंदर उमड़ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का दौर जारी है। इस खास मौके के लिए मंदिर में खूबसूरत लाइटिंग की गई। सुबह विधि विधान के साथ बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ और भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए मंदिर के कपाट। उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुँचने लगे। भगवान भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तय समय से पहले जागे। तड़के 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार हुआ।
1: बहुत अच्छा लगा महाकालेश्वर की भस्म आरती में आने के बाद। ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस है जो आज तक मैंने कभी किसी दूसरी ज्योतिर्लिंग में ऐसा फील नहीं किया है।
2: बाबा ने खुद से बुलाया पहले सोमवार पे, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता और बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री महाकाल।
3: पहला एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर किया मैंने भस्म आरती, और ये अनुभव वर्ड में तो एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती। और वो जो मोमेंट था जब लाइट जाती है ना, सीरियसली गूज़बम्प्स आ गए। और मतलब मुझे लगता है कि महादेव को हर किसी ने जो सोच कर आता है, जिसके मन में जैसी बात होती है, जरूर नजर आए हुए। मुझे तो वो फीलिंग हुई है, मतलब बहुत ही एक डिवाइन सी फीलिंग थी पूरे जगह पे।
0: सावन की पहली सोमवारी पर बाबा धाम देवघर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। पहला सोमवार होने के साथ साथ आज पंचमी तिथि है, ऐसे में श्रद्धालुओं की कतार देर रात से ही लगनी शुरू हो गई। बाबा के मंदिर से 8 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी है। प्रशासन की ओर से व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पहले सोमवार पर राजधानी दिल्ली भी शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन श्री किलकारी भैरव मंदिर, दुधेश्वर महादेव मंदिर और शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हाथों में गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लिए भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की। सावन के पहले सोमवार पर संगम नगरी प्रयागराज शिवमय हो गई है। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध और गंगाजल लिए भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं।
4: प्राचीन स्थान है, इनका जो पुराणों में उल्लेख मिलता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। और त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र आए थे तो उन्होंने भी सीता जी के साथ यहाँ जलाभिषेक किया था और उनकी जो यात्रा है वो सफल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है और जो सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन जलाभिषेक करता है, निश्चित रूप से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
5: बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है इलाहाबाद का और बहुत ही मान्यता है यहाँ के मंदिर की, इसलिए हर सावन के सोमवार के पहले दिन यहाँ बहुत भीड़ लगती है।
6: यहाँ पे आने से हर एक इच्छा पूरा होता है, तो मेरी भी मन्नत है तो जरूर पूरा होगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा है और काफी जो हमारे पुलिस वगैरह है, स्टाफ वगैरह काफी अच्छे से कर रहे हैं, सबको अच्छे से दर्शन हो जा रहा है।
0: सावन के पहले सोमवार पर गुजरात के पवित्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में आस्था, श्रद्धा और सनातन परंपरा का संगम देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में भगवान सोमनाथ का वैदिक विधि विधान के साथ दिव्य अभिषेक किया गया। मधेपुरा में सावन की पहली सोमवारी पर मधेपुरा जिले के ऐतिहासिक बाबा सिंहेश्वर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले इस धाम में जलाभिषेक के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश नेपाल से भी शिव भक्त यहाँ बाबा पर जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्ति की बयार बह रही है। जहां एक ओर कांवड़िए भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु पूजा पाठ और व्रत विधान के साथ महादेव को प्रसन्न करने में जुटे हैं। हर ओर केवल भक्ति, विश्वास और शिव आराधना का ही स्वर सुनाई दे रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से मनीषा लाडा, गुड न्यूज टुडे।
7: और चलिए तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं। खास मेहमान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज जी गुड न्यूज टुडे पर। आपसे बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, पहले सहयोगियों का इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं। रिदम जैन है हमारे साथ जयपुर से, मनीषा है दिल्ली से, सुबह से बनी हुई है, और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। चलिए सबसे पहले रिदम आपके पास आते हुए, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी रौनक है सावन के पहले सोमवार को लेकर, दिखाइए और बताइए।
8: बिल्कुल, जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी मौजूद मैं हूँ और रौनक तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ किस तरीके से यहाँ पे फूल बंगला बनाया हुआ है और इस फूल बंगले में भक्त आ रहे हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो नजर आ रही है, सुबह से ही यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं। तड़के 3 बजे से ही भक्तों की आवाजाही यहाँ पे शुरू हो जाती है, जो लाइन्स हैं वो लगना शुरू हो जाती है। हर कोई इंतजार करता है कि कब बाबा दर्शन उनको देंगे और इस बार सावन का क्योंकि पहला सोमवार है तो बाबा ने भी भक्तों को अपने समय से पहले दर्शन इस बार दिए हैं। लंबी लंबी कतारें और भक्तों की भीड़ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक भक्त अपने हाथों में गंगा जल लिए या फिर दूध लिए, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प लिए हर एक भक्त बाबा को प्रसन्न करने आया है। अपने मन में जो मनोकामना है वो यहाँ पे लेके आया है। सभी भक्त नजर आ रहे हैं। सावन का क्योंकि पहला सोमवार है तो एक तरह दूसरी तरफ आपको कतारें भी दिखाती हूँ कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पे इस मंदिर में लगी हुई है और सिर्फ भक्त नहीं बहुत सारे सेवागार भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर इसको माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ डाइवर्जन्स जो है वो किए गए हैं और साथ ही में ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारी की गई है और पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है जिससे किसी भी तरीके की यहाँ पे परेशानी किसी को ना हो। सुबह से ढोल नगाड़े यहाँ पे चल रहे थे, भक्ति जो है वो अलग अलग रूप में नजर आ रही थी। हम कोशिश करते हैं कुछ भक्तों से बात करने की। मैम क्या भक्ति भावना है?
9: बहुत अच्छा लग रहा है।
8: क्या भावना है आप लेके आई, क्या मनोकामना है?
10: मेरी ये कामना है कि मेरे भैया की कार की किस्त है ना पूरी हो जाए, इसलिए इसीलिए आई हूँ मैं यहाँ पे। और मेरी भाभी को ना बहुत पसंद है ये, जो दिल्ली से है ना मैं वीडियो कॉलिंग करके हर साल दिखाती हूँ उन्हें।
8: चलिए जयकारा एक बार आप लगा दी,
10: बोलो बम बम भोले,
9: बम बम भोले।
8: यहाँ पे देखिए मनोकामनाएं भी हमें बता दी गई है, हालांकि बोलते ऐसे हैं कि मनोकामनाएं बताई नहीं जाती है। अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ के लिए बताना चाहूंगी कि हर शाम यहाँ पे अलग अलग थीम में श्रृंगार बाबा का किया जाता है, तो आज जब अभी फूल बंगला बनाया गया है वहीं शाम के समय में भगवान जगन्नाथ की झांकी जो है वो यहाँ सजाई जाएगी, तो वो स्वरूप
7: जी बिल्कुल। रिदम मैं आपके पास लौटूंगी और इसके बारे में अधिक जानकारी आपसे लूंगी। अब जरा एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वहां पर किस तरह की धूम देखने को मिल रही है? जिस तरह से आज पहला सोमवार है इसे महापर्व की तरह मनाया जाता है सावन में, वहां पर किस तरह की तस्वीरें?
11: देखिए आपको बताएं कि इस समय में मुंबई के 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर में हूँ, बाबुलनाथ मंदिर में हूँ। बाबुलनाथ नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है मंदिर और यहाँ भी रोजाना ही 10,000 से ज्यादा जो भक्त हैं वो आते हैं, लेकिन जब स्पेशली श्रावण की बात हो और सोमवार की बात हो तो ये आंकड़ा लाखों पार हो जाता है। अभी इस समय 12:30 बजे के आरती की तैयारी हो रही है और जो भी फूल हार सब शिवलिंग पर चढ़ाए गए थे उनकी साफ सफाई भी चल रही है। और आप इस तरफ देखें कि जो भक्त हैं उन्हें रोका गया है। आपको बताएं लगभग 2 से 3 घंटे कतार में खड़े होने के बाद लोग जो हैं वो शंकर भगवान के पास पहुंच रहे हैं, भोले बाबा का दर्शन कर पा रहे हैं। और एक आरती सुबह 5:30 बजे की हो चुकी है, 12:30 के आरती की तैयारी है। जो लोगों ने दर्शन ले भी लिया है वो भी अब परिसर में बैठे हुए और इंतजार में हैं कि आरती में भी कम से कम सम्मिलित हो जाए। थोड़ा तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से बाबुलनाथ बाबा का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर इंतजार में हैं, दर्शन करने के बाद बैठे हुए हैं। एक कतार थोड़ा इस तरफ भी आए और देखें, बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, साउथ का बहुत ज्यादा पुराना मंदिर है। प्राचीन कथाएं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। आप देखें किस तरीके से अच्छी खासी कतार जो है यहाँ पर लगी हुई है। और ये नजारा, ये तस्वीरें सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही, बल्कि वहां भी देखें एक के बाद एक आगे पीछे होते हुए ये जो काफिला है शिव भक्तों का, ये धीरे धीरे शिव भगवान तक पहुंच रहा है। आपको बताएं इंद्र देवता आज सुबह से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न है, अच्छी खासी मूसलाधार बारिश हो रही है मुंबई में। बावजूद इसके एक बड़ी तादाद में जो शिव भक्त हैं स्पेशली सोमवार के दिन बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ पड़े हैं। ये मंदिर इस वजह से भी बहुत ज्यादा माना जाता है, जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मौका मिलता है जलाभिषेक करने का। यहाँ पर जो है लोटे रखे होते हैं, लोग आते हैं जल उसमें लेते हैं और उसके बाद में बाबा को जाकर के चढ़ाते हैं। ये देखिए किस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से शिव भक्त जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं। हर कोई चाह रहा है कि इनकी मिन्नतें पूरी हो जाए और ऐसा होता भी है। सोमवार के दिन स्पेशली श्रावण में बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जिन चीजों से उन्हें खुशी मिलती है अगर वो चीजें थाली में सजा करके उन्हें परोसी जाए, उन्हें चढ़ाई जाए, तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ये सिर्फ मंदिर एक शंकर भगवान मंदिर के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि एक शांति का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिसर है और यहाँ पर बकायदा लोगों को बैठने दिया जाता है, ईश्वर से मिलने दिया जाता है। लोग यहाँ पर बैठ करके आरती भी करते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो स्पेशली शंकर भगवान के लिए करनी होती है। थोड़ा सा तस्वीरें देखिए, बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ इस मंदिर के साथ लोगों का भी
7: देखिए, लोग मेडिटेशन करते हुए भी मुझे इन तस्वीरों में धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें आपने दिखाई है। धर्मेंद्र, लौटती हूँ आपके पास, मनीषा के पास आना चाहूंगी। मनीषा, सुबह और इस वक्त की तस्वीरों में कितना अंतर आया है?
12: गुप्ता, बिल्कुल भी किसी तरीके का अंतर आपको नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि आज वाकई में जो कहते हैं ना, भक्ति का असली जो रंग होता है वो मंदिर में देखने को जो है वो मिल रहा है। सुबह से ही जो भीड़ में आपको लगातार दिखा रही थी वो दोपहर के 12:30 बजे भी आपको मिलने वाली है। वही जोश आपको वो दिखेगा, वही आस्था आपको दिखेगी और वही उसी तरीके से उत्साहित जितने भी ये शिव भक्त आपको नजर आएंगे बाहर। अब कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन हो चुकी है, ये तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी ही लाइन दिखा रही हूँ कि कितनी जो लोग है वो किस तरीके से अंदर मंदिर में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मंदिर के बाहर का नजारा आपको दिखा सकती तो वाकई में वो देखने लायक है कि लंबी लंबी कतारों में 2 किलोमीटर तक जो है बाहर लाइन लगी हुई है। बारिश किसी भी तरीके की नहीं हो रही है तो गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोग जो है गर्मी और उमस के साथ बस इंतजार कर रहे हैं तो वो महादेव का कि उनके दर्शन जो है वो कब पाएंगे। तो वाकई में एक अद्भुत संगम जो है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार जो है पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामना के साथ। और कहते हैं कि सोमवार के दिन वैसे भी जल चढ़ाना वाकई में बेहद खास माना जाता है, लेकिन जब बात इस पावन महीने की हो, बात जब सावन के सोमवार की हो, तो वो अपने आप में और भी उसकी खासियत जो होती है वो बढ़ जाती है। और इस अटूट आस्था के साथ जो है भक्तों का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको किसी तरह से फर्क नहीं महसूस होगा कि ये दिन का समय है, रात का समय है या शाम का समय है। इसी तरीके की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर जो है वो नजर आने वाली है। और यहाँ सिर्फ महादेव को नहीं बल्कि माँ गौरी को भी जो है वो लगातार पूजा जा रहा है, क्योंकि गौरी शंकर मंदिर है जो इस मंदिर का पूरा नाम है। तो यहाँ पर दोनों ही भगवान जो है उपस्थित है और दोनों ही भगवान का जो आशीर्वाद है वो लोग ले रहे हैं। तो पूरा जो ये मंदिर परिसर है वाकई में शिवमय हो चुका है।
7: जी बिल्कुल मनीषा, बहुत सुंदर तस्वीरें आप दिखा रही हैं। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। इसी बीच जयपुर चलते हैं जहां पर रिदम हमारी सहयोगी मौजूद है, जहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, फूल बंगले का आप जिक्र कर रही थी। रिदम, जरा तस्वीरें दिखाइए।
13: जी जी बिल्कुल, मैं आपको वापस से तस्वीरें दिखाती हूँ किस तरीके से अलग अलग फूलों से भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया हुआ है। फूल बंगला इन्होंने बनाने की कोशिश की है। हर साल अलग अलग थीम्स ये लोग लेके आते हैं जो पूरे सावन में जिससे सजावट करते हैं, तो उसी तरीके से इस साल भी कई अलग अलग थीम्स जो है उस पे सजावट होने जा रही है। सुबह के समय में जहाँ ये फूल बंगला बना हुआ है, वहीं शाम के समय में बाबा जगन्नाथ की झांकी जो है वो यहाँ लगेगी। हमने सावन के पहले दिन भी दिखाया था कि किस तरीके से बहुत भव्य श्रृंगार यहाँ पे किया गया था और महाकाल की झांकी यहाँ पे लगाई जाने वाली थी, वहीं अभी शाम को बाबा जगन्नाथ दिखेंगे। साथ ही साथ में हर दिन जो यहाँ पे अलग अलग झांकी लगती है उसमें कई सारे फल, कई सारे फूल जो होते हैं वो नजर आते हैं। बहुत ही भव्य रूप से ये जो श्रृंगार है ये किया जाता है, जिसमें जहाँ हर भक्त भोले के सामने अपनी मनोकामना रख रहा है, वहीं भोले भी अपने खास श्रृंगार से, अपने नए नए रूप से हर एक भक्त को प्रसन्न कर रहा है और चौंका रहा है कि कहाँ कि जो रूप है वो यहीं जयपुर में आ सकते हैं। चाहे वो बाबा बर्फानी हो, चाहे वो महाकाल हो, हर एक रूप जो है देश भर के अलग अलग ज्योतिर्लिंग जो है उनका रूप यहाँ नज़र में आता है। ऐसा लगता है मानो जयपुर में ही यहीं रहते हुए जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहीं हो जाते हैं। भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पे बनी हुई है। दिन के 12 बज गए हैं, वर्किंग डे आज है, मंडे का दिन आज है, पर फिर भी जो भीड़ है उसमें कोई कमी नहीं है। भक्त लगातार यहाँ आ रहे हैं, हाथ में जल लिए, मन में मनोकामना और भक्ति भाव लिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी लाइन बाहर लगी हुई है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से यहाँ पे किया जा रहा है,
7: व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए बहुत बढ़िया की गई हैं। रिदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी आज सावन का पहला सोमवार तो है ही, आध्यात्मिक शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, स्पिरिचुअल एंगल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ओम नमः शिवाय का जप करना हमारे लिए कितना फलदायी साबित होगा, किस प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं?
14: जी बिल्कुल, खैर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं है।
7: जी,
14: श्री राम चरित मानस में भगवान ने खुद भी कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सिर्फ आपके मन में निर्मलता होना परमात्मा को प्राप्त करने की सबसे पहली क्राइटेरिया है। निर्मलता जो है वो सबसे पहली सीढ़ी है, और श्रावण का जो पहला सोमवार है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। श्रावण के जो चार सोमवार होते हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला सोमवार कि धर्म को, अगर धर्म से जीवन को चलाया जाए तो जीवन में अर्थ भी मिलता है, सांसारिक कामनाएं भी पूरी होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता, निर्मल मन और धर्म को धारण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा एक बार धन्यवाद करूं जीएनटी को, क्योंकि आप लोग जब कार्यक्रम में होते हैं आपके साथ बैठते से मैं यहां से बैठ करके बड़ा सुंदर सोमनाथ जी के दर्शन कर रहा हूं, अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहा हूं। तो मैं अगर वहां पर नहीं भी जा सकता हूं तो अपने घर में आपके चैनल को लगा करके और अलग अलग भगवान के दर्शन करके अपने मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो अपनी कामना है वो भगवान तक पहुंचा सकता हूं और वहां से प्रार्थना कर सकता हूं। मैं भी एक चीज चाहूंगा, दर्शक सब अपने घरों में बैठे हैं और आज श्रावण का पहला सोमवार है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ चर्चा कर रहा हूं, एक बार हाथ जोड़ करके हम सभी लोग देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का दर्शन कर लें। बेशक मंदिर इत्यादि ना जा पाए हों तो अपने हृदय में उनको विराजमान करने का प्रयास करें और अपने हृदय को ही उनका घर बना दें और उनको बताएं कि प्रभु ये आपका मंदिर है, आप यहाँ पर विराजमान हो, हमें अपना आशीर्वाद दें। उनकी प्रार्थना करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके मेरे साथ हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की प्रार्थना करेंगे और फिर सगुप्ता जी का जो प्रश्न है कि कैसे शांति पाया जाए और उनके आराधना से कैसे फल प्राप्त होता है, किसी मंत्र के उच्चारण से कैसे फल प्राप्त होता है, उस पर श्रद्धा से चर्चा करेंगे। तो जो भी दर्शक मेरे साथ बैठ कार्यक्रम को देख रहे हैं आप लोग हाथ जोड़ करके मेरे साथ एक बार भगवान शंकर का ध्यान करें, फिर आगे चर्चा करेंगे।
15: ओम कर करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो हम सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की आराधना कर ली और धन्यवाद करता हूं मैं जीएनटी का कि हम सभी उसके माध्यम से देख पा रहे हैं। भगवान शंकर के लिए श्री रामचरित मानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे और लाही न जोग जग जप साधे। इस संसार में यदि शिव कृपा को नहीं प्राप्त किया तो जितना मर्जी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब कर लिया जाए, मन की कामनाएं पूरी नहीं हो सकती है। सिर्फ शिव की आराधना करने से ही हमारे मन की कामनाएं पूरी होती है। सगुप्ता जी का वो वाला प्रश्न पर आते हैं जिसपे सगुप्ता जी आपने कहा था कैसे आखिर मंत्र जो है वो कैसे हमें शांति दे सकता है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। जब भी हम कोई मंत्र चैंट करते हैं ना, हमारे ऋषियों ने मंत्र को साधारणतया नहीं बनाया है, लाखों वर्ष उनकी आयु हुआ करती थी, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और रिसर्च करके फिर मंत्रों को तैयार किया। हमारा जो फेस है ना, जो हमारा जबड़ा होता है ना, इसके अंदर 84 मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, 84 पॉइंट हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जिसमें 64 पॉइंट्स जो है वो ऊपर की तरफ एंड 20 पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ होते हैं। जब आप कोई मंत्र चैंट करते हैं तो हमारी जीभ, स्पेशली अगर आप मृत्युंजय चैंट करते हैं तो मृत्युंजय चैंट करते हुए आपकी जीभ 360 डिग्री मूव करती है और उस पॉइंट को प्रेस करती है। उस पॉइंट के माध्यम से ब्रेन पर जो है वो सिग्नल जाता है और वहां से हैप्पी हार्मोन्स और शांति के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं और आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। आपका समय कम है, जब समय होगा तो डिटेल में डिस्कस।
7: बिल्कुल राजी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास हम जरूर लौटेंगे, बहुत जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
3: Good News Today.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटे भक्त।
11: मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर हर भोले के जयकारों की गूंज हर ओर।
10: सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, एकता सामूहिक सहभागिता का दिया संदेश।
11: सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना एक हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से सुरक्षा।
10: केरलम में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकला जाए।
11: जयपुर और जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम। रणजी से लेकर आईपीएल मैचों की होगी मेजबानी। 135 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार।

0: और देखिए, सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिवमय हो उठी। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे। और जब बाबा के भव्य दरबार को भक्तों के लिए खोला गया तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया।
1: तो वहीं चंदन, भस्म, पुष्प और रत्न आभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और उसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें, सावन के पहले सोमवार के अवसर पर देश भर से पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और सुख समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना की।

0: हौसले हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राज्य भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी, मुंबई में वो मौजूद हैं। धर्मेंद्र, आप तस्वीरें जो दिखा रहे थे ना, उसमें बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट एक तो मुझे तस्वीरों में नजर आया है कि लोग एक जगह बैठ के मेडिटेशन भी कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आराम से यहाँ पर दर्शन भी कर पा रहे हैं। प्रसादम की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है?
1: अपडेट देते बाबुलनाथ मंदिर से कि वापस से फिर एक बार महादेव का दर्शन करने के लिए दूर से लोग दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो साफ सुथरा किया जा रहा था कुछ देर पहले बाबा को, वो काम हो चुका है। अब उनका श्रृंगार हो रहा है और अब आरती की भी तैयारी हो रही है। तो फिलहाल अभी जो लोग लगभग 2-3 घंटों से कतारों में खड़े हैं, वो दूर दर्शन बाबा का ले सकते हैं। और कुछ देर बाद जैसे ही बाबा का श्रृंगार हो जाएगा, उनकी आरती पूजा अर्चना हो जाएगी, उसके बाद बाबा को भीतर भी जाकर के छूने का मौका दिया जाएगा। लोग वहां जाकर के दूध और जल चढ़ा सकते हैं। एक लंबी तादाद अभी तक लोगों की यहाँ आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आखिर लोग आते हैं तो क्या मनाते हैं। मैम क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखें और ये बताएं, यहाँ पर आइए। तो मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप बाबा के पूजा में बहुत ज्यादा मग्न है, 1-1.5-2 घंटे से। कितना खास है आज का दिन, थोड़ा सा बताएं।
2: बहुत खास है मेरे लिए, बहुत बहुत ज्यादा। एनीथिंग रिलेटेड टू शिव जी, इट इज, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक हिज, उनका रिलेशनशिप मेरे साथ, इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। सो मैं रोज मंडे आती हूँ यहाँ पे, बट लकीली ये श्रावण का भी सोमवार है एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी विद महादेव।
1: क्या तैयारी होती है वैसे आज के लिए, क्या क्या तैयारी है, क्या आपने कैसे बाबा को खुश करना है, क्या कुछ उनके पसंद की चीजें लाई?
2: थाली में सजा,
1: थाली में सजा करके,
2: थाली में अपना हार होता है, फूल होते हैं, दतूरा होता है और नियत अच्छी होनी चाहिए, बस
1: बाबा मान जाएंगे जो भी है आपका। अच्छा ये बताइए कि क्या मांगा आपने?
2: वो मैं क्यों बताऊं?
1: किसी को नहीं बताएंगे,
2: किसी को बताऊँ, लाइव चल रहा है, मैं नहीं बतानी। नहीं, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मांगो, बस सच्चे दिल से, गुड इंटेंशन से जो भी मांगो ना, वो बैठा है वहाँ पे।
1: बिल्कुल, और इस तरह के भक्त आप देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा निराश होकर पहुंच रहे क्योंकि बाबा को छू नहीं पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर नंदी जी हैं, बहुत प्यारे तरीके से उन्हें सजा कर रखा गया है। और जो श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले नंदी जी के कानों में जो भी उनकी विनती होती है, मिन्नतें होती है, वो बोल देते हैं,
0: क्योंकि
1: नंदी जी
0: का
1: डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है।
0: जयंती के दर्शकों को दर्शन करवाइए।
1: देखिए, मैंने बताया अभी कि यहाँ पर जाली लगी हुई है और बाबा का श्रृंगार हो रहा है इस समय। मैं वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान से ये कहना चाहूंगा कि वो कोशिश करे कि बाबा की एक झलक कम से कम लोगों को दिखाई जा सके। एक सेकंड, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा, हाँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी बाबा का फिलहाल श्रृंगार चल रहा है, कैमरा भीतर की तरफ तक नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग दूर से दर्शन कर रहे हैं। एक छोटी सी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि दर्शन जो है बाबा का एक बार करा दिया जाए। और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल जो है यहाँ से जाएंगे, जरा सा मैडम खुलिए इसको, जाइए साहिल। साहिल पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ कि दूर से जा करके कम से कम जो है बाबा का दर्शन करें। देखिए, तमाम जो महाराज हैं, तमाम जो पंडित हैं, यहाँ पर जितने भी महंत हैं, वो सभी बाबा के आसपास हैं और बकायदा भोले बाबा को दूध दही से नहलाया जा रहा है, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनका अब धीरे धीरे श्रृंगार शुरू हो जाएगा। ये तो शिवलिंग की तस्वीरें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखें कि जो मंदिर का ये पूरा माहौल है, गोल्डन माहौल है, सोने गर्भ है, ये पूरा जो गर्भ है शिव जी का, वो देखने को मिल रहा है। बाबुलनाथ मंदिर 300 साल पुराना प्राचीन इस मंदिर का इतिहास रहा है। हर कोई जानता है कि यहाँ पर आने के बाद बाबा उनकी मिन्नतें जरूर ही पूरी कर देंगे। वैसे तो रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, लेकिन जब बात श्रावण और सोमवार की हो तो ये आंकड़ा लाखों पार हो जाता है। यहाँ सिर्फ आम नहीं बल्कि खास लोग भी आते हैं और खास तौर से सेलिब्रिटी भी आते हैं। अभी तो बहुत से सोमवार आने हैं, ऐसे में तमाम लोगों की लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है जो आकर यहाँ दर्शन करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी अपना नया काम शुरू करने के पहले बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर पहुँचते हैं।
0: धर्मेंद्र, किसी सेलिब्रिटी को स्पॉट किया आपने अभी तक यहाँ पर मंदिर में?
1: फिलहाल देखिए आज सोमवार का पहला ही दिन है, ऐसे में अभी तक जो है नहीं आए हैं कोई यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से कमेटी से हमें ये चीजें पता चली है कि धीरे धीरे काफी लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जाहिर है सुरक्षा भी उनके साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो जाएंगे तब तक सेलिब्रिटियों को यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये मुंबई पुलिस है जो तमाम आंकड़ों के साथ, संख्याओं के साथ, बाबुलनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ आने वाले तमाम हजारों जो शिव भक्त हैं उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में लगातार मौजूद है। खास चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि बाबुलनाथ मंदिर में आने के लिए ये आप देख रहे हैं ये सीढ़ियां हैं, तकरीबन 1800 सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को भी चढ़कर लोग दर्शन करने 108 है माफ करिए तो 108 सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां भी चढ़कर लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसे दिव्यांग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं, ऐसे में लिफ्ट की भी सुविधा मंदिर में की गई है जहां सामान्य।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दुर्लभ तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं बाबुलनाथ मंदिर जो कि 300 साल पुराना मंदिर है, और हम आपके माध्यम से, जीएनटी के दर्शक जीएनटी के माध्यम से इन तस्वीरों का दीदार कर पाए हैं, दर्शन कर पाए हैं। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, इसी बीच हम आगे बढ़ते हैं। मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, जिस तरह से लगातार सुबह से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, आज दिन भर के लिए क्या कुछ आयोजन, क्या कुछ इंतजाम?
3: बिल्कुल, अगर मैं आयोजन की बात करूं तो किसी तरीके के खास आयोजन यहां पर नहीं किए जा रहे, क्योंकि यहां पर अपने आप में आना ही अपने आप एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अभी मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही थी आपको पूजा, यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भी आपको देखने को मिलेंगे, जो लोग अलग अलग जगह नहीं जा पाते वो एक ही जगह जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है वहां, इसलिए मैं अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाई, वरना यहां पर जो है हर सोमवार सावन में खासतौर पर हर सोमवार जो है भस्म आरती होती है सुबह महाकालेश्वर के जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर जो है वो भस्म आरती जो है वो पूरी तरीके से की जाती है, लेकिन वहां नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी इस कारण मैं अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं बाहर की आपको दीपाली में आपको बाहर की तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से बाहर जो मैं जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि सुबह और इस वक्त में किसी तरीके का फर्क आपको नजर नहीं आने वाला है, वही रश जो है, जो भीड़ है लोगों की वो आपको दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि खुशी के चेहरे पे कितनी ज्यादा है, हालांकि ये लोग काफी घंटों से इन लंबी लंबी लाइनों में जो है वो खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पे किसी तरीके की आपको शिकन जो है वो नहीं नजर आएगी, क्योंकि सावन का महीना है, बहुत ही पावन महीना है, और ऐसे में हर कोई जो है महादेव के दर्शन करना चाहता है। तो ये तो मैं कुछ हिस्सा दिखा रही हूँ आपको इन लंबी लंबी कतारों का, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा आपको लाइन मिलने वाली है, और ये तो एक लाइन है, यहाँ पे चार चार पांच पांच लाइनें आपको जो है वो दिखेगी। तो ये जोश जो है, ये उत्साह इनका बताता है कि किस तरीके की जो भक्ति है वो महादेव के प्रति इनकी है, और आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है उनको प्रसन्न करने की पूरी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और कहते भी है कि जो सावन के सोमवार होते हैं ऐसे में जो है जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज के लिए पूरी तैयारी जो है ये लोगों ने कर ली है, सभी श्रद्धालु जो है लंबी लंबी कतारों में जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए जो आए, और ये जो भक्त है वो सिर्फ पूजा करने नहीं आते बल्कि अपने जीवन की हर एक परेशानी, दुख और जो मनोकामना है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, लेकिन जाते हैं तो सिर्फ विश्वास लेकर जाते हैं, और हर एक श्रद्धालु जो है आस्था के साथ यहाँ पर आता है, और इसीलिए हर वर्ष जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सोमवार किस तरीके की जो दृश्य है
0: सावन के, वो पहले नजर आ रहा है, कैसी तो रौनक है। लगातार आप तस्वीरें मनीषा दिखा रही हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। लौटती हूँ आपके पास राज जी, जिस लास्ट पॉइंट से आपने अपनी बातचीत बंद की थी वहीं से आगे बढ़ाइए।
4: तो मैं बता रहा था कि जब आपने मंत्र शांति की बात की कि मंत्र जब से हमें लाभ किस प्रकार का होता है सुगुप्ता जी, तो लाभ क्योंकि जो मंत्र बनाए गए हैं वो ऋषियों ने खूब रिसर्च किया है और रिसर्च करके देखा कि किस शब्द के उच्चारण से हमारे ब्रेन पर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने वो शब्द आपको मेंशन किया था कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं जो हमारे जबड़े के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारी जीभ जाकर के उनको प्रेस करती है और उसके प्रेस करने से वो हमारे ब्रेन को इंडिकेशन भेजती है कि इस चीज की नीड है। तो फिर हमारे ब्रेन से हैप्पी केमिकल, हैप्पी हार्मोन्स इत्यादि रिलीज होते हैं और उससे हमें जीवन के अंतर्गत क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। लेकिन आपके चैनल पर देखकर बड़ा सुंदर लग रहा है, आप जब स्टार्टिंग में भी दिखा रही थी कि शिव जी का श्रृंगार चल रहा है, वहां लोग श्रृंगार कर रहे हैं और सब दिखाया जा रहा था, यानी कि हम लोग आरती का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, भगवान की आरती की जा रही है। भगवान का वास्तविक श्रृंगार क्या है? शिव के अगर वास्तविक श्रृंगार की बात की जाए तो शिव का वास्तविक श्रृंगार क्या है और क्या मनन करने से शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? भगवान के श्रृंगार की चर्चा करने से शिव की कृपा सबसे पहले प्राप्त होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 91 पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जब उनकी तैयारी की जा रही है, शिव ही संभुगन कर ही सिंगारा और जटा मुकुट अहि मौर संवारा। भगवान शंकर के श्रृंगार में जब सबसे पहले किया गया तो सबसे पहला क्या, उनकी जो जटा है, विवाह के लिए भगवान शिव तैयार हो रहे थे तो उनकी जटाओं का मुकुट बनाया गया और जटा के ऊपर एक सर्प को बिठा दिया गया। भगवान का यह सुंदर श्रृंगार था। भगवान का श्रृंगार भी समाज की श्रृंगार से अलग होता है। और क्यों अलग होता है? क्योंकि मैं इस चीज को हमेशा कहता हूं कि ये संसार तब तक हमें अपनाता है जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं। जिस दिन ये शरीर खत्म होती है उस दिन शायद लोग नाम से नहीं पुकारते बल्कि शव कहना शुरू कर देते हैं। और भगवान शंकर तब हमें अपनाता है जब कोई राख घर में लाना शमशान से पसंद नहीं करता है और भगवान शिव उस राख को स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए भगवान शंकर का जो श्रृंगार है अद्भुत है। जी
3: जी बिल्कुल राजी, आपने श्रृंगार के बारे में बताया और अंतर मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं इस बारे में बताया। इसके अलावा एक और पहलू है जिसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, आज की विशेषता के बारे में, क्योंकि आज पंचम तिथि भी है सावन के पहले सोमवार के साथ और एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसके बारे में बताइए और आज के दिन के क्या कुछ नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी साधना में बाधा ना आ सके, ये बताइए।
4: देखिए साधना में नियम के लिए तो सबसे पहली जो आवश्यकता है शिव को और कुछ नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम उस शिव को आखिर क्या देंगे जिसका स्वयं अभिषेक करने हम उस शिव को क्या जल चढ़ाएंगे जिसका अभिषेक करने स्वयं इंद्र आता है। आप प्रत्येक श्रावण में देख लीजिए, बाकी किसी महीने में वर्षा हो ना हो लेकिन श्रावण में वर्षा होती है। उस शिव को मैं क्या अर्पण कर दूंगा जिस शिव ने सब कुछ उत्पन्न किया है? उस शिव को किस वेद के मंत्र से प्रसन्न कर दिया जाएगा जिसकी वेद सदैव स्तुति करते हैं? तो हमारे पास शिव को और अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज है कि मन की निर्मलता इंपॉर्टेंट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैंने दोबारा कहूंगा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया निर्मल मन। अच्छा वो निर्मल मन होगा आखिर कैसे? निर्मल मन को करने का एक ही तरीका है, जिस प्रकार के दृश्य को हम देखते हैं, जिस प्रकार की चीजों को हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसी प्रकार अपने आप को बना लेता है। लाइक आप लोग जो घर में बैठे हैं आप लोग खुद अजमा कर देख सकते हैं, आप कोई डरावनी वेब सीरीज, डरावनी मूवी या लड़ाई झगड़े वाली वेब सीरीज, लड़ाई झगड़े वाली मूवी इत्यादि देखिए, आपका ब्रेन उसी प्रकार का, आपका नेचर धीरे धीरे वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग जीएनटी पर देखते हैं, मुझे लगता है श्रावण भर लगा करके रखें, हमेशा लगा कर रखें ताकि भगवान के दर्शन होते रहे, वेद मंत्रों मंत्र सुनाई देते रहे, अच्छी अच्छी बातें सुनाई देते रहे। तो भगवान शिव के अंदर धीरे धीरे आपका जो मन है वो वैसे लगना शुरू हो जाएगा। हमेशा प्रयास करें कि शिव नाम का स्मरण करते रहें, ब्रेन को पूरे श्रावण दुनिया की नकारात्मकता से हटा करके शिव में अपने आप को बनाने का प्रयास करें, दर्शन करें और शिव के नाम का स्मरण करें। अब आपने पूछा कि आज का जो संयोग है उस पर क्या परिस्थिति रहने वाली है। देखिए इस समय का संयोग बहुत सुंदर है, आज की जो परिस्थिति स्पेशली अगर देखा जाए, शिव शनि देवता जो है ना उनका गुरु भगवान शंकर को माना जाता है और उसके साथ जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के सर पर विराजमान है, यानी दोनों अगर देखा जाए तो भगवान शंकर के परम भक्त हैं। और आज दोनों का, शनि का और चंद्र का जो मिलन है वो काल पुरुष के द्वादश भाव यानी मोक्ष वाले घर के अंदर हो रहा है। इट मीन्स कि आज की आराधना वास्तविक शिवत्व को प्रदान करने वाली होगी, आज की जो आराधना है वास्तविक मोक्ष को प्रदान करने वाली होगी। तो आज का संयोग मेरे दृष्टि से बहुत सुंदर है। फिर बृहस्पति और सूर्य का आज संयोग, हंस योग अपने आप में विराजमान है, बहुत सुंदर। जी सर गुप्ता जी,
0: चलिए राजजी आपके पास आती हूँ। राजजी बड़ी अच्छी बात आपने जो कही ना वो बहुत दिल को छू गई कि एकाग्र होने के लिए, सेंट्रिक होने के लिए, फोकस्ड होने के लिए भी अगर आप भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करते हैं वो भी बहुत फलदायी साबित होती है। आज का दिन इसलिए भी उत्तम कहा जा रहा है। राजजी लौटूंगी आपके पास। मनीषा आपके पास आते हुए, मनीषा ये बताइए कि तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रही हैं, श्रद्धालुओं का तांता भी लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रसादम की क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाई हैं अब तक यहाँ पर?
3: बिल्कुल शगुफ्ता, अगर आप प्रसादम की बात करोगे तो व्रत का जो खाना होता है वो यहाँ पर जो है मिलेगा, लेकिन मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर नेटवर्क की जो है वो लगातार दिक्कत है और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। कहते हैं ना कि सावन के समय में और जब बात पहले सोमवार की हो तो बारिश हर बार जो है वो देखी जाती है। कहते हैं कि स्वयं महादेव जो है वो बरस कर आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं जो लंबी लंबी कतारों में इतनी देर से खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं उनके दर्शन पाने का। तो देख सकते हैं कि अभी हल्की फुल्की ही बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में अलर्ट भी था कि आज जो है मौसम बदलेगा और एक बार फिर से बारिश देखी जाएगी तो उसकी शुरुआत हो गई है ताकि भक्तों को भी
5: तो मनीषा बिल्कुल दिल्ली से तो एक अच्छा साइन मिल चुका है, बारिश हो चुकी है और ये एक अच्छा सिग्नल है। धर्मेंद्र जरा जयपुर से आप जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र जरा वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ मौसम है वहां पर, क्या हाल है जरा उसके बारे में बताइए मुंबई में।
1: बिल्कुल, अभी देखिए कुछ देर पहले ही बाबुलनाथ मंदिर में आरती शुरू हुई थी जैसा कि मैंने बताया था, और अब आरती कुछ देर पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब मंत्र पढ़े जा रहे हैं भीतर शिवलिंग के आसपास। महंत जो महाराज हैं इस मंदिर के वो सभी के सभी मौजूद हैं और शिव भगवान को सजा दिया गया है और ये लाइव दर्शन इस समय आप देखें, तमाम जो श्रद्धालु जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी थालियां सजा करके शिव जी का दर्शन करने के लिए, शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए। और आरती समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब जो घंटों से कतार में खड़े हैं शिव भक्त उन्हें बाबा को छूने का मौका मिलेगा, बाबा के समक्ष जाने का मौका मिलेगा, बाबा से मिन्नतें करने का मौका मिलेगा, उनको उन पर जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें तो यहाँ मंदिर की है,
0: पर ये संख्या लगातार धर्मेंद्र जैसा ही दिन आगे बढ़ेगा लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहेगा। धर्मेंद्र, मनीषा और राज जी इस जानकारी के लिए और ये तमाम चीजें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ये खास पेशकश यूं ही जयंती पर दिन भर चलती रहेगी, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your

0: तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर बड़ा ही मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पर पूजा करने से महादेव भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सावन के पहले सोमवार पर यहाँ पर अभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। श्रद्धालु भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए दिखाई दिए। बेलपत्र से लेकर तमाम भगवान की प्रिय चीजें अर्पित की गई।
1: सावन का महीना चल रहा है और सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आए हैं। हम इस वक्त संगम के मनकामेश्वर मंदिर में हैं, जहां पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहां पर जो भक्त हैं वो जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथों में बेलपत्र और दूध धतूरा और तमाम जो भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर हर हर देव महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। और यह जो भक्त हैं यहाँ पर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आई हैं आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, आज पहला सोमवार है, क्या कहें?
2: दर्शन करने हैं, सबको आना चाहिए। बाबा को जल चढ़ाने मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सभी को आना चाहिए।
1: ये मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है।
2: पूर्ण होती है, हमारी पूर्ण हुई है।
1: तो आज जल चढ़ा रहे हैं, क्या कामना कर रहे हैं भगवान से?
2: सबको अच्छे से रखे, सबको खुश रखे।
1: आप भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, क्या कामना कर रहे हैं भोलेनाथ से?
3: कामना यही है कि सब सुख शांति बनी रहे, सबका जीवन अच्छा चले, हमारा भी चले साथ में।
1: सावन का जो सोमवार है प्रयागराज में, इस शिव मंदिर में जो मनकामेश्वर मंदिर है यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। और ये कहा जाता है ये स्वयंभू शिवलिंग है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर खुद विराजमान हुए थे और यहाँ भगवान राम ने भी पूजा की थी। आप देख सकते हैं जो ये गर्भगृह है, यहाँ पर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है यहाँ पर सभी भक्त पूजा कर रहे हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी महिलाएं पुरुष अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और सावन का आज पहला सोमवार है। तो हाथों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हाथों में इनके फूल है और धतूरा है, हाथों में दूध है और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ सभी भक्त पधारे हुए हैं। तो प्रयागराज में इस मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, रुद्र शुभ।
0: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।

0: आप एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स,
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
9: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटे भक्त। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर ओर भोले के जयकारों की गूंज। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, एकता सामूहिक सहभागिता का दिया संदेश। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 CCTV से सुरक्षा। केरलम में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। जयपुर और जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम, रणजी से लेकर IPL मैचों की होगी मेजबानी, 135 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: आज सावन का पहला सोमवार, शिवनगरी काशी से लेकर उज्जैन के महाकाल तक शिव भक्तों का रेला। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, शिव भक्तों और कांवड़ियों की आस्था से पटी मंदिर की गलियां। इस दौरान खूबसूरत फूलों से सजा बाबा विश्वनाथ का दरबार, फूलों की खुशबू से महका मंदिर परिसर। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती की गई, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी।

0: सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती हुई, भक्त झूमते हुए नजर आए। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन के लिए पहुंचे भक्त। सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का हुआ अलौकिक श्रृंगार। हर हर महादेव किनारों से गूंजा परिसर। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक दिखे भक्त। मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विधि विधान से हुआ दुग्ध अभिषेक। आस्था से सराबोर हुआ माहौल। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार को ब्रह्म निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लगी लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने गंगा जल से किया जलाभिषेक। नोएडा के शिव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। पुरी के लोकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक। सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। मधेपुरा में सावन के पहले सोमवार पर सिंहेश्वर नाथ धाम पर लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा की। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतारें। भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगा जल बेलपत्र से किया बाबा का अभिषेक। लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार को उमड़ा आस्था का मेला। विधि विधान से श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। रोहतास के तिलेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का मेला लगा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा की। सावन के पहले सोमवार पर पटना के शिवालयों में सुबह से लगी लंबी कतार। भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। रायसेन के शिव गुफा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा का दूध अभिषेक। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। सुबह से भक्तों की लगी लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर सारण के हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव। विधि विधान से पूजा की। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा की। सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। पचास हजार लीटर से यदुवंशी समाज ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक, 9 दशक से भी पुरानी है परंपरा। लखनऊ के चंदेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की लगी लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी और जटायु ड्रोन वैन से श्रद्धालुओं की निगरानी। देशभर के शिवालयों में सुबह से ही लगी भक्तों की कतारें, इस सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार। कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का रेला, गुब्बारों से सजाया गया मंदिर परिसर। आनंदेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव के जय घोष ने माहौल में खोली दिव्यता, भोलेनाथ की एक झलक को पाने के लिए ललायत दिखे भक्त। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। गाजियाबाद के बाबा दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त, लगी लंबी कतार। सावन के पहले सोमवार पर श्यामनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें। श्यामनाथ मंदिर में शिव भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके धन्य हुए भक्त। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा श्यामनाथ मंदिर परिसर, सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस रही मुस्तैद, श्यामनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन से वॉलंटियर्स ने भी संभाली कमान। सुरक्षा और व्यवस्था का बेहतर तालमेल, पुलिस और स्वयंसेवकों के सहयोग से श्रद्धालुओं ने सुगमता से किए बाबा के दर्शन। जयपुर के तड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। सावन के महीने के पहले सोमवार को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा। कावड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए 40 कूलर, 30 सीसीटीवी कैमरे से हो रही है भक्तों की निगरानी। सहारनपुर में कांवड़ मार्ग को हजारों रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात के समय रोशनी से जगमगाता रास्ता श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। तकरीबन 10 से 12 हजार लाइट से चमका कांवड़ मार्ग, लाइटों की चमक के बीच शिव भक्त उत्साह के साथ कर रहे हैं अपनी यात्रा। इस खूबसूरत सजावट को देखने के लिए उमड़ रहे स्थानीय लोग मोबाइल में कैद कर रहे हैं खूबसूरत नजारे। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर 6 से 7 हजार लाइटें लगाई गई हैं, कांवड़ियों ने भी इस व्यवस्था की जमकर तारीफ की। दिन भर पैदल चलने के बाद रात में जगमगाते कांवड़ मार्ग से गुजरकर श्रद्धालुओं को मिल रही है नई ऊर्जा, सहारनपुर की ये सजावट कांवड़ यात्रा को बना रही है यादगार। अमरनाथ यात्रा का 32वां दिन आज श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है था। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार कर रहा है निगरानी, यात्रियों को भी सतर्क रहने की एडवाइजरी दी गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: Die-hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: Good news today is really good. In this case, there is no more news and no more news. Less people.
0: और चलिए अब बात करते हैं उस कांवड़ की जिसके जरिए युवाओं को खास संदेश दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस कांवड़ को दिल्ली पुलिस का एक जवान खींच रहा है जिसमें भगवान शिव तो हैं ही और जिम से जुड़े हुए सामान भी हैं, और पुलिस का जवान युवाओं को जागरूक करता हुआ हरिद्वार से दिल्ली के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया।
4: कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु अलग अलग डिजाइन और सजावट वाली कांवड़ लेकर चलते दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो कांवड़ है जिसमें आस्था के साथ ही फिटनेस का संदेश भी है। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई सामान मौजूद है। डंबल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज के सामानों से सज्जित इस कांवड़ के साथ कभी मुगदर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कांवड़ को लेकर हरिद्वार से दिल्ली की ओर जब ये निकले तो आकर्षण का केंद्र बने रहे। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित उर्फ मिठू मदेरिया 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपने इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
5: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
4: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं और सब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंचे जो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
9: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
11: सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, जलाभिषेक के लिए सुबह से ही मंदिरों में जुटे भक्त.
0: मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त. फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर ओर भोले की जयकारों के गूंज. सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं. एकता सामूहिक सहभागिता का दिया संदेश. सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, रस्सी लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से सुरक्षा. केरल में जबरदस्त बारिश के चलते आज 12 जिलों के सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद. लोगों से अपील, जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें. जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम. रणजी से लेकर आईपीएल मैचों की होगी मेजबानी. 135 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को.
12: मेकअप सिर्फ खूबसूरत दिखने का ही नहीं बल्कि हर किरदार में जान डालने का भी एक अहम हिस्सा होता है. अब टीवी की दुनिया में आपके फेवरेट सितारे हर दिन घंटों अपने किरदार में ढलने के लिए मेकअप करवाते हैं. कभी तो वो दुल्हन बनते हैं, कभी देवी, तो कभी कोई एक्शन हीरो, या कभी कभी तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आते हैं. आज तो मेकअप के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ मेकअप के कुछ सीक्रेट्स, और हाँ उसके साथ साथ होंगे यहाँ पर ग्लैमरस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा एंटरटेनमेंट से भरपूर ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
2: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, वसुधा की होगी गोद भराई की रस्म, खुश होगी दादी। कलावंती करेगी राध्या और उसके परिवार पर अत्याचार, शुरू होगा नया तमाशा। मनसुंदर में आएगा जनरेशन लीप, होगी रुचिता और जाह्नवी की एंट्री।

इश्क जुनूनी में शुरू होगा नया तमाशा। रूहानी को पड़ेंगे थप्पड़। फूट फूट कर रोएगी वृंदा, दिखेगी संजय की तड़प। सिमरन शर्मा संग करेंगे मॉनसून वाला डे आउट। सिमरन करेगी ढेर सारी शॉपिंग। देखेंगे ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: इश्क जुनून के साथ साथ ग्लैमरस लुक का भी है यहाँ पर तड़का। मैं तो बात कर रही हूँ गुरु और रूहानी की इस कहानी की। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स और दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज। देखिए कहानी में रोजाना आता है कोई ना कोई नया बदलाव, आते हैं इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो बदलते रहते हैं इस कहानी का मोड। आइए दिखाते हैं आपको इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई।
2: रूहानी बनेगी गौतम की दुल्हनिया।

गुरु करेगा गौतम की पिटाई। सासुमा से पड़ेगा रूहानी को थप्पड़। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में वही आने वाले वक्त में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि कहीं होगी गौतम की पिटाई तो कहीं पड़ेंगे रूहानी को थप्पड़। जी हाँ, इन सब का सिलसिला शुरू तब होगा जब गौतम रूहानी के ससुराल में शगुन की थाल लेकर आएगा, जिसमें होंगे ढेर सारे गहने और ढेर सारे तोहफे, साथ ही साथ शगुन की चुनरी भी, जो वो खुद अपने हाथों से रूहानी को उड़ाएगा। और इसी के बाद वो ये भी ऐलान करेगा कि 24 घंटों में गौतम और रूहानी की शादी होगी।

0: बस ये लेकर आया हूँ कि अभी हमारी सगाई की तैयारियाँ शुरू हो रही है मेरी और रूहानी की, और उसी के लिए जो उसका जोड़ा है, गिफ्ट्स हैं और एंगेजमेंट रिंग्स हैं, वो सब मैं लेकर आया हूँ, और घर वालों को और खासकर मेरे बहुत जो चहीता है गुरु, उसको चिढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ और दिखा रहा हूँ, उसको चिढ़ा रहा हूँ बेसिकली।
1: भाई रूहानी को किसी और की दुल्हन बनता हुआ देख गुरु अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और देखिए कैसे वो आकर करेगा गौतम की पिटाई।
2: हमारे घर में तो उसके लिए हमें नहीं चाहते घर में, नहीं गौतम सिंह, हमारे रहते तुम हमारी कंपाउंडर से सगाई नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से वरना जान से मार देंगे तुम्हें। राइट हो बोलेगा चौधरी साहब, आ गई है सच्चाई सामने, रूहानी और गुरु एक दूसरे से नफरत करने का नाटक कर रहे थे, ये सब ड्रामा था इन लोगों का, इसका मतलब पुष्पी सच्ची थी, रूहानी और गुरु झूठे।
1: भाई वैसे आपको बता दे कि ये पिटाई असल में नहीं बल्कि सपनों में हो रही है, क्योंकि गुरु खड़े रहकर ये इमेजिन कर रहा है कि किस तरीके से वो गौतम की पिटाई करेगा। असल में तो शगुन की थाल के साथ साथ गौतम सर्टिफिकेट भी लेकर आया है जो ये प्रूफ कर देगा कि इनकी शादी इल्लीगल है। और ये सुनकर भी गुरु को गुस्सा आ जाएगा, और देखिए कैसे वो फिर एक बार हाथापाई पर उतर आएगा।
2: हमारी पत्नी को अपना बनाएगा, तुम्हारा ये घटिया सपना कभी पूरा नहीं होगा, हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, करेगी नहीं, कर रही है।
0: फिलहाल तो सच में इतनी पिटाई नहीं होगी, और इमेजिन नहीं कर रहे हैं वो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब क्या आता है राइटर हमारे हैं, पहले गुरु को इमेजिन करवा रहे हैं, फिर रूहानी को इमेजिन करवा रहे हैं, मुझे कभी इमेजिन नहीं करवाते, तो उन दोनों की इमेजिनेशन में मेरी पिटाई हो रही है, वो मैं उकसा रहा हूँ बेसिकली। अगर आपने देखा होगा जो लाइन्स थी और डायलॉग्स थे वो ऐसे ही देखिए, बहुत उकसा रहा था उसको, तो इसलिए वो गुस्से में आ जाता है कि भाई मेरी बीवी के लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, एंड देन ही स्टार्ट सेटिंग मी, तो वो सब सीन हम शूट कर रहे थे, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, सब दिमाग में हो रहा है उनके, तो अच्छा आई थिंक ऑडियंस को बहुत मजा आएगा देख के। नहीं, रूहानी भी सेम ही इमेजिन कर रही है, रूहानी को ऐसा लग रहा है कि गुरु मारेगा, गुरु को ऐसा इमेजिन कर रहा है कि गुरु मुझे मारेगा, दोनों में गुरु ही मार रहा है, और ये कि वो सोच वाले दो लोग अलग अलग हैं।
1: भाई वैसे ये पिटाई भी एक सपना ही होगी जो गुरु खड़े रहकर इमेजिन कर रहा है, वैसे देखिए कैसे उसी तरफ रूहानी बेहद खुश है इन सभी गहनों को देखकर, और वो तो इन गहनों को माता रानी के पास भी ले जाना चाहती है आशीर्वाद के लिए, लेकिन उसकी टक्कर हो जाती है गुरु से और सभी गहने गिर जाते हैं, जिसके बाद शुरू होती है दोनों में बहसबाजी।
3: मेरी कुछ देखी जा रही है, अब्बा जी देखिए जान बूझ के टकराया है उनसे।
2: ओ दीवा की बत्ती खुल है, हम बीच में आए कि तुम भी लेके जरा हमारा रास्ता काट, हम तो तुम्हारे तमाशे से दूर जा रहे हैं, बस
3: तमाशा नहीं जिंदगी है, और जितना तुम दूर रहोगे ना उतना अच्छा होगा गुरुजी।
1: बातों ही बातों में रूहानी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है, जिसे सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और बस फिर क्या, वो अपनी ही बहू को तमाचा मार देती है। और ये तमाचा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। भाई इतना ही नहीं, वो तो सबके सामने ये भी ऐलान करती है कि गुरु रूहानी और गौतम की शादी के किसी भी फंक्शन में बीच में नहीं आएगा। देखना होगा कि क्या बाकी 24 घंटों के अंदर रूहानी और गौतम की शादी होती है। अगर गौतम मचाता है कोई नया बवाल। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: सादगी, स्टाइल और खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस, बस इसी से एक्सप्रेस कर सकती हूँ मैं अपनी फीलिंग्स को। जब भी देखती हूँ मैं मन सुंदर की ये झलक। तो क्या कुछ हो रहा है नाहर रूही की जिंदगी में आज? क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्रस्ट या फिर कोई नया ड्रामा? क्या बदल जाएगा इस कहानी का मोड या ये नई सिचुएशन लेकर आएगी हमारे लिए कोई गुड न्यूज? है ना बहुत सारे सवाल, तो चलिए लेते हैं इनके जवाब, लेकर चलते हैं आपको मन सुंदर के सेट पर।
1: जूही और रूही की बेटियों से सीरियल में आया जनरेशन लीप। अब शुरू होगी जानवी और रुचिता की कहानी। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में लीप आ चुका है और लीप के बाद किरदार भी बदल चुके हैं। जी हाँ, अब आपको सीरियल में रूही और नाहर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि अब तो हो गई है एंट्री रुचिता और जानवी की। भाई रुचिता सीधी सिंपल सलवार कुर्ता पहनती है, चश्मा लगाती है और वो है रूही की बिटिया रानी रुचिता। तो वहीं जानवी एकदम मॉडर्न है, छिलबुली है और बिंदास है और वो है जूही की बेटी जानवी। भाई दोनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन ये दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं। तो आज फिल्माया जा रहा है इनका एंट्री शूट, जहां पर देखिए कैसे रुचिता की एंट्री होती है। चेहरे पर उनके मास्क है और हवा से दुपट्टे ने चेहरे को ढक दिया है और कुछ इस तरह सीरियल में होगा रिवील कि ये है रुचिता।

0: तो वही, जाह्नवी का तो अंदाज ही निराला है, मॉडर्न अंदाज और बिंदास मिजाज। तो आपको बता दे कि आज रुचिता और जाह्नवी पहुंचे हैं रूही सैलों में, तो क्या होगा रुचिता का मेकओवर या फिर ऐसी ही सिंपल रहेगी सीरियल में रुचिता? तो भाई अब देखना होगा कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी और कौन होगा इनका हीरो। खैर ये तो सीरियल में आगे देखने को मिलेगा ही। फिलहाल करते हैं जाह्नवी और रुचिता से मुलाकात और जानते हैं नई कहानी और इनके किरदार के बारे में कई और बातें।
1: वी आर सो एक्साइटेड, बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत खुश हैं कि हमें इतने बड़े शो में काम करने का मौका मिल रहा है। सो बाकी रुचिता बताए कि उनको कैसा
2: लगा। या सो हमारा आज फर्स्ट डे था एंड स्टिल इट वाज लॉट ऑफ फन वी हैड टुगेदर, या इट वाज टू मच फन टुडे।
1: एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना कि सेट की कुछ वाइब है कि यहाँ जो भी सिस्टर बनती है ना उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसी हम लोग फर्स्ट डे में भी हम लोग इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं ना, पता नहीं कैसे, मतलब फर्स्ट डे है स्टिल हम लोग साथ में घूम रहे हैं, साथ में रूम शेयर कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली। सो बेसिकली जो मेरी मदर है यानी कि जूही, सो उनका जो कैरेक्टर था एकदम यू नो फन लविंग गर्ल, जो बबली लड़की थी, तो उनकी बेटी ऑफ कोर्स उनके जैसी है, और रुचिता जो है वो सिंपल एंड स्वीट, तो वो उनके जैसी। तो लाइक हम लोग यू नो टिपिकल हमारे इंडियन माइंडसेट होता है कि जो चुलबुली होती है वो थोड़ा वेस्टर्न में होती है और जो सीधी सिंपल लड़की होती है वो थोड़ा इंडियन में होती है। सो या दैट्स इट।
2: सो मेरी मम्मी का जो रोल था वो वेरी सिंपल एंड ऑल था शी सेड, सो दैट्स व्हाई मेरा भी वैसा ही सेम है, वेरी सिंपल एंड वेरी या।
1: सो बेसिकली ये तो आपको शो में देखना पड़ेगा कि कितना क्रेजी होने वाला है, बट आई एम श्योर कि सेम तो नहीं होने वाला है, कुछ तो डिफरेंट है, और वो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। देखो मन सुंदर, तब पता लगेगा कि कौन कैसा है।
2: तो मेरे को बताया कि रुचिता इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल एंड वो बहुत शी इज़ अंडर सम प्रेशर बिकॉज उसके जो ग्रैंड मदर है दे डोंट ट्रीट हर वेल, सो इट्स लाइक आई एम वेरी लाइक अ वेरी सिंपल गर्ल, सो दैट्स हाउ आई हैव टू प्ले इट।
1: सो जो मेरा कैरेक्टर है जाह्नवी, तो वो काफ़ी बबली लड़की है, ठीक है, और जो मेरा नेचर है वो भी काफ़ी बबली है, तो मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ जाह्नवी से अभी तक तो। सो मेरे शायद मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है जाह्नवी प्ले करना, क्योंकि मैं हूँ जाह्नवी, एक्चुअल में भी मैं जाह्नवी हूँ, जो खुशी है वो जाह्नवी ही है। और रुचिता, मैं जितना रुचिता को जानी हूँ लिटरली ये बहुत प्यारी और मतलब मुझसे तो छोटी है बट ये बहुत प्यारी बच्ची है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है साथ में। लिटरली आज फर्स्ट डे जब मिले थे तो हमें थोड़ा ऐसा था यार पता नहीं ये कैसी होगी, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो एक्चुअली लगता है मुझे कि जो रुचिता इसके लिए बना है ना परफेक्ट बना है, और जो जाह्नवी मेरे लिए बना आई थिंक वो भी परफेक्ट है।
2: हाँ थोड़ा थोड़ा तो रिलेट कर पा रही हूँ बट थोड़ा थोड़ा जगह पे वो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है क्योंकि इस शो में वी कैन नॉट यूज़ टोटली इंग्लिश वर्ड्स, तो बीच बीच में वैसा थोड़ा यूज़ होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है, बट देन इट्स अ वेरी नाइस रोल, आई एम रिलेटिंग टू इट वेरी नाइसली।
3: सॉरी, अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे।
0: तो भाई हो जाइए तैयार रुचिता और जाह्नवी की ये कहानी देखने के लिए, क्योंकि इसमें भी ड्रामे, ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट होगा भरपूर। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मेकअप सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि हर किरदार को एक नई पहचान देता है। वैसे नई से याद आया, अभी तो लेकर हाजिर है हम आपके लिए ये नई खबर जिसे संभाल कर रखा है हमने स्पेशली फॉर यू। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या खास है इसमें, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
5: ये डरने वाले नहीं, 20,000 निकालो तो। 20,000
0: बच्चन परिवार वालों से काका काकी ने मांगे पैसे।
6: हमारा पैसा दो नहीं तो हमारा घर खा।
0: फूटा अजब सिंह का गुस्सा। घर में शुरू हुआ नया बवाल। कलर्स टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में आज घर पहुंच गए हैं काका और काकी, और देखिए कैसे वो मांग रहे हैं परिवार वालों से पैसे। लेकिन बच्चन परिवार के पास पैसे कहाँ, ऐसे में उन्होंने पैसे देने में आनाकानी की। इतना ही नहीं, आज तो सतलुज का गुस्सा भी फूटा काका काकी पर। तभी वहां पर पहुंच गए अजब सिंह, और देखिए कैसे उन्होंने काका पर हमला ही कर दिया। और उन्हें कर दिया घायल। ऐसे में काकी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है और यहां शुरू हो गया है हाई वोल्टेज ड्रामा।
6: अरे जला दोगे क्या उसको?
5: ये डरने वाले नहीं, 20,000 निकालो तुम।
7: 20,000 शकल देखी है अपनी? 20,000 रुपए एक साथ देखें कभी अपने पास? 20,000 रुपए मांग रही यहाँ पर।
6: हमारा पैसा दो नहीं तो हमारा घर खाली।
7: घर खाली? घर खाली करेगी हमारी चप्पल?
8: हम तो क्या तुम्हारा बकैती बंद करो नहीं तो फोड़ डालेंगे तुम्हें यहीं पर। आओगे ना अपनी पहचाने नहीं देंगे यहाँ से।
5: बदमाशी बदमाशी कर रहा है।
8: बदमाशी तो अभी शुरू भी नहीं करी हमने।
7: सब तू शांत रहो।
8: अरे भैया इनको देखिए।
6: अरे शांत रहो।
5: तुम वैसे नहीं मानोगे।
9: स्पीकर मरा नहीं है वो, अपना बचाव किया है। तुम हमें धक्का दोगे तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे? बोलिए तुमको हम बताएं।
6: हम जो है ना पुलिस बुलवाएंगे और तुमको फांसी पे लटकवाएंगे, बता रहे हैं।
9: अरे खून करने पर फांसी होती है, माथे पर खून आने से फांसी नहीं होती। और अगर तुम्हारी यही इच्छा है ना तो हम इसको मार देते हैं, फिर तुम फांसी लगवा देना।
0: भाई ड्रामा इतना बढ़ गया कि काका काकी घर पर पुलिस ले आए और देखिए कैसे अजब सिंह भी पुलिस के साथ जाने को हो गए हैं तैयार। हालांकि गंगा सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन अजब सिंह कहां किसी के सुनने वाले। जेल में आना जाना तो उनके लिए आम बात है लेकिन ये सब देखकर संगम थोड़ी डर सी गई है क्योंकि उसके लिए तो ये सब कुछ नया है ना। ऐसे में कृष्णा संगम को समझाने की कोशिश कर रहा है।
10: आपको तो मालूम है तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है।
9: अरे मिस्टर एंड मिसेस फनौती, कल बेइज्जती करी थी इतनी, मजा नहीं आया, फिर से आ गए हैं?
6: अरे हम तो यही देखने आए कि तुम क्या सत्यानाशी किए हो हमारे घर का।
10: तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, तुमने इन्हें जान से मारने की कोशिश की
9: है। हाँ पर ही यमराज का पोता मर ही नहीं रहा, देखो बेशरम कैसा खड़ा है जिंदा।
10: आपके सामने बदतमीजी कर रहा है। अरे फांसी पर चढ़ा
9: तुम जज साहब हो क्या? तुम्हारे कहने से फांसी दे देगा कोई भी
11: है? ये हमारा पारिवारिक मामला है, हम आपस में निपटा देंगे।
10: दो चार घंटे घूम के आ जाएंगे, बोर हो रहे हैं। बाय बाय।
12: पुलिस आई है यहाँ पे घर पे अजब जी को लेने क्योंकि वो ऐसे ही बहुत पुलिस स्टेशन जाते रहते हैं, जो काका से उनका लड़ाई होते रहती है तो वही है, वो फिर से भिड़ गए। काका को खून भी आया है तो उनको फिर से ले जा रहे हैं, पर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। सबके लिए बहुत नॉर्मल है कि वो बहुत पुलिस स्टेशन जाते रहते हैं तो सब लाइक बहुत नॉर्मलाइज हुआ हुआ है घर में, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉकर है। मैं कहती हूँ क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं प्याज के पकौड़े खाने हैं, दाल के पकौड़े खाने हैं, क्या हो रहा है मतलब वैसा है। तो मैं बिल्कुल एक शॉक में हूँ, मतलब आई हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है, कि मुझे इस घर से निकलना है, मुझे हॉस्टल जाना है। मेरे दिमाग में यही चल रहा है, पर मैं जिसके पहले उसके बारे में सोचती हूँ कुछ इस घर में हो जाता है, फिर मैं उसके बारे में सोचती हूँ फिर इस घर में कुछ हो जाता है। तो यही है, बहुत छींचा लेदर मचा हुआ है इस घर में और मुझे तो कुछ भी करके निकलना ही है, बट कोई ना कोई चीज़ रोक दे रही है। और मुझे थोड़ा बहुत मतलब है भी कि जो भाई हैं वो अच्छे हैं दिल के, उनके साथ कुछ बुरा ना हो, तो मैं उनका दिल भी तो खाना नहीं चाहती हूँ।
0: ऐसे में घर की हालत देख और तंगी देखकर संगम फैसला लेती है कि वो जॉब करेगी। भाई कृष्णा ने कई झूठ बोले हैं और ऐसे में अब संगम को गंगा की ही कंपनी में जॉब करना है, जो कंपनी है ही नहीं। ऐसे में अब क्या करेगा कृष्णा, क्योंकि वो तो फंस गया है।
13: हम तो बस यही सोच रहे थे कि अच्छा आइडिया, मैं काम नहीं आया सोचे कहीं।
14: अभी जो हमने सीन किया उसमें उनको अभी मुझको याद आया कि मैंने गंगा भैया बताया था कि बहुत बड़े बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं और ये सब हैं। तो संगम कह रही है कि मुझको उनके यहाँ जॉब दिलवा दो। अब संगम जी को कौन बताया कि हमारे भैया तो बस सीमेंट भरते हैं, पुट्टी उट्टी लगाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे संभालेंगे इस झूठ को।
0: ऐसे में कुछ ना कुछ बहाना कर संगम को कृष्णा बाहर लेकर आता है और उसके साथ जॉब भी ढूंढ रहा है। तो भाई अब देखना होगा कि जब धीरे धीरे संगम के सामने सारी सच्चाई आएगी तो रिश्ते में और कौन कौन से तमाशे होंगे, क्योंकि फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि संगम सच से अनजान है। मुंबई से शीतल कावा और प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: अब कैमरे में जो आपको लुक मिनटों में नजर आता है ना, उसे तैयार करने में घंटों लग जाते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको कि आज मेकअप ने किस किरदार का अंदाज एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जी हाँ, यही तो होती है मेकअप की ताकत। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हम दिखाते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ, क्योंकि जैसे ही आता है कहानी में ट्विस्ट, वैसे ही आता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट।
15: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
16: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई अरमान और अभीरा का रिश्ता ऐसा है कि जब भी ये साथ हो तो पहले तो लड़ाई होती है, लेकिन बाद में रोमांस देखने को मिलता ही है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे की बाहों में नजर आ रहे हैं।
15: अदालत में सबकी बोलती बंद करवा देने वाली वकील साहिबा की अपनी बोलती बंद हो गई। लगता है सरप्राइज पसंद आ गया।
17: बेटी एडल्ट हो रही है, लेकिन हमारी उम्र कम ही नहीं हो रही। और ये रोमांस का लेवल तो देखो, हमारा क्या होगा खड़ूसमान?
15: प्यार हुआ है और प्यार होगा।

0: दो साल में कितना सब कुछ हो गया ना। याद करूं तो कोई एक इंसिडेंट याद नहीं आता, बस अच्छी वाली फीलिंग आती।
1: मुझे तो सब याद है, तुम्हारी हर डांट, तुम्हारी हर हंसी, तुम्हारी हर स्माइल।
0: चीज की फैक्ट्री को 2 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं प्लीज? हर टाइम भी कितनी तेजी से भागता है खड़ूसमान। कल हमारा मंकी 18 इयर्स का हो जाएगा और 18th बर्थडे किसी भी लड़की के लिए उसकी लाइफ का महा मेजर दिन होता है,
2: और पेरेंट्स के लिए भी।
3: तो वही दूसरी ओर मायरा को मिल गया है उसका फर्स्ट लव, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। और जरा देखिए तो कैसे, भाई इनकी शुरुआत भी लड़ाई से ही हुई है।

0: आजकल के लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं। किसी लड़की से बिना पूछे उसकी फोटोज लेना बैड मैनर्स होती है। डिलीट करो ये फोटोज।
1: तुम तो काफी फ्रेंक हो, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, पहली मीटिंग में ही मुझ पे हुकुम चला रही हो। तुम्हें फोटोज डिलीट करना है तो खुद कर दो, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि फोटोज देखने के बाद तुम उन्हें डिलीट कर नहीं पाओगी। शर्त था ना, तुम्हारे चेहरे पे बहुत सूट करता है, पर सो सॉरी, क्योंकि तुम्हारे क्यूटनेस पे ना मेरा फोकस नहीं था।
2: ऐसे में आप बहुत जल्द देखेंगे मायरा का 18th बर्थडे सेलिब्रेशन, जिसके बाद कहानी में आएंगे ढेर सारे नए मोड़।
3: हमारी मायरा की लाइफ में कोई मुसीबत ना आए।
4: ये पूल वाले गाय ने भेजा,

0: अरे यहाँ तो चाकू ही नहीं, हम काटेंगे कैसे?
1: स्टार्स के सीरियल अनुपमा में भाई फिर एक बार दोनों ही टीम को मिल गया है नया टास्क, और जरा देखिए तो कैसे ये दोनों टीम ही एक दूसरे को हराने के लिए पूरी मेहनत और लगन से इस नए टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है।
2: ये लकड़ियाँ तो सिल गई हैं, तो बिल्कुल गीली हैं।
3: अरे चाकू कहाँ है?

0: जय माँ अन्नपूर्णा, ध्यान रखो।
1: पिजन कबूतर पानी वाटर, जैसी मम्मी वैसी डॉटर।

0: एक मिनट हटो।
1: प्रेम प्रेम ये मत करो प्रेम।
2: क्या हुआ?
3: ये क्या हुआ?
1: गीली लकड़ियां नहीं चलाते हैं।

0: खुश हूँ।
1: लेकिन तुम लोग ये मत भूलो कि सामने लीला बेन है।
2: मेरा तो इस धरती पे अवतार ही ना सेलिब्रिटी बनने के लिए हुआ है।
3: हम सबको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पे ध्यान देना है।
4: अब क्योंकि मेकअप के आसपास हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें, तो क्या आपने गौर किया है कि ये जो इश्क जुनूनी की रेवा है कितनी ग्लैमरस है। आज तो कर रहे हैं हम रेवा यानी सिमरन से ही ये खास मुलाकात। देखिए, एक तो मॉनसून का ये सुहाना मौसम और उसके ऊपर ढेर सारी मस्ती और ढेर सारा फन, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सिमरन के पास।

0: मिलिए सिमरन से, जो देखिए आज कैसे बन गई है बॉलीवुड की सिमरन।
1: मेरी ख्वाबों में जो आए, आज भी मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए।
0: मुंबई की बारिश ऐसी जो आपको झूमने पर मजबूर कर दे। मिलिए सिमरन से, जो देखिए आज कैसे बन गई है बॉलीवुड की सिमरन। भाई याद है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन। लेकिन आज हम आपको मिला रहे हैं रियल लाइफ सिमरन से, तो शाहरुख खान के घर के सामने बन गई है काजोल।

0: सर के साथ तो नहीं बट मन्नत के साथ ही सही।
1: तुम हो कमाल, तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो आयशा।
2: कर रही है जमकर शॉपिंग,
1: जिसको छू लो उसको हसीन कर दो। तुम सोचते हो दुनिया में कोई भी क्यों।
2: उठा रही है मुंबई के मानसून का मजा,

0: सात व बेटे संघ सिमरन के इस मुंबई वाले डे ऑफ में पहला डेस्टिनेशन है बांद्रा का लिंकिंग रोड मार्केट। भाई मुंबई कोई भी आए तो यहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग का मजा इस लिंकिंग रोड मार्केट में है, और लड़कियों के लिए तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन है। तो आज सिमरन के साथ हम मुंबई के इसी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे।
1: फाइनली हम आ गए हैं बांद्रा शॉपिंग करने के लिए। तो मुंबई के मॉनसून में बाहर निकल के मज़ा ही अलग आता है। तो आज हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज देखेंगे, कपड़े देखेंगे और चटपटा चाट और बहुत कुछ चटपटा खाने वाले हैं हम। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मॉनसून में यहाँ पे मुंबई में मुंबई कभी रुकती नहीं है। यहाँ पे चाहे पानी भर जाए, सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुंबई रुकती नहीं है, डे एंड नाइट चलती रहती है। तो आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लाइक बेसिकली आई एम फ्रॉम शिमला, तो वहाँ पे थंडरिंग इतनी ज़्यादा होती थी कि आप काम जाते थे सुन के, एंड वहाँ पे बाहर नहीं निकलते थे हम ज़्यादा, लैंडस्लाइड्स का खतरा होता था एंड बारिश इतनी ज़्यादा होती थी तो आप पूरा ड्रेंच हो जाते हो पानी में। बट मुंबई में ड्रेंच होने के बाद भी आप काम करते रहते हो। तो चलिए देखते हैं आज हम यहाँ पे क्या क्या काम करने वाले हैं।
0: कहते हैं मुंबई कभी रुकती नहीं, और सिमरन भी मौसम की परवाह ना करते हुए आज जमकर शॉपिंग करेंगी। तो वो पहुंची इस लिंकिंग रोड मार्केट में जहां पर शॉपिंग के ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बार्गेनिंग खूब होती है, और सिमरन ने आज सोच लिया है कि अपने लिए वो ढेर सारी एक्सेसरीज खरीदेगी क्योंकि वो इस मार्केट की स्पेशलिटी है।
1: तो आइए पहले हम एक्सेसरीज देखते हैं। यहां पे इतनी सुंदर सुंदर एक्सेसरीज है, तो इनमें से मुझे क्या सूट करेगा? आई एम वेयरिंग ग्रीन विद मोरपंख। तो मोरपंख मैंने हाथ में कुछ नहीं पहना है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बैंगल्स है भैया, ये कितने की है? 300। मुझे बार्गेन करना तो नहीं आता, बट फिर भैया अपने हिसाब से थोड़ा कम कर देना, करोगे ना? आई लाइक दिस ग्रीन कलर। ये वाला दिखाना, दिस इज प्रिटी। आई थिंक ये अच्छा लगेगा मेरे हाथों से, मैच कर रहा है ना ड्रेस से। यूपीआई आने के बाद मैंने कैश यूज करना छोड़ दिया है, सब कुछ बस गूगल पे पर ही हो रहा है मुझसे। भैया कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 250। मैं बार्गेनिंग में इतनी बुरी हूँ कि मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं तो हमारी साइड है या शॉपकीपर की साइड है, बिकॉज मुझे बार्गेन करना आता नहीं है। जो अपने हिसाब से देते हैं मैं उतने में मान जाती हूँ। थैंक यू भैया। चलिए अभी और शॉपिंग करते हैं।
0: भाई सिमरन ने अपने लिए कंगन तो खरीद लिया, लेकिन अभी भी उनकी शॉपिंग की प्यास नहीं बुझी है क्योंकि उन्हें और भी चीजें खुद के लिए खरीदनी है। तो देखते हैं कि लिंकिंग रोड के इस बाजार में सिमरन अपने लिए क्या ढूंढ रही है, कोई झुमका, कोई चूड़ी, कंगन या कुछ और।
2: तेरी गलती है, किसे भी नहीं सुन
1: दा। ये कितने का है? 300। अभी रेट्स बढ़ गए क्या? रेट्स वही है।

0: Böyle bir yap. Thank you. Oradaki. Thank you. Gitmek. Gitmek oldu. Accessories, being a girl, obviously accessories का बहुत शौक है. But पहले मैं tomboy थी, तो मैं पूरा लड़का जैसी थी बचपन में. But अभी coming into this industry, मैं इतना कुछ देखने लग गई हूँ. तो यहाँ पे every day ready होकर मैं पूरी लड़की बन चुकी हूँ. अब उसमें अदाएँ आ चुकी हैं लड़कियों की तरह सजना संवरना सब कुछ सीख चुकी हूँ मैं. तो मुझे एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगती है. मैं अपने हर ड्रेस के साथ लाइक आज क्योंकि हम बाहर आए हैं इयररिंग्स पहनी है तो मैंने ये एक्सेसरी ले लिया मैच करने के लिए. तो ये आपकी ब्यूटी को और एनहांस करता है आपको और आपकी सुंदरता को और बढ़ाता है आपकी कॉस्ट्यूम को आपके फेस को आपके लाइक यू कैन एक्सेसराइज एनीथिंग लाइक दिस रिंग इज आल्सो लुकिंग सो प्रिटी दिस बैंगल एंड योर हील्स फुटवेयर सब कुछ. और लड़कियों के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं लाइक आई पिटी मैन उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं अपने आप को सजने संवारने के लिए. बट हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है चाहे कड़े हो गए ब्रेसलेट हो गया सारी चीजें समझ में आती है. हैंड बैग मतलब इसलिए मैं घर घर खेल सकती हूँ इसमें मेरा कुछ भी सामान नहीं आएगा. बट वेरी प्रिटी मन करता है सब कुछ ले लो बट ठीक है कंट्रोल करना पड़ता है अपने मन को.
1: अब सिमरन खरीदने वाली हैं अपने लिए कुछ कपड़े. जी हाँ मुंबई के लिंकन रोड मार्केट पे मिलते हैं स्ट्रीट वेयर कपड़े और सिमरन वैसा ही कुछ अपने लिए स्ट्रीट फैशन स्टाइल का कुछ ढूंढ रही हैं. तो उनके साथ करते हैं मार्केट को एक्सप्लोर.
0: यहाँ पे हिल रोड पे लिंकन रोड पे इतने अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्लॉथ एंड वेरी गुड मटेरियल लाइक सब कुछ इतना अच्छा इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कि आप बिना शॉपिंग किए तो जा ही नहीं सकते. बट वेरी नाइस कलेक्शन तो हम दूसरी शॉप में देखते हैं. शॉप्स की कमी थोड़ी है यहाँ पे. पिंक लव फॉर ऑल द गर्लीज इट्स हियर. मेरा फेवरेट कलर ब्लू है तो मुझे सब ब्लू आउटफिट्स इतने पसंद आते हैं. इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है और आप कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है ये वाला दे दो मुझे. कौन सा साइज है ये?
2: प्री साइज है.
0: प्री साइज इसे छोटा कुछ भी नहीं
2: है मतलब ये साइज स्टार्टिंग है.
0: ओके कलर साइज तो ऑल्टर कर देंगे कलर. इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड मॉनसून में कितना सुंदर लगेगा. लाइक पिंक ऑप्शंस मुझे बहुत कम पसंद आते हैं. बाहर निकल के यू जस्ट फील सो लाइटली एंड वाइब्रेंट लाइक दिस. अब मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में.
2: तीनों में देखो
0: तो आप डिस्काउंट और ज़्यादा दो.
2: मैं बोल रहा हूँ तीनों में कंफ्यूज रहो दो में बस.
0: ठीक हो गया लाइक एक्सेल में काम चलाना पड़ेगा पर ठीक है ऑर्डर हो जाएगा. वो तो उसमें हम एक्सपर्ट होते ही है. अपनी फिटिंग का बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है जो पसंद आ जाए वो लेना पड़ता है. तो आई थिंक आई गो विद पिंक. बहुत सुंदर लग रहा है ये कलर. वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा है. लड़की होना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अपना कंफ्यूजन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता. ठीक है आई टेक दिस. भैया ये बताते हैं
1: फाइनली सिमरन ने अपने लिए पिंक ड्रेस चुन ली, पेमेंट किया और अब वो हैप्पी हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग तो काफी हो गई है, लेकिन बाजार में अभी भी बहुत कुछ है, तो देखते हैं कि सिमरन आगे क्या खरीदने वाली हैं।

0: कुछ भी ओकेजन के लिए तैयार होना है आपको सारी वेराइटी मिल जाती है. आप इंडियन पहन रहे हो, वेस्टर्न पहन रहे हो, ट्रेडिशनल पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, आपके आपको यहाँ पे सब ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो आप जब भी इधर आते हो बिना शॉपिंग किए बिना जा ही नहीं सकते. वेरी नाइस.
1: एक्सेसरीज और ड्रेस तो हो गई लेकिन सिमरन को अपने लिए काला चश्मा चाहिए. जी हाँ, सनग्लासेस इनके चेहरे पर सूट करेंगे. तो देखते हैं इन्होंने कौन कौन से सनग्लासेस देखे और ढेर सारे ग्लासेस ट्राई करने के बाद फाइनली इन्होंने चुना एक सनग्लास जिसे पहनकर इनके गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा बड़ा जचने लगा. या यूं कहें तेरु काला चश्मा जचता है.

ट्रिपल एक्सएल, स्मॉल तो नहीं होगा ना इसमें? वन साइज, डबल एक्सएल मतलब वन साइज, स्मॉल के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे. कहाँ जाएं हम स्मॉल साइज वाले? पहले इसको खरीदो, फिर ऑल्ट्रेशन पे अलग से खर्चा करो. Lord. नहीं है भैया, कुछ भी छोटा नहीं है.

0: I'm tired. अब इतना अच्छा मौसम भी है, माहौल भी है, आउटडोर भी है, तो कुछ खाया जाए. यहाँ की फेमस वड़ा पाव एंड कटिंग चाय, ये कॉम्बो चुम्बेश्वरी कॉम्बो है. तो चलो घूमते हैं कहाँ पे मिलता है. कब
1: अब बांद्रा में है और यहाँ पे आके बैंड स्टैंड ना जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो बैंड स्टैंड का वड़ा पाव आई होप कहीं ना कहीं अच्छा सा मिल जाए और मज़ा आ जाए खाकर, मतलब इस वेदर का आनंद आ जाए. आई एम शिमला में, आई एम अ चाय पर्सन बिकॉज वहाँ पे ठंड होती है, तो ठंड में चाय का क्या मज़ा आता है. एंड मुंबई में आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, बट आज वेदर इतना सुहाना है, ठंडा ठंडा है फॉर अ चेंज. मुंबई में इतनी ह्यूमिडिटी होती है बट आज नहीं है. इट्स वेरी प्लेजेंट, दिल लगने वाला दिन है आज, तो क्यों ना चाय हो जाए. और एकदम धीमी धीमी बारिश हो रही है, मतलब एक प्लेजेंट मॉनसून वेदर जो आप डिस्क्राइब करोगे, जो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दोगे आप, तो वैसा वाला वेदर है आज. तो ऐसे वेदर में वड़ा पाव और चाय, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए वो भी बैंड स्टैंड पे, तो मज़ा आ जाए. फेवरेट सॉन्ग देखा जाए तो वो मूड पे डिपेंड करता है. लाइक अगर मैं मस्ती वाले मूड में हूँ तो मुझे बरसो रे मेघा मेघा ऐश्वर्या राय का, उसमें कितनी चंचल, कितनी मस्ती खोर लग रही है वो, मतलब आई लव हर एक्सप्रेशंस, और उसको देख के बारिश में बाहर जाके खेलने का मन करता है. एंड अगर मेरा सॉफ्ट रोमांटिक मूड हो तो ज़रा ज़रा महकता है, तो आज फिलहाल दोनों ही मूड बन रहे बिकॉज मौसम ही ऐसा है. बाहर जाके मस्ती करने का मन भी कर रहा है और शॉपिंग तो कर ही लिया, तो मज़ा तो आ ही गया है. मतलब शॉपिंग करने के बाद किसी भी लड़की का मूड अच्छा हो जाता है. तो गाइज रिमेंबर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड्स या कोई भी फ्रेंड एज अ गर्ल जिसका मूड अपसेट हो, आप उसको शॉपिंग करने ले जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा. तो आइए अभी फिलहाल हम वड़ा पाव ढूंढते हैं और ऐसे मौसम में मस्ती करते हैं.
2: शिवराज शर्मा के साथ साथ वो बेटे के डे आउट का अगला पड़ाव एक ऐसी जगह जहाँ पर जो मुंबई पहली बार आता है जरूर जाता है, और वो है मन्नत, जो है बांद्रा में, यानी शाहरुख खान का घर. और सिमरन तो है डीडीएलजे की सिमरन, जैसे भी उन्हें राज की तलाश है. और देखिए कैसा था सिमरन का रिएक्शन जब वो शाहरुख खान के घर के सामने से गुजरी.
0: भैया रुको रुको रुको रुको, भैया रुक जाओ ना प्लीज. अब मैं बैंड स्टैंड आई और सिमरन होके अपने राज से ना मिलूं, हाउ इज दैट पॉसिबल? ओ माय राज, आई विश मैं रियल लाइफ में भी मिल पाती. बट स्टिल बीइंग सिमरन एंड राज, ये आइकॉनिक जो नेम टैग है, मुझसे सब पूछता है जब भी मैं किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तो हाई आई एम सिमरन. तो उनका यही क्वेश्चन होता है, वैसे और राज या फिर जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. तो फिलहाल मैं अपनी जिंदगी जीने बिल्कुल आ गई हूँ राज के घर के बाहर. हमारे फेमस शाहरुख खान सर, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस मन्नत यहाँ आगे. तो चलिए अब मन्नत के बाहर आके सिमरन सेल्फी ना ले, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई एम कमिंग, वेट वेट, हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ. चलिए
2: डीडीएलजे वाली सिमरन का राज तो पंजाब और लंदन में था, लेकिन इस वाली सिमरन का राज तो मुंबई में है. तो सिमरन शर्मा आज अपने फेवरेट एक्टर शाहरुख खान के घर के सामने है, यानी मन्नत के सामने है, और देखिए कैसे इठला रही हैं, क्योंकि वो लेने वाली हैं सेल्फी. और ये काम हर कोई वो शख्स करता है जो पहली बार मुंबई आता है.

ईश्वर के साथ तो नहीं बट मन्नत के साथ ही सही। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए उसे सब

देखिए इस सिमरन को कैसे अपने राज के लिए दीवानी हुई जा रही है, लेकिन मौसम का मिजाज इतना खूबसूरत है कि सिमरन का ध्यान अभी भी वड़ा पाव पर अटका है। तो चलते हैं उनके साथ वड़ा पाव ढूंढने, क्योंकि सामने ही बैंडस्टैंड का बीच है, तो यानी अगला पड़ाव है मुंबई का बांद्रा बैंडस्टैंड बीच।

0: परफेक्ट, मिल गया हमें वड़ा पाव वाला। तो चलिए खाते हैं वड़ा पाव और पीते हैं चाय एकदम समुंदर के सामने।
1: तो सिमरन को फाइनली वड़ा पाव मिला और चाय के साथ आज ये एंजॉय करने वाली है इस वड़ा पाव को।
0: So here it is, मुंबई का आइकॉनिक वड़ा पाव। भैया, भैया, एक वड़ा पाव और चाय है, ठीक है चाय भी कर दीजिए।
1: शिमला के सिमलन को वड़ा पाव इतना भा रहा है कि वड़ा पाव देखते ही इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई मुंबई के इस मानसून में इस वड़ा पाव, वो भी समुद्र किनारे बीच पर खाने का एक अलग मजा है और सिमरन उसी मजे को एंजॉय कर रही है ओनली विद सास बहु और बेटिया।
2: क्या करूं, धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूं।
0: ऐसे मौसम में वड़ा पाव और समुंदर, इससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है। मेरे तो ये बेस्ट है।

मुंबई के बांद्रा इलाके का बैंडस्टैंड बीच हमेशा सबको अपनी ओर खींचता है क्योंकि समुंदर बड़ा ही खूबसूरत है। तो आज सिमरन भी समुंदर पर पहुंची। यहाँ पर ढेर सारे टूरिस्ट के साथ इन्होंने भी लहरों का मजा उठाया। खासकर जब हाई टाइड होता है या मॉनसून होता है तो ये लहरें एक अलग ही अंदाज में अटखेलियां करती हैं। तो सिमरन देखिए कैसे मौसम का मजा उठा रही है छई छपा छई करते हुए। साथ में अगर बारिश हो जाए और छाता हो तो और मजा आता है।

0: तो जैसे मैंने कहा था कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तो मैंने इतने लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने सारे लोग मुंबई का मॉनसून एंजॉय करने आए विद हाई वेव्स। अभी हाई टाइड चल रहा है, फिर भी लोगों को डर नहीं है, तो अब लोग इतने नज़दीक खड़े हैं पानी के और बस एंजॉय कर रहे हैं। लाइक मुंबई में मज़ा लेना है तो बैंड स्टैंड में आके आप इतना अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की है बट सेफ्टी के साथ अगर आप जाएंगे तो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल फन। जस्ट लुक एट द स्पिरिट ऑफ पीपल, ऐसी बारिश में भी ये लोग यहाँ पे आए हैं।
1: मुंबई मानसून में अलग ही रंग ले लेती है और सिमरन आज उसी मुंबई का मजा उठा रही है जो मानसून में रंग गया है सलेटी चादर से ढका, जो मुंबई में सलेटी रंग ले लेता है। समुद्र किनारे लहरों के सामने वक्त गुजारना बहुत ही सुहाना लगता है और उसी सुहाने अनुभव को आज सिमरन ने पूरा एंजॉय किया सास बहू और पीजिया संग।

0: तो ये था मेरा आज का दिन, खूब मस्ती की, घूमे फिरे, खाया पिया, शॉपिंग की, मॉनसून के मजे लिए, बहुत मजा आया, इतना अच्छा डे आउट था। आई होप आप लोग भी ऐसे ही मजे कर रहे होंगे, तो मेरी तरह खुश रहिए, जीते रहिए और जय सिमरन जा चीले अपनी जिंदगी।
1: तो ये थी सीरियल रंगबाजी दिलों की रेवा यानी सिमरन शर्मा, और शिमला की इस लड़की के साथ मुंबई को एक अलग अंदाज में आज हमने देखा। मानसून की मस्ती, शॉपिंग का खास अंदाज, साथ में मस्ती, धमाल और एक लड़की के सपने जो ये माया नगरी देती है, आज वही दिखाने की हमने कोशिश की सिमरन शर्मा के साथ। वैसे जल्दी वो एक नए प्रोजेक्ट पे आने वाली हैं जिसकी हर खबर आपको देगा सास बहू और बेटिया। तो बने रहिए सास बहू बेटिया के साथ आपकी फेवरेट सितारों का अनोखा अंदाज देखने के लिए।

0: और जल्दी मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ. इट्स अ सरप्राइज, जल्दी पता चलेगा. बाय.
1: मुंबई से नुपुर माची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: ट्रेडिशनल लुक, सॉफ्ट मेकअप और खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं हम अपनी वसुधा के लिए. तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इनके पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनके कहानी में आज. वेल, वसुधा की कहानी में भी आता ही रहता है हमारे लिए कुछ ना कुछ नया, जो लेकर आता है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट. लेट्स चेक इट आउट.

0: वसुधा की गोद भराई की रस्म, दादी की खुशी, घर वालों ने निभाई गोद भराई की रस्म। सीरियल वसुधा में भाई दादी को लग रहा है कि वसुधा प्रेग्नेंट है, और ऐसे में वसुधा और चंद्रिका भी दादी को सच नहीं बता रही है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है, और ऐसे में आज दादी ने रखी है वसुधा की गोद भराई की रस्म। और देखिए वसुधा भी सज धज कर पहुंच गई है इस रस्म के लिए। भाई आज तो दादी काफी खुश है और चंद्रिका को भी, वो इस खुशी में शामिल होने को कहती है। घर की सारी लेडीज यहाँ मौजूद है और निभाई जा रही है वसुधा की गोद भराई की रस्म।
1: बहुत

माई दादी वसुधा की आरती उतार रही है। एक एक कर सभी घर की औरतें वसुधा की गोद भर रही हैं, उन्हें शगुन की चीजें दे रही हैं और सुहागनों का सारा सामान।

इसके अलावा भी बाकी की सभी रस्में निभाई जा रही हैं, जहां वसुधा को पैम्पर किया जा रहा है और वसुधा भी चंद्रिका संग इस नाटक में हो गई है शामिल, क्योंकि वो भी दादी को सच नहीं बता पा रही। ऐसे में सभी लोग काफी खुश हैं, क्योंकि सच तो सिर्फ चंद्रिका और वसुधा को ही पता है।

0: नहीं, मुझे अभी नहीं मालूम है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, मुझे तो कंफर्म है कि ये प्रेग्नेंट है। तो ये खबर जब पता लगेगी कि नहीं है तब तो क्या हाल होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो प्रेग्नेंट है।
1: नहीं, सारिका को अभी तो डाउट नहीं है कि उसे भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो भी डाउटफुल है। लेकिन आगे जैसे ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब वो आ जाएगी अपनी प्यारी दादी के पास, माजी साहब के पास, और फिर उनके कान भरेगी।
2: वसुधा को चक्कर आया, माजी साहब ने सोच ही लिया कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए अभी हमें क्योंकि हम झूठ बोल रहे थे माजी साहब को कि वसुधा को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ताकि उनका ऑपरेशन हो जाए, पर अब इस झूठ में हम फंसते जा रहे हैं।
3: पर इससे पहले दादी साहब पहुंची थी चंद्रिका के पास गोद भराई की तैयारियों के लिए और उन्हें समझाने के लिए कि अब तो वो वसुधा का और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
2: कोई काम है? कोई काम हो तो कौन सो तू कर देती, एक अच्छी सास तो बढ़ ना पा रही।
4: क्या हुआ माजी साहब, दिव्या या वसुधा ने कुछ कहा?
2: अरे वो बेचारी दोनों के रहेंगी, किस्मत वाली है तू, तुम्हारे को इतनी अच्छी बहू है मिल गई, पर तू सास को फर्ज ना निभा पा रही।
4: हम कुछ समझे कौन सा फर्ज?
2: बड़ी बहू को स्वागत कर रही हो, बस सारी जिम्मेदारी खत्म, उसके बाद उसके साथ के हो रही हो है कौन देखेगो? देख तुम्हारे बच्चों को तो दादी सबको सुख मिले हो, और परदादी तो है ही बैठी सपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए। देख गुरुजी ने के बोले कि जब तू वसूली ने अपना लेगी तो वसूली एक खुशखबरी सुना देगी, पर देख उसने सुना दी खुशखबरी, नीचे तैयारी करूं गोद भराएगी, तू तब तक आराम कर ले और थोड़ा काम जो करना वो कर ले, आ जाना नीचे ना।
3: ऐसे में दादी के जाने के बाद परेशान वसुधा वहां पहुंचती है, जो चंद्रिका से मदद मांगती है कि कैसे वो दादी को सच बताए, और चंद्रिका भी यही कहती है कि अब वक्त आ गया है दादी को सब सच बताने का कि वसुधा प्रेग्नेंट नहीं है, और इसी के साथ ये भी कि चंद्रिका ने वसुधा को बहू एक्सेप्ट नहीं किया है।
5: दादी सर ने बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर आपने तो पता ही है ना देवियों को, मेरा बिल्कुल झूठ है, फिर रास्ता दिखाई देवियों को, मैं दादी सर से पहले इतने बड़े झूठ बोल चुकी हूँ, मैं उनके साथ और फरेब ना कर सकूँ, मैं यूँ घर छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं यूँ नाटक ना निभा पाऊँ, आप ही मारे को कोई रास्ता दिखाई देवियों को, मैं क्या करूँ?
4: ये झूठ हम क्यों नहीं बोल सकते हैं माजी साहब को, सब सच बताना होगा इससे पहले कि और देर हो जाए।
6: वैसे तो वसुधा के लिए कुछ भी झूठ बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं, और अब दादी साहब के साथ बार बार इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली वसु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो मजबूर है, और चंद्रिका जी से वो बार बार बोल भी रही है कि हम कब सच सबके सामने लेकर आएंगे, कब सब ख़त्म होगा, बट एक सूटेबल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दादी साहब की हालत वैसे बहुत नाजुक है, और उन्हें सच बताया तो कुछ भी हो सकता है ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है, तो अभी तो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बस सब बोल रहे हैं कि कब करेंगे कब बताएंगे, लेकिन अभी ये गोद भराई की रस्म तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, और दादी साहब ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया है हमसे, तो अभी तो सच बताना ही पड़ेगा। वसुधा इसलिए नहीं बोल पा रही है क्योंकि वो ये प्लान चंद्रिका जी का है और उनका हुक्म है कि ये करना है, और वो उसको डिनाय नहीं कर सकती, और वो बस उनको रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप बोलिए, और दादी साहब को बहुत बुरा लगेगा, उनका दिल टूट जाएगा, तो कुछ कीजिए, और वही पूरे सीन में हो भी रहा है, बस पूरे सीन में देवी हुकुम की तरफ देख रही है कि अब तो कुछ बोलिए, लेकिन उनके दिमाग में भी चीज़ें चल रही हैं कि माजी साहब के लिए खतरा हो सकता है नॉल, तो अभी तक तो सच कोई भी नहीं बता पाया उन्हें।
3: भाई अब तक तो दादी सच से अनजान है, लेकिन जल्द ही दादी के सामने सच आने वाला है, और कहानी में नया ट्विस्ट भी।
5: इसीलिए हमने ये झूठ बोला था ना, वो ठीक होकर घर में लौट आई है, अभी के अभी दादी साहब के पास चलते और उन्हें बता देते कि आपने कभी मारे को बहू के रूप में स्वीकार किया ही ना।
3: तो भाई सच जानने के बाद रिश्ते किस तरह बिखरेंगे ये देखना होगा, और वसुधा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, यही है कहानी में आने वाला नया मोड़। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: इस शो में ना खूबसूरती सिर्फ इसकी कहानी में नहीं है बल्कि किरदारों के हर लुक में भी है। देखिए कितने खूबसूरत हैं शो में सब, और जब आता है इनका ग्लैमरस अंदाज या फिर कोई फेस्टिव लुक तो हम सब भी लेते हैं इनसे स्टाइलिंग टिप्स। इसमें मेकअप का भी एक अहम हिस्सा होता है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको राध्या और प्रथम के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा।
3: कलावंती का घर वालों पर अत्याचार। राध्या और उसका परिवार हुआ बेघर। प्रथम का गुस्सा, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में कलावंती के प्रॉपर्टी के पेपर्स में से एक पेपर गायब हो गया है। ऐसे में वो बौखला गई है और देखिए कैसे राध्या प्रथम और बाकी घर वालों की तलाशी ले रही है। उसे लग रहा है कि ये पेपर इन्हीं में से किसी ने गायब किया है, लेकिन ऐसे में कलावंती देखिए परिवार वालों पर अत्याचार कर रही है।

सभी का सामान कलावंती ने अपने कब्जे में कर लिया है और सबके सामान की वो तलाशी ले रही है ताकि वो इम्पोर्टेंट पेपर मिल जाए, लेकिन कलावंती को कुछ नहीं मिलता।

0: कलावंती बहुत कुछ कर रही है। अब तो हम लोग ऐसे फंस गए हैं कि ना उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं ना घर में रख सकते हैं। बट फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया है कि उनको घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि हमारे पेपर्स में से, प्रॉपर्टी के पेपर्स में से एक पेपर मिस हो गया है। अब मुझे तो पक्का बताएगी वो राध्या ही लेके गई है, बट उसके हाथ में मिला नहीं तो अब कहाँ गया। पर फैमिली वालों के पास तो है ही, उतना तो समझ में आ ही रहा है, तो उनको घर के बाहर तो नहीं जाने दे सकते, नहीं तो फिर वो लोग पुलिस के पास चले जाएंगे, केस करेंगे और वकील के पास जाएंगे और बहुत सारे ड्रामे। तो इसीलिए हमने ये ट्राई किया कि वो लोग घर से बाहर ना जाए, यहीं पे रहे, बट गार्डन में जा के रहे, जैसे बस ऐसे छत के बिना पर घर पे, घर में ही पर छत के बिना, वैसा। तो ये उनके लिए और एक सज़ा है कलावंती की तरफ से, क्योंकि घर में रहेंगे तो इतनी आसानी से तो मैं उनको जीने नहीं दूंगी, उनका जीना दुश्वार तो करूंगी ही करूंगी। तो बस यही था वो सीन कि या तो वो मुझे पेपर्स या खास चीज़ दे दो या फिर ये बुक, तो और क्या।
1: भाई कलावंती तो ये सब कुछ बंदूक की नोक पर करा रही है, लेकिन इतने में भी उसका मन नहीं भरा। उसने तो दे दी परिवार वालों को सजा गार्डन में रहने की। इतना ही नहीं, कलावंती ने तो राध्या, प्रथम और बाकी घर वालों का खाना पीना भी बंद कर दिया। ऐसे में जब राध्या ने आवाज उठाई तो देखिए कैसे वो उस पर भी बरस पड़ी। तभी कलावंती के एक आदमी ने राध्या पर और परिवार वालों पर हमला करना चाहा। तभी प्रथम आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन प्रथम के पापा प्रथम को रोक लेते हैं।
2: हमारे

0: बड़ी चूल है ना तुम लोगों को इस घर के पेपर ढूंढने की।
1: दिया मौका तुम लोगों को,
0: जहाँ तक तुम लोगों की सोच जाती है ढूंढ के निकालो पेपर्स।
2: हमें मंजूर है,
3: मैं खुद बहुत पजल हो चुकी हूँ इधर, क्योंकि पासे उल्टे पड़ रहे हैं। मतलब देखो ना, जब मैं इसी कोशिश में लगी हुई थी कि राध्या जो है उसको मैं टॉर्चर करूं, उसको तंग करूं, और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। हार मान चुकी हूँ मैं सुकत। कंडीशन ये हो गई है कि मेरी बेटी बेवकूफ़, शादी के चक्कर में शादी करनी। अरे कर ले, जाके कर शादी फिर तू। उसने ये गलती कर दी है जो आजकल की लड़कियां नहीं करती हैं, और इससे सीख मिलनी चाहिए कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
4: भाई परिवार वालों को तो सजा मिल गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह सारा किया धरा राध्या का ही है। उसी ने वो पेपर छुपाया है, लेकिन अब वो पेपर मिल नहीं रहा। देखिए कैसे वो पेपर चुराने गई थी, तभी राध्या और प्रथम का रोमांस भी शुरू हो गया, लेकिन अब मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वो पेपर हो गया है गायब।

0: तो भाई अब देखना होगा कि क्या राध्या कलावंती को वो पेपर देगी या फिर कोई नया प्लान बनाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कभी सिंपल कभी रॉयल तो कभी कभी बिल्कुल अलग ही अवतार। कुछ ऐसा ही होता है ना आपके फेवरेट सीरियल्स की कहानियों के किरदारों के साथ, क्योंकि देखिए अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जहां पर वो भी लेते हैं अलग अलग गेटअप्स। फिलहाल हम लेकर चल रहे हैं आपको इस अगली कहानी की ओर, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा। अब कहानी का लेखक लेकर आया है यहां पर भी एक नया मोड़। कैसे? ऐसे।

0: थी वृंदा की मुश्किलें। संजय की बेताबी,
1: बिना सजाया था।
0: माधवी ने दिया वृंदा को घर निकाला। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में भाई आज वृंदा की हालत बेहद ही खराब है। तभी तो देखिए कैसे वो दर बदर भटक रही है और अपने आंसुओं को बहने से रोक ही नहीं पा रही है। भाई कुछ दिनों में उसके साथ इतना सब कुछ हो गया है कि उसके पास अब किसी का सहारा ही नहीं बचा। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कैसे संजय भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। भाई उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वृंदा कहाँ चली गई। इस बात से अनजान कि भाई वृंदा कितनी मुश्किलों का सामना अकेले ही कर रही है।

0: क्या होगा? चलो
1: फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई।
2: मिली नहीं रही है वृंदा, मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझसे दूर जा रही है। आठ के टूर कभी कहीं गाँव में
3: वृंदा को पता है कि आपका टाटा फिट हो चुका है ऑलरेडी।
2: टाटा फिट वृंदा को ये बात नहीं
4: पता
2: है।
3: किसी
2: लेकिन अगर ऐसा था तो वृंदा ने मेरे लिए सॉन्ग को डेडिकेट किया। जनता जवाब चाहती है आज, इसको बोलते हैं बदमाशी।
3: बदमाशी वृंदा की मूवी। अरे
2: ये बदमाशी की
3: वृंदा फूकी। दो मिनट वृंदा
2: वृंदा की फूकी
3: वृंदा इज फूकी इट्स नंबर 1 बस कर दिया।
2: वो ड्रीम सीक्वेंस क्या था वृंदा की सोच रही थी?
3: अरे वृंदा सोच रही है कि वृंदा छोड़ो, वृंदा सोच रही है वृंदा की
2: मुझे भी सिल पे 300 साल।
3: हाँ क्या क्यों?
2: उसके बाद शायद मिल जाए। नहीं नहीं मैं जस्ट कि ऑनेस्टली हम कभी भी मिल सकते हैं। सो प्लीज बी रेडी ऑन योर टीवी स्क्रीन, ऑन योर फोन स्क्रीन, ऑन योर ओके आईपैड स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन। स्पीड ऑफ कितने बजे? 7 बजे हमारा शो पूरी दिल पर और रिपीट भी देखो। क्या पता नहीं कभी पूरे पूरे टाइम जी देखते रहो, कभी भी आ सकते।
3: आप जी टी वी देखो 7 बजे और जब आपको वापस Z5 भी देखो।
5: ऐसे में जब वो स्वाति के घर पहुंचती है तब देखिए कैसे माधवी भी उसे फटकार लगाती है। भाई इतना ही नहीं फिर एक बार उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। भाई यहाँ पर वृंदा माधवी को समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है।
6: चल निकल यहाँ से।
5: ऐसे में अब देखना होगा कि क्या संजय और स्वाति वृंदा का सपोर्ट करेंगे या फिर उसे ही गलत समझकर उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ देंगे। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
7: एक छोटा सा मेकअप टचअप और पूरा लुक बदल जाता है। ये तो होता है बहुत ही रॉकिंग, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो होते हैं कंप्लीटली शॉकिंग। कुछ ऐसे ही रॉकिंग, कुछ ऐसे ही शॉकिंग है हमारे पास। ये तमाम खबरें जिन्हें लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अपने शो सास बहू और बेटियां में इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
8: हेलो एवरीवन, 1000 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए कल एंड मुझे तो पता भी नहीं था कि 1000 एपिसोड्स।
5: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और बॉलीवुड की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि भाई सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 1000 एपिसोड्स। ऐसे में अभीरा यानी कि समृद्धि ने ये वीडियो डाला है जहां वो 1000 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी जाहिर कर रही है।
8: इतना लंबा सफर तय कर पाए एज फोर्थ जनरेशन और मैं कर पाऊँ एज अभीरा शर्मा कि मैं इतने सारे मूड्स, क्योंकि आप जब 1000 एपिसोड्स पूरे करते हो एक शो में एक कैरेक्टर के साथ तो आप उस कैरेक्टर को हर तरह से एक्सप्लोर कर चुके होते हो। मतलब मैंने उसे उसका कॉमेडी साइड, उसकी ट्रेजेडी, उसके ट्रॉमास, उसके लॉस ऑफ फैमिली, लॉस ऑफ यू नो मनी बोल लो या रेपुटेशन, बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं।
5: जो जल्द आने वाली है फिल्म तुम्बर 2, जिसमें नजर आने वाली हैं आलिया भट्ट। ऐसे में सामने आया है इसका पोस्टर, जहां पर महाराष्ट्रीयन अंदाज में नजर आ रही हैं आलिया भट्ट। देख लीजिए फिल्म का पहला पोस्टर।

जाने अनजाने हम मिले जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। ऐसे में सामने आए हैं ये बीटीएस नज़ारे, जहां पर रीत देखिए कैसे बच्चे के लिए कर रही है फाइटिंग।

0: I'm talking to the ace right now.
1: Okay, the ace, but we also have the right to speak.
2: नजर डाल लीजिए अलायंस के नए प्रोमो पर, जहां पर हो रहा है एलिमिनेशन राउंड।
0: आई स्टार्टेड दैट कॉन्वर्सेशन सेइंग अगर मैं स्कॉर्पियन होती
1: ओके
0: तो मैं भी अंडर परफॉर्म करती, ताकि मैं और टीम्स की मेरी स्ट्रेटजी होती कुछ, शायद ही आपकी स्ट्रेटजी हो।
1: मैं नहीं करता।
0: I was not the scorpion you were, and I ended it saying, but I will give him the benefit of doubt because I know he's a great player. Okay, I ended it there if you remember. Here, I only wanted to say, please keep in mind that this team has been working against the odds of Suhail Bhai's injury. That's all I'm saying. सबको पता है कि अरसलान ने underperform किया as a scorpion, पर आप उसको admit नहीं कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि पायल admit करें कि उन्होंने underperform किया. Slow claps.
2: कई खबरों की माने तो अजय देवगन करने जा रहे हैं अपना टेलीविजन डेब्यू। सुनने में आ रहा है वो आने वाला क्राइम बेस्ड टीवी शो होस्ट करेंगे, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: जल्द आएगा प्लेग्राउंड का सीजन 5। ऐसे में देख लीजिए ये कुछ खास पिक्चर्स।
1: आपको जम कर
0: खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का नया प्रोमो सामने आया है, जहां टास्क के साथ साथ है एंटरटेनमेंट फुल ऑन।
2: जम जम जम कमांड पराना, गो गो।
3: देखो वर्टिगो है, कुछ इशू होगा।
4: I'm very scared.
0: सामने आई है जेनिफर विंगेट की हल्दी सेरेमनी की पिक्चर्स और कुछ वीडियोस, जहां पर जेनिफर काफी खुश है अपने फैमिली और दोस्तों संग। अपनी ही हेल्दी सेरेमनी में डांस है, मस्ती है और है हल्दी का फंक्शन।

अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शौर्य, प्रवीण दबास ने रिक्रिएट किया है ये रील जो काफी वायरल हो रहा है इन दिनों। देख लीजिए इनका ये फन बैंटर। प्रिंस नरूरा ने ये बर्थडे विश पोस्ट किया है युविका चौधरी के लिए और ऐसे में उन्होंने ये इमोशनल नोट लिखा है खास युविका के लिए।

सनी देओल और करण देओल पहुँचे हैं पटना और वहाँ वो पहुँचे इस गुरुद्वारे में गुरु नानक का आशीर्वाद लेने के लिए। देख लीजिए इनकी ये तस्वीरें।

बीती शाम हुई सक्सेस पार्टी मुसाफिर कैफे की, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे जैसे कि वेदिका पिंटो, विक्रांत मैसी, माहिमा मकवाना, सुमोना चक्रवर्ती और इसके अलावा कई और सितारे जिन्होंने ये सक्सेस पार्टी अटेंड की।

0: मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। स्टे स्टाइलिश, स्टे ग्लैमरस। बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।

0: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स,
4: Sage University, transforming your passion into profession.
5: भक्ति और उत्साह के साथ देश भर के शिवालयों में किया जा रहा जलाभिषेक, सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक को उमड़े भक्त, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर ओर भोले के जयकारे। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, एकता सामूहिक सहभागिता का संदेश। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से निगरान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सहस्त्रकुंड झरने में पानी का जबरदस्त बहाव, फोटोग्राफी के लिए उमड़ी पर्यटकों की भारी

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: आज सावन का पहला सोमवार, शिवनगरी काशी से लेकर उज्जैन के महाकाल तक शिव भक्तों का रेला। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती, बाबा ने का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब, भक्तों पर बरसाए गए फूल। सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम की ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। जोरन खूबसूरत फूलों से सजा बाबा विश्वनाथ के दरबार, फूलों की खुशबू से महका मंदिर परिसर। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का अभिषेक हुआ, सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की हुई भस्म आरती। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में उजाला होने से पहले ही दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे भक्त, सभी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का हुआ अलौकिक श्रृंगार, हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हुआ परिसर। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, शिव भक्तों से पटा मंदिर परिसर। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों का उमड़ा हुजूम, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक नजर आए श्रद्धालु। मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ का विधि विधान के साथ दुग्धाभिषेक हुआ, आस्था से सराबोर हुआ माहौल। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने सरयू में लगाई पवित्र डुबकी। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लंबी कतारें। नोएडा के शिव मंदिर में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पुरी के लोकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, सुबह से मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाया हर हर महादेव के जयकारे। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह सुबह लगी भक्तों की लंबी कतारें, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मधेपुरा में सावन के पहले सोमवार पर सिंहेश्वर नाथ धाम पर लगा भक्तों का मेला। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करके सुख समृद्धि की कामना। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगा जल बेलपत्र से किया बाबा का अभिषेक, लगाया हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लखीसराय के अशोक धाम में सावन के पहले सोमवार को उमड़ा आस्था का जनसैलाब, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। रोहतास के तिलेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सावन के पहले सोमवार पर पटना के शिवालयों में सुबह से लंबी कतारें लगी हुई, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। रायसेन के शिव गुफा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक किया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। सावन के पहले सोमवार पर सारण के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 50,000 लीटर यदुवंशी समाज ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। लखनऊ के चंदेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की लंबी कतारें, सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से नजर। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं, सावन में पड़ेंगे 4 सोमवार। कानपुर के आनंदेश्वर महादेव मंदिर में लगा शिवभक्तों का रेला, गुब्बारों से सजाया गया मंदिर परिसर। आनंदेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव के जयघोष के साथ माहौल में खुली दिव्यता। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। गाजियाबाद के बाबा दुधेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। सावन के पहले सोमवार पर डोमिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा। महिलाओं ने एकता सामूहिक सहभागिता का दिया गया संदेश, बोलभम के जयकारे। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर दर्शन करने के लिए लगा भक्तों का तांता। मध्य प्रदेश के खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रांची में सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ पहाड़ी मंदिर। जयपुर के तड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से भक्तों का रेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट मोड में, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर। कांवड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए हैं 40 कूलर, 30 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सहारनपुर में कांवड़ मार्ग को हजारों रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात के समय रोशनी से जगमगाता रास्ता श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र। तकरीबन 10,000 से 12,000 लाइटों से चमका कांवड़ मार्ग। इस खूबसूरत सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उमड़ रहे हैं, मोबाइल में कैद कर रहे हैं तस्वीरें। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर 6,000 से 7,000 लाइटें लगाई गई हैं। दिनभर पैदल चलने के बाद रात में जगमगाते कांवड़ मार्ग से गुजर कर श्रद्धालुओं को मिल रही है नई ऊर्जा। श्री अमरनाथ यात्रा का 32वां दिन आज, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फन की तरफ चुके हैं दर्शन। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था तैनात। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार कर रहा है मॉनिटरिंग, यात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी दिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें, मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
4: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
3: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: भक्ति और उत्साह के साथ देश भर के शिवालयों में किया जा रहा जलाभिषेक। सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में शिव दर्शन और जलाभिषेक को लेकर उमड़े भक्त, फूलों से सजा पूरा मंदिर परिसर, हर ओर भोले के जयकारों की गूंज। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं, एकता सामूहिक सहभागिता का संदेश। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 सीसीटीवी से सुरक्षा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सहस्त्रकुंड झरने में पानी का जबरदस्त बहाव, फोटोग्राफी के लिए उमड़ रही पर्यटकों की भारी भीड़।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
6: सावन जब आस्था आकार लेते हैं शिवालयों में, जो भक्त खुद को शिव तत्व में समा लेना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। देखिए सावन एक ऐसा अद्भुत महीना है जब भक्त परमेश्वर की भक्ति में लीन होकर बोलबम के जयकारे गाने लगते हैं, नमः शिवाय के जाप से खुद को परमेश्वर से एकाकार करते हैं। जी हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही भक्त आस्था रूपी गंगा जल से देवादिदेव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन के सोमवार को किए जाने वाले कुछ महाप्रयोग आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आज हम आपको सावन के पहले सोमवार की महिमा बताएंगे।
13: सावन का पहला सोमवार जब महादेव की कृपा बरसती है अपार, जब प्रकृति भी कर रही होती है बाबा का श्रृंगार और आस्था दौड़ी आती है बम बम भोले के द्वार, देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही जहां जहां शिवालय हैं, वहां भक्त सुबह से ही कतारबद्ध होकर अपने आराध्य का जलाभिषेक कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों में ब्रह्म मुहूर्त से ही बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। भक्त ओम नमः शिवाय मंत्रों के सुमिरन के साथ ही अपनी अर्जी बाबा के दरबार में पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आरंभ हो चुका है शिव के सबसे पावन मास सावन का और आज सावन का पहला सोमवार है। मान्यता है कि सावन का सोमवार कामना पूर्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार सावन के कितने सोमवार रहने वाले हैं। पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सावन का सोमवार 17 अगस्त, चौथा सावन का सोमवार 24 अगस्त। धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। आस्था कहती है कि सावन में प्रभु अपने भक्तों के बीच रहते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी हर कामना पूरी करते हैं और सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को धन्य मानते हैं, अपने जीवन की बाधाओं का अंत करते हैं। पूरा सावन महीना जप तप ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। खराब सेहत, विवाह में अड़चने हो तो सावन के सोमवार में सब दूर होती है। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार और शिवजी के संबंध के कारण ही माँ पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है।
14: कि सोमवार चंद्र का दिन है, चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा को भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किया है, जिसलिए उनका नाम चंद्रमौलेश्वर भी है। इसीलिए चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा मन का कारक है और भगवान शिव शांत स्वरूप हैं और चंद्रमा उसके मस्तक पर धारण करने के कारण भक्त की जो मन की अशांति होती है उसको दूर करते हैं। इसलिए श्रावण के सोमवार की महिमा विशेष करके है।
13: भक्ति में हो जाने, शिव में खो जाने और शिव की शरण में जाने का ये शुभ दिन है सावन का सोमवार। स्कंद पुराण कहता है कि सावन के सोमवार की महिमा स्वयं महादेव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत कुमार को सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं कि सूर्य मेरा नेत्र है और चंद्रमा सोम है, सोमवार की तिथि मेरा ही स्वरूप है, इसलिए सोमवार का दिन खास माना जाता है। महादेव कहते हैं कि वैसे तो भक्त पूरे साल ही सोमवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन जो भक्त ऐसा नहीं कर पाते वो सावन के सोमवार का व्रत करें, इससे उन्हें सारे सोमवार के व्रतों का फल मिलता है। महादेव के ध्यान और उपासना के लिए परम शुभ तो सावन का सोमवार है ही, लेकिन अगर सावन का सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया जाए तो ये दिन आपके लिए और भी कल्याणकारी बन सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ये तिथि आपके सभी संकटों को दूर कर सकती है। भगवान शिव की पूजा और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह ना हुआ हो तो संकल्प लेकर सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। सेहत खराब रहती हो या मानसिक समस्या हो तो सावन के सोमवार का व्रत खास परिणाम देता है। सोमवार व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है, उस पर जल बेलपत्र अर्पित किया जाता है।
14: ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था, और उस समुद्र मंथन में जब पहले हलाहल विष निकला तो पूरा संसार उससे जब जलने लगा तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रखा और भगवान नीलकंठ हो गए, क्योंकि भगवान शिव ने पूरे संसार के कल्याण के लिए उस हलाहल विष का पान किया। यह कथा सर्वोत्तम कथा मानी जाती है।
13: ज्योतिषी कहते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी सुखों को दूर कर देते हैं। सावन के सोमवार का व्रत का महत्व जानने के बाद सवाल ये आता है कि इसमें शिव जी की पूजा करने का विधान क्या है। तो चलिए हम आपको स्कंद पुराण में लिखा महादेव की स्तुति का वो विधान बताते हैं जब श्री राम ने महादेव की उपासना की थी। सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प लें, उसके बाद गणेश जी और नंदी को प्रणाम करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें, धूप जलाएं, एक घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई या सात्विक भोग लगाएं, शिवलिंग को प्रणाम करके प्रार्थना करें।
14: भगवान शिव की उपासना का विधान इतना सुंदर है, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिय। भगवान विष्णु जहाँ अलंकार से प्रसन्न होते हैं, वहीं पर भगवान केवल एक लोटा जल अगर कोई मन से चढ़ाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के मस्तक कंठ में जो हलाहल विष है उसको शांत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल धारा जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। कि भगवान के मस्तक पर ऐसे जल धारा नहीं गिरानी चाहिए, पुष्प रख करके या बिलपत्र रख करके तब भगवान देवादिदेव महादेव को जल अर्पण करना यह विशेष लाभकारक होता है।
13: अब आप किसी मंदिर में जाकर उपासना करना चाहते हैं तो उसका भी ज्योतिषीय विधान जान लीजिए। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाएं, घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग प्रणाम करें, शिव मंत्र का 108 बार जाप करें, दिन में केवल फलाहार करें, शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें, शिव जी की आरती करें, पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें, अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें तब जाकर व्रत खोलें। देवों के देव महादेव के ध्यान मात्र से ही आपकी हर अभिलाषा की पूर्ति होती है, क्योंकि सावन में सदाशिव अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करने को आतुर रहते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन के सोमवार किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं, जिनको करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। वो उपाय हम आपको आगे बताएंगे।
6: माना जाता है कि मनवांछित फल प्रदान करने वाला है सावन का सोमवार। इस संसार में महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिव चाहे तो भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहते हैं। जानकार बताते हैं कि सावन के सोमवार को अगर विधि विधान से शिव उपासना की जाए तो महादेव की विशेष कृपा भक्तों को मिल सकती है। तो चलिए ऐसे में आपको बताते हैं सावन के सोमवार से जुड़े कुछ दिव्य प्रयोग।

0: शिव है ओघड़दानी, तभी तो वे हैं सबसे बड़े वरदानी। ये देव और दानवों में भेद नहीं करते, वे देवों पर भी कृपा करते हैं तो दानवों पर भी करुणा लुटाते हैं। वे तो भक्त की भक्ति का भाव देखते हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से ही निहाल हो जाते हैं। आदि अनंत शिव की महिमा अपरंपार है, कण कण में जिनका वास है, ऐसे बाबा अविनाशी की आराधना करने के लिए सावन को सबसे उत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में भी सावन के सोमवार को बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। ज्योतिष के विशेषज्ञ बताते हैं कि स्थिति पर किए गए महाप्रयोग अमोघ होते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार की तिथि पर अविवाहित साधकों का जीवन दाम्पत्य के सुख में बदल सकता है, साथ ही निसंतान दंपतियों के जीवन में औलाद का सुख भी मिल सकता है।
1: तो जो मनुष्य इस महीने में भगवान शिव शंकर की, गौरी शंकर की पूजा करता है, उसके जो विवाह में अड़चने आती हैं, उसके लिए सर्वोत्तम एक उपाय मैं बता रहा हूँ कि बिल्व पत्र पर अनार की कलम से और लाल चंदन से एक पत्ते पर 6 बार राम राम लिख करके कम से कम 33 बिल्व पत्र अगर भगवान शंकर को आप चढ़ाते हैं तो विवाह में आ रहे समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं।
0: इसलिए अगर आपकी शादी विवाह में बाधा आ रही है तो शिव की कृपा से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं वो ज्योतिषी महा उपाय, जब विवाह बाधा हो तो कैसे करें इसका निदान। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें, हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें, एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें, जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करें।
1: श्रावण में भगवान को जल अर्पित करना, पंचामृत से स्नान कराना, या आप चाहें तो दुग्ध मिला करके हर कामनाओं के लिए अलग अलग अभिषेक का विधान है। दूध से अभिषेक करने से संतान को लाभ होता है, दही से अभिषेक करने से श्री की प्राप्ति होती है, मधु का अभिषेक करने से आप सबको अपने वश में कर सकते हैं, शर्करा से अगर आप भगवान का शर्करा के जल से अभिषेक करते हैं तो भगवान श्री आपको प्रदान करते हैं, और घी से अभिषेक करने से भी परिवार में घर में श्री की विशेषता होती है, क्योंकि घृत में श्री का वास है।
0: घर में बिना संतान के घर का आंगन सूना सूना लगता है, बच्चे से ही घर की रौनक है। अगर आपको भी संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके घर की बगिया में नन्हे फूल खिला सकता है। गौर से देखिए, सावन के सोमवार को किया जाने वाला ये उपाय, क्योंकि बिन संतान सब सून है। शिव कृपा से मिलेगी उत्तम संतान, संतान सुख न मिला तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें।
1: संतान की उन्नति के लिए संभव हो गंगा जल में दूध मिला करके भगवान का अभिषेक करें, और गुलाब का जल या गुलाब का इत्र डाल करके भगवान का अभिषेक करने से संतान के कार्यों में आ रही समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन होता है। लेकिन केवड़े का जो जल होता है या जो केवड़े का इत्र होता है वह भगवान शिव को कदापि न चढ़ावे, इसलिए केतकी को भगवान शिव का श्राप है, इसलिए केवड़े का जल या केवड़े का इत्र भगवान महादेव को न चढ़ावे।
0: हम सभी जानते हैं कि सावन के किसी भी दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है, ऐसे में अगर आप सावन के महीने भी किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं, तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं, साथ ही किसी योग्य ब्राह्मण से घर में ही रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। लेकिन शिव को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में शिवलिंग रखने का विधान, घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें, घर में कभी भी दो शिवलिंग ना रखें, शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो, शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए, घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। तो दिल खोलकर भोले भंडारी की भक्ति में लीन हो जाइए और कीजिए मन की मुराद पूरी करने की फरियाद। इन उपायों को अपनाते हुए शिवजी की आराधना करने से प्रभु की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करने की। आगे हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार को किया जाने वाला एक अद्भुत महा उपाय। मान्यता है कि सावन के सोमवार पर महादेव स्वयं भक्तों के बीच आ जाते हैं। देखिए, माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं में सिर्फ भोलेनाथ ही सहज, सरल और सुलभ हैं। तभी तो वो बेलपत्र, धतूरे और जल के अर्पण से ही भक्तों की मनुहार सुन लेते हैं, अपनी कृपा लुटा देते हैं। लेकिन सावन मास में महादेव को प्रसन्न करने के कुछ नियम और सावधानियां भी हैं, तो आइए ऐसे में आपको बताते हैं शिव शंभु की आराधना का विधान।

0: सावन का सोमवार लेकर आएगा सुख और समृद्धि। महादेव की उपासना से होगी धन धान्य की वृद्धि। मनोकामना पूर्ति के लिए अद्भुत है सावन में किए जाने वाले प्रयोग। शिव कृपा से घर परिवार में बनेंगे खुशियों के योग। करुणा और दया के सागर हैं भगवान शिव। सावन में शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास है सोमवार। सोमवार को की गई शिव आराधना परम कल्याणकारी और मंगलकारी मानी गई है।
1: ओम नमः शिवाय जो मंत्र है पंचाक्षरी, इसमें ये सर्वोत्तम मंत्र है, या उसके बाद रुद्राष्टक जो कि सर्वजन के लिए सुलभ है, क्योंकि उसमें कहा गया है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, नीलकंठ प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो उनके बारे में कहा गया है आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। भगवान आशुतोष जी हैं समस्त प्रकार के आर्त को दूर करते हैं और जीवन में सदा मंगल करते हैं।
0: कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में उनका विशेष पूजन करना चाहिए, इसलिए शिव के भक्त अपने नाथ को मनाने में लग जाते हैं। लेकिन इस पूजा अर्चना के दौरान आपको भगवान शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीजों को अर्पण करना चाहिए, इससे आपको शीघ्र मिल सकती है शिव की कृपा। शीघ्र मिलेगी शिव कृपा। सावन में रोज 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। घर की परेशानी दूर करने के लिए सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इसके साथ ही गूगल धूप जलाएं। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए एक उपाय करें, सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। परम कल्याणकारी है सावन और मनोवांछित फल देने वाला है सावन का सोमवार। जिसने सावन में शिव की आराधना कर ली, यकीन मानिए उसके जीवन से सारी बाधाएं और सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सावन के इस पहले सोमवार पर भगवान शंकर की आराधना में कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। शिव उपासना की सावधानियां। भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना में टूटे चावल का इस्तेमाल वर्जित है। कहीं कहीं शिवलिंग पर काले तिल के अर्पण की मनाही भी बताई गई है। महाशिव को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव की पूजा में शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। अपरंपार है सावन के सोमवार की महिमा। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के साथ साथ पति की लंबी आयु की कामना भी पूर्ण करता है। तो इस सावन के पावन महीने में शिवजी की सच्चे मन से उपासना करें, वो आपकी हर विपदा दूर करेंगे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल।
4: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics. The hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
3: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
6: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था, बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
7: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
6: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
7: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
6: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच

0: वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत connection me.
3: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders. Sage University, transforming your passion into profession.
3: देश भर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, वाराणसी से लेकर सोमनाथ तक आस्था का मेला, श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे हैं महादेव का जलाभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह, केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण, मुंगेर से महाकाल की दिव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर, 30 सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा। महाराष्ट्र के नांदेड

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका सावन शिव और सोमवार, और आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार, सावन के महीने का पहला सोमवार। रौनक कैसी है पूरे देश में वो आगे देखिएगा। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं महादेव के दर्शन पूजन करने के लिए। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, काशी से लेकर हरिद्वार तक हर जगह पर महादेव के भक्तों की रौनक है। सावन में किस मुहूर्त में बरसेगी शिव की कृपा, आज हम खास मेहमानों से इसको लेकर चर्चा करेंगे, और किस महाउपाय से महादेव होंगे प्रसन्न, शिव पूजन से कैसे खुलेगा सौभाग्य का दरबार, महादेव कैसे बनाएंगे बिगड़े काम, भोलेनाथ के पूजन दर्शन का क्या है विधान, शिव का सावन से संबंध क्या है, इन तमाम पहलुओं पर आज होगी बात। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने धर्मगुरु और कथावाचक।

0: तो सावन का पहला सोमवार और हर शिव भक्त की बस एक ही कामना है कि महादेव का जल अभिषेक किया जाए, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की जाए। और यही वजह है कि देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और पूजा की थाली लिए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। अयोध्या के प्राचीन नागेश्वर मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प, भांग और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीरें देखिए, मुंबई के प्रसिद्ध बाबूलनाथ मंदिर में भी शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तों ने जलाभिषेक के साथ बाबा के दर्शन पूजन किए, सुख समृद्धि की कामना मांगी। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सावन का पहला सोमवार और कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पित किया और महादेव का अभिषेक किया। काशी विश्वनाथ धाम में भी शिव भक्तों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं।
1: सावन का पावन महा भोलेनाथ को अति प्रिय है, यही वजह है कि आज सावन के सोमवार के पहले दिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश और विदेश से शिव भक्त पहुंच रहे हैं, बल्कि परंपरानुसार जो स्थानीय यादव बंधु हैं वे भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सीधे गंगा स्नान करने के बाद यादव बंधु अपने पात्रों में जल लेकर बाबा के दरबार विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं जो सामान्य शिव भक्त हैं, आस्थावान हैं और साथ ही साथ कांवड़िया भी अपनी कांवड़ लेकर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन बाबा के दर्शन कर लेने से भक्तों की सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। मंगला आरती के बाद से ही बाबा के द्वार आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और अब से लेकर शयन आरती तक बाबा के दर्शन भक्त पा सकेंगे। और यही वजह है कि आज लाखों की भीड़ को देखते हुए कुल 6 द्वार प्रवेश और निकास के बनाए गए हैं। तो आज के इस महापर्व पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वे पूरे देश और दुनिया से पहुंच रहे हैं और पूरी की पूरी जो काशी नगरी है वह हर हर महादेव और बोलबम के उद्घोष के साथ गुंजायमान होती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।
0: तो देश भर के मंदिरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से आस्था का माहौल वहां नजर आ रहा है। आज सावन का पहला सोमवार है और भोलेनाथ का प्रिय महीना, जिसको हम सावन का महीना भी कहते हैं, और इसकी शुरुआत 30 जुलाई से हुई थी। ये सावन 28 अगस्त तक चलेगा और इस बार सावन में 4 सोमवार है। पहला सोमवार 3 अगस्त यानी कि आज का दिन, और फिर उसके बाद दूसरा सोमवार है 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त और फिर चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। ऐसे में दिल्ली, हरिद्वार समेत कई जगहों पर सावन के मेले भी लगे हैं, शिवधाम सज चुके हैं, कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है, साथ ही साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के भी अद्भुत रंग नजर आ रहे हैं। काशी से प्रयागराज तक शिव मंदिरों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ है और ये सब सावन के पहले सोमवार पर तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। कणकण में शिव हैं, रज रज में शिव हैं। पूरी बीच में भक्त और भगवान के पावन संबंध की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने यह तस्वीर बनाई है, रेत से महादेव की सुंदर आकृति बनाई है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ यहां महादेव संग सेल्फी भी ली जा रही है।

0: तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ, हमारे साथ इस वक्त आचार्य बद्रीषि महाराज हैं, हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी भी हैं, साथ ही साथ वाणी आर्या जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर नितिशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिव का पावन सावन और आज पहला सोमवार। वाणी जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी, किन मायनों में अगर हम ग्रह गोचर की बात करें कितना खास है ये सोमवार, किस तरीके से प्रभु की आराधना करनी चाहिए? तस्वीरें पूरे देश से आ रही है, अलग अलग जगहों से, तमाम ज्योतिर्लिंगों में कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है।
1: जी, थैंक यू नवजोत जी। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आपने कलर भी सावन से रिलेटेड ही पहना है, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। तो आज का ये जो दिन है ये बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत सारे जो है माँ संयोग भी जो है आज के दिन बने हुए हैं। अभी सुकर्मा योग बना हुआ है, आपका सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो भी साथ में जो बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है, तो इतने सारे ऑस्पिशियस जो योग हैं वो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। तो आज के दिन आप जल अभिषेक जो है जरूर कीजिए। भोलेनाथ हमारे बहुत ही ज्यादा भोले हैं, लेकिन कुछ कुछ नियमों का पालन अगर आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में तो ये सावन आपको आपकी जिंदगी में बहुत कुछ दे के जाएगा। सावन के टाइम पर जो है आप तीन ताली जो है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप तीन ताली जो है वो आप जरूर बजाएं, क्योंकि उसमें से जो तीनों तालियां होती हैं उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। जैसे पहला ये होता है कि हम अपनी लाइफ में अपना ईगो, अपना अहंकार और जो भी हमारे जीवन में नेगेटिव इमोशंस हैं हम उनको इस टाइम पर जो है त्यागते हैं, हम अपनी लाइफ से रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो होता है शिव की भक्ति और साधना के प्रति समर्पित जो होती है वो दूसरी ताली होती है, और तीसरी ताली जो होती है वो होती है सरेंडर की, पूरे विश्व की शांति की, हमारे परिवार की शांति की, और कई जगह इसको अटेंडेंस भी कहते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ के आगे अपनी अटेंडेंस जो है वो अपनी लाइफ में लगा रहे हैं। अब कावड़ भी चल रहा है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा कावड़ हमारी लाइफ में बैलेंसिंग का प्रतीक होता है। आप देखते हैं कावड़ में जो जल होता है वो दोनों तरफ होता है, जो बांस की लकड़ी होती है, तो यहाँ पर जो है हमारी लाइफ में बैलेंस, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और हमारी लाइफ में कठिन परिश्रम का जो होता है ये प्रतीक होता है। और जो वो जल नदियों से लाया जाता है कहीं ना कहीं जब वो भोलेनाथ पर चढ़ता है तो कहते हैं भोलेनाथ बहुत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो कावड़ का भी बहुत ज्यादा अपना इम्पोर्टेंस है। रावण ने भी जो है कावड़ किया था, श्रवण कुमार ने भी जो है वहां कावड़ किया था। तो इस टाइम पर भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं, आप उनको जल चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, आप जो है उनको भांग जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, आग के फूल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, सफेद मिठाई चढ़ा सकते हैं, आप उनको सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, गुलाब जल चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं, पंचमृत चढ़ा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर और गंगा जल से जो बना हुआ होता है ओम नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें और सावन से बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखें और रिलीज करें।
0: बिल्कुल, साथ ही साथ कहते हैं ना प्रकृति का ये पूरा महीना होता है तो नेचर के क्लोज जाने का भी मौका हमें मिलता है। पंडित प्रकाश, अब आपके पास आऊंगी। अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें तो आ रही हैं जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हम एक एक करके, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए एक एक करके ज्योतिर्लिंग का महत्व भी बताते जाइए। बात अगर सबसे पहले सोमनाथ की करें तो
2: देखिए, कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है और अगर सबके अलग अलग महत्व है। वैसे देखा जाए तो भोलेनाथ क्या है वो आपको समझना चाहिए। सावन पहला तो श्रवण का महीना है और कहा भी जाता है कि सावन के महीने में शिव भगवान धरा पे आते हैं और भक्तों को तरह तरह भांति भांति रूप में दर्शन भी देते हैं। इसलिए श्रवण में सुनना भी चाहिए और गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। अभी देखिए सावन के महीने में नाग पंचमी भी आएगी, हरतालिका तीज भी आएगी और ये सारी तीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सावन का जो महीना होता है, पहला तो मैं आपको बता दूं, वो सुनने का है। आपको श्रवण, आपको सुनना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हम भोले के बारे में अगर हम बात करें, शिव के बारे में बात करें, तो वहां पर अलग अलग विद्वानों ने, शास्त्री जी भी साथ में बैठे हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग महत्वता से भोलेनाथ को डिस्क्राइब किया है। यानी कि एक तरफ से अगर देखा जाए तो शिव जी को की तपस्या रावण ने की तो उन्होंने लिख दिया शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवि गला ज्वला प्रवाह पाविदस्तरे गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालकम डमट डमट डमट डमट निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुना शिवा शिव। ये इस तरह से डिस्क्राइब किया है किसने, रावण ने, और जो राम थे भगवान जी उन्होंने कराया, ओम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जा दुख विनाशक लिंगम तदपणमामि सदा शिवलिंगम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रावण ने भी अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, इसको शिव जी को। इसी प्रकार से देखा जाए तो राम भगवान ने भी अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। अब 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 अगर आप देखेंगे भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग, तो एक ही अक्षांश के अंदर, एक ही रेखांश के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है उनके अलग अलग महत्व। तो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है सोमेश, अगर आप जाते हैं सोमनाथ के अंदर जाते हैं, अभी मोदी जी भी हो गए हैं देखिएगा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए, और खासकर मैं ये जैन जी जो जो भी दुष्कर्म है, मानसिक तनाव है, उनको दूर करने के लिए आप जा सकते हैं। महाकालेश्वर में का जा सकते हैं। महाकालेश्वर में क्या है, महाकालेश्वर में आप देखेंगे महाकाल का जो है, जो महाकाल है, और आप पुराण पढ़ लीजिए, आप वेद पढ़ लीजिए, और एक कथा आप जैसे सोमवार व्रत कथा है ना, जैसे आज सोमवार है, तो
0: जी
2: उसमें भी आप पढ़ेंगे कि एक चीज आपको आएगी कि सब काल के निमित्त है। यानी कि भगवान राम एक समय पे क्षत्रिय राजा राम थे, एक समय पे वनवासी राम हुए, काल के निमित्त है। काल के जो निमित्त नहीं है वो कौन है, वो है महाकाल। हेलो,
0: जी जी जी पंडित प्रकाश सुन रही हूँ। काल के
2: जो
0: निमित्त जो
2: काल,
0: नहीं है वो है महाकाल।
2: हाँ, तो महाकाल की पूजा करनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके अलग अलग
0: बिल्कुल।
2: तरीके के वर्णन होते हैं, सबके अलग अलग वर्णन है। तो कुछ धन के लिए होते हैं, कुछ की आत्म शांति के लिए करने चाहिए। और शिव जी को कहा जाता है जो ना जो टूटे वो कंकड़, जो ना टूटे वो शिव शंकर।
0: जी जी
2: इसी
0: जी
2: के 12 ज्योतिर्लिंग आप चले जाए, सबसे पहला चीज ज्योतिर्लिंग के अंदर आपको सबसे पहली चीज ये पता चलती है कि आप आत्मा रम जाती है आपकी, आत्मा से आपको शांति मिलती है, और आपको आजीवन को निर्वाह करने के
0: बिल्कुल।
2: संचालन करने
0: चलिए मैं लौटती हूँ
2: का
0: आपके पास। बिल्कुल बद्री जी महाराज, आपके पास आऊंगी, फिर नितिशा जी के पास चलती हूँ। बद्री जी महाराज,
3: जी
0: बहुत अच्छी बात पंडित
3: जी
0: प्रकाश ने कही कि हर किसी ने शिव को अपने तरीके से देखा, अपने तरीके से साधना की है शिव की। क्या क्या कथाएं शास्त्रों में इसको लेकर मिलती हैं?
3: हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों के अगर देवताओं की दृष्टि से हम देखें तो भगवान विष्णु सत्व स्वरूप हैं, और ब्रह्मा जी महाराज रजोगुण के स्वरूप हैं, और भोले बाबा तमोगुण के स्वरूप हैं। तमस प्रधान शिव होते हुए भी इनमें सत्वगुण की मात्रा अधिक है। वो कैसे, क्योंकि तमोगुण का रंग श्याम वर्ण बताया गया है, तमोगुण का रंग काला है, और सतोगुण का रंग शुभ्र है, सतोगुण का रंग सफेद है। लेकिन सतोगुण के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, उनका हम यदि स्वरूप का दर्शन करें तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। तो भगवान श्री विष्णु का जो स्वरूप है सजल जलद नीलम है, जल से भरे हुए मेघ के समान वो श्याम वर्ण के हैं। जबकि यदि यदि वो सत्वगुण के प्रधान देव हैं तो उनका रंग गोरा होना चाहिए, उनका रंग शुभ्र होना चाहिए। भोले बाबा जो सत्वगुण की बजाय तमोगुण के स्वरूप हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो सत्व स्वरूप धारण कर रखा है। भोले बाबा के स्वरूप का यदि हम और आप दर्शन करते हैं तो कपूर जितने गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, और संसार के सार हैं और संसार के रोगों को दूर करने वाले हैं, संसार का संहार भी करने वाले हैं, लेकिन उनका स्वरूप बजाय तमोगुण प्रधान होने पर भी और शुभ्र स्वरूप है। तो वस्तुतः ये जो त्रिगुणातीत स्वरूप है भगवान भूत भावन भोलेनाथ का, शुभ्र होते हुए भी वो 3 गुणों से ऊपर है। और भोले बाबा के विषय में जितने भी तमोगुणी दैत्य हुए हैं, राक्षस हुए हैं, उन्होंने भोले बाबा की बड़ी बड़ी कठिन आराधना की है और भोले बाबा से बड़े उत्तम उत्तम वरदान प्राप्त किए, चाहे वो रावण हो, चाहे वो बाणासुर हो, चाहे वो बृकासुर हो। तो कथा की दृष्टि से नवजोत जी, हमारे यहाँ भागवत में कथा आती है कि एक बृकासुर नाम का दैत्य था, उसको मिल गए नारद जी, बोला गया गुरु जी मुझे कोई ऐसा देवता बता दो कि हमको जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देवे, जैसे आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि हम जल्दी करोड़पति हो जाएं, ऐसा कोई उपाय बता दो। नारद जी बोले भाई ऐसे देवता तो भोलेनाथ हैं, आंसू तुष्यति क्रुद्यति, जल्दी तुष्ट भी हो जाते हैं और जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, आप जाकर उनकी आराधना करो और आशुतोष तुम अवघरदानी है, वो जो चाहो वह वरदान तुम्हें सहज में दे देंगे। इन्होंने जाकर केदार क्षेत्र में इस वृक असुर ने तपस्या की और भूत भावन भोलेनाथ उसकी तपस्या को देखते रहे, लेकिन बहुत तपस्या करने पर भी भोले बाबा पिघले नहीं। तब उसने अपने शरीर का हवन करते हुए मांस का हवन शुरू कर दिया, शरीर के अंगों का हवन करते करते प्रतिदिन एक दिन जब वो अपने सिर को काट कर हवन करने तत्पर हुआ तब भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए। और वहां पर भागवत में वर्णन आता है कि भोले बाबा इसी प्रकार प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं यथा वयम चाग्नि रिबोध तो निलात, जैसे मैं अग्नि से उत्पन्न हुआ था। क्या चाहिए तुमको? भोले बाबा अकेले नहीं आए, उनके साथ में गौरी साथ में थी। बस उसने गौरी को देखा और गौरी हरण लालसा, उसके मन में गौरी के पार्वती के हरण की लालसा जागृत हो गई, परंतु उसने मन ही मन सोचा इस शिव के रहते तो ये पार्वती मिलेगी। तो उसने मन में विचार करके ऐसा वरदान मांगा कि मैं इसे बीच से हटा सकूं, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके हाथ सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। कहते ही वो तो भोले बाबा के माथे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, भोले बाबा नीचे को झुके आगे को भागे, आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे बृकासुर। बहुत परेशान होकर उन्होंने फिर भगवान का स्मरण किया, भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में आगे पहुंचे और उन्होंने जाकर भागते हुए बृकासुर को मामा जी संबोधन किया। अरे मामा जी मामा जी, उसने सुना नहीं, फिर द्वारा तिवारा कहा तो लौटा, बोले मैं आपसे ही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बोले आप ये दौड़ क्यों रहे हो? अरे बोले आगे आगे जा रहा है ना शिव, इसको भस्म करने जा रहा हूँ, आपके पास क्या है, कौन सा कोई वम है या कोई सी शक्ति है, क्या है आपके पास, कोई हीटर है आपके हाथ में? बोले नहीं, मुझे वरदान मिला हुआ है। किसने दिया है? बोले इसी ने। क्या वरदान दिया है? बोले इसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अरे लगता है वो तो पागल ही आप भी हो गए हो। बोले भांग दो। बोले नहीं, इसने रावण को वरदान दिया और इसने मैं बाणासुर को वरदान। बोले बहुत पुरानी बात थी वो, जब से दक्ष से इनका झगड़ा हुआ उसने इनको पागल करार कर दिया है, ये क्या वरदान देंगे? बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप स्वयं सोच लो, वरदान देने वाला क्या ऐसे भाग सकता है? इनका बात तो सही है। बोले ऐसा है, आप पहले परीक्षा ले लो, इसके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। कैसे लूं? बोले अपने सिर पे हाथ रख के देखो। बोले मैं भस्म हो जाऊंगा? बोले नहीं नहीं नहीं, दूर रखो, पहले देखो और गर्मी लगे हटा लेना, तो उसमें कोई हीटर या कोई गीजर तो चल नहीं रहा था, देखा आए नहीं नहीं अभी नहीं आई, और पास में अभी नहीं आई गर्मी। और ऐसा कहते कहते भगवान ने भरमा लिया, सिर पर हाथ रखते ही हिंसरा स्वपापेन विहिंसी दाखला साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। हिंसक लोग अपनी हिंसक वृत्ति से स्वयं अपने आप को भस्म कर लेते हैं। बोले बाबा तो कृपालु है, दयालु है, उन्होंने वरदान तो दे दिया लेकिन वही वरदान उस स्वयं के लिए भस्म करने वाला भस्मासुर साबित हुआ। तो इस प्रकार भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक लोटा जल से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार, डॉक्टर नितिशा आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। एक तो सावन की महिमा, सावन की इम्पोर्टेंस, उसके बारे में तो आपसे जानना ही चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, सावन के महीने में वहां दर्शन करने से कितना पुण्य मिलता है? मैं अगर स्पेसिफिकली सबसे पहले सोमनाथ की बात करूं।
4: थैंक यू नवजोत जी। और उमापति महादेव, हर हर महादेव, और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सावन वो पावन महीना है जिसमें सभी की मनोकामनाएं बहुत इजी रूप में पूरी होने लगती है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी खुशी के उच्चतम स्तर पर है। हर तरफ साफ सफाई, हर तरफ हरियाली बिखर चुकी है, और कुछ दिन और जैसे जैसे सावन आगे बढ़ेगा, प्रकृति अपने सबसे सौंदर्य रूप में आ जाएगी। तो जब प्रकृति इतनी खुश है तो मानव जीव जंतु कैसे खुशी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि हम भी सब भोले के भक्त हैं और भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते हैं। अब जैसे कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की बात हो रही है, उसको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम ज्योतिर्लिंग है और सोमनाथ के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर जो सती माँ की बहनें, जो 27 और बहनें, जो दक्ष प्रजापति की जो बेटियां हैं, उनसे जुड़ी एक कथा कि उनका जो विवाह हुआ है वो चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे, तो वो आकर्षण इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जो उनकी और 26 पत्नियां थी, उन्होंने जाकर अपने पिता से बोला कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे पति का पूरा भाव अपनी पत्नी रोहिणी के प्रति ज्यादा समर्पित है। तब उन्होंने उनसे बात की चंद्र देवता से, लेकिन चंद्र देवता के अंदर भी बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी रोहिणी जी को लेकर के। तब उनके पति ने, पिता ने उनको श्राप दिया कि आपका जो चमक है, आपकी जो गरिमा है, आकर्षण है, सुंदरता है, वो कहीं ना कहीं क्षय रोग में परिवर्तित हो जाए। जब चंद्र देवता को क्षय रोग प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे शिव जी की उपासना करी और 6 महीने तक एक टांग पर खड़े रहने के कारण और करोड़ बार महामृत्युंजय जप करने के कारण शिव जी प्रसन्न हुए, और जब शिव जी प्रसन्न हुए उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली और बाबा सोमनाथ जी ने वहां पे दर्शन दिए। वहां पे जो शिव के दर्शन हुए वो चंद्रदेव यानी सोमदेव की वजह से हुए, इसलिए उन्हें सोमदेव चंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। जब आपके कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी आपको आशीर्वाद देते हैं, जब आपको श्राप से मुक्ति मिलती है, जितने भी हमारे मानव रूप में जितने पाप हैं, जितनी भी जीवन में कठिन हम रूप में चले जाते हैं, पाप कर बैठते, किसी का दिल दुखा बैठते, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और शिव दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जब हम शिव दर्शन चाहते हैं तो हम बाबा सोमनाथ के दर्शन कर अपनी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण करते ही है, शिव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो शिव एक चेतना है, अगर हम भी अपनी चेतना को जागृत कर लें कि हमें शिव जैसा बनना है, हर बुरी चीज वो अपने अंदर अर्पित कर लेते हैं, चाहे वो भांग है, चाहे वो धतूरा है, चाहे वो हलाहल विष है, उन्होंने देवताओं के लिए या देवी शक्ति के लिए नहीं छोड़ा कि आप भी हैंडल कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जो भी प्रकृति के, जो भी जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो मनुष्य के लिए, जो देवताओं के लिए, जो जीव जंतुओं के लिए बुरी है, वो मैं लेता हूं और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। तो जब हमारे अंदर शिव की तरह भावना आ जाए कि जो भी बुरा है वो मैं अपने अंदर धारण करती हूँ और अपने कंठ में ही रहने देती हूँ, ना उसको अंदर उतारती हूँ ना उसको बाहर निकालती हूँ, तब हम शिव के समान हो पाएंगे। तो ऐसी चेतना जागृत करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मैं लौटूंगी एक बार वाना जी, मैं आपके पास आती हूँ। हम सभी लोग ये जानते हैं और आप लोग हमेशा बताते हैं कि भगवान शिव भोले हैं, एक लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता शिव को प्रसन्न करना। एक एक चीज जो शिव को अर्पित की जाती, जो शिवलिंग पे अर्पित की जाती, चाहे वो जल हो या फिर बेलपत्र हो, तमाम चीजें, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक एक करके अगर मैं सबसे पहले बेलपत्र की बात करूं तो। आपका ऑडियो म्यूट है वान्या जी।
1: थैंक यू नवजोत जी। यहाँ पर जो है हम बेलपत्र जो भी भोलेनाथ को चढ़ाते हैं उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। कहते हैं जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोले के 3 नेत्र होते हैं। दूसरी बात, ये जो बेलपत्र होता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ट्रिनिटी जिसे हम कहते हैं उसको भी जो है ये लाइफ में जो है दर्शाता है। तीसरी बात, ये माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली को जो है ये बेलपत्र उसको भी दर्शाता है। जो बेलपत्र का जो पेड़ था कहते हैं वो माता पार्वती के पसीने की ड्रॉप्स से बना था, स्वेट से बना था। तो जब भी हम वो चीज भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ओवरऑल अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखते हैं तो बेलपत्र जो होता है एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज सॉल्व करता है, ब्लड शुगर में जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जो पंच अमृत हम उनको चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए दूध दही घी शक्कर गंगा जल हर चीज की अपनी जो है वहां पर एक इम्पोर्टेंस आ जाती है। जब हम सफेद फूलों से श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ का, तो वहां कहते हैं कि वो जो फूलों की फ्रेग्रेंस होती है, जो महक होती है, जो मधुरता होती है, वो हमारे जीवन में और हमारी लाइफ में भी उसी तरह की मधुरता जो है वो फैलाती है। तो बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम चढ़ाते हैं, जो शहद हम उनको चढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो वहां पर जो है आप उनका नाम लेके और उनका ध्यान करके जो है आप भोलेनाथ को जो है शहद जो है वहां पर अर्पण कर सकते हैं। उनका जल अभिषेक जो है आप करते हैं, वो प्लेन वाटर जल होता है, लेकिन वो फिर भी इतने भोले हैं उसको ग्रहण करते हैं। इसमें जो है आप जब वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और वो अपने घर में छिड़कते हैं, तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है। कहते हैं भोलेनाथ को जो लोग देसी घी चढ़ाते हैं, जो गाय का घी जो होता है वो चढ़ाते हैं, तो उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को जो है डिनोट करता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। इसके अलावा जब आप वहां पर रोज वाटर चढ़ाते हैं, जब आप वहां पर गुलाब जल चढ़ाते हैं, तो वो भी भोलेनाथ को जो है बहुत ज्यादा प्रिय होता है। जब आप वहां पर उनको धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अक्षत जो होते हैं खंडित नहीं होने चाहिए, बेलपत्र भी आपके खंडित नहीं होने चाहिए, अक्षत ना प्रॉस्पेरिटी को जो है आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है। अक्षत जो है मल्टीप्लाई होता है आपके जीवन में, आपकी जो मनी रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस आ रही होती है आपकी लाइफ में, अक्षत से जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। माँ लक्ष्मी को भी जो है अक्षत जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब भी आप जाते हैं वहां पर, तो आप प्लीज वहां पर 2 मिनट बैठकर अपना जो है ओम नमः शिवाय का जाप पूरा करें, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो आप वहीं बैठे, अगर मंदिर में भीड़ भी है तो बाहर बैठ के अपना जाप पूरा करें और अपने बेलपत्र पर जय श्री राम जो है जरूर लिखें, क्योंकि वो भोलेनाथ के आराध्य।
0: चलिए इसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सावन और सावन का पहला सोमवार कितना अहम है, कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।

0: TuneIn Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सावन शिव और सोमवार, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं और देश भर से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमाम ज्योतिर्लिंग में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, कांवड़ यात्रा के रंग भी आपको दिखा रहे हैं। पंडित प्रकाश, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। चार सोमवार इस बार है सावन के महीने में, सोमवार के उपवास का क्या विधान बताया गया है शास्त्रों में और कितना अहम होता है ये?
1: देखिए, सबसे पहले मैं चार सोमवार के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला सोमवार 3 अगस्त को, जैसे आप जानते ही हैं। दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ने वाला है। तीसरा जो सोमवार है वो 17 अगस्त को, और चौथा सोमवार जो पड़ेगा वो 24 अगस्त को पड़ेगा। अब क्या है कि चार सोमवार के अंदर आपको क्या क्या विधान करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सोमवार के व्रत सिर्फ शादी के लिए, विवाह के लिए ही नहीं, बल्कि मन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है और गंगा भी उनके जटाओं से निकलती है। तो इसका मतलब, पहला तो शिव पुराण के अंदर एक चीज लिखी है, जल ही जीवन है। तो आप क्या है कि पूरे सावन के महीने में और सोमवार में शिव जी को तो जल देते ही देते हैं, साथ ही साथ वहां के जो वृक्ष हैं, वृक्षों को भी आप जल दे सकते हैं। पहली चीज ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो है शिव जी को जल, शिवलिंग पे जल तो चढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चार सोमवार में वृक्षों पे जल भी चढ़ाएं, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि साक्षात जल में भी शिव ही वास करते हैं। पहली चीज ही हो गई। अब चार सोमवार के नियम के बारे में अगर हम बात करें, तो चार सोमवार के अगर आपको सुबह जल्दी उठने के बाद, यानी प्रातः उठने के बाद सबसे पहला जो काम करना चाहिए, सबसे पहले स्नान आदि के कार्य से निवृत्त व्यक्ति को हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ रंग का कपड़ा व्यक्ति को धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। सोमवार को सबसे पहले मंदिर की आप सफाई करें और लकड़ी की चौकी ले लें। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र या गेरुआ वस्त्र बिछा के शिव जी को स्थापित करें। यदि आप गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, यानी आपकी पति पत्नी बीवी बच्चे हैं, तो आपको शिव परिवार की पूजन करना चाहिए। यदि आप साधु संन्यासी हैं या घोर पंथ में हैं, तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये करना चाहिए। और सबसे पहला चीज आपको, जब भी आप उसमें कुछ पंचामृत आपको बना लेना चाहिए। एक तो दूध लेना चाहिए, दूध आप ले लीजिएगा। दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद शिव जी पे अगर आप चढ़ाते हैं तो अतिउत्तम रहता है। आपको एक घी लेना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सफेद तिल लेना चाहिए। आपकी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनकी विवाह शादी नहीं हो पा रही है, वो जल के अंदर दूध डालें। दूध के अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना है कि सफेद तिल, एक मुट्ठी सफेद तिल डाल के आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं सोमवार के, चारों सोमवार में व्रत करते हैं, व्रत के अंदर खट्टा नहीं खाया जाता, शिव जी की कथा पढ़ी जाती है, शाम के समय पे शिव पार्वती जी की आरती की जाती है, और पास के अगर शिवलिंग पे अगर जा पाए तो अच्छा है, नहीं तो अपने घर के अंदर ये जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे आप, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो जल के अंदर सफेद तिल डाल के आप चढ़ा दीजिए। यदि आपकी बीमारियां घर के अंदर ज्यादा है तो घी को आयुष वर्धक माना जाता है, तो आपको क्या करना, घी को थोड़ा गर्म करके उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल के, थोड़ा सा जौ डालकर शिव जी का घी से भी अभिषेक किया जाता है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अपने खुद के उसमें कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप घर खुद के शिवलिंग पे ना कर पाए तो पड़ोस में जो मंदिर है उसमें शिवलिंग है वहां आपको घृत से अभिषेक करना चाहिए, तो उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको धन में वृद्धि चाहिए, तो धन में बरकत का में अगर आपको चाहिए, तो आपको या तो गन्ने का रस चाहिए या आपको शहद चाहिए। तो गन्ने का रस और शहद दोनों के दोनों चीजें मीठी होती हैं, और मीठे पे आप देखते हैं कि दुनिया जहान की चीजें चिपटती हैं, तो इसलिए आपको क्या है कि धन की अगर बरकत आपको चाहिए तो आपके पास या तो शहद होना चाहिए या आपके पास गन्ने का रस। तो गन्ने का रस में थोड़ा सा जल मिला के आप क्या है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोमवार को आप चारों सोमवार या पहला सोमवार या लास्ट सोमवार को भी कर सकते हैं, तो आप या पूरे सावन के सोमवार या सावन, पूरे सावन के महीने में शिव जी पे आप चढ़ा सकते हैं, अभिषेक आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि धन में बरकत के लिए ये आप कर सकते हैं, और जैसे आपको षड्यंत्र से मुक्ति चाहिए, कोई षड्यंत्र कोई है, कोई कोर्ट केस से मुक्ति चाहिए, तो धतूरा चढ़ाया जाता है, तो ऐसे आपको आपको धतूरा जो होता है ना, धतूर फल, वो आपको चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। और मैं आपको नवजोत जी एक चीज और बताऊं, शिव मात्र ऐसे ही देव हैं जिनकी मानस पूजा भी होती है। यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने आप बेड पे हैं, आप किसी कारण से कुछ चीज चढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप कुछ बीमार हैं, तो आप मानस पूजा कर लीजिए। मानस पूजा अगर आप कर लेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि शिव जी की में कहा जाता है और एक मानस पूजा में लिखा है कि हर चीज चढ़ा के आपने देख लिया, एक बार संकल्प भी चढ़ा के देख लें, संकल्प भी चढ़ा के देखें, मन का संकल्प करें कि मैं कोई अहिंसा नहीं करूंगा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा, एक बार आप संकल्प चढ़ा के देखें, शिवजी वरदान देंगे ही देंगे।
0: बिल्कुल, चले लौटूंगी। बद्री जी महाराज आपके पास आऊंगी, एक छोटी सी कथा जो शास्त्रों में बताई गई है सावन और शिव को लेकर।
2: हाँ जी, भोले बाबा की इतनी छोटी छोटी और महत्वपूर्ण और भावपूर्ण घटनाएं कहो, कथाएं कहो, उनकी कृपाएं कहो, उनका कोई पारावार नहीं। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ने जब सती महारानी पधारी और सती महारानी ने वहां अपने प्रियतम पति का भाग यज्ञ में नहीं देखा अपने पिता के यज्ञ में, तो वह भीतर ही भीतर बहुत ही दुखी हो गई। उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि जो अपनी छोटी बेटी से बेतहासा प्रेम करने वाले पिता इतने निष्ठुर हो जाएंगे कि यज्ञ में उनके पति को भाग भी नहीं देंगे। और उसका कारण पहले हो चुका था कि भोले बाबा के साथ उन्होंने केवल नमन न करने के कारण बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया था, बतंडावाद खड़ा किया था, यहाँ तक कि भोले बाबा को शाप भी दे दिया था। लेकिन जब सती महारानी ने देखा तो उन्होंने देवताओं को यही कहा, आप लोग क्या ये नहीं जानते कि उनके केवल दो अक्षर का जो नाम है शिव, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, यद्वयक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगर आसु हंति तक, अगर दो अक्षर का नाम कोई ले लेता है उसके सारे पाप जितने भी जीवन के जन्म जन्मांतरों के वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भोले बाबा के प्रति आपको इस प्रकार की निष्ठुरता और उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, इस जगह में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। और उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण तत्व को शिव तत्व में विलीन कर दिया था। तो भाई जो घटना घटी अपने आप में बड़ी अद्भुत, उसको लेकर के भोले बाबा सती के पार्थिव देह को सारे भूमंडल में भ्रमण करते रहे और बीच बीच में जहां जहां पर सती महारानी के अंगों का पतन हुआ वो विशेष करके बामन शक्ति पीठों के रूप में आज हमारे द्वारा जाने जाते हैं। और शक्ति की उपासना का सर्वाधिक विविध रूप में जो संपूर्ण भारतवर्ष में भूमंडल पर धरती पर जो प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, भावनाएं हुई, उनके द्वारा मनोकामनाएं हुई, आज उनका बहुत विस्तार हुआ और वो बड़ी व्यापक और विस्तृत कथा रही। के बाद में भूत भावन भोलेनाथ ने फिर पुनः जब सती का पार्वती के रूप में अवतरण हुआ और पार्वती ने बहुत कठिन बहुत करोड़ों वर्षों तक कछ दिन भोजन बारी बतासा और कछ दिन किए कठिन उपवासा, बेल पात में परे सुखाई और सहस सहस संबत सुखाई, उन्होंने बेल पत्र नीचे गिरे हुए सूखे खाका करके तपस्या की और मुनियों के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर, नारद जी के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर भी उन्होंने शिव तत्व को ही प्राप्त किया
0: जी।
2: तो भोले बाबा का जो अपना जीवन काल है वह संपूर्ण जीवन काल तपस्वी के रूप में, एक त्यागी के रूप में, एक विरक्त के रूप में, एक भजनानंदी के रूप में, एक भक्त के रूप में, भोले बाबा का जो दिव्य स्वरूप है हस्तेक्ष माला, हाथ में जिनके रुद्राक्ष की माला सदैव विद्यमान रहती है, हृदय कृष्ण तत्व जिनके हृदय में सदैव कृष्ण तत्व विद्यमान रहता है और जिनके मस्तक पर हमेशा भगवान के चरणों की जो निकली हुई गंगा है, जनमस्तके केशव पाद मूलम और ऐसे शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे परम भागवत भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उन अनंत कथाओं को, अनंत लीलाओं को, उनकी अनंत कृपाओं को आज हम श्रावण के
0: बिल्कुल बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार, नितिशा जी को जल्दी से इंक्लूड कर लेते हैं। हमने ज्योतिर्लिंग की चर्चा यहां पर की, सोमनाथ की बात की, जल्दी से नितिशा जी महिमा अगर हम महाकाल की मैं कहूं कि हमारे दर्शकों के लिए बताइए।
3: जी पहली, दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो श्री शैलम है, फिर मैं महाकाल पे भी आऊंगी। श्री शैलम महादेव वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये गणेश जी और कार्तिक जी की कथा से जुड़ा हुआ है। यानी गणेश जी और कार्तिक जी में बड़े होने पर एक द्वंद्व हुआ कि कौन पहले है, कौन सर्वश्रेष्ठ है और किसका विवाह पहले होना चाहिए। तब माँ पार्वती और शिव जी ने उनसे कहा कि जो जीत जाएगा उसी का विवाह सबसे पहले हुआ और वो ही सबसे समझदार होगा। तब उन्हें बोला गया कि पूरी पृथ्वी के चार चक्कर लगा करके जो मेरे पास माता पिता के पास पहले आ जाएगा वही सर्वश्रेष्ठ है। तब गणेश जी की सवारी चूहा मूषकराज और कार्तिक जी की सवारी जो है वो मयूर यानी मोर है, तो उनकी जो रेस है वो शुरू हुई और गणेश जी जो बुद्धिमता के देवता है, माँ पार्वती के उपटन से बने हुए हैं, उन्होंने अपने मूषक पर सवार होकर के अपने जो माता स्वरूप माँ पार्वती और पिता स्वरूप शंकर जी के चार चक्र यानी परिक्रमा को पूर्ण किया। और यही कार्तिकेय जी जो शिव के अंश से बने हैं, जो छह कृतिकाओं ने जिनका लालन पोषण किया, वो पूरी पृथ्वी की जो घूमने चले गए, उनको संरचना को पूरी करने चले गए। तब गणेश जी का जो सबसे पहले परिक्रमा जो उन्होंने पूरी की थी, तब उनके माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रथमतः आप हैं, आज से प्रथम देव के रूप में आप पूजे जाएंगे। जब कार्तिकी जी ने आके देखा तो गणेश जी की पूजन भी हो चुका था और विवाह भी हो चुका था। उनका विवाह जो हुआ वो प्रजापति विश्व रूपा की पुत्रियां जो रिद्धि माँ और सिद्धि माँ के रूप में है उनके साथ हुआ। तो कार्तिकेय जी रुष्ट हो गए, तब माँ पार्वती जी ने उन्हें आंध्र प्रदेश श्री शैलम में निवास करने को बोला। तब कार्तिकेय जी ने श्री शैलम में निवास किया। माँ पार्वती और शिव जी जब उनसे कुछ वर्षों के बाद मिलने आए तो माँ पार्वती का एक रूप मल्लिका और शिव जी का एक नाम अर्जुन, मल्लिका अर्जुन के रूप में ये शिवलिंग स्थापित हुआ। और आज भी जो इंसान अपने क्रोध को अपने अहंकार को समाप्त करने वहां जाता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और जब जीवन में हमें ब्लॉकेजेस आती है, हमें समझ नहीं आता कि हम प्रमोशन कैसे ले, नौकरी में कैसे आगे बढ़े, तो मल्लिका अर्जुन जिसे दक्षिण का हिमालय भी कहा गया है वहां जाकर आप मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हैं। अब महाकाल की बात कर लेते हैं। महाकाल ये तीसरे ज्योतिर्लिंग के नाम से इनकी स्थापना हुई और ये राजा चंद्रसेन कथा से जुड़ी हुई है। राजा चंद्रसेन कथा, राजा चंद्रसेन बहुत ज्यादा भक्ति में लीन थे। तब एक राक्षस ने उस जो अवंतिका नगरी थी, उज्जैन नगरी, वहां पे आक्रमण कर दिया। तो सभी ऋषि मुनि प्रभावित हुए उस आक्रमण से, उनकी तपस्या भंग होने लगी, पूजा भंग होने लगी और अवंतिका जो उज्जैन नगरी थी वहां पे हाहाकार फैल गया। तब चंद्रसेन की और ऋषियों की तपस्या से महाकाल यानी मृत्यु को हरने वाले, मृत्यु के कालों के काल महाकाल जब उत्पन्न हुए और उन्होंने ऋषियों की अपने भक्तों के प्रोटेक्शन के रूप में काल के रूप में उस राक्षस का काल बुलाया, इसीलिए देवताओं ने ऋषि मुनियों ने उन्हें महाकाल कहा। और कहा जाता है कि महाकाल उज्जैन नगरी में राजा ही वही है, इसलिए यहाँ का कोई राजा नहीं है। तो चंद्रसेन ने उनको अपना राजा माना और वहां के जो भक्त है, ऋषि मुनि है, देवता है, और जो उज्जैन नगरी है वो पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का नाभि भी कहा जाता है। इसलिए उज्जैन में जो भी जितनी भी कष्ट है आपके, अगर आप शिव जी को अर्पित कर देते हैं अपनी, उनको सुनाते हैं कि प्रभु मेरे साथ ये कष्ट जुड़े हैं, ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, आपकी वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो महाकाल जाएं और एक बार देखें कि वहां की ऊर्जा नवजोत जी इतनी प्रभावित करती है। आप भी गई होंगी, आपने भी देखा होगा, मतलब आपको लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे आसपास है और सभी आपके कष्ट बहुत जल्दी दूर होने लगते हैं। जो महाकाल गया मुझे लगता है 3 से 3.25 महीने में उनके सभी कष्ट दूर हुए। जय महाकाल।
0: बिल्कुल, अब वक्त की कमी है लेकिन चलते चलते, क्योंकि देखिए सावन का महीना है और आज सोमवार का पहला सोमवार है, सोमवार का दिन है, और सावन सोमवार क्या महत्व है वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन हमारी जेंजी के लिए वान्या जी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि उनको हर चीज प्रैक्टिकली समझानी पड़ती है कि इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, उनके लिए क्या कहेंगी?
4: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवजोत जी। साइंटिफिकली सावन का जो मतलब होता है वो ग्रोथ का होता है, क्योंकि इस टाइम पर एयर में जो है एयरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वाटरबॉर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सावन ग्रोथ का, सावन का मतलब है ग्रोथ नेचर, बिकॉज नेचर मल्टीप्लाइज एवरी स्मॉल थिंग इन दिस यूनिवर्स। और ये जो है यहाँ पर जो नदियां हैं उनको तृप्ति मिलती है, जो पेड़ पौधे हैं उनको तृप्ति मिलती है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और ये जो टाइम होता है ये रीबर्थ का टाइम होता है, री इनकारनेशन का टाइम होता है, रिन्यूअल का टाइम होता है, क्योंकि हर चीज जो पेड़ पौधे जो है आपके जून और जुलाई में जो है सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो हरे भरे हो जाते हैं। और हरा रंग जो है हमें हमारे जीवन में कामनेस देता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और नेचर हमें जो है बहुत कामनेस देती है, हमारे स्ट्रेस एंग्जाइटी को जो है नेचर बहुत ज्यादा जो है पीस देती है। आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज है जो आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सो आई फील दिस इज द बेस्ट टाइम। इस टाइम पर क्योंकि आप हर चीज को स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे टैरो में डेथ का कार्ड भी होता है, तो जीरो इज सिंबलाइजेज रिन्यूअल, रीबर्थ। तो कोई भी चीज है अगर आपकी लाइफ में आपसे नहीं हो पाई, आप फेलियर के पास आ गए, तो आप फिर से उसको रीस्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि इस टाइम पर आपकी चीजें जरूर मल्टीप्लाई होंगी। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और एक अच्छे गुड लिसनर बने, जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत अच्छा होगा। आपकी लाइफ में सावन की एक्चुअली ट्रू इम्पोर्टेंस जो है आपको जो है पता लगेगी। और इस टाइम पर पानी को जो है आप बहुत ज्यादा पीजिए, बिकॉज अपना वाटर एलिमेंट जब आपका बैलेंस रहता है तो आपकी लाइफ में आपके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बैलेंस रहते हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल कंट्रोल को जो है आप लूज नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की, प्रकृति की इस टाइम पर सेवा कीजिए और थोड़ा सा अपना टाइम आप नेचर में स्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइफ में नेचर इज द बेस्ट हीलर इन दिस वर्ल्ड।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और चलते चलते आपको बता दें कि सावन के तमाम रंग आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम दिखाते रहेंगे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक के जन्म शताब्दी समारोह का औपचारिक आगाज दिल्ली के पीएचई हाउस में हुआ। राष्ट्रीय सार्वजनिक माटी न्यास की ओर से आयोजित इस साल भर चलने वाले समारोह में साहित्य, संस्कृति और शिक्षा जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। महाभारत के कालजयी डायलॉग से लेकर आधा गांव, टोपी शुक्ला और कटरा बी आरजू जैसे उपन्यासों के लेखक राही मासूम रजा को वक्ताओं ने उनकी इंसानियत, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के लिए नमन किया। इस मौके पर साल भर आयोजित होने वाले साहित्य, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई। बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है, कभी हल्की धूप निकलती है तो कभी आसमान में बादलों का पहरा नजर आता है। हालांकि उम्मीद यही है कि ऐसा मौसम इस हफ्ते रहने वाला है, तो वहीं पूरे देश की अगर बात करें तो बादल जमकर बरस रहे हैं।

0: रिमझिम बारिश, कभी बादलों के बीच से निकलती धूप, बादलों की आवाजाही के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलती रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम सुहावना बना रहेगा। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश दिनों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण भीषण गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलते रहने की संभावना है। कुल मिलाकर दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए आने वाले सप्ताह का मौसम राहत भरा रहने वाला है। अलनीनो के बावजूद मॉनसून भारत में झूमकर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 6 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार और ओडिशा में 5 अगस्त के दौरान भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से मॉनसून लगातार मजबूत बना हुआ है, जिससे देश के करीब करीब हर इलाके में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने केरल और गुजरात के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अत्यधिक सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आईएमडी के अनुसार केरल के अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुकी, कोटायम और पथानम थिट्टा जिलों में गरज चमक के साथ लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की दर से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाद, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महसाणा, मोरबी, पाटन, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और वडोदरा समेत कई जिलों में भी इसी प्रकार का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नंदुरबार और असम के कछार, जोरहाट और लखीमपुर जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। महीना सावन का दिन सोमवार, तो कहते हैं कि शिव की कृपा बरसती है और यही वजह है कि आज मंदिरों में भगवान के जलाभिषेक के लिए तांता लगा हुआ है। सुबह से हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सावन के रंग भी दिखा रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए, कांवड़िए किस तरीके से निकल चुके हैं हरिद्वार तक गंगा जल लेने के लिए, अलग अलग तस्वीरें कांवड़ यात्रा के तमाम रंग आज चाय पर चर्चा में।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, एक और मंदिरों में भोले की जय जयकार हो रही है, तो वहीं शिव भक्त कांवड़ की कठिन साधना भी कर रहे हैं। ये साधना केवल शिव को साधने भर की नहीं है, बल्कि भक्ति के साथ संदेश देने की भी है। तो कैसे भक्ति संग निकली है संदेशों की झांकी, ये भी आज आपको दिखाएंगे।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आगे बात कॉमनवेल्थ गेम्स की भी करेंगे, जिसका समापन भले ही हो गया हो, लेकिन इस बार में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की नारी शक्ति का नया शंखनाद हुआ है, तो कैसे ग्लासगो में इस भार छा गई है भारत की बेटियां, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: देश भर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, वाराणसी से लेकर सोमनाथ तक आस्था का मेला, श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे महादेव का जलाभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह, केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण, मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। चीन के चाका सॉल्ट लेक में दिखा अनोखा नजारा, एक साथ नजर आया सूरज, चांद, ट्रेन और पवन चक्कियां, मिरर ऑफ द स्काई बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र।

0: चलिए हमारी चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात सावन महीने की ही करेंगे। देखिए सावन महीने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन सावन का आज पहला सोमवार है, जो कि कहते हैं कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय माना जाता है आज का दिन। और आज का दिन विशेष है, इसलिए मंदिरों में सुबह से शिवालयों में आप देख रहे होंगे कि भक्तों का तांता लगा है, जलाभिषेक वहां पर हो रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मान्यता,
1: बिल्कुल
0: व्रत रखा है।
1: बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस बार मैं व्रत रखूंगी। और सुबह जब मैं मंदिर गई, वो जो मंदिर वाली वाइब्स थी ना, कि भीड़ होती है, शिव जी को आप जल अर्पण करते हैं, लोग वहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे होते, तो बड़ा आनंद मिलता है।
2: आज तो काफी वहाँ पे भीड़ भी होगी, क्योंकि
1: काफी भीड़,
2: कांवड़िए भी आज शुरू हो चुका है ना जलाभिषेक करने के लिए,
1: काफी लोग,
2: काफी पहले से यात्रा की शुरुआत हो गई थी।
0: बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको आइए हम दिखाते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर बद्रीनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और भी दूसरे जगहों की, अयोध्या की तस्वीरें, मुजफ्फरपुर की, मथुरा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ति भाव से पुरी के, ओडिशा के पुरी में भी आप देख सकते हैं किस तरह से शिवालयों में लंबी लंबी

0: कतारें लगी हुई है यहाँ पर शिव भक्तों की, और कावड़ भी जो है कावड़िए वो जल भरकर अपने गंतव्य तक आगे जा रहे हैं। कई कावड़ियों का उद्देश्य होता है कि पहले सोमवार के दिन ही जल चढ़ा देना, जल अर्पित करना भोले शंकर को, तो वो उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दीपिका
1: बिल्कुल, देखिए सोमवार पहला सोमवार है और इसी के चलते लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं। साथ ही बद्रीनाथ, अयोध्या, दिल्ली, झांसी, मुजफ्फरपुर, बाराबंकी, मधेपुरा से लेकर पुरी तक देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहे हैं। हर शहर में भक्ति और आस्था का अनोखा रंग दिखाई दे रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये तस्वीरें शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण की गवाही दे रही है।
0: तो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, देश भर में सावन के पहले सोमवार पर आस्था अपने चरम पर है। हर शिवालय में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और यही दिव्य नजारा भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही चाहे वो गुजरात का सोमनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकालेश्वर, देवघर के बैद्यनाथ धाम या वाराणसी में काशी विश्वनाथ की बात करें तो हर जगह पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं।
1: और देखिए वही महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर समेत देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र, पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही प्रार्थना गूंज रही है, महादेव सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखें।
0: तो सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन पूरी तरह से शिवमय नजर आई। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले बाबा महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद चंदन, भस्म, फूलों और आभूषणों से बाबा का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दिव्य दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा वहां था और वो उन्हें देखकर भाव विभोर हो गए।
1: और देखिए श्रृंगार के बाद हुई मंगला आरती ने पूरे महाकाल मंदिर को भक्ति के रंग में रंग दिया है। दीपों की जगमगाहट, शंखनाद और घंटा घड़ियाल की गूंज से पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सावन के पहले सोमवार पर देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपने परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।
0: चलिए आस्था के कुछ और रंग आपको दिखाते हैं, सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज। आस्था का सबसे खूबसूरत रंग यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रयागराज के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में मान्यता यह है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा और जलाभिषेक से भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं और ये वजह है कि बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है।
1: हर हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालु भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है तो कोई भांग, धतूरा, धूप और पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि और मंगल की कामना कर रहा है। सावन के पहले सोमवार पर मन कामेश्वर मंदिर पूरी तरह से शिव भक्ति और श्रद्धा के रंग में नजर आ रहा है।
2: जी यहाँ पे हम लोग शिव भगवान के दर्शन करने आए हैं। यह प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पे शिव जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं और हम भी उसी आस में आए हैं। यहाँ पे
3: एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलाहाबाद में रह के, तो हमारी यही कामना है कि हमें नौकरी मिल जाए जल्दी से।
4: सावन का महीना चल रहा है और सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आए हैं। हम इस वक्त संगम के मनकामेश्वर मंदिर में है जहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगी हुई है और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो जल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथों में बेलपत्र और दूध, धतूरा और तमाम जो भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय चीज़ें हैं वो चढ़ा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं और जो भक्त हैं यहाँ पर, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आई हैं आज भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, आज पहला सोमवार है, क्या
5: दर्शन करने हैं? सबको आना चाहिए, बाबा को जल चढ़ाने मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए सभी को आना चाहिए।
4: ये मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है,
5: हमारी पूर्ण हुई है।
4: जल चढ़ा रहे हैं, क्या कामना कर रही है भगवान से?
5: सबको अच्छे से रखे, सबको खुश रखे।
4: आप भी यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, क्या कामना कर रहे हैं भोलेनाथ से?
6: कामना यही है सब सुख शांति बनी रहे, सबका जीवन अच्छा चले, माला भी चले साथ में।
4: सावन का जो सोमवार है प्रयागराज में, इस शिव मंदिर में जो मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिल रही है। और ये कहा जाता है ये स्वयंभू शिवलिंग है और भगवान भोलेनाथ यहाँ पर खुद विराजमान हुए थे और यहाँ भगवान राम ने भी पूजा की थी। आप देख सकते हैं जो ये गर्भगृह है, यहाँ पर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है यहाँ पर सभी भक्त पूजा कर रहे हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, तो सभी महिलाएं पुरुष अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और सावन का आज पहला सोमवार है। तो हाथों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हाथों में इनके फूल है और धतूरा है, हाथों में दूध है और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ सभी भक्त पधारे हुए हैं। तो प्रयागराज में इस मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ है वो लगी हुई है। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, शुभ।
0: तो ये तस्वीरें आप प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के देख रहे थे। कहते हैं कि मनकामेश्वर नाम ही ऐसा है कि मन में आपकी जो भी कामना हो वो पूरी यहाँ पे भगवान पूरी कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे थे हर किसी के हाथ में जो भी था, जो वो लेकर थाली आए थे या पुष्प, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, भांग है, धतूरा है, पुष्प है, दूध है और फिर जल है, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत जतन या मेहनत नहीं करनी पड़ती।
1: और बड़ी छोटी, जैसे भांग धतूरा का इस्तेमाल किसी भी चीज में नहीं किया जाता होगा लेकिन भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। आपको बहुत कोई मेहनत नहीं करनी है उनको प्रसन्न करने के लिए। मैं भी आज वही चढ़ा कर आई हूं।
7: अगर कुछ नहीं है तो आप
1: एक लोटा जल चढ़ा दीजिए,
7: प्रसन्न हो जाए।
0: क्या बात है, बताइए, इससे भोला है और कौन हो सकता है भोलेनाथ से। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हम गुलाबी नगरी जयपुर और यहाँ सावन के पहले सोमवार पर तारकेश्वर नाथ मंदिर में भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे मंदिर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया है। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और हर तरफ सिर्फ हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं।
1: और देखिए, जयपुर का तारकेश्वर नाथ मंदिर शहर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में गिना जाता है। सावन के पूरे महीने यहाँ भक्तों का ऐसा ही जन सैलाब उमड़ता है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं।
8: बोले हर हर महादेव, यही जो जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं क्योंकि पर्व है आज सावन के पहले सोमवार का। और जयपुर के तारकेश्वर महादेव में मैं भी खड़ी हूँ जहाँ मैं दिखाती हूँ किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर एक भक्त सुबह से यहाँ पे इंतज़ार में है कि कब बाबा भोले उनको दर्शन देंगे और वैसे ही यहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई है। अभी से ही नहीं, तड़के 3 बजे से यहाँ पे भक्तों की कतारें जो है वो लगना शुरू हो जाती है और ये भक्तों की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पे श्रृंगार बाबा भोले का किया हुआ है जहाँ पे अशोक के पत्ते और कई अलग अलग फूलों से जो श्रृंगार किया हुआ है वो नजर आ रहा है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है क्योंकि ये जो श्रृंगार है ये हर सुबह अलग होता है, हर शाम अलग होता है। सुबह का जो श्रृंगार है वो जहाँ फूलों से नजर आता है वहीं जो हर शाम का श्रृंगार है वो अलग अलग थीम्स पे यहाँ पे होता है। जहाँ सावन के पहले दिन महाकाल की थीम देखने को मिली, वहीं आज सावन के पहले सोमवार बाबा जगन्नाथ की थीम पे भव्य श्रृंगार होगा। दूसरी ओर मैं दिखाती हूँ सावन के पहले दिन का जोश जो है यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ भगवान महादेव तक पहुँचाई जा रही है। जोश और उत्साह यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय पर देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों में जो भक्त खड़े हैं वो इस पल को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि सावन का जो पहला दिन है उसकी एनर्जी पूरे मंदिर में देखने को मिल रही है। मैं एक बार फिर वापस से भक्तों की जो लाइफ है वो दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे हाथ में जल लिए, बेलपत्र धतूरा लिए हर कोई इंतजार कर रहा है अपना नंबर आने का, महादेव का
7: चलिए अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां भी मशहूर बाबूलनाथ मंदिर की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, जहां सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही मंदिर के बाहर शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं।
1: और देखिए, भीड़ का आलम ऐसा है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो बाबूलनाथ मंदिर में हर दिन हजारों भक्त आते हैं, लेकिन सावन में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार पहुंच जाती है। ऐसे में पूरा मंदिर शिव भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।
9: ओम नमः पार्वती पतये, हर हर हर महादेव। श्रावण का पहला सोमवार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के बाबूलनाथ मंदिर में, जहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए बाबा का दरबार खुल गया है। आपको बता दें कि हर कोई शंकर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहा है। घंटों कतार में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी एक कोशिश हम भी करते हैं कि आप भी बाबूलनाथ बाबा का दर्शन कर लें। देखिए, श्रावण का सोमवार है और कितने सुंदर तरीके से बाबा के दरबार को सजाया गया है। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बाबूलनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 तरह की कतारें इस मंदिर में पहुंचने के लिए लगी हुई हैं और लगभग 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बाबा तक पहुंचा जाता है। आज सुबह ही 6 बजे मंदिर का प्रवेश द्वार खुल गया है और तकरीबन रात 10 बजे तक खुला रहेगा। पहली ही आरती सुबह 6 बजे की होती है, दूसरी दोपहर 12:30 बजे की आरती होती है, तीसरी 5:30 बजे की आरती होती है और चौथी 8 बजे की आरती होती है। वैसे तो रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबूलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब बात श्रावण की है और स्पेशली सोमवार की हो तो ये आंकड़ा लाखों पार हो जाता है। थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बाबूलनाथ मंदिर का ये जो दरबार है ये सजा हुआ है। हर कोई आज यहाँ पहुंचना चाहता है और शंकर भगवान के, भोलेनाथ के दर्शन करना चाहता है। कहते हैं कि आज के दिन शंकर भगवान जो हैं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और उनकी जो भी मन पसंदीदा चीजें हैं वो चढ़ाई जाएं तो उनकी मिन्नतें भी पूरी हो जाती हैं। थोड़ा कतार की तरफ भी एक नजर डालें किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको और एक तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर ही जो खास बात है बाबूलनाथ मंदिर की वो ये कि यहाँ पर आप आराम से जलाभिषेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मंदिर के कार्यकारी कार्यकर्ता लोग हैं जो इस तरह से जो जग में लोटे में जल भर रहे हैं और यहाँ आने वाले दर्शन करने वाले सभी जो भक्तगण हैं वो यहाँ से जल लेते हैं और बकायदा भोलेनाथ बाबा को जाकर के चढ़ाते हैं। एकमात्र मुंबई का एक ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप शुद्ध रूप से जलाभिषेक कर सकते हैं। और बात जब श्रावण सोमवार की हो तो अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। थोड़ा इस तरफ भी देखें, ये कतार सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं है बल्कि वहां पर धीरे धीरे राउंड टू राउंड करते हुए आ रही है। आपको बताएं कि लगभग 1800 सीढ़ियां भी इस मंदिर में हैं। अगर आप सीढ़ियों से आना चाहते हैं तो सीढ़ियों से भी आया जा सकता है, वरना लिफ्ट का भी यहां पर इंतजाम किया गया है, व्यवस्था की गई है जहां पहुंचकर लोग जो है दर्शन करते हैं। थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं, कहां से आई है माता श्री?
10: डोंगरी चीच बंदर।
9: अच्छा, तो ये मुझे बताइए, सोमवार का आज श्रावण है पहला वाला, कितनी ज्यादा खुश है, क्या तैयारी किया आपने?
10: अब मैं तो तैयार, वहाँ से पैदल आई हूँ।
9: पैदल आई हो, इतना भगवान को मान रही हैं आप? सोमवार बहुत जरूरी है यार। तो इस तरीके से देखिए, पैदल आई हैं ये। आप कहाँ से हैं साहब?
11: परेल से।
9: परेल से, अच्छा ये बताइए श्रावण की क्या तैयारी की है?
11: बहुत बढ़िया, पहला सोमवार है, बहुत अच्छा लगा।
9: दर्शन करना जरूरी
11: है, बहुत जरूरी
9: है श्रावण का सोमवार। आप भी घरों से निकले, आसपास के भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें और हो सके तो नंदी जी की का दर्शन लेना, इनका आशीर्वाद लेना ना भूले। और इनके कान में जिस तरीके से माताश्री अपनी मिन्नतें कह रही हैं उस तरह से भी लोग कह सकते हैं, क्योंकि नंदी एक ऐसी हैं जो बाबा को बहुत ज्यादा प्यारी हैं और ये जब उनसे प्रार्थना करेंगी तो आपकी मिन्नतें पूरी हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
0: देखिए, मुंबई के बाबूलनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे थे। एक नई चीज देखने को मिली कि अक्सर देखिए हम जब जाते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए तो जल ले जाना वो भी एक बार समस्या होती है कि आपको घर से आप कैसे जल लेकर के जाएंगे, कई लोग पैदल जा रहे होते हैं। यहां नई चीज है कि मंदिर में ही आपको जल मिल रहा है।
7: नहीं, ऐसा कई मंदिरों में हमने देखा है, इनफैक्ट कई मंदिरों
1: अब कई मंदिरों में होने लगा है कि आपको फैसिलिटीज मिल जाती है कि परेशानी ना उठानी पड़े भोले के
0: घर से आपको लेके नहीं आना।
1: हाँ, आप ऐसा मंदिरों में शुरू कर दिया गया है।
7: इनफैक्ट गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं वहाँ तो इजीली
1: काफी पहले से,
0: तो वहाँ पहले से ही मतलब वो लोटे के साथ, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं देखा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोटा भी है और उसमें जल आपको दिया जा रहा है, आप बस जाइए लोटा लीजिए और चढ़ा दीजिए, ऐसा वहाँ पर है। पानी की व्यवस्था तो मैंने देखी है, लेकिन वो पात्र भी आपको लेके जाना,
7: छोटे कैंस होते हैं ऑरेंज कलर के नॉर्मली,
1: नहीं पात्र भी मिलता है अब कि आप वहां से लोटा उठा सकते हैं, उसमें जल भर सकते हैं और फिर अर्पण करके उसे वहीं रखने की जिम्मेदारी आती है।
0: चलिए, ये बड़ी अच्छी सुविधा हो गई क्योंकि ये एक दिक्कत रही है लोगों को। अब आपका लिए हम चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां पर आस्था का अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ धाम शिव भक्तों से खचाखच भरा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु बाबा के जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है,
1: और हर साल की तरह इस बार भी काशी ने अपने शिव भक्तों और कांवड़ियों का पूरा उत्साह और श्रद्धा के साथ स्वागत किया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष और फूलों की बारिश ने पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। आस्था उत्साह और शिव भक्ति का ये मनमोहक दृश्य हर किसी का मन मोह रहा है।
12: देवादिदेव महादेव को सावन का महा अति प्रिय है, यही वजह है कि आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर न केवल देश बल्कि दुनिया भर से शिव भक्त काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, उनको बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सावन के इस पहले सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लेने से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस गदौलिया के नंदी चौराहे पर है, जिसे गदौलिया चौराहा भी कहते हैं, नंदी चौराहा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जहां तक नज़रें जा रही हैं, चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त नज़र आ रहे हैं, और सबकी बस एक ही इच्छा है, एक ही मनोकामना है कि भोलेनाथ के वे एक बार दर्शन कर सकें। आने वाले तमाम शिव भक्त या तो कांवड़ियों के रूप में है, शिव भक्तों के रूप में है, आम शिव भक्तों के रूप में, श्रद्धालुओं के रूप में लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं यहां परंपरा अनुसार यादव बंधु भी सावन के पहले सोमवार दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आते हैं। स्थानीय स्तर पर भारी संख्या में यादव बंधुओं की संख्या जुटती है, जो गंगा जल लेकर सीधे विश्वनाथ बाबा के दरबार पहुंचते हैं। हालांकि इसको लेकर कहानी भी है कि सैकड़ों वर्षों पहले जब सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तब शिव भक्तों ने और खासकर यादव बंधुओं ने ये बीड़ा उठाया था और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था, तमाम काशी के शिवालयों का जलाभिषेक किया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और ठीक इसके बाद यहाँ काशी में और भी आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हुई थी और सूखा अकाल खत्म हुआ था, तभी से जो शिव भक्त हैं यादव बंधु इस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हमारे ठीक बगल में देख सकते हैं जो कतार है, वे गंगा से होते हुए सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंच रही है। लोग कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि जैसे ही वो बाबा का दर्शन करेंगी वैसे ही उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी और बाबा भोलेनाथ उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।
7: तो सावन का पहला सोमवार और आप तमाम शिवालयों में देख रहे हैं किस तरीके से भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। कांवड़ यात्रा भी चल रही है और उसके भी अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं ऐसी एक अनोखी कांवड़ यात्रा जो एक संदेश दे रही है, और ये संदेश है फिटनेस का, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे खुद दिल्ली पुलिस के जवान खींच रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए इस कांवड़ में भगवान शिव की भव्य झांकी के साथ साथ जिम के उपकरण की भी दिखाया गया है। हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर तय करते हुए ये जवान युवाओं को फिट रहने, नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दे रहे हैं।
13: कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु अलग अलग डिजाइन और सजावट वाली कांवड़ लेकर चलते दिखाई देते हैं, लेकिन ये वो कांवड़ है जिसमें आस्था के साथ ही फिटनेस का संदेश भी है। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है, जबकि पीछे डम्बल समेत जिम से जुड़े कई सामान मौजूद हैं। डम्बल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज के सामानों से सज्जित इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कांवड़ को लेकर हरिद्वार से दिल्ली की ओर जब ये निकले तो आकर्षण का केंद्र बने रहे। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित उर्फ मिठू मदेरिया 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपने इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
14: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे, बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं, वो इससे जुड़ के फिटनेस के, बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं, एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
13: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं, और सब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंचे, जो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो इसी तरह से अलग अलग तरह के आपको कांवड़ देखने को मिलेंगे। ये फिटनेस का मंत्र देता हुआ कांवड़ वाकई अनोखा था, और उम्मीद है कि जितने भी कांवड़ यात्री इस यात्रा में जा रहे होंगे उससे जरूर एक बहुत ही अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज हर किसी को मिला हो। तो सावन का महीना है और बाबा बैद्यनाथ धाम की अब बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लाखों कांवड़िए बोलबम के जयघोष के साथ बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। पूरा रास्ता भगवा रंग में रंगा हुआ है और हर तरफ शिव भक्ति का उत्सव दिखाई दे रहा है।
1: और इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि कांवड़ मार्ग पर हर कदम पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं भजन कीर्तन की गूंज है तो कहीं श्रद्धालु अनोखे अंदाज में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। ऐसा एक युवा दल स्केटिंग करते हुए लंबा सफर तय कर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करने निकला है।

0: सावन मास में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम जाने के रास्ते में शिव भक्ति में डूबे कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर के असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ की है, जहां सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम जाने वाले रास्ते में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार निवासी दिव्यांग शिव भक्त बबलू भी देवघर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान बबलू भक्ति गीतों पर बैशाखी को किनारे रख कर एक पैर से ही जमकर झूमते नजर आए। चेहरे पर न थकान है न ही कोई दर्द, बस बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर बबलू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह बाबा धाम जाने के क्रम में ये बच्ची भी खुशी से झूमती हुई नजर आई।
1: नाम काव्या है और 1 साल 4 महीने की है। बाबा नगरिया पैदल ही पैदल जा रही है, नजर आ रही है, इसको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार जा रही है।
0: अब मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दंडवत होकर जाते इस शिव भक्त को देखिए, जो एक डोली को खींचते हुए बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। इस डोली में उनकी महज 2 महीने की बेटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी 3 साल के बेटे और सिर्फ 2 महीने की बेटी राधा के साथ देवघर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मिथिलेश 6 वर्ष से बैद्यनाथ धाम की दंडवत यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार की उनकी यात्रा अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर विशेष है। मिथिलेश को एक बेटा पहले से है और अपने बाकी भाइयों की तरह इन्हें भी बेटी की इच्छा थी, जिसको लेकर इन्होंने बाबा से कामना की और जब वो इच्छा पूरी हो गई, तो बेटी को लेकर चल पड़े बाबा के दर्शन के लिए।

0: में पिछला बार आई से आए हैं, ये डोली था, छोटकी था भैया, वही में भतीजी दोनों को लाए थे। इनकी बेटे हम बाबा के बोले थे कि मेरा जो भतीजी के ले गए थे, मेरा बेटी होना चाहिए कि बेटी रहेगा तब मैं कन्यादान करेंगे, ताकि बाबा दम सुन लिए। पर आए थे इनकी बेटी के लेके आए, सब रोका कि 2 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाओ, बच्चा का मन खराब होगा, बोले बाबा की कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा, बेटी भाग से मिलता है, बेटा भाग से बेटी सब भाग से, कोई उनका नहीं, बेटी के जो होगा तो होगा, बाकी हम लेके जाएंगे बच्चा लाने।
1: इस बार बेटी के लिए विशेष डोली बनवाकर मिथिलेश ने दंडवत यात्रा शुरू की। करीब 10,000 रुपए खर्च कर इन्होंने इस डोली को तैयार करवाया है। डोली में बेटी को धूप और गर्मी से बचाने के लिए ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई है, इससे पंखा चलता है। मिथिलेश अपनी बेटी राधा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का इरादा रखते हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर से युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस दल के सदस्य एक दूसरे से जुड़े जो स्केटिंग करना जानते थे, और फिर समस्तीपुर से सब एक साथ बेगूसराय होते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
2: समस्तीपुर जिले से करीब 1 दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
1: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करता हुआ बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
3: हम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और 2 से 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
4: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, हम लोग सोचे कुछ और करे।
5: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरभंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
1: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भरकर बैद्यनाथ धाम पहुंचेगा और फिर वहां बाबा को जल अर्पित करेगा। मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार लौटेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में छाई देश की बेटियां।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
2: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: देश भर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, वाराणसी से लेकर सोमनाथ तक का आस्था का मेला, श्रद्धालु विधि विधान से कर रहे महादेव का जलाभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह, केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कावड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण। मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। चीन के चाखा सॉल्ट लेक में दिखा अनोखा नजारा, एक साथ नजर आया सूर्य चांद, ट्रेन और पवन चक्कियां, मिरर ऑफ द स्काई बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: खेल की बात कर लेते हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता का अंत नहीं बल्कि एक नए और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत है। खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी के साथ ही अब भारत के हिस्से एक और बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है, क्योंकि ग्लासगो से अब कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल भारत की ओर बढ़ चुकी है।
1: और देखिए अब दुनिया की निगाहें सीधे गुजरात पर टिक गई हैं, जहां साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित किया जाएगा, यानी इस महाकुंभ के 100 साल पूरे होने का जश्न भारत की धरती पर मनाया जाएगा। ये सिर्फ खेलों की मेजबानी नहीं है बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक कद, बेहतर खेल बुनियादी ढांचे और आयोजन क्षमता की बड़ी प्रदर्शन होगा।
4: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी यह ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
5: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
4: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
4: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है, जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बेटियों ने ऐसा दम दिखाया कि पूरा देश गर्व से झूम उठा है। बॉक्सिंग रिंग में भारत की महिला मुक्केबाजों ने अपने शानदार पंच और शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। इस मुकाबले में उन्होंने अपने जज्बे और हौसले का लोहा मनवाया। और प्रीति पवार, जैस्मीन प्रिया, अरुंधति चौधरी और साक्षी चौधरी ने गोल्ड पंच लगाते हुए भारत की झोली में 5 स्वर्ण पदक डाल दिए। इन बेटियों की इस ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय नारी शक्ति अब हर खेल में दुनिया पर अपना दमखम दिखा रही है।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है और भारत ने चौथे नंबर पर रहते हुए 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस पोजीशन को हासिल करने में भारत की बेटियों का बड़ा हाथ रहा है। 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल भारतीय खेलों में हमारी बेटियों की बढ़ती ताकत की मिसाल पेश करते हैं। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जब भी पोडियम पर भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराया तो ज्यादातर मौकों पर भारत की बेटियां ही सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी रहीं, जो भारत में नारी शक्ति की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन रहा है। खेलों में बढ़ती नारी शक्ति देश में महिला खेलों की मजबूती, हिम्मत और बढ़ती गहराई का एक शानदार सबूत भी है। वेटलिफ्टिंग प्लेटफॉर्म और बॉक्सिंग रिंग से लेकर जूडो मैट और पैरा एथलेटिक्स एरिना तक भारतीय महिलाओं ने न सिर्फ इस अभियान में योगदान दिया है बल्कि इसकी अगुवाई भी की है। ओलंपिक चैंपियन मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर शानदार आगाज किया तो भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स आइकन में से एक के तौर पर अपनी पहचान फिर से याद दिलाई। पैरा एथलेटिक्स में शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर यादगार प्रदर्शन किया, जबकि अस्मिता डे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। इसके बाद बॉक्सिंग रिंग में भारतीय महिलाओं का एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घांगस और अरुंधति चौधरी सभी ने गोल्ड मेडल जीते, जिससे ये साबित होता है कि पिछले दशक में भारतीय महिला बॉक्सिंग ने कितनी जबरदस्त मेहनत और तरक्की की है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि देश की बेटियों ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला नाम मीराबाई चानू का है, जिन्होंने वेटलिफ्टिंग की बाजी को सुनहरा बना दिया। उसके बाद तो जैसे गोल्ड लाने की रेस ही लग गई। साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में गोल्डन पंच जमाया। प्रीति पवार भला क्यों पीछे रहती है, उन्होंने भी बॉक्सिंग में सोना जीता। जैस्मिन लंबोरिया ने भी स्वर्ण पदक जीत अपना नाम दर्ज करा। प्रिया घांगस ने भी बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। अरुंधति चौधरी ने भी बॉक्सिंग में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया। अस्मिता डे ने जूडो में गोल्ड जीतकर तो इतिहास ही बना दिया। पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट में शर्मिला धनखड़ ने भी सोना जीतकर कमाल कर दिया। अगर सिल्वर मेडल की बात की जाए तो ज्ञानेश्वरी यादव ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। हरजिंदर कौर ने भी वेटलिफ्टिंग में ही दूसरा स्थान हासिल किया। जूडो में यामिनी मौर्य ने भी रजत पदक जीतकर कमाल कर दिया। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में सिल्वर जीतकर एक बार फिर से अपनी काबिलियत साबित की। अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो विद्या रानी देवी ने वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। सीमा काली रामना ने डिस्कस थ्रो में तीसरा स्थान हासिल कर ब्रॉन्ज जीता। उन्नति शर्मा ने जूडो में ब्रॉन्ज जीता। पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट में शिल्पा सायला ने भी तीसरा स्थान हासिल कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। इन 8 गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियनों ने मिलकर ग्लासगो में भारत के अभियान को मजबूत किया है और ये दिखाया है कि भारत की बेटियां अब सिर्फ उभरती हुई दावेदार नहीं हैं, बल्कि वे लगातार चैंपियन बनने वाली खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल स्टेज पर अपना दबदबा बनाने की काबिलियत रखती हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ग्लासगो में मिली कामयाबी भारत में हो रहे बड़े बदलाव को भी दिखा रही है। सभी महिला खिलाड़ियों ने साहस, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और चैंपियन जैसी मानसिकता का परिचय देते हुए सबसे बड़े मंच पर भारत का तिरंगा गर्व से लहराया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय महिला मुक्केबाजी की बढ़ती ताकत और देश की नारी शक्ति का भी शानदार प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए इस बार सम्मान सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत का इनाम भी बिना देरी के उनके हाथों तक पहुंच रहा है। इस बार जैसे जैसे खिलाड़ियों का दल भारत लौट रहा है, वैसे वैसे उन्हें उनकी पुरस्कार राशि भी सौंपी जा रही है। पहले जहां इस पूरी प्रक्रिया में 6 महीने तक का समय लग जाता था और कई प्रशासनिक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था, वहीं अब इस लाल फीताशाही को खत्म कर प्रक्रिया को बेहद तेज और आसान बना दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत हर स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को 20 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि तुरंत दी जा रही है।
2: मैम, तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड आपने जीता है, तो इसके पीछे की जो प्रैक्टिस, जो मेहनत सेम वेट कैटेगरी में रही है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
3: हाँ, मैं ये तीसरा गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, बहुत खुश हूँ ये मेडल से। और काफी मुश्किल भी मैंने फेस किया है, इनकी बॉडी वेट से लेके और ट्रेनिंग से और मेरे इंजुरी से लेके, बहुत सारी कुछ बॉडी वेट से लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में थी कि 48 में खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसको कंट्रोल करके रख के ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। पर ये हमारी लाइफ में ही है, लाइफ में ये आते हैं, हमारे पार्ट है ये, तो इस सबको फेस करके मैंने CWJ में गोल्ड मेडल लाया है, इंडिया के लिए मैंने करके दिखाया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
2: क्या अगली बार भी गोल्ड मेडल आने के पूरे चांसेस?
3: मैं पूरा कोशिश करूंगी, बोल तो नहीं सकती, पर मेरी तरफ से मैं एशियन गेम्स में पूरा कोशिश करूंगी।
4: मेरा नाम ज्ञानेश्वरी यादव है और मैं 53 में कम्पीट करती हूँ, और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लेके आई हूँ।
2: तो ज्ञानेश्वरी, ये सिल्वर मेडल के पीछे की जितनी मेहनत, जितना संघर्ष आपने किया है, क्या आप उसको दर्शकों को बताना चाहेंगे?
4: मेहनत बहुत रही है और संघर्ष भी बहुत रहा है, और मम्मी पापा का सपोर्ट जब तक नहीं होता है तब तक तो थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और मम्मी पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर, तो तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और आगे इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, कई महीनों तक घर नहीं जा पाए हैं, और कंटिन्यूअसली संडे भी ऑफ ना करके मतलब ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का ट्राई किया है, और उसका मेहनत यही है कि आज सिल्वर मेडल है।
2: सिल्वर मेडल है तो अगली बार क्या गोल्ड पक्का है?
4: हाँ जी, गोल्ड मैं पूरा 100% ट्राई करूंगी, क्योंकि इंडिया में ही है 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, तो मैं उसमें अपने इंडिया को गोल्ड दिलाने का पूरा कोशिश करूंगी।
1: तो यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कहाँ बीच रास्ते पर आई शेरों की पूरी फैमिली।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: गर्मी का मौसम हो और दिन भर इतनी तेज धूप पड़े कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो क्या लोग करते हैं, सोचिए जरा। चीन के सिचुआन प्रांत आपको लिए चलते हैं, जहां की राजधानी चेंगदू के लोगों ने एक बड़ा दिलचस्प तरीका खोज निकाला है। अब वहां लोग दिन के बजाय रात में घरों से निकल रहे हैं, जैसे ही सूरज ढलता है शहर की सड़कें, पार्क और खुले मैदान लोगों से गुलजार हो जाते हैं।
2: और देखिए, रात के ठंडे और सुहावने मौसम में स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और दूसरी आउटडोर गतिविधियों का जमकर आनंद ले रहे हैं। नतीजा ये है कि चेंगदू की रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि खेल, फिटनेस और लोगों के मौज मस्ती का कारण बन चुकी है। अब देखिए कैसे गर्मी ने इस शहर की नाइट लाइफ को एक नया रंग दे दिया है।
3: दिन भर की गर्मी और फिर ढलती शाम, जैसे सूरज की तपिश कम होती है, चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू की सड़कों पर जिंदगी एकदम नए अंदाज में दौड़ने लगती है। पार्क हो या ग्रीन वे, हर तरफ साइकिल चलाते लोगों की लंबी कतारें नजर आ जाती है। नाइट साइकिलिंग यहां सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं रही बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने और तनाव दूर करने का नया ट्रेंड बन चुका है। चीन में बदलती लाइफस्टाइल का असर कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल किराए पर देने वाली दुकानों में रात के समय ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, बढ़ती मांग को देखते हुए कई स्टोर्स ने अब 24 घंटे सेवा देना भी शुरू कर दिया है।
4: 随着夏季到来，我们门店夜晚骑行的客户占比越来越多，基本上能占到60%左右。 为了更好地服务这些夜骑的客户群体，我们的营业时间也调整为24小时。
3: सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, चेंगदू के शॉपिंग मॉल्स भी अब रात में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नए सेंटर बन चुके हैं। मॉल्स के भीतर बने स्पोर्ट्स जोन युवाओं और परिवारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग खेलते हैं, फिर खरीदारी करते हैं और रेस्टोरेंट में समय बिताते हैं। यानी फिटनेस के साथ साथ नाइट इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ रही है।
5: 我们整个商场里头，就是运夜间运动带给我们的一个客流，大概会占到我们整个商场夜间客流的20%左右。很重要的是，现在的夜间经济，大家也会叫着自己的朋友或者家人一起过来，所以还会有很多潜在的一个消费增长。
3: चीन के इस शहर में रॉक क्लाइंबिंग भी रात की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो चुकी है। दफ्तर से लौटने वाले लोग बड़ी संख्या में क्लाइंबिंग जिम कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई जिम ने अपने संचालन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि नौकरी पेशा लोग भी आराम से क्लास में हिस्सा ले सके। चीन के चेंगदू शहर की ये नाइट स्पोर्ट्स संस्कृति केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी खूब लुभा रही है। ब्रिटेन से आए नील फॉस्टर ने पहली बार रात में रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव लिया। उनका कहना है कि अपने देश की भीषण गर्मी के मुकाबले चेंगदू की शामें कहीं ज्यादा सुहानी है और दोस्तों के साथ खेलते हुए दिन का अंत करना एक शानदार एहसास है। गर्मी से राहत पाने का ये तरीका अब सिर्फ मौसम से जुड़ी मजबूरी नहीं बल्कि एक नया लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। चेंगदू में रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि फिटनेस, रोमांच और बढ़ते कारोबार से भी जगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
4: चलिए अब खबर गुजरात के गीर से, जहां पर एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला. गीर सोमनाथ जिले की जामवाला तलाला सड़क पर अचानक एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 शेरों का कुनबा सड़क पर घूमता नजर आया. शेरों को सामने देखकर राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी. किसी ने दूर से इस नजारे का आनंद लिया तो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
5: और वीडियो में शेरों का पूरा झुंड बेहद आराम से सड़क पर टहलता दिखाई दे रहा है. गिर में एक साथ दो चार शेर दिखना भी खास माना जाता है, लेकिन एक साथ 12 शेरों का नजर आना बहुत दुर्लभ है. इन दिनों बारिश और शेरों के मेटिंग सीजन की वजह से गिर सफारी भी पर्यटकों के लिए बंद है. ऐसे में सामने आया ये वीडियो लोगों के लिए हैरानी और रोमांच दोनों का कारण बन गया है.
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतने. आप रखिए अपना ख्याल, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
6: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
7: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है.

उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह। केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण। मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ। गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। चीन के चाका सॉल्ट लेक में दिखा अनोखा नजारा। एक साथ नजर आया सूरज, चांद, ट्रेन और पवन चक्कियां।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन कर करो। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िए गंगाजल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानन। बता दें कि इस अनोखी कावड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहां जहां से ये गुजर रही है

0: कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
1: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं। और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। अनोखी कांवड़ों की इसी कतार में शामिल है ये नोट कांवड़। भक्ति महादेव की है मगर दर्शन लक्ष्मी के भी भरपूर हो रहे हैं। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के जाने कितने नोट लगाए गए हैं। इस कांवड़ को तैयार करवाया है दिल्ली के दीपांशु ने। दीपांशु हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। भारी भरकम कांवड़ को एक कंधे पर उठाकर रोज 18-19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब यात्रा संपन्न होगी तो इन्हीं नोटों से भोले के भक्तों के लिए भंडारा करवाने का इरादा है।
2: बस इसका यही उद्देश्य है कि मेरा मतलब मन था नोट वाली कांवड़ लाने का, इसलिए मैं 2026 में नोट वाली कांवड़ लेकर आ गया हूँ। इसमें जो नोट लग रहे हैं वो अनगिनत नोट हैं, इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है। बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कांवड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है ये हमने हर की पौड़ी पे से 9000 रुपए का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
0: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
3: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
4: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेके जा रहे। यही है कि अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
0: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कांवड़ मार्ग सजी धजी कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका है।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
2: कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
3: समस्तीपुर जिले से करीब 1 दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
4: 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और 2-3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
5: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, मगर हम लोग सोचे कुछ अलग करे।
6: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भरकर बैद्यनाथ धाम पहुंचेगा और फिर वहां बाबा को जल अर्पित करेगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले इसी रास्ते पर ये खास कांवड़ भी नजर आई जिसमें शिव के साथ उनकी शक्ति का स्वरूप भी समाहित था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर इस कांवड़ को श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। हर साल ये युवा अलग और अनोखी कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं।
7: ये हम लोग का बाबा श्री अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हम लोग का सभी भाई लोग का इच्छा के अनुसार अगले साल भी हम लोग लेकर के आए थे बड़ा डोली जो शिव पार्वती नंदी महाराज गणेश जी के साथ थे, और इस साल हम लोग अर्धनारीश्वर जी को लेकर के आए हैं। बस बाबा से यही कृपा है, आज्ञा है कि बाबा वहां तक हम लोग को सही सलामत लेके पहुंचाए।
8: कितना समय लगा इसको बनाने
7: का? समय कम से कम 1.5 महीने का लगा।
8: खुद से बनाए बनवाए?
7: नहीं, खुद से बनवाए नहीं है, बनवाए हैं, ऑर्डर दे के बनवाए।
8: इसका वजन क्या होगा?
7: वजन वही 90-100 केजी का लगभग है। बैटरी वैटरी लगाए, नीचे भारी
8: बैटरी वगैरह लगा।
9: आप लोग कितने का जत्था में चल रहे, कितने का ग्रुप है?
7: हम लोग 25 जन आए हैं, 25-26 जन।
0: यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के वेश में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के वेश में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को थम जरूर आए, तस्वीरें देखिए। जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है, हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं, इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया, तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वहीं वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्रीराम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे, लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जानवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जानवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्रीराम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पूरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष, जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को, पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत connection me.
1: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है.
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: देश भर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया जलाभिषेक, सोमनाथ में भी हर हर महादेव की गूंज। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह, केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी है कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण, मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। चीन के चाका सॉल्ट लेक में दिखा अनोखा नजारा, एक साथ नजर आया सूरज चांद ट्रेन और पवन चक्कियां।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में धाम पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का जलाभिषेक किया, केदारनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखिए नोटों वाली कांवड़, कांवड़ में लगाए गए हैं 10, 20, 50, 100 के नोट्स। दिल्ली के रहने वाले हैं भोले के भक्त दीपांशु ने अपनी कावड़ में लगाए हैं नोट। तीन साथियों के साथ हरिद्वार से दिल्ली तक का 200 किलोमीटर तक का सफर। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के रामगढ़ में उमड़े श्रद्धालु चमत्कारी शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़। यहां पर मां गंगा खुद करती हैं जलाभिषेक। टूटी झरना मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में मां गंगा की प्रतिमा की नाभि से पूरे साल शिवलिंग पर होता है जलाभिषेक। प्रयागराज के एक मंदिर में भगवान के साथ साथ एक जज के रूप में भी पूजे जाते हैं महादेव। मान्यता है कि अपनी अदालत में भक्तों की गलतियां माफ करते हैं। त्रिवेणी संगम के पास मौजूद शिव कचहरी के नाम से मशहूर है ये मंदिर। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार के कलेक्टर ने दशाश्वेत महादेव मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया। डीएम ने पत्नी के साथ जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार पर चंदौली के कालेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर पहुंचे श्रद्धालु। यहां पर भोले शंकर के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु टलने की मान्यता है। चंदौली के सकल डीहा में मौजूद भोलेनाथ के इस मंदिर में लोगों की विशेष मान्यता। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे गंगा पेट्रोलिंग जारी। गंगा में बढ़ते हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग। आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बाढ़ और जल राहत टीमें तैनात की दी गई हैं। अत्याधुनिक उपकरण मोटर बोट वाटर एम्बुलेंस और जीवन रक्षक संसाधनों से लैस। सावन के पहले सोमवार पर काशी से लेकर उज्जैन के महाकाल तक शिव भक्तों का रेला। अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ में हुई भव्य मंगला आरती। बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से उमड़ रहे भक्तों की भारी भीड़। भक्तों पर बरसाए गए फूल। सावन के पहले सोमवार के शुभ अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में ड्रोन तस्वीरें निकलकर सामने आई। शिव भक्तों और कांवड़ियों की आस्था से पटी नजर आई गलियां। खूबसूरत फूलों से सजा बाबा विश्वनाथ के दरबार। फूलों से महका पूरा मंदिर परिसर। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में भगवान महाकाल का जलाभिषेक हुआ। सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतार है। भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती। डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गुंजायमान। सबसे दिव्य और अद्भुत थे वो पल जब महाकाल की भस्म आरती की गई। भक्त चूमते हुए नजर। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान करने के लिए उमड़े आस्था में जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई पवित्र डुबकी। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से लंबी कतार में श्रद्धालुओं ने गंगा जल से अभिषेक किया। बड़ौदा के शिव मंदिर में सुबह से लगी लंबी कतार में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पुरी के लोकनाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जलसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। मुरादाबाद के कामेश्वर महादेव मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में बड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दुग्ध अभिषेक किया। सुबह से मंदिर में दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार, भक्तों ने लगाया हर हर महादेव की जयकारे। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में सुबह से लगी लंबी कतार में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मधेपुरा में सावन के पहले सोमवार पर सिंहेश्वर नाथ धाम में लगा भक्तों का मेला, बड़ी संख्या में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। बद्रीनाथ के आदि कैलाशेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करके सुख समृद्धि की कामना। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र से बाबा का अभिषेक किया, लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन के पहले सोमवार को उमड़ा आस्था का जनसैलाब, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। रोहतास के तिलेश्वर धाम में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर पटना के शिवालयों में सुबह से लंबी कतारें, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। रायसेन की शिव गुफा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक किया। वाराणसी में सावन के पहले सोमवार पर मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह से भक्तों की लंबी कतारें। सावन के पहले सोमवार पर सारण के हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे तेजस्वी यादव, विधि विधान के साथ पूजा पाठ। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 50,000 लीटर से यदुवंशी समाज ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। लखनऊ के चंदेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की लगी लंबी कतारें, सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम, सीसीटीवी से नजर। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। महिलाओं ने एकता सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया, बोलबम के जयकारे। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। मध्य प्रदेश के खंडवा ओमकारेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रांची में सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ पहाड़ी मंदिर, हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। जयपुर के तड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट मोड में, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लैस। कांवड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए 40 कूलर, 30 सीसीटीवी। सहारनपुर में कांवड़ मार्ग को हजारों लाइटों से सजाया गया, रात के समय अद्भुत नजारा। तकरीबन 10 से 12 हजार लाइटों से चमका कांवड़ मार्ग। खूबसूरत सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं स्थानीय लोग भी, मोबाइल में कर रहे हैं कैद। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर 6,000 से 7,000 लाइटों से सराबोर कांवड़ियों ने भी इस व्यवस्था की जमकर तारीफ की। दिनभर पैदल चलने के बाद रात में जगमगाते कांवड़ मार्ग से गुलजार हुआ, श्रद्धालुओं को मिल रही है नई ऊर्जा। श्री अमरनाथ यात्रा का 32वां दिन आज, श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति पर लगातार बनाए हुए नजर। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक अपने नाम कर लिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा रहे भारत से आगे, ऑस्ट्रेलिया 70 गोल के साथ 171 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा काबिज। बॉक्सिंग बनी भारत की सबसे बड़ी ताकत, भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदक जीते जिसमें 7 गोल्ड 3 सिल्वर। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा भारत, अब भारत का फोकस अहमदाबाद में होने वाले 2030 खेलों पर। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत के अभियान को दिया मजबूत। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का भी सम्मान, स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत को 20 लाख, कांस्य पदक जीतने वाले को 10 लाख। कास्को राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन, वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड जीता, 6 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज समेत 8 गोल्ड। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात, सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन को सराहा। गुजरात के युवक के अंगों से कई जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी, अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन को रोककर अहमदाबाद भेजा गया युवक का धड़कता हुआ दिल। हादसे में ब्रेन डेड होने के बाद 22 साल के अतुल पटेल के परिवार के फैसला बना मिसाल। बिहार के गयाची में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज हो गया, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। गयाजी में हस्तशिल्प, हथकरघा, घरेलू सजावट के सजे सामान, चमड़े के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की भी प्रदर्शनी। मेले में वोकल फॉर लोकल पर दिया गया जोर, 16 अगस्त तक चलेगा व्यापार। भोपाल में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली पहुंचे कॉमनवेल्थ जीतने वाले खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सीमा का भिवानी में जबरदस्त स्वागत किया गया, जबरदस्त बधाई दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। कोटा में घर घर कबाड़ जुटाने वाले पिता का बेटा बनेगा डॉक्टर, सागर ने नीट में लहराया परचम। जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम, 135 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रणजी से लेकर आईपीएल मैचों का मेजबानी करेगा कोटा, 10,000 दर्शकों की क्षमता। बिहार के पटना में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के पथाना मथिट्टा में बाढ़ जैसे हालात, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। पथाना मथिट्टा में बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। केरल के कन्नूर में मंत्री सनी जोसेफ ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को जल्द मदद का आश्वासन। गुजरात के मोरबी के डैमी नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे का डायवर्जन बाहर, रास्तों को ठीक करने में जुटा प्रशासन। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर हुआ जारी, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित। फिल्म अलाइस रुक्मिणी का वीडियो हुआ रिलीज, फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज होगा ट्रेलर, 26 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग हुई शुरू, 1 जनवरी 2027 को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म सिंह वर्सेस स्कॉर 2 का टीजर हुआ आउट, 11 सितंबर को फिल्म होगी रिलीज।
1: के बंदा सच्चा सी जीता तो दिल जवानी वाला जोर सी में जलवा और पाजला जसनी तेरी रचाई इस दुनिया च जवानी
2: वाला आमी कौन पता दे था कि माय नेम इज जसनी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
4: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं, शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है, शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
0: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हमें कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। गिफ्ट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5-7-10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे पिक, ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको एक थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दूल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमला, इस्कॉन मंदिर में गोलीबारी का सच क्या? असम की बाढ़ में बह गए दर्जनों घर, सबसे क्यूट प्रार्थना। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
4: विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें Good News Today बनाता है।
5: Good News Today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर।

0: चांद, ट्रेन और पवन चक्किया, मिरर ऑफ द स्काई बना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज के 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। सावन का पहला सोमवार और हर शिव भक्त की एक ही कामना है कि महादेव का जलाभिषेक और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करे, और यही वजह है कि देश भर के शिवालयों में सुबह होते ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इसी से जुड़ी आज की हमारी पहली गुड न्यूज है। सावन का पहला सोमवार आस्था अपार। आपको बता दें कि हाथों में जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और पूजा की थाली लिए श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए शिवालय में पहुंच रहे थे। यहां श्रद्धालु कतारों में नजर आए। अयोध्या के प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने विधि विधान से जलाभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध बाबूलनाथ मंदिर में भी शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तों ने जलाभिषेक के साथ बाबा का पूजन अर्चन किया और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए और महादेव का अभिषेक किया। वैसे ये तस्वीर लगभग देश भर के सभी शिवालयों में देखने को मिली, जहां महादेव के भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और महादेव का आशीर्वाद लिया।
2: श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में, और सबसे पहले तो मैं आपको भगवान शिव और गौरी के जो है दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से मंदिर में जो लोगों की भीड़ है वो महादेव के दर्शन करने पहुंची, किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो श्रृंगार है वो इस वक्त माँ गौरी का और भगवान शंकर का जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपको हर एक शिवालय में जो है वो नजर आने वाली है। लेकिन अगर बात दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की करी जाए तो यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार इसी तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि किस तरीके से हर कोई मन में ढेर सारी आस्था लेकर जो है वो यहाँ पर आ पहुंचा, और आप देख सकते हैं कि आज महादेव को प्रसन्न करने की पूरी तरीके से तैयारी है। तो उसके लिए बेलपत्र जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है और दूध वो यहाँ पर लोग जो है लेकर पहुंचे ताकि उनको उनका जो जलाभिषेक है वो कर सके।
0: सावन में देश भर में करोड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं, जिसका नजारा हर शहर, हर इलाके में अलग ही होता है, क्योंकि सावन में कांवड़ यात्रा सिर्फ एक आस्था का सफर नहीं बल्कि भक्ति, क्रिएटिविटी और समर्पण की अनगिनत कहानियों का संगम होता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है भक्ति और उत्साह से सराबोर कांवड़ मार्ग। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। कहीं सुपरकार जैसी दिखने वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है तो कहीं कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर देखें।

गंगा घाट से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग तक हर ओर शिव भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं भोले के जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप और संकल्प पूरा कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर काशी तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं और हर दिशा हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर धाम में आस्था और विश्वास की भव्य तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ देश भर से हजारों शिव भक्त और कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। हरिद्वार में भोले के भक्त एक से बढ़कर एक कांवड़ लेकर पहुँच रहे हैं। किसी में शिव भक्ति स्वरूप को दिखाया गया है तो कोई कांवड़ देशभक्ति का संदेश दे रही है। देखिए ये 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा, जिसे 26 कांवड़ियों का दल पैदल लेकर चल रहा है। ये भोले के भक्त 11 अगस्त को अपने घर के पास भोलेनाथ के शिवालय में जल चढ़ाएंगे।

0: 31 फीट लंबा है ये और ये 11 समथिंग 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देशभक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
1: भोलेनाथ जितने निराले हैं उनके भक्त भी उतने ही अनोखे हैं। सावन में कोई नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई दंडवत चलकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और अब एक शिव भक्त अपनी अनूठी कावड़ को लेकर चर्चा में है। इस कावड़ की खासियत है एक खास स्पोर्ट्स कार जैसा रूप। मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली इस कावड़ ने सबका ध्यान खींचा। मैक्लारेन थीम वाली इस कावड़ को देखकर श्रद्धालु हैरान रह गए। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह कोई असली सुपर कार है।
2: बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।
1: इस क्रिएटिव कावड़ में भक्ति के साथ साथ शानदार ऑटोमोटिव प्रेरित कारीगरी और आकर्षक लुक का मेल है। श्रद्धालु इस अनोखे आध्यात्मिक भेंट के जरिए परिवार में शांति और आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये देखिए सहारनपुर में कावड़ियों के ठहरने, बैठने और उनके हर सुविधा का ध्यान रखते हुए वाटरप्रूफ शिविर तैयार किया गया है। इस शिविर में कावड़ियों को हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कावड़ियों के सामान और मोबाइल की सुरक्षा के लिए शिविर में 80 लॉकर की सुविधा दी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गर्मी और उमस से राहत देने के लिए 40 टेंट कूलर लगाए गए हैं।
3: कावड़ियों के लिए गेट बनाया गया है आई लव महादेव, और इसके बराबर में जो शिविर है, शिविर को पूरी तरीके से हाईटेक शिविर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कावड़ियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है।
1: इतना ही नहीं, सहारनपुर में कावड़ियों के स्वागत और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कावड़ मार्ग को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सड़क पर आकर्षक लाइट रात के समय पूरे कावड़ मार्ग की खूबसूरती बढ़ा रही है।
4: ये लाइट वाला जो मार्ग है लगभग 1.25 किलोमीटर के एवरेज है, 1800 मीटर के करीब है, और इसमें लगभग मुझे लगता है 6000 के आसपास, 6-7000 समथिंग इतनी लड़ियां लगी हैं।
3: जो कावड़िये इस रोड से होकर के गुजरते हैं तो कैसा उन्हें महसूस देता है? आपकी बात होती होगी, आप 24 घंटे रोड पर रहते हैं, बात क्या कहते हैं कावड़िये?
4: मैं पूरी रात से सुबह 4 बजे तक रोड पर रहता हूँ, 4 बजे मैं घर आके सो जाता हूँ, तो मैक्सिमम कावड़िये बहुत खुश हैं और ये बताते हैं मेरे को कि हरिद्वार से यहाँ तक कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं।
1: कावड़ियों की ऐसी ही रौनक बाबा बैद्यनाथ धाम मार्ग पर भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ कई किलोमीटर की यात्रा करके भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, सहारनपुर से राहुल कुमार, खंडवा से जय नगड़ा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और आपको बता दें कि साईं धाम में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक यहां पर गुरु पूर्णिमा के महोत्सव के दौरान होती है, जब लाखों श्रद्धालु उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा उत्सव के मौके पर देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा मंदिर को 7,81,00,000 रुपयों का रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ाया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है गुरु पूर्णिमा पर साईं बाबा पर रिकॉर्ड दान चढ़ावा। शिरडी में इस साल 28 जुलाई से 30 जुलाई तक श्री साई बाबा संस्थान ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक मंदिर परिसर साई राम के जय घोष से गूंजता रहा। देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे। इस दौरान 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और हर श्रद्धालु अपने गुरु के प्रति आस्था और विश्वास के साथ शीश झुकाता नजर आया। और इस बीच श्रद्धालुओं ने बाबा की झोली भी दिल खोल कर भरी। 3 दिनों में कुल 7,81,00,000 रुपए से ज्यादा का चढ़ावा साईं बाबा के चरणों में गुरु दक्षिणा के तौर पर अर्पण किया गया। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा उत्सव में 6,31,00,000 रुपयों का चढ़ावा प्राप्त हुआ था।
6: जो डोनेशन आता है वो हर साल जो है वो बढ़ते जा रहा है। बाबा के जो भक्त जो है वो भी जो है लगभग अभी 63 कंट्री में बाबा के भक्त है। जो फॉरेनर्स जो है वो भी अभी बाबा की डिओटी बन रहे। कल ही जर्मनी के 2 साइड डिओटी आए थे, वो हर 3 महीने में जो है यहाँ आते। नीदरलैंड की एक भक्त है, बाबा की भक्त है, लेडीज है। 3 दिन की इस उत्सव में 3 लाख से ज्यादा साई भक्तों ने जो है बाबा के दर्शन लिए। बाबा को, बाबा के भक्त जो है गुरुस्थान मानते हैं, तो दर्शन के बाद भर भर के दान जो है बाबा के झोले में अर्पण करते हैं। इस 3 दिन में जो है लगभग 7 करोड़ 81 लाख का दान जो है भक्तों ने दिया है।
5: साईं बाबा में भक्तों की अटूट आस्था है। बाबा के भक्त दिल खोलकर करोड़ों का दान चढ़ावे में चढ़ाते हैं। साईं बाबा में भक्तों की आस्था कितनी अटूट है, इसका अंदाजा सिर्फ 3 दिनों में मिले चढ़ावे से लगाया जा सकता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान बाबा के भक्तों ने दिल खोलकर दान किया और 3 दिनों में कुल 7 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया गया। सबसे ज्यादा 3 करोड़ 29 लाख रुपए दान काउंटर से मिले हैं, जबकि 2 करोड़ 7 लाख रुपए श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन दान किए हैं। बाबा के दरबार में सोने चांदी की भी जमकर वर्षा हुई है। श्रद्धालुओं ने करीब 1100 ग्राम सोना और 2 किलो से ज्यादा चांदी अर्पित किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। भक्तों ने बाबा को 2 बेशकीमती मुकुट, सोने के 2 ओम और सोने का नकाशीदार हार भी भेंट किया है। इसके अलावा दर्शन और आरती से करीब 87 लाख रुपए की आय हुई है, जबकि विदेशों से आए श्रद्धालु ने 5,65,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी बाबा के चरणों में समर्पित की है। ये आंकड़े बताते हैं कि शिरडी के साईं बाबा के प्रति श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी उतना ही अटूट है और बाबा के दरबार में पहुंचने वाला हर भक्त अपनी श्रद्धा से दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं।
7: आज बाबा को हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पे हर साल आते हैं। 65 आदमी आए हम दिल्ली से, तो पूरा विश्वास है। गुरु मतलब पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु हमारे पूर्ण, और हमें पक्का विश्वास है उस भगवान पे, साई पे, और हमारा सारी मनोकामनाएं वो पूरी कर।
5: भारतीय रेल ने एक बार फिर से इंसान की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाई है। वंदे भारत ट्रेन से 3 दिन में 2 बार धड़कते दिल को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल तक पहुंचाया गया, जिससे कि 2 लोगों की जान बच पाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है धड़कते दिल के 7 पटरियों पर दौड़ी वंदे भारत। वंदे भारत जीवन रक्षक ट्रेन बन गई है। 31 जुलाई को सूरत के रहने वाले 36 वर्षीय मिथुन स्वेन को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद उनके हार्ट को डोनेट करने का फैसला लिया गया, लेकिन बारिश की वजह से उनके हार्ट को सही समय पर हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर से ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में उनके हार्ट को वंदे भारत ट्रेन ने भेजने का फैसला किया। डॉक्टरों की एक टीम सूरत से हार्ट लेकर वंदे भारत में सवार हुई और लगभग 3 घंटे 45 मिनट में ये अहमदाबाद पहुंची। इसके बाद अहमदाबाद में इसे ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यूएन मेहता अस्पताल में पहुंचाया गया। एक दूसरे मामले में रविवार को एक और धड़कते दिल को वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए अंकलेश्वर से अहमदाबाद पहुंचाया गया। इस ऑपरेशन के लिए पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर स्पेशल रूप से रोका गया। डोनर हार्ट को श्रीमती जयाबेन मोदी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निकाला गया था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने अस्पताल से रेलवे स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे दिल को बिना किसी देरी के स्टेशन तक पहुंचाया गया। फिर अहमदाबाद में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार था जब वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए डोनर हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए अहमदाबाद पहुंचाया गया। बढ़ते हैं आगे और अभी तक आपने एआई रोबोट देखे होंगे, एआई चैटबॉट देखे होंगे, लेकिन अब एआई क्लासरूम ने भी दस्तक दे दी है। जी हाँ, वो भी सरकारी स्कूलों में। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक नए दौर में एंट्री कर चुकी है। इसी से जुड़ी हमारी आज की अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एआई से पढ़ाई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने सरोजनी नगर में एक स्कूल में ऐसी अत्याधुनिक अनुभव शाला शुरू की है, जहां बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ नहीं रहे बल्कि उसे जी भी रहे हैं। स्पेस साइंस, जिसे कभी रॉकेट साइंस कहकर सबसे कठिन विषय माना जाता था, अब बच्चों के लिए रोमांचक अनुभव बन चुका है।

0: कभी ब्लैक बोर्ड, चौक और किताबों तक सीमित रहने वाले क्लासरूम अब पूरी तरह बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति ला दी है।
1: There was a question here, like which was the lighter gas than air. So I answered helium, and I have to find out where is helium. Then I have to put it in periodic table.
0: अब स्पेस साइंस जैसी जटिल पढ़ाई हो या फिर गणित के कठिन सवाल, बच्चे इन्हें सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि खुद अनुभव कर रहे हैं। ये तस्वीर किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने सरोजनी नगर में अपने स्कूल में शुरू की है, जिसका नाम अनुभव शाला रखा गया है, जहां आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई को रोमांचक और आसान बनाया गया है।
2: ये इस क्लास का ये लैब है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट लगे हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, एक्सपर्ट है। इस पूरे चीज में ये क्या है और क्या इसमें नई, आप इस तस्वीर को देखिए, इसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आप स्पेस में हैं। यानी ये बताता है कि यहाँ जो भी है चीजें वो स्पेस से रिलेटेड जानकारी देगी।
0: सरकारी स्कूल के इस क्लासरूम में एंट्री करते ही ऐसा एहसास होता है मानो आप किसी स्पेसशिप में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़े हैं। दीवारों पर ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाओं की दुनिया, छत पर चमकते तारे और चारों ओर डिजिटल तकनीक का अनूठा संगम जो बच्चों की कल्पनाओं को नई उड़ान देता है। खास बात है कि हाईटेक सुविधाओं से लैस ये क्लासरूम पढ़ाई का पूरा तरीका बदल रहा है। चंद्रमा की सतह कैसी दिखती है, अंतरिक्ष यान कैसे काम करता है, रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, ग्रहों की गति कैसी होती है, इन सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव के साथ मिल रहे हैं।
2: कैसे अनुभव होता है, आप क्या करते हो जो आपको अनुभव होता है?
1: सर, हमें मून के बारे में पता चलता है कि मून का सरफेस कैसा है और मून में मतलब कौन कौन से मिशन गए थे, जैसे अपोलो 11, चंद्रयान 3।
2: अच्छा, अगर इस इक्विपमेंट की बात करें जो आपके पीछे रखा है, इससे आप कैसे ऑपरेट करते हैं और क्या जानकारी मिलती है?
1: सर, ये VRs है जिससे हमें पहन के पता चलता है, हम फील कर पाते हैं कि हम मून पर हैं।
0: इन तस्वीरों से साफ है कि बच्चे अब केवल किताबों में चंद्रमा या ग्रहों की तस्वीरें नहीं देख रहे बल्कि AI तकनीक के जरिए अंतरिक्ष को बेहद करीब से महसूस भी कर रहे हैं।
2: कि अभी ये मून के स्पेस पे है और ये चीजें आमतौर पर अभी तक जो है बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाती थी, लेकिन आप देखिए AI तकनीक के द्वारा इस चीज को अब ये लैब में दिखाया जा रहा है कि कैसे मून में जब हमारा कोई भी चंद्रयान जाता है तो कैसे काम करता है।
0: AI तकनीक बच्चों के सीखने, सोचने, समझने की शक्ति को बढ़ाती है। इससे पढ़ाई न केवल आसान होती है बल्कि बच्चों की जिज्ञासा, रचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता भी बढ़ती है।
3: कोशिश करी है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ना पढ़े, क्योंकि जब से पुराने टाइम की बात करते हैं तो बच्चे रट्टा, जो जिसे हम रट्टा बोलते हैं, किताबों को बस पढ़ते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं। बट इस लैब में हम एक तरह से एक नई दुनिया में बच्चों को डालते हैं VR हेडसेट्स के थ्रू, और उन्हें वो 3D मतलब अपने सामने बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस जगह पर है।
0: इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम शिक्षा व्यवस्था की नई तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। आज का क्लासरूम सिर्फ पढ़ाने की जगह नहीं रहा बल्कि बच्चों की कल्पनाओं को पंख देने वाली प्रयोगशाला बन चुका है। किताबों से निकलकर अनुभव तक पहुंचती इस नई शिक्षा प्रणाली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वर्षों में क्लासरूम सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होंगे बल्कि ऐसे इनोवेशन सेंटर बनेंगे जहां बच्चे हर विषय को अपनी आंखों से देखेंगे, रोचक अंदाज में समझेंगे और अपने अनुभव से सीखेंगे। दिल्ली से अमरदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सहारनपुर, जिसे वुडन सिटी भी कहा जाता है, वहां के कारोबारी पारंपरिक हुनर को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के काम में जुटे हुए हैं और उनके इस काम में मदद कर रही सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी कि ODOP योजना। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है ODOP से मालामाल सहारनपुर के लकड़ी कारोबारी खाताखेड़ी समेत सहारनपुर के कई इलाकों में लकड़ी के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट का बड़ा कारोबार है। यहां पर सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, अलमारी, झूले, टेबल और लकड़ी से बने सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं, जिनकी मांग देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी काफी है।

0: सहारनपुर, जिसे देश दुनिया में वुडन सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की लकड़ी पर कारीगरों के हाथों से उकेरी गई महीन नक्काशी सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला और हजारों परिवारों की रोजी रोटी है। यहाँ सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, अलमारी, झूले, टेबल और लकड़ी से बने सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं, जिनकी मांग देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी है। सहारनपुर के लकड़ी कारोबार को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP में शामिल किए जाने के बाद अब इस पारंपरिक हुनर को नई तकनीक के साथ ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ODOP योजना से सहारनपुर के छोटे कारीगरों से लेकर बड़े कारखानों के मालिकों तक को फायदा मिला है। कारीगर लोन लेकर अपने काम को बड़े स्तर तक ले जा रहे हैं।
1: इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर की एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। आप यहां देखेंगे किस तरीके से जो काम है वो यहां पर चल रहा है। अगर कहें कि जो लकड़ी का जो सामान है उस पर किस तरीके से आकार दिया जाता है, उस पर किस तरीके से नक्काशी की जाती है, वो यहां पर कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया जा रहा है। अब यहां पर इन सभी सामानों को तैयार करने के बाद इसकी जो पैकिंग है वो की जाती है, उसके बाद जो विदेशों से जो ऑर्डर आते हैं फिर उन्हें वहां पर सप्लाई तक किया जाता है।
0: यहाँ कारीगर सरकार की मदद का लाभ ले रहे हैं। सरकार से मिली सब्सिडी की मदद से नई मशीनरी खरीदी जा रही है और बड़े बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं। सहारनपुर की लकड़ी की पहचान अब सिर्फ पारंपरिक हाथ के हुनर तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक मशीनों ने उत्पादन और लकड़ी की गुणवत्ता दोनों को बेहतर करने का काम किया है।
2: ODP वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का जो योजना चला हुआ है तो उनसे पूरे सहारनपुर में कारीगरों को बहुत लाभ है और बड़े बड़े कारखानेदारों को भी लाभ है, क्योंकि वो मशीन आती हैं सरकार की तरफ से जो है, मतलब सीजन प्लांट आती है और मशीनें बहुत सारी आती हैं, तो उनसे जो है वो कारीगरों को बहुत सहूलियत हो जाता है काम करने के लिए।
0: सरकार के प्रोत्साहन से पूरे लकड़ी कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिला है और आज यहाँ के कारोबारियों के प्रोडक्ट जर्मनी, अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं। सरकार का लोकल टू ग्लोबल का विजन यहां जमीन पर दिखाई दे रहा है।
3: भाई योजना तो बहुत अच्छी है और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने और आगे भी ऐसी योजनाएं लाएं और आम लोगों को फायदा पहुंचे।
0: यहां कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहां समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां कारीगर नई तकनीक सीखते हैं और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एक समय लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी यहां की लकड़ी की कला से जुड़े कारीगरों को एक तरह से जीवनदान मिला है।
4: लोगों को बहुत सब्सिडी मिली है। जो छोटा सा ही कारोबारी था जिसको बड़ा बिजनेस करना था उसको डायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्प तो मिली है, मगर जो बाद में जो सब्सिडीज इनकी जो गवर्नमेंट की जो अवेल करते हैं वो सब्सिडीज माइंड ब्लोइंग लाइक है। वो बिल्कुल टाइमली सब्सिडीज आती है, लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने।
0: जिला उद्योग विभाग के मुताबिक सहारनपुर में करीब 350 निर्यातक यूनिट हैं और वुडन इंडस्ट्री का कारोबार करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ से लकड़ी के उत्पाद विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और वर्तमान समय में भी कई नई यूनिटें स्थापित हो रही हैं।
5: यहाँ पे ODOP का अच्छा कारोबार है, चूँकि कास्ट कला प्राचीन समय से ही सहारनपुर कास्ट कला के लिए फेमस रहा। यहाँ पे लगभग 350 निर्यातक यूनिट है और 1000 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर है, विदेशों में एक्सपोर्ट भी होता है और वर्तमान समय में भी बहुत सारी यूनिटें लग रही हैं।
0: सहारनपुर की वुडन इंडस्ट्री में अब परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। कारीगरों के हाथों का हुनर, आधुनिक मशीनों का साथ, सरकारी योजनाओं की आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और देश विदेश तक पहुँचता बाजार, इन सभी ने मिलकर सहारनपुर के लकड़ी कारोबार को नई पहचान दी है। राहुल कुमार, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे।
6: जंगल का राजा अगर आपके सामने आ जाए तो शायद आप एक ही पल के लिए सांस रोक लेंगे, लेकिन जरा सोचिए अगर एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 शेरों का कुनबा अचानक सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दे तो नजारा कैसा होगा। गुजरात के गीर से ऐसे ही हैरान कर देने वाली खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है, जहां शेरों के पूरे परिवार ने कुछ देर के लिए सड़क पर ही अपना डेरा जमा लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, गीर में सड़क पर शेरों की मस्ती। जी हाँ, गीर के जंगलों में सड़क पर बेखौफ अंदाज में चलते शेर बताते हैं कि गीर के जंगल आज भी एशियाई शेरों का सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक घर है। एक दो नहीं, पूरे 12 शेरों का कुनबा सड़क पर निकल आया। इनमें बड़े शेरों के साथ शावक भी शामिल थे। पूरा परिवार बेहद शांत अंदाज में सड़क पर टहलता रहा और आसपास का माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल थम सा गया। गीर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का इलाका दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास माना जाता है। इसी के साथ 7:07 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमला, इस्कॉन मंदिर में गोलीबारी का सच क्या? असम की बाढ़ में बह गए दर्जनों घर, सबसे क्यूट प्रार्थना। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
9: Hot mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you nonstop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: देशभर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया जलाभिषेक, सोमनाथ में भी हर हर महादेव की गूंज। महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। देवभूमि उत्तराखंड में भी सावन के पहले सोमवार का उत्साह, केदारनाथ धाम में भक्तों की कतार, बद्रीनाथ दरबार में बांटा गया प्रसाद। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण, मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़िया। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पटना के इस्कॉन मंदिर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। क्या इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे असम का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घर जमीन दोस्त हो गए। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
4: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी। मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह है ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक ओरिजिनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार ATS द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें DD न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठ साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुडनेस टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है, क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभरा कर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
5: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
3: दरअसल सोशल मीडिया पर असम की बाढ़ का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है, ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह है कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
5: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल पर भी जांचा, तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल AI डिटेक्शन ने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: पहला सोमवार भोलेनाथ की जय जयकार, रक्षाबंधन का त्योहार, डाक विभाग तैयार। ग्लासगो के पदक वीरों को सलाम। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
0: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
6: Swing and a foul out of play off to the left.
0: Big 12 Radio.
7: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
0: Talk Sport.
8: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
0: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: हर वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
4: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता, और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहाँ आँख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्चे की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्चे पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई। घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो। हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हो जाती हैं? शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से धन धान्य का लाभ होता है? शिवलिंग पर क्या अर्पित करें मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: Schwarber to right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से,
5: खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। सावन के पहले सोमवार कैसे हैं भक्ति के रंग? काशी से केदार आस्था का उत्साह आज आपको दिखाएंगे। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन को लेकर इस बार कैसी है डाक विभाग की तैयारी, वो भी जानिए। और ग्लासगो के पदक वीरों से आपको मिलवाएंगे। 13 में से 8 गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों से जानिए उनकी सफलता की कहानी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: देशभर में सावन के पहले सोमवार की रौनक, काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया जलाभिषेक। सोमनाथ में भी हर हर महादेव की गूंज। महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मनमहेश स्वरूप के दर्शन, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद।

प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने उमड़ा जन सैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। पवित्र सावन महीने में धूमधाम से जारी कांवड़ यात्रा, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में नजर आया शिव शंकर का भक्त रावण, मुंगेर से महाकाल की भव्य झांकी के साथ निकला कांवड़। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले सावन सोमवार और शिव भक्तों की करेंगे। श्रावण मास के पहले सोमवार के मौके पर देश भर के तमाम छोटे बड़े शिवालयों और द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक के लिए दिन भर भक्तों की कतार लगी रही। मान्यता यह है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों की

0: श्रावण मास का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, हर तरफ हो रही देवाधिदेव महादेव की जय जयकार। महाकालेश्वर से लेकर ओमकारेश्वर तक, केदार से लेकर काशी और बैद्यनाथ धाम तक, और इसी तरह दूसरे शिव मंदिरों में भी आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब सावन के पहले सोमवार पर देखने को मिला। इन आस्थावान भक्तों में कोई परिवार संग जलाभिषेक के लिए पहुंचा और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ये तस्वीर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई है, जहां तड़के दूध दही और फलों के ताजे रस से पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग और सूखे मेवों से मनोहारी श्रृंगार किया गया। निराकार से साकार रूप में दर्शन देने पधारे बाबा महाकाल को महानिवारणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित की गई, और फिर मंदिर के पुजारियों की ओर से मुख्य महाआरती होते ही हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन किए। इस दौरान पूरा महाकाल मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा।
1: बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार के दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती की जा रही है। बाबा के दूध दही घी से पंचामृत से अभिषेक किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। लाखों भक्त बाबा के दरबार के अंदर आज यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा की एक झलक पा रहे हैं और एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं।
2: यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, बट भस्म आरती जो यहाँ पे होती है उसका अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर में। मुझे इससे काफी शांति मिली है, पीस मिला है मुझे इसकी वजह से।
0: मध्य प्रदेश में ही भगवान शिव का एक और दिव्य धाम मौजूद है, और वो है ओमकारेश्वर। वहाँ भी सावन के पहले सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना हुई, और इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन का सिलसिला हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा। ओंकारेश्वर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव दो दिव्य स्वरूप में विराजमान है। नर्मदा के उत्तर तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। धार्मिक मान्यता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग के पूर्ण दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे।
3: बस महादेव से मनाए कि इस पावन सावन महीने में हम लोग को भी उद्धार करे, जिस तरह सबको करते हैं और हम लोग का कष्ट दूर करे, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बाबा का आशीर्वाद लग जाए तो मौलतान बाबा सबका कल्याण करता है, तो हम लोग का भी कल्याण हो जाए इस सावन महीने में, और क्या बताए।
0: उधर देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद बाबा केदारनाथ के धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद बाबा केदार के इन भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। पूरा मंदिर परिसर दिन भर बाबा केदारनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। आस्था और भक्ति का ऐसा ही अद्भुत और अलौकिक मंजर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी देखने को मिला। तड़के बाबा विश्वनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ और फिर बेलपत्र और फूलों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद देश और विदेश से आए शिव भक्तों के लिए बाबा के द्वार खोल दिए गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, मंदिर के बाहर कतार बढ़ती गई। कतार में लगे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए, ताकि लोग सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
4: सावन का पावन महा भोलेनाथ को अति प्रिय है। यही वजह है कि आज सावन के सोमवार के पहले दिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश और विदेश से शिव भक्त पहुंच रहे हैं, बल्कि परंपरा अनुसार जो स्थानीय यादव बंधु हैं वे भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सीधे गंगा स्नान करने के बाद यादव बंधु अपने पात्रों में

0: लेकर बाबा के दरबार विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं।
1: ये मेरा पहली बार है, हम लोग बालेश्वर से आए हैं लेकिन तीन दोस्त मिलकर आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब हम लोग नमो घाट से पानी उठाए थे और पैदल चल के यहाँ तक आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो सिस्टम है बहुत बैरिकेडिंग बहुत सुरख मैंने बहुत अच्छा से हम लोग डाले, कुछ लगभग या कुछ जो भीड़ इतना ज़्यादा पता नहीं चला।
2: 30 तारीख को आए थे और 22 अगस्त तक रहेंगे, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं।
3: पहला सोमवार है, हम लोग बाबा का जल अभिषेक करते हैं पहला सावन सोमवार को, यादव बंधु लोग।
0: कब से करते चले आ रहे, कितनी पीढ़ी से आप लोग
3: आ रहे? ये करीब सदियों से आ रहा है,
0: आप लोग
3: बाबा दादा पर ज्यादा दादा से आ रहा है।
4: सावन के इस महीने में बाबा बैद्यनाथ का धाम भी शिव भक्तों और कांवड़ियों से गुलजार हो उठा है। दूर दूर से लोग बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं से खचाखच भरे दिखाई दिए। इनमें ज्यादातर कांवड़िये हैं जो बिहार के सुल्तानगंज से गंगा लेकर लगभग 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचे हैं।
5: जय बाबा बैद्यनाथ। आज पहला सोमवार है, सोमवार में अनंत भक्त आ रहे हैं, एकदम जन सैलाब चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे।
1: देखिए आज श्रावणी 2026 का पहला सोमवार है, भीड़ काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। कल का संडे का मतलब रविवार का अगर डेटा देखें तो 1.5 लाख लोग आए थे। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास लोग या उससे अतिरिक्त लोग भी जो है वो जलार्पण कर सकते हैं। इसको पिछले साल के लर्निंग के तौर पे हमने लिया था, इस बार हमने बाह्य अर्घा जो है उसे एक्सटेंड कर दिया था, 7 फुट से बड़ा हो गया। जो लोग जलार्पण करने के लिए लंबी कतार में नहीं लग पा रहे वो लोग बाहरी अर्घा से कर सकते हैं। लाइन को व्यवस्थित की गई है, बहुत ज्यादा संख्या में एक्सपेंडेबल बैरियर्स लाए गए हैं ताकि लोगों को व्यवस्थित और मंदिर के अंदर भी कतार में रख सके।
4: श्रावण मास के इस पवित्र महीने में शहर शहर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और उनकी अनोखी कांवड़ भी देखने को मिल रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंगेर से आई है जहां कोलकाता से आए कुछ शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को बाबा महाकाल के स्वरूप में सजाया है और 100 लीटर जल रखा, जो हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये सभी शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर निकले हैं और 10 से 12 अगस्त के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, खंडवा से जय नागदा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, वाराणसी से रोशन जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और मुंगेर से गोविंद कुमार, गुड न्यूज टुडे।
6: और अगली खबर है रक्षाबंधन से जुड़ी। इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी, राजस्थान की पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: स्नेह, विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स, रोली, कुमकुम, उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए की कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम, मोली, मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन हो चुका है, लेकिन इस बार ग्लासगो में हुआ खेलों का ये महाकुंभ भारत के लिए कई मायनों में बहुत खास रहा। कम खेल, कम खिलाड़ी होने के बावजूद सक्सेस रेट पिछले कॉमनवेल्थ खेलों के मुकाबले ज्यादा रहा। गोल्ड मेडल ज्यादा आए, बॉक्सिंग में बेटियों ने इतिहास रचा, जूडो में भारत को नई उम्मीद मिली और सोना जीतने में बेटियां अव्वल रही। क्या खास रहा इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में, इस रिपोर्ट में देखिए।

0: ग्लासगो में अपना दमखम दिखाकर भारतीय खिलाड़ी वतन लौटने लगे हैं। चेहरे पर कामयाबी की चमक है, तिरंगा ऊंचा रखने का मान है, परिवार जश्न में डूबा हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कई मायनों में खास रहा। वैसे मेडल टैली की बात करें तो भारत इस बार भी चौथे पायदान पर रहा और 2022 के मुकाबले मेडल भी कम आए। बर्मिंघम 2022 में जहां 61 मेडल आए थे, वहीं इस बार ये घटकर 39 रह गया। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो समझ आएगा कि इस बार खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले बेहतर रहे हैं। ग्लासगो में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि बर्मिंघम 2022 में 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो 2026 में महज 10 खेल शामिल थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल ग्लासगो गेम्स का हिस्सा नहीं थे, जिनसे 2022 में भारत को 30 पदक मिले थे। इसके अलावा इस बार खिलाड़ी भी कम थे। 2022 में जहां 2010 खिलाड़ियों का दल बर्मिंघम गया था, वहीं इस बार भारत ने सिर्फ 123 खिलाड़ियों का दल ग्लासगो भेजा था। इस लिहाज से देखें तो ग्लासगो में सक्सेस रेट भी ज्यादा रहा। 123 खिलाड़ियों में से 38 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, यानी सक्सेस रेट 31%, जबकि 2022 बर्मिंघम में ये 29% था। गोल्ड मेडल के मामले में भी ग्लासगो में खिलाड़ियों ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। भारत को 6 गोल्ड समेत 31 मेडल मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने अनुमान से 2 गुना से भी ज्यादा 13 गोल्ड जीते। भारत 13 गोल्ड के साथ मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा उससे आगे रहे। खेलों की संख्या कम होने और दल छोटा होने के बावजूद टीम टॉप 4 में पहुंच गई, जबकि 2022 बर्मिंघम गेम्स में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। एक और दिलचस्प बात ये कि इस पोजीशन को हासिल करने में भारत की बेटियों का बड़ा हाथ रहा है। 13 गोल्ड मेडल में से 8 मेडल बेटियों ने जीते हैं। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में, पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने शॉटपुट में, अस्मिता डे ने जूडो में, तो वहीं साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घांगस और अरुंधति चौधरी ने बॉक्सिंग में सोने का मेडल हासिल किया।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस से। जैसा हमने उम्मीद किया उसमें 2-4% और हम ऐड कर सकते थे, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है वेटलिफ्टिंग की। एक्सेप्शन है मीरा, वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अकेली महिला है जिसने लगातार 4 मेडल लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। पूरे विश्व में अकेली महिला है जो उसके डिसिप्लिन और डेडिकेशन से संभव हुआ है, और प्लेयरों को उससे सीखना चाहिए कि एक अगर आप डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम करते हैं तो आप कुछ भी अच्छा।
0: भारत की सबसे ज्यादा उम्मीदें बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और एथलेटिक्स से थीं, जिन्होंने मिलकर 26 मेडल दिलाए। भारत का सबसे सफल खेल बॉक्सिंग रहा। 14 मुक्केबाजों के दल में से 10 खिलाड़ी मेडल जीतकर लौटे, इसमें 7 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल रहे, यानी 71% मेडल कन्वर्जन रेट। बर्मिंघम 2022 में ये आंकड़ा 58% था। जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल चैंपियन बने, जबकि लवलीना बोरगोहेन, जादुमनी सिंह और नरेंद्र बेरवाल ने सिल्वर जीता।
2: देखिए, 7 गोल्ड और 3 सिल्वर, इतिहास में कभी भी किसी टीम के भी कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल नहीं आए, तो ऐतिहासिक एक परफॉर्मेंस भारतीय टीम की रही है। इससे पहले 1986 में कनाडा के 6 गोल्ड आए थे, तो पहली बार किसी टीम के 7 गोल्ड और 3 सिल्वर आए।
0: जूडो से बहुत उम्मीदें नहीं थी, लेकिन ग्लासगो में कमाल हुआ। जूडो में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ इतिहास में गोल्ड जीता। अस्मिता डे ने गोल्ड दिलाया। इसके कुछ मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड जीत लिया। यामिनी मौरी ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज जीत कर जूडो में भारत की उम्मीदों को नया मुकाम दिया।
3: बहुत ही बड़ा पल था और अच्छा था सर, क्योंकि पूरे इतने देश के सामने, इतने कंट्री के सामने मेरे इंडिया का झंडा जब ऊपर जा रहे थे सबसे ऊपर, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और जो हमारे नेशनल एंथम बजा था हमारे देश के, तो मुझे भी बहुत अच्छा और गर्व फील हुआ सर।
0: पैरा एथलीट ने भी ग्लासगो में तिरंगा शान से लहराया। भारत के सिर्फ 11 पैरा एथलीट ग्लासगो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने 6 मेडल जीत लिए। इनमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल रहे। दिलीप गावित, सोमन राणा और शर्मिला धनकर ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा।
4: तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ और इंडियन आर्मी में 2008 गोरखा राइफल में सेवारत हूँ। बहुत अच्छा लगा इतना बड़े मंच पर इंडिया के में प्रतिनिधित्व करना और गोल्ड मेडल लेना, बहुत खुश लग रहा है।
0: देश के लिए मेडल जीतने का सपना, उसके लिए कड़ी मेहनत और फिर उसे पूरा होते देखना किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे खास शायद ही कुछ हो। लेकिन उनकी इस तपस्या में परिवार की भूमिका भी कम नहीं होती। ऐसे में अब जब मेहनत रंग ले आई है, कामयाबी ने कदम चूम लिए हैं, तो खिलाड़ियों के घरों में भी जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां नजर डालिए वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ये एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी, खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हमें कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। गिफ्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5, 7, 10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे पिक, ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का, बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दुल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: Tunein's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। आज आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु अर्पित करने से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:03 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:54 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:54 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में और मंगल तथा बुध विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम सावन में शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव जी की पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं और जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना पूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान या विधान पाया जाता है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ये शिवलिंग अपने आप धरती के अंदर से प्रकट होते हैं, इनको स्वयंभू मानते हैं और स्वयंभू मान करके इनकी पूजा की जाती है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचिए, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के भी योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। जब भी आप शिवलिंग पर कोई वस्तु, जल, दूध ये अर्पित करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीज अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी धारा बना करके धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ जैसे फल, बेलपत्र आदि अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से शिवलिंग की पूजा ना करें। जब आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित कर रहे हैं तो उस समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सामान्यतः जब रुद्राभिषेक किया जाता है, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक होता है, तो रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। अगर आप ये ना कर सकें तो एक विशेष मंत्र पढ़िए और शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करिएगा। मंत्र होगा, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं या आप निरंतर नमः शिवाय का जप करते जाएं और शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करें, शिवलिंग का अभिषेक करते जाएं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीज अर्पित करने से किस तरह का लाभ होता है। अगर आप शिवलिंग पर घी की धारा अर्पित करते हैं तो इससे आपके वंश का विस्तार होता है। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अगर अभिषेक करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के दुर्योग, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अगर आप अभिषेक करें तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक शहद से करें तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप अभिषेक करें तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल में शक्कर मिला करके शक्कर मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करें तो संतान प्राप्ति आसानी से होती है। शिवलिंग का भस्म से भी अभिषेक होता है और भस्म से अभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अलग अलग वस्तुओं से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जल से अभिषेक करना। शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, सूर्य देव नमस्कार से और भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए आप शिवलिंग पर कुछ अर्पित कर सकें या ना कर सकें, नियमित रूप से जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में किसी तरह का शस्त्र, चाकू, पिस्तौल आदि या नुकीली चीजें मत रखिए। अगर अपने बेडरूम में कोई शस्त्र रखेंगे, नुकीली चीज रखेंगे, तो वैवाहिक जीवन में विवाद और हिंसा आपके बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: खबरें तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: गर्मी का मौसम हो और दिन भर इतनी तेज धूप पड़े कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, तो लोग क्या करते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू के लोगों ने इसका बड़ा दिलचस्प तरीका खोज निकाला है। अब वहां लोग दिन की बजाय रात में घरों से बाहर निकलते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, शहर की सड़कें, पार्क और खुले मैदान लोगों से गुलजार हो जाते हैं।
8: दिन भर की गर्मी और फिर ढलती शाम, जैसे सूरज की तपिश कम होती है, चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू की सड़कों पर जिंदगी एकदम नए अंदाज में दौड़ने लगती है। पार्क हो या ग्रीनवे, हर तरफ साइकिल चलाते लोगों की लंबी कतारें नजर आ जाती है। नाइट साइकिलिंग यहां सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं रही, बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने और तनाव दूर करने का नया ट्रेंड बन चुका है। चीन में बदलती लाइफस्टाइल का असर कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल किराए पर देने वाली दुकानों में रात के समय ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, बढ़ती मांग को देखते हुए कई स्टोर्स ने अब 24 घंटे सेवा देना भी शुरू कर दिया है।
9: 随着夏至到来，我们门店夜晚骑行的客户占比越来越多，基本上能占到60%左右。为了更好地服务这些夜骑的客户群体，我们的营业时间也调整为24小时。
8: सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, चेंगदू के शॉपिंग मॉल्स भी अब रात में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नए सेंटर बन चुके हैं। मॉल्स के भीतर बने स्पोर्ट्स जोन युवाओं और परिवारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग खेलते हैं, फिर खरीदारी करते हैं और रेस्टोरेंट में समय बिताते हैं। यानी फिटनेस के साथ साथ नाइट इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ रही है।
10: 我们整个商场里头，就是运夜间运动带给我们的一个客流，大概会占到我们整个商场夜间客流的20%左右。很重要的是，现在的夜间经济，大家也会叫着自己的朋友或者家人一起过来，所以还会有很多潜在的一个消费增长。
8: चीन के इस शहर में रॉक क्लाइंबिंग भी रात की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो चुकी है। दफ्तर से लौटने वाले लोग बड़ी संख्या में क्लाइंबिंग जिम कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई जिम ने अपने संचालन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि नौकरी पेशा लोग भी आराम से क्लास में हिस्सा ले सके। चीन के चिंगदू शहर की ये नाइट स्पोर्ट्स संस्कृति केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी खूब लुभा रही है। ब्रिटेन से आए नील फॉस्टर ने पहली बार रात में रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव लिया। उनका कहना है कि अपने देश की भीषण गर्मी के मुकाबले चिंगदू की शामें कहीं ज्यादा सुहानी है और दोस्तों के साथ खेलते हुए दिन का अंत करना एक शानदार एहसास है। गर्मी से राहत पाने का ये तरीका अब सिर्फ मौसम से जुड़ी मजबूरी नहीं बल्कि एक नया लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। चिंगदू में रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि फिटनेस, रोमांच और बढ़ते कारोबार से भी जगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: देश भर में सावन के पहले सोमवार की रौनक। काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया जलाभिषेक। सोमनाथ में भी हर हर महादेव की गूंज। महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मनमहेश स्वरूप के दर्शन। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन। रोमांचक प्रतियोगिता को देखने उमड़ा जनसैलाब। सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन।

0: हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम में रखी जा रही नजर। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा नांदेड़ के सहस्त्रकुंड मेले की भी है जो पहली बारिश में ही ओवरफ्लो हो गया और वहां के खूबसूरत नजारे को देखने सैलानियों की भीड़ लग गई है।
1: श्री अमरनाथ यात्रा का आज 32वां दिन है। आज सभी श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से अमरनाथ धाम भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला आज चंद्रकोट इलाके से गुजरा। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं

0: और 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। यानी ट्रेडर्स, बिजनेस से जुड़े लोगों और गिफ्टिंग इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक्सपो नए आइडियाज, नए कारोबार और नए अवसरों का बड़ा मंच बन गया है। बिहार के गया जी में मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2026 का भव्य आगाज हो गया है, जिसमें लगभग 150 स्टॉल लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेला गया जी के गांधी मैदान में लगाया गया है। कल से शुरू हुआ ये मेला 16 अगस्त तक चलेगा। स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों समेत लगभग 150 स्टॉल यहां लगे हुए हैं। मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, घरेलू सजावट, आभूषण, चमड़े के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स प्रदर्शित किए गए हैं और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया गया है। यहां इस मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार देना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। गुजरात के गिर से एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा सामने आया है। गिर सोमनाथ जिले की जामवाला तालाला सड़क पर अचानक एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 शेरों का कुनबा सड़क पर घूमता नजर आया। शेरों को सामने देखकर राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। किसी ने दूर से इस नजारे का आनंद लिया तो कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं यहां शेरों का पूरा झुंड बेहद आराम से सड़क पर टहल रहा है। गिर में एक साथ दो चार शेर दिखना भी खास माना जाता है, लेकिन एक साथ 12 शेरों का नजर आना बहुत दुर्लभ है। इन दोनों बारिश और शेरों के मैटिंग सीजन की वजह से गिर सफारी भी पर्यटकों के लिए बंद है। ऐसे में सामने आई ये तस्वीरें लोगों के लिए हैरानी और रोमांच दोनों की वजह बन गई है।
1: और अब बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की। श्रावण मास के पहले सोमवार के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रही। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भोलेनाथ की भक्ति के लिए खास माना जाता है, लेकिन सोमवार का महत्व सबसे अधिक होता है। और यही वजह है कि काशी से लेकर उज्जैन, देवघर और हरिद्वार तक देश भर के शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं।

0: सावन के पहले सोमवार पर पूरा देश शिवमय हो गया है। काशी से देवघर तक और हरिद्वार से लेकर उज्जैन तक हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे शिवालयों में गूंज रहे हैं। सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में भक्ति और आस्था की गूंज है। सुबह से ही शिव मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन में पूजन का दौर जारी है। इस खास मौके के लिए मंदिर में खूबसूरत लाइटिंग की गई। सुबह विधि विधान से बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ और भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए।
1: देवादिदेव महादेव को सावन का महा अति प्रिय है। यही वजह है कि आज सावन के पहले सोमवार के अवसर पर न केवल देश बल्कि दुनिया भर से शिव भक्त काशी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, उनका दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, उनको बिलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सावन के इस पहले सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लेने से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस गदौलिया के नंदी चौराहे पर है, जिसे गदौलिया चौराहा भी कहते हैं, नंदी चौराहा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जहाँ तक नज़रें जा रही हैं, चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त नज़र आ रहे हैं और सबकी बस एक ही इच्छा है, एक ही मनोकामना है कि भोलेनाथ के वे एक बार दर्शन कर सकें। आज बाबा के दरबार में सिर्फ इसलिए पहुँचना चाहते हैं क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। कब से लगे हैं कतार में?
2: 5 बजे से, 5 बजे सुबह से उठ के
1: 5 बजे से लगे हैं और अभी 10 बजने वाला है। तो क्या थकान है?
2: पैर में बहुत दर्द हो गया है।
1: हाँ।
2: जी,
1: लेकिन हार नहीं माने?
2: हार नहीं माने, 10 बजे रात तक भी खड़े रहेंगे।
1: 10 बजे रात तक खड़े रहेंगे।
2: हाँ।
1: कहाँ से आ रहे हैं बाबा?
3: मैं गोपालगंज से आ रहा हूँ।
1: हाँ।
3: सुबह के 5 बजे से लगे हुए हैं।
0: इस दौरान शिव भक्तों के अलावा कांवड़िए भी बोल बम और हर हर महादेव का उद्घोष करते दिखे। इसके अलावा परंपरा अनुसार यादव बंधूर स्थानीय श्रद्धालु भी बाबा विश्वनाथ का गंगा जल से जलाभिषेक करते नजर आए।
1: सावन का पावन महा भोलेनाथ को अति प्रिय है। यही वजह है कि आज सावन के सोमवार के पहले

0: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश और विदेश से शिव भक्त पहुंच रहे हैं, बल्कि परंपरा अनुसार जो स्थानीय यादव बंधु हैं वे भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सीधे गंगा स्नान करने के बाद यादव बंधु अपने पात्रों में जल लेकर बाबा के दरबार विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं जो सामान्य शिव भक्त हैं, आस्थावान हैं, और साथ ही साथ कांवड़िया भी अपनी कांवड़ लेकर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
1: बाबा धाम देवघर में भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। यहाँ श्रद्धालुओं की कतार देर रात से ही लगनी शुरू हो गई। बाबा के मंदिर से 8 किलोमीटर दूर तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही, लिहाजा प्रशासन की ओर से व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: आज पहला सोमवार है, सोमवार में अनंत भक्त आ रहे हैं, एकदम जन सैलाब चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा बैद्यनाथ। जो जो कामना लेके आ रहे हैं, भोलानाथ हमारे ओघरदानी है, सब उनकी कामना पूर्ण होता है। कोई व्यापारी आते हैं, कोई किसान आता है, कोई बिजनेसमैन आता है, सबके बाबा बैद्यनाथ सबके एक समान में आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
1: उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए भक्तों की कतार लग गई। भक्तों की भारी भीड़ की वजह से रात 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती हुई। सबसे पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया।
3: देखिए, भगवान शिव जो प्रकृति है और यह प्रकृति का महीना, चारों तरफ हरियाली है, भगवान शिव को जल प्रिय है और इस मास के अंदर वर्षा ऋतु होती है, चारों तरफ बारिश से जल ही जल होता है। इसलिए भगवान शिव ने इस महीने को चुना और यह महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होने के कारण जो भक्त लोग इस महीने के अंदर इस सोमवार से बाबा महाकाल के दरबार में आते हैं, जो 16 सोमवार करते हैं या जो सोमवार का व्रत करते हैं, तो आज ही से ही ये व्रत लेना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व है।
1: सावन के पहले सोमवार पर राजधानी दिल्ली भी शिवभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगी नजर आई। सुबह से ही गौरी शंकर मंदिर, प्राचीन श्री किलकारी भैरव मंदिर, दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर और शिवालय में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली।
4: पहला सोमवार है तो हर एक शिवालय, देश भर के जितने भी शिवालय, जितने भी श्रद्धालु है, वो उनका रुख कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सुबह 2 बजे से ये मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया गया था। तो अभी जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हो ना, ये लंबी लंबी लाइनें 2 बजे से पहले ही लोगों ने लगा ली थी, ताकि वो सबसे पहले जाकर शिवलिंग पर जो है जल अभिषेक जो है वो कर सके। और
1: सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में शिवभक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए।
5: ओम नमः पार्वती पतये, हर हर हर महादेव। श्रावण का पहला सोमवार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में, जहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए बाबा का दरबार खुल गया है। आपको बता दें कि हर कोई शंकर भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहा है। घंटों कतार में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी एक कोशिश हम भी करते हैं कि आप भी बाबुलनाथ बाबा का दर्शन कर लें। देखिए, श्रावण का सोमवार है और कितने सुंदर तरीके से बाबा के दरबार को सजाया गया है। न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बाबुलनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। तो आप लोग अपने मुंह क्यों छुपा रहे हैं?
6: मैं नहीं छुपा,
7: सारे बंकर के हैं।
5: सारे क्लास बंकर हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, शंकर भगवान का भोलेनाथ का श्रावण के पहले। कितनी देर खड़े थे कतार में?
6: हम लोग को आई थिंक 2 घंटा हो गया अभी।
5: थकावट भी हुई?
6: थकावट होती है, बट जब मंदिर के पास आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं, फिर वो एनर्जी चेंज हो जाती है।
1: सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्ति रस का संचार हो रहा है। जहां एक ओर कांवड़िए भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु पूजा पाठ और व्रत विधान से महादेव को प्रसन्न करने में जुटे हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, वाराणसी से रोशन जायसवाल, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
7: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच एक गर्भवती श्रद्धालु ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच एक गर्भवती श्रद्धालु ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली निवासी नेहा नीलकंठ से गंगाजल लेकर अपने साथियों के साथ कांवड़ यात्रा कर रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनके साथियों से उनका संपर्क टूट गया और वो अकेली ही दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। यात्रा के दौरान अचानक उन्हें लेबर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल मुजफ्फरनगर के महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां महिला ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। डॉक्टर्स की देखरेख में मां और दोनों नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देश भर में आज सावन का पहला सोमवार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जबकि हिमालयी क्षेत्रों में परंपरा अनुसार सावन का तीसरा सोमवार मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के परम पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ में भी सावन सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व देखने को मिला। परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष सावन में खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। सबसे पहले भगवान बद्री विशाल को भोग अर्पित किया जाता है, उसके बाद आदि केदारेश्वर महादेव को प्रसाद समर्पित किया जाता है और फिर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खीर का प्रसाद बांटा जाता है। आज सावन सोमवार के अवसर पर केदार धाम में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। ठंड और बारिश के बीच भक्त सुबह से ही दर्शनों और बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे दिख रहे हैं। इस साल चार धाम यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 14,25,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और इन दिनों हर रोज 1500 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय डाक विभाग ने इस बार रक्षाबंधन के लिए विशेष तैयारी की है। राजस्थान के पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से बहनें अपनी राखी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से भेज सकेंगी। पाली में डाक विभाग के अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि विशेष राखी लिफाफे वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं, जिससे राखी परिवहन के दौरान सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए राखी को कम समय में दिए गए पते पर पहुंचाया जा सकता है। गुजरात के सूरत शहर में ट्रैफिक पुलिस के एक जवान की सूझबूझ और सही समझ पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा के कारण एक बुजुर्ग की जान बच गई। सूरत के गुडादरा इलाके में एक बुजुर्ग पैदल जा रहे थे, अचानक उन्हें तेज चक्कर आया और वे बेहोश होकर सीधे सड़क पर गिर पड़े। घटना के समय पास में ही ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी परेश की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत कंट्रोल रूम और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के आने में कुछ समय लग सकता था और व्यक्ति की हालत को देखते हुए इंतजार करना जानलेवा साबित हो सकता था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने CPR देकर बुजुर्ग की जान बचा ली। और अब बात कांवड़ यात्रा की। सावन में शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर निकलते हैं। कहीं सुपर कार जैसी दिखने वाली कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी होती है, तो कहीं कांवड़ियों के लिए हाईटेक शिविर बनाया गया है।

0: गंगा घाट से लेकर कांवड़ यात्रा मार्ग तक हर ओर शिव भक्ति के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं भोले के जयकारे गूंज रहे हैं तो कहीं शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप और संकल्प पूरा कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर काशी तक, देवघर से लेकर उज्जैन तक लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं और हर दिशा हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर धाम में आस्था और विश्वास की भव्य तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ देश भर से हजारों शिव भक्त और कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। हरिद्वार में भोले के भक्त एक से बढ़कर एक कांवड़ लेकर पहुँच रहे हैं। किसी में शिव भक्ति स्वरूप को दिखाया गया है तो कोई कांवड़ देशभक्ति का संदेश दे रही है। देखिए ये 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा, जिसे 26 कांवड़ियों का दल पैदल लेकर चल रहा है। ये भोले के भक्त 11 अगस्त को अपने घर के पास भोलेनाथ के शिवालय में जल चढ़ाएंगे।
1: हमारा 221 फीट लंबा है ये और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देशभक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
0: भोलेनाथ जितने निराले हैं उनके भक्त भी उतने ही अनोखे हैं। सावन में कोई नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करता है, कोई दंडवत चलकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है और अब एक शिव भक्त अपनी अनूठी कावड़ को लेकर चर्चा में है। इस कावड़ की खासियत है एक खास स्पोर्ट्स कार जैसा रूप। मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार जैसी दिखने वाली इस कावड़ ने सबका ध्यान खींचा। मैक्लारेन थीम वाली इस कावड़ को देखकर श्रद्धालु हैरान रह गए। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह कोई असली सुपर कार है।
2: बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय।
0: इस क्रिएटिव कावड़ में भक्ति के साथ साथ शानदार ऑटोमोटिव प्रेरित कारीगरी और आकर्षक लुक का मेल है। श्रद्धालु इस अनोखे आध्यात्मिक भेंट के जरिए परिवार में शांति और आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये देखिए सहारनपुर में कावड़ियों के ठहरने, बैठने और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हुए वाटरप्रूफ शिविर तैयार किया गया है। इस शिविर में कावड़ियों को हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कावड़ियों के सामान और मोबाइल की सुरक्षा के लिए शिविर में 80 लॉकर की सुविधा दी गई है, जबकि सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 30 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। गर्मी और उमस से राहत देने के लिए 40 टेंट कूलर लगाए गए हैं।
3: कावड़ियों के लिए गेट बनाया गया है आई लव महादेव, और इसके बराबर में जो शिविर है, इस शिविर को पूरी तरीके से हाईटेक शिविर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कांवड़ियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए सभी चीज की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है।
0: इतना ही नहीं, सहारनपुर में कांवड़ियों के स्वागत और उनकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कांवड़ मार्ग को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सड़क पर आकर्षक लाइट रात के समय पूरे कांवड़ मार्ग की खूबसूरती बढ़ा रही है।
4: ये लाइट वाला जो मार्ग है लगभग 1.25 किलोमीटर के एवरेज है, 1800 मीटर के करीब है, और इसमें लगभग मुझे लगता है 6000 के आसपास, 6-7000 समथिंग इतनी लड़ियां लगी हैं।
3: जो कांवड़िए इस रोड से होकर के गुजरते हैं तो कैसा उन्हें महसूस होता है? आपकी बात होती होगी, आप 24 घंटे रोड पर रहते हैं, बात क्या कहते हैं कांवड़िए?
4: मैं पूरी रात से सुबह 4 बजे तक रोड पर रहता हूँ, 4 बजे मैं घर आके सो जाता हूँ, तो मैक्सिमम कांवड़िए बहुत खुश हैं और ये बताते हैं मेरे को कि हरिद्वार से यहाँ तक कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं।
0: कांवड़ियों की ऐसी ही रौनक बाबा बैद्यनाथ धाम मार्ग पर भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ कई किलोमीटर की यात्रा करके भक्त जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, सहारनपुर से राहुल कुमार, खंडवा से जय नगड़ा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
6: ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें गिरने और वैश्विक तनाव कम होने के बीच कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में फिर बढ़त देखने को मिली। सोमवार 3 अगस्त को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 544 अंकों की बढ़त के साथ 78,639 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 24,774 पर बंद हुआ। सोमवार सोमवार को गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सराफा व्यापारियों के मुताबिक 3 अगस्त को दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 900 रुपए गिरकर 147,400 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1800 रुपए बढ़कर 226,500 रुपए पर पहुंच गया। 3 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतें गिरने से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में फिर मजबूती देखने को मिली। सोमवार को 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 95.31 के स्तर पर बंद हुआ।
5: ओ माय डॉग में छोटा बच्चा गाना नए मॉडर्न अंदाज में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
7: उन्नीस सौ 90 के दशक के बेहद लोकप्रिय गाने छोटा बच्चा को ओह माई डॉग के लिए छोटा बच्चा 2.0 के तौर पर फिर से बनाया गया है, जिससे इस मशहूर गाने को एक नया और मॉडर्न अंदाज मिला है। ओएमजी 2 के लिए खूब तारीफें बटोरने वाले अमित राय के लिखित और निर्देशित ओह माई डॉग 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ओह माई डॉग में पंकज त्रिपाठी, पवन मल्होत्रा, माही राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, विजय मिश्रा, सुलक्षणा बरुआ और डॉग स्टार ब्रूनो और ऑस्कर के साथ साथ 250 से ज्यादा कुत्ते नजर आएंगे। इसे अमित राय, सना वारसी और राजेश भारद्वाज ने बाबूलाल बिस्कोप और थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

0: रितेश उर्सेदवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल म्यूजिक नाम से म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है। ये उनके प्रोडक्शन हाउस का अपना म्यूजिक लेबल है जो उनकी क्रिएटिव यात्रा में एक नया और अहम अध्याय है। यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप इसमें स्ट्रेटेजिक शेयर होल्डर के तौर पर शामिल हुआ है और साथ ही एक्सेल म्यूजिक के लिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर का काम भी करेगा। इस लेबल की पहली रिलीज मिर्जापुर द मूवी का साउंड ट्रैक एल्बम होगा जो 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। एक्सेल म्यूजिक में एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्मों के ओरिजिनल साउंड ट्रैक और स्कोर शामिल होंगे। साथ ही ये पूरे भारत के जाने माने फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों का म्यूजिक भी रिलीज करेगा। नितिन स्टारर फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो आ गया है। कोट स्टेट वर्सेज और नोबडी की जबरदस्त सफलता के बाद नानी के यूनानिमस प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर अपने दूसरे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। नितिन की मुख्य भूमिका वाली इस नई तेलुगु फिल्म और रुक्मणी को दीप्ति गंटा प्रोड्यूस कर रही हैं। ये फिल्म राइटर डायरेक्टर मुरलीकांत देवसूद का दूसरा निर्देशन प्रोजेक्ट है। इससे पहले उन्होंने ढंडोरा बनाई थी जिसे काफी तारीफें मिली थी। गोकुल 1757 की घोषणा कर दी गई है। इसका टीजर पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें इतिहास का एक भूला बिसरा अध्याय फिर से जीवंत कर दिया गया है। समय की धूल में दबी हिम्मत की ये गाथा गोकुल 1757 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। केव बोले विप्लोई केव बोले डाकत का ट्रेलर आ गया है। बंगाली फिल्म केव बोले विप्लोई केव बोले डाकत में जीत को अब तक के सबसे दमदार अवतार में देखने का मौका मिलने वाला है। क्रांतिकारी अनंत सिंह से प्रेरित इस शानदार कहानी में हिम्मत बगावत और आजादी की लड़ाई की कहानी नजर आएगी। ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पथिकृत वसु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तूता रॉय चौधरी प्रियंका सरकार और देवोत्तमा साहा भी हैं। इसे प्रदीप कुमार नंदी और जीतस फिल्म वर्कर्स ने प्रोड्यूस किया है।
1: इसी के साथ न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मनमहेश स्वरूप के दर्शन, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम में रखी जा रही नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक एक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत।

0: जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ गुरेज में 15 गांव के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहां यानी कि वायरल चौक पर। यहां देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: मिली एक नॉटी बच्चे से जो अपनी काम करती माँ के काम को कुछ यूं एंजॉय कर रहा है। माँ अनाज भटकने और चालने का काम कर रही है। बच्चा माँ के एक्शन को रिदम मान बिल्कुल उसी तरह नाच रहा है मानो कोई संगीत की धुन बज रही है। जैसे ही अनाज पटका जाता बच्चा भी जंप करता और जैसे ही अनाज को चाला जाता है बच्चा भी वैसे ही थरकने लगता है। माँ को लगता तो है कि पीठ पीछे कुछ चल रहा है लेकिन बच्चा माँ को पता नहीं चलने देता। अब इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसके बहाने अपने बचपन की शरारतें याद कर रहे हैं। अगस्त का महीना आ गया है और स्वतंत्रता दिवस का इंतजार किया जा रहा है। खासतौर पर बच्चे अपनी आजादी के जश्न को हमेशा अलग ढंग से मनाते हैं। इन बच्चियों को देखिए, इन्होंने तिरंगे के रंग के कपड़ों के इस्तेमाल से एक तिरंगा फूल बनाया और उसका खुशी से प्रदर्शन कर रही हैं। इन बच्चियों की ये वायरल तस्वीरें देख सोशल मीडिया पर हर कोई इंडिया इंडिया इंडिया कर रहा है। बच्चों के साथ रहने से ही हंसी खुशी और यादें बनती है। इन छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े सपने हैं और सपनों के साथ है ढेर सारी मस्ती। ये जेंजी के बाद की जनरेशन जेन अल्फा है जो इन तस्वीरों के जरिए जेंजी के रास्ते पर चल रहे हैं और इनके खुशमिजाज नन्हे दिल अपने लिए कुछ नए पल रच रहे हैं और दूसरों का दिन रोमांचक बना रहे हैं। जेंजी की वायरल रील पर जेन अल्फा बच्चों का ये प्रयोग भी सबको लुभा रहा है और हर एक चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही बच्चे तिरंगे के रंग में रंग गए हैं। तिरंगे के नारंगी हरे और सफेद रंगों से रंगे ये छोटे छोटे हाथ कुछ इस तरह आजादी का जश्न मना रहे हैं। हर बच्चे ने हाथ पर तिरंगा पेंट कराया है और वो एकता का संदेश दे रहे हैं। उनके हाथ जरूर छोटे हैं लेकिन उनके इन हाथों में भारत के भविष्य की तकदीर है क्योंकि उन्होंने बड़े सपने संजोए हैं। बच्चों की ये तस्वीरें भी खूब वायरल हैं और लोगों को भा रही हैं। सोशल मीडिया पर इस नन्ही बच्ची की समझदारी और संवेदनशीलता का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता अपने काम में मगन हैं और बच्ची की फ्रॉक पिता की कुर्सी के नीचे फंस गई है। इतनी छोटी सी बच्ची की संवेदनशीलता देखिए, वो अपने पिता के काम की महत्वता को जान उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए वो कुर्सी के पास बैठ जाती है और इंतजार करती है कि मीटिंग खत्म होगी तब कुर्सी हटेगी और फ्रॉक आजाद होगी और उसे भी आजादी मिलेगी क्योंकि पिता के काम में वो बेवजह ही फंस गई है ना। लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बच्चे की संवेदनशीलता और सहनशीलता को देख उस पर प्यार लुटा रहे हैं।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं जहां आज बात होगी बेंगलुरु के जेंजी युवाओं की फिजूल खर्ची पर वायरल हो रहे एक वीडियो की। ये वीडियो बेंगलुरु में रहने वाली कॉन्टेंट क्रिएटर समृद्धि मखीजा ने बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में समृद्धि मखीजा बेंगलुरु के युवाओं की फिजूल खर्च करने की आदतों पर सवाल उठा रही हैं और सेविंग्स पर जोर दे रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में मखीजा कहती हैं कि बेंगलुरु में 7 महीने रहने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें समझ नहीं आती जो लोग पैसे के मामले में करते हैं। मखीजा कहती हैं कि बेंगलुरु में युवा प्रोफेशनल ऊंचे किराए से लेकर कैफे और शॉपिंग मॉल में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। मखीजा के मुताबिक एक बार में कैफे में 5,000 रुपए खर्च करना 20,000 रुपए की जगह महंगे घर में रहने के लिए हर महीने 40,000 रुपए का किराया देना और एक ही बार में 20,000 रुपए की शॉपिंग करना ठीक नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि युवा कमाने वालों को अपने जीवन स्तर को लगातार बेहतर बनाने के बजाय बचत को प्राथमिकता देनी चाहिए। मखीजा ने अपनी राय देते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि 20 साल की उम्र के शुरुआती दौर में आपका ध्यान पैसे बचाने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो ऐसे जीवन का समर्थन करती हैं जिसमें आप ज्यादा कमाएं, केवल न्यूनतम खर्च करें और जितना हो सके बचत करें क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अनिश्चित है। कंटेंट क्रिएटर ने सुझाव दिया कि अधिक पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाए, खास करके करियर के शुरुआती वर्षों में। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा है कि 20 की उम्र में पैसे बचाने पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, इसके बजाय अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान दें। यूजर ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि न्यूनतम खर्च पर जीना आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि बेंगलुरु में ऑफिस के पास रहना जरूरी है क्योंकि दूर से आना जाना व्यवहारिक नहीं है। बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास 2 BHK अपार्टमेंट का किराया आसानी से 40,000 प्रति माह तक पहुंच सकता है। वहीं कुछ यूजर्स ने कंटेंट क्रिएटर की बातों से सहमति जताई और युवाओं को बचत करने की सलाह का समर्थन किया। बेंगलुरु के कंटेंट क्रिएटर के वायरल वीडियो पर हमने दिल्ली में युवाओं से बात की और उनकी राय जानी।
2: ये मैटर करता है कि आपने 20 साल से पहले क्या किया। अगर आप 20 साल से पहले जैसे मैं हूँ, मैं तो पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने 3-4 ट्रैक कर लिए हैं, बढ़िया घूम रहा हूँ, बढ़िया फिर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास नया पैसा आएगा तो मेरे पास ये रहेगी कि हाँ मेरे को अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाना है। लेकिन अब जैसे कोई और है, अब जैसे कोई और इंडिविजुअल है, एक्स है, उसने 20 साल से पहले उसके घर वाले फोकस कर रहे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो स्ट्रेस में रह रहा है, ठीक है। लेकिन 20 साल के बाद उस पर पैसा आ रहा, बढ़िया आ रहा है, तो वो पैसा देखेगा नहीं, उस पर नया नया पैसा आएगा, वो उड़ाने में खर्च करेगा ज़्यादा, क्योंकि उसने एक्सप्लोर किया नहीं है, तो उस पर पैसा बचेगा नहीं इतना। अब मैं हूँ, मैं, मेरे को पता है, मैंने इन्जॉय कर लिया 20 साल से पहले, 20 साल के बाद मेरा गोल है कि अपना फ्यूचर स्ट्रांग बनाना है, तो ये फंडा मेरा है लाइफ का। घर वाले भी तुरंत तो डिपेंडेंट हो नहीं जाते लड़कों की सैलरी पे, 5 साल तक कम से कम देते हैं। अब मैं ही कमाऊँगा अभी, तो एकदम से मैं पापा मम्मी डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे मेरे पे। तो शुरुआती 1-2 साल तो चलो नई नई सैलरी है, अपना मौज मस्ती करो, लेकिन फिर इतना बजट बना के रखो कि अपना फ्यूचर स्ट्रांग रहे आपका।
3: जब शुरू शुरू कमाना शुरू करते हैं तो उस समय तो सबसे पहले देखें कि अब वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस बैकग्राउंड से आता है। अपना बैकग्राउंड तो मेरा बैकग्राउंड तो हमेशा तो इकोनॉमिकली लो रहा, तो इसके हिसाब से मैंने मेरे पैसे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही, क्योंकि पूरी करने के लिए वो पैसे जितने आ रहे हैं वो लो होंगे तो खर्च करना ही पड़ेगा। आजकल तो जिसके पास पूरा भरा पूरा है उसके भी पैसे नहीं बच रहे हैं, तो हम लोग के पास तो पहले से भी दिक्कतें होती है, तो वो तो बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएंगे।
4: सवाल ऐसे आता है कि एक लड़की ने वीडियो बनाया, वो बोले कि जो 20 साल के बच्चे हैं मेरे पास रुक गए हैं, तो वो लोग जैसे ही पैसा आता है महंगे कैफे में चले जाते हैं, ऐसा घर लेने का किराया बहुत ज्यादा है।
3: ये ठीक बात है, ये जो आजकल देखिए, आजकल जो है प्रभावित युग है। प्रभावित युग यानी आप एक अगर मैगी बनाना शुरू करते हैं तो आप YouTube पे जाते हैं, मैगी बनाने को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वैसा ही मैगी का कलर आना चाहिए, तो उसके लिए लोग भाग रहे हैं। यानी देखा देखी बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही, पहले ये सब नहीं था, हर चीज़ सबके पास उपलब्ध थी, जो जिसमें होता था उसी में अच्छी करने की कोशिश करता, पर अब वो नहीं है, इसीलिए लोग हर चीज़ सोच रहे हैं वो खा रहा है, वो उसने स्टेटस डाला तो मैं भी ऐसे में डालूंगा, अब उसके लिए वो कमाने लग जा रहा है, दिक्कत है।
5: देखो जी, ऐसा है कि अभी मैंने तो कमाना शुरू किया नहीं है, पर जो मैं राजस्थान से हूँ एक्चुअली, तो मेरे घर वाले हैं उनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास है, ठीक ठाक बैकग्राउंड है उनका, तो उन्होंने मेरे को इतना पैसा उड़ाने के लिए नहीं दिया। सो मेरे मतलब पहले माइंड में ये थिंक आ गई कि अपने को भाई अपना फ्यूचर मजबूत बनाना है तो अपने पैसे कमाना है, तो मैं अभी से मतलब लग गया हूँ। जैसे मैंने पढ़ाई, मेरे घर वाले हैं वो काफ़ी, मेरे घर के मेम्बर्स हैं वो पढ़ाई करते हैं बहुत सारे, मैंने पढ़ाई से थोड़ा अलग मैंने बिजनेस की तरफ जाने की कोशिश की, तो मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ, पैसे कमाने की सोच रहा हूँ, जॉब नहीं करना चाहता मैं, जॉब देना चाहता हूँ लोगों को। तो अगर आप 20 साल की एज तक हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो जो एज होती है 30 तक की, 34-35 तक की, वहाँ तक आप थोड़ी ऐश करो, थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो उसमें से आधा लगाओ, फैमिली के साथ इन्जॉय करो, सारा उसको सेव करने में मत रहो। और जो बाद में है आपकी 35 अबव एज हो जाए तो आप पैसा बचाओ।
6: कभी कभी बचाने चाहिए, बट मोस्टली तो मेरे हिसाब से इस एज में तो उड़ानी चाहिए, मतलब वैसे भी ना उड़ाएं बट इतना तो हो कि ज़िंदगी जी रहे हैं, घूमना तो ज़रूरी है, फिर आगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस होगा और ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग बचाना भी ठीक है बट उड़ाना भी है, घूमना तो ज़रूरी है, मतलब अपने बजट इश्यूज के हिसाब से तो
4: लाइफ को एंजॉय करना
6: जरूरी जी।
0: और अब बात ग्लासगो की और वहां के एक रेस्टोरेंट की, जहां भारत के मैप में नॉर्थ ईस्ट कश्मीर को नहीं दिखाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना ने ग्लासगो के एक इंडियन रेस्टोरेंट की नैपकिन पर भारत का अधूरा नक्शा देखने पर नाराजगी जताई। लवलीना की आपत्ति पर रेस्टोरेंट ने भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का हिस्सा नहीं दिखाने पर माफी मांगी है और नक्शे को ठीक करने का भरोसा दिया है।

0: ग्लासगो का एक पॉपुलर भारतीय रेस्टोरेंट मिस्टर सिंह इंडिया द होम ऑफ करी इस समय सुर्खियों में है। यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट्स को डिनर पर आमंत्रित किया गया था। सिल्वर मेडल विनर बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो के इस रेस्टोरेंट में नैपकिन पर भारत के अधूरे मैप को देखकर नाराजगी जताई। इस मैप में नॉर्थ ईस्ट राज्य पूरी तरह से गायब था। लवलीना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो माइक में अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है।
0: यही नहीं, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो न सिर्फ नैपकिन बल्कि रेस्टोरेंट की दीवार पर लगे एक बड़े नक्शे से भी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर का हिस्सा गायब था।
2: फ्रेंड में गई थी उस रेस्टोरेंट के नैपकिन के ऊपर में मैप नहीं था नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर के बारे में भी। एग्जैक्टली, आपने जो रिएक्शन दिया है वो मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त? पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली।
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे। पूरे इंडिया का सभी लोग थे उधर और हम लोग खाना वाना खाने के बाद इतना ध्यान में नहीं आया था, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नॉर्थ ईस्ट के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले का मैप ही नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों खाना खाया, हमें तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा ऐसे बताया। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं लिया कि ठीक है ऐसे सोच के। फिर मैं बाहर आई, बाहर देखा पूरा रेस्ट जो वहाँ सिर्फ नैपकिन पे नहीं, एक बड़ा उन लोगों का लोगो लगाया हुआ है जिसमें भारत का मैप में नॉर्थ ईस्ट का मैप कटा हुआ है। उनका पूरा रेस्टोरेंट में भी दोनों साइड में मैप है बट दोनों मैप में नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये भारत का मैप को ऐसे कैसे कट कर सकता है। तो मैं गई और वहां पे बहुत डांस गाना भी गा रहे थे सब लोग, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा था, पूरे इंडियंस थे, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने पहले तो सबको थैंक यू बोला बट मैंने अपना बात भी रखा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एक डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे नहीं कट कर सकता है। तो ये मेरे को बोलना बहुत, मैं अगर मैं नहीं बोलती तो शायद मैं निकल के आके वहां से मैं अपने आप को रिग्रेट फील करती, तो मैंने इसीलिए बोला और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया बोल के।
0: इसके बाद लवलीना ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से की। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट को इस तरह अलग नहीं कर सकते। लवलीना के कड़े रुख के बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी गलती मानी और सफाई देते हुए कहा कि ये नक्शा ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा है जिसके कारण शायद इसे बदला नहीं गया था।
2: क्या आपकी बात वहां के किसी मैनेजर से हुई या फिर उस रेस्टोरेंट के ओनर से हुई? आप उनकी तरह आपने जो बात कही उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, गलती मानी? क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो एक कलेक्टिव मैप है, आप किसी को ऐसे ही रिमूव, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते। इस बारे में कोई बातचीत हुई आपकी वहां पर?
3: हाँ, उनके ओनर ने ही आया और मेरे से बात किया कि वो बोल रहा है कि ये ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया। और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको, बट मैंने बोला कि प्लीज आप लोग इसको चेंज कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम किसी भी नॉर्थ ईस्ट वाले को अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा बोला बस।
0: रेस्टोरेंट मैनेजर ने इस चूक के लिए लवलीना से माफी मांगी और जल्द से जल्द नक्शे को बदलने का भरोसा दिया। हालांकि इस दौरान लवलीना के चेहरे पर हंसी थी, उन्होंने बिना गुस्सा दिखाए अपनी बात रेस्टोरेंट वालों को बताई। उनके इस तरीके की भी सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे हैं।
2: जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मैप चेंज करेंगे, बट क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मैप का पार्ट नहीं था उस मैप के ऊपर में, या फिर हमारे देश के जो और भी अलग अलग हिस्से हैं उस मैप पे वो भी मिसिंग थे, कुछ आपने नजर डाला?
3: हाँ, थोड़ा सा कश्मीर का भी मैप सही नहीं है, बल्कि कश्मीर का और नॉर्थ ईस्ट का, वो दोनों थोड़ा सा कटा हुआ है मैप में।
2: दोनों कटा हुआ है मैप पे,
3: यस
2: बट फाइनली आपके कहने के बाद ओनर्स ने बोला है कि वो इसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे।
3: सही करेंगे बोला। यस
2: आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, आपने अपनी बात रखी, क्योंकि एज एन इंडियन हम इन चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा जो मैप है वो कहीं से भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो।
0: ग्लासगो का ये रेस्टोरेंट भारतीय व्यंजनों के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है और इससे पहले कई टीमों और खास मेहमानों की मेजबानी भी कर चुका है। अब इस घटना के बाद रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ने भारत के सही नक्शे का इस्तेमाल करने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन के उत्तरी इनर मंगोलिया जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: दक्षिणी फ्रांस में लगी जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यहां लगी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 200 से दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, जबकि लगभग 12 विमानों से यहां पानी का छिड़काव हो रहा है। तेज हवाओं और सूखे के चलते यहां आग तेजी से फैल रही है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। दमकल कर्मी इमारतों और दुकानों को आग से बचाने में जुटे हैं। साथ ही यहां के ऑस्ट्रेलियाई जूलॉजिकल पार्क पर भी आग का खतरा मंडरा रहा है। चीन के उत्तरी इनर मंगोलिया क्षेत्र में सैलानियों को रोमांच का अनोखा अनुभव मिल रहा है। ऊंट की सवारी से लेकर वाटर एक्टिविटी तक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनर मंगोलिया में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। जुलाई से अब तक यहां 16,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटक यहां स्नो स्केटिंग का लुत्फ उठाते हैं। उनके बीच अनोखा रोलर कोस्टर आकर्षण का केंद्र बना है। एरिन हॉट में विदेशी पर्यटक स्थानीय संस्कृति का अनुभव ले रहे हैं। कठपुतली कला, बुनाई और शुगर फिगर मेकिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए स्काई स्कूल बस शुरू की गई है। ये स्काई स्कूल बस बच्चों का सहारा बन गई है। इसके चलते यहां 3 घंटे का सफर अब 30 मिनट में पूरा हो रहा है। इस बस के लिए बना 288 मीटर ऊंचा एलिवेटर पहाड़ों की नई लाइफलाइन बन गया है। इस बस की वजह से यात्रियों की क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। यहां हर घंटे 1200 लोग अब सफर कर रहे हैं। चीन के जियांगशी प्रांत में शानदार लाइट शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के मौके पर किया गया। इस शानदार मौके पर 48 बीम प्रोजेक्टरों से नानचांग विद्रोह का इतिहास जीवंत किया गया। यहां के ऐतिहासिक इमारत जश्न के इस मौके पर रोशनी और तकनीक का अद्भुत कैनवास बनी। बोस्निया के गांव में रोम बसा है, जिसके इतिहास की झलक रोमन फेस्टिवल में नजर आई। 200 ग्रामीणों की मेहनत से यहां ऐतिहासिक रोमन महोत्सव का आयोजन किया गया। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने 72 अलग अलग जोन में आयोजित किए गए रोमन फेस्टिवल में प्राचीन कला, संस्कृति और युद्ध कौशल की झलक नजर आई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने रोमन परिधान पहने, साथ ही फायर परफॉर्मेंस, रोमन सैनिकों की परेड, घुड़सवारी और प्राचीन शिल्पकला ने फेस्टिवल को और खास बना दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने उत्सव में हिस्सा लिया।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
9: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
4: श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए बुमराह के चोटिल होने के चलते जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी आकिब नबी को मिला मौका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
11: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को टीम में शामिल किया गया है। नबी टीम इंडिया में चुने जाने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे क्रिकेटर हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से गोल में शुरू होगी। दरअसल बुमराह अभी तक घुटने की चोट से नहीं उबर पाए हैं। टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई ने उनके लंबे करियर को देखते हुए कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया है। 23 साल के आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया था, अब उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला है। ताइपेई ओपन चैंपियन बनी तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत 4 अगस्त से शुरू हो रहे कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पंजाब की 17 साल की तन्वी ने रविवार को ताइपेई ओपन के फाइनल में वियतनाम की 6th वरीयता प्राप्त थुई लिन गुएन को हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और शानदार प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ वो साइना नेहवाल के बाद ताइपेई ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी बन गई हैं। युवा साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ ने टूर दी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। रविवार को इस मुश्किल रेस के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत के दौरान 19 साल की हर्षिता ने अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, इथियोपिया, नामीबिया और युगांडा के 8 प्रतिभाशाली साइकिलिस्ट के ग्रुप को लीड किया। ये इवेंट 1 अगस्त को लॉरेंज में शुरू हुआ और 9 अगस्त को नीस में खत्म होगा। टूर दी फ्रांस फेम्स महिलाओं की मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस है, जो पुरुषों की टूर दी फ्रांस रेस जैसी ही है। ये UCI वुमेन्स वर्ल्ड टूर कैलेंडर का हिस्सा है। ग्लासगो में 11 दिनों तक चले कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है। रविवार रात को ओवो हाइड्रो एरिना में ऑस्ट्रेलियन सिंगर डेल्टा गुडरेम की परफॉर्मेंस से क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। उसके बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर डोनाल्ड रूका ने 2030 गेम्स के मेजबान भारत को मशाल सौंपी। इस मौके पर नीरज चोपड़ा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा और गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी मौजूद थे। शंकर महादेवन, मानुषी छिल्लर, सितार वादक ऋषभ रिखिराम और भूमि त्रिवेदी जैसे भारतीय कलाकारों ने इंडियन ट्रेडिशन में गेम्स का स्वागत किया। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज समेत कुल 39 मेडल जीते। इसके साथ ही मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा। इस बार ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल शामिल थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेल ग्लासगो गेम्स का हिस्सा नहीं थे, जिनसे 2022 में भारत को 30 पदक मिले थे। इसके अलावा इस बार भारत ने 210 खिलाड़ियों की जगह सिर्फ 123 खिलाड़ियों का दल भेजा था। इनमें से 38 खिलाड़ी मेडल जीत कर लौटे, यानी सक्सेस रेट 31% रही, जबकि बर्मिंघम में ये आंकड़ा 29% था।
4: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
12: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: टेक इट इजी विद सॉफ्ट हिट्स। सॉफ्ट हिट्स ब्रिंग्स टुगेदर रिलैक्सिंग पॉप फेवरेट्स फ्रॉम द 70s, 80s एंड 90s। Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
10: Sage University, transforming your passion into profession.
11: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, मुखरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

हरिद्वार की कांवड़ यात्रा में जहां 100 साल की दादी को पालकी में लेकर उनके पोते पहुंचे, वहीं पर देवघर की यात्रा में एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। सभी रंग आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महाकाल की सवारी के साथ। देखिए, सावन के प्रतीक सोमवार को महाकाल राजा की सवारी निकालने का विधान है और आज जब मंदिर से महाकाल चांदी के रथ पर सवार होकर निकले तो उनके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर मुड़ पड़े। हर साल की तरह महाकाल को बंदूकों से सलामी दी गई और आगे पीछे भक्तों की भीड़ और भजन गाती मंडलियां चली। आपको बता दें कि इस साल सावन महीने में 4 और भादु माह में 2 सवारियां निकाली जाएंगी। चलिए आपको पहली सवारी की भव्यता दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।

माथे पर त्रिपुंड, हाथों में त्रिशूल, गले सर्पमाल, डमडम डमरू बाजे, भस्म साजे, हर हर महादेव का उद्घोष भारी, ऐसे निकली उज्जैन में महाकाल की सवारी। देखने प्रजा का हाल, देने भक्तों को आशीर्वाद, सावन के पहले सोमवार जब बाबा पालकी में सवार होकर निकले तो शहर जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। सावन और भादो के हर सोमवार का इंतजार उज्जैन को रहता है। उज्जैन ही क्यों, देश और दुनिया के शिव भक्त इस खास अवसर पर महाकाल के नगरी आते हैं, क्योंकि इस दिन महाकाल की भव्य सवारी निकलती है। यूं कहें कि मंदिर से निकलकर महाकाल अपने भक्तों के बीच आते हैं। उज्जैन के राजा हैं, इसीलिए स्वागत और सम्मान भी वैसा ही होता है। रजत पालकी के मंदिर से बाहर आते ही पुलिस बैंड की धुन पर भगवान महाकाल को सलामी दी गई। और यहीं से शुरू हुआ भगवान महाकाल के नगर भ्रमण का सिलसिला। आगे आगे पुलिस का घुड़सवार दल, पीछे भजनों की धुन बजाता पुलिस बैंड और सवारी की सुरक्षा में पुलिस के सशस्त्र बल की टुकड़ी। महाकालेश्वर मंदिर का बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। बोलबम के जयकारे लगाते संत महंत और बाबा के भक्त नगरवासियों को भगवान के आगमन की सूचना देते चले।

0: लोग यहाँ कंटिन्यू दर्शन करने आते हैं, इंदौर से आते हैं, और जो दर्शन होते हैं उसका शब्दों में व्याख्यान ही नहीं हो सकता सर।
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
2: बाबा के दर्शन करके बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारा लगा।

0: झालरों से सुसज्जित भवन और भगवान शिव की भक्ति में झूमता नगर, ये तस्वीरें साल में बस कुछ दिन ही नजर आती है और इसीलिए महाकाल की सवारी देखने भक्तों का जूम उमड़ता है। सावन के पहले सोमवार को भी मंत्री, संतरी, अफसर, कर्मचारी, साधु, संत, महंत सभी खासो आम सवारी के साथ चले।
1: यह सौभाग्य है हम सभी का कि भगवान महाकाल के पास आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब उनकी प्रथम सवारी निकलना है, तब उनके चरणों में नमन करके प्रदेश और देश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा है।

महाकाल की सवारी में भांति भांति के रूप धरे गण चले, कहीं शोर था कहीं भजन की मधुरता। ढोल नगाड़ों के बीच मौजूद महाकाल की एक झलक के लिए लोग टकटकी लगाए खड़े रहे। रंगोली से सजी सड़कें

0: इस साल महाकाल की सवारी को ज्यादा भव्य आकर्षक बनाया गया है। साथ ही इसे जन जागरूकता से जोड़ने के उद्देश्य से हर सवारी के लिए अलग अलग थीम निर्धारित की गई है। पहले सोमवार की सवारी की थीम वैदिक उद्बोधन रही। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सवारी शिप्रा नदी पहुंची, जहां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया और बटुकों द्वारा शंखनाद के साथ साथ वेद पाठ किया गया। पूजन के बाद बाबा महाकाल तय मार्गों से होते हुए वापस मंदिर की ओर रवाना हुए।
1: जय श्री महाकाल। आज सावन का प्रथम सोमवार है और बाबा महाकाल अभी आरती पूजन होकर नगर भवन के लिए निकल रहे हैं और अलग ही दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरे बाबा राजा हैं यहाँ के, तो नगर भवन के लिए स्वयं ही अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं। हर सोमवार को सावन के सोमवार है, इस बार चार सोमवार को बाबा नगर भवन के लिए निकलेंगे और दो भादव की है, तो ऐसे 7 सितंबर तक 6 सवारियां निकलेगी बाबा की। और बबा महाकाल से शाम को 4 बजे निकलते हैं और नदी पे शिप्रा मैया का जल से अभिषेक किया जाता है, फिर नगर भ्रमण होते हुए पुनः शाम को मंदिर में आते हैं और भगवान की आरती पूजा की जाती है।

0: सावन में महाकाल के दरबार की छटा कुछ और है और पहले सोमवार को उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। रात 2:30 बजे से ही महाकाल मंदिर के पट खोल दिए गए। उसके बाद दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया।
1: आंधी अनादि काल से चली आ रही परंपरा है क्योंकि बाबा महाकाल विश्व के राजा है और सभी नगरवासी यहाँ के राजा के रूप में उनको पूजती है और सभी का हाल जानने के लिए स्वयं बाबा महाकाल उज्जैन की गलियों में निकलते हैं, शहर में निकलते हैं और सभी भक्तों एक झलक पाने के लिए बाबा के आतुर रहते हैं। सभी भक्त बाबा महाकाल का और उनके साथ में जो भी लाव लश्कर चलता है पूरा ढोल ताशे चलते हैं, पूरे भजन मंडलियाँ चलती है, बैंड बाजे चलते हैं, सभी का पूरे उज्जैन नगरवासी जोश से हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं। पूरी विशेष तैयारी पूरे शहर में की जाती है।
0: भांग चंदन ड्राई फ्रूट से महाकाल का राजाधिराज स्वरूप में श्रृंगार हुआ। इसके बाद महानिवारिणी अखाड़े की ओर से महाकाल को भस्म अर्पित की गई। महाकाल के दरबार में आम दिनों में भी भक्तों की भारी भीड़ होती है। लेकिन सावन के पहले सोमवार को पूरे देश से आए भक्तों की भरमार रही। अंदाजा है कि दोपहर तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। नंदी हॉल और कार्तिक मंडपम तक लंबी कतारें लगी रहीं। जब महाकाल की सवारी निकली तो एक बार फिर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर नजर आए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: उज्जैन में जहां सावन के पहले सोमवार को महाकाल की सवारी निकली, वहीं पर प्रयागराज में इक्कों की रेस यानी गहरेबाजी हुई। सावन की पूजा के साथ इक्कों की रेस की ये परंपरा बहुत पुरानी है। हालांकि इसका कोई धार्मिक विधान नहीं है, लेकिन इस रेस को देखने, खासकर घोड़ों की चाल और उनका संतुलन देखने की बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। देखिए हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
3: सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में एक पुरानी परंपरा है इक्का दौड़ की, जिसे यहाँ पर गहरेबाजी कहा जाता है। तो तमाम घोड़े, एक से एक नस्ल के घोड़े यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम जो इक्का चालक हैं अपने अपने घोड़ों को लेकर के आए हैं और तमाम वैरायटी के घोड़े हैं और यहाँ इक्का दौड़ हो रही है। इसको देखने के लिए तमाम दूर दराज से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये नया यमुना पुल है, यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है इस इक्का दौड़ को देखने के लिए आई है।
4: परंपरा बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सावन चूंकि देवाधिदेव महादेव का दिन पूरा एक महीना रहता है, हम लोग इसी घोड़े से गंगा स्नान करते थे, शिवकुटी महादेव में भोलेनाथ की पूजन करते थे और उसके बाद गहरेबाजी में अपना आनंद लेते थे। बहुत पुरानी परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें हमारे पंडा समाज का बहुत बड़ा योगदान है।
3: किस नस्ल के घोड़े होते हैं
4: इसमें? देखिए ज्यादातर तो सिंधी घोड़े होते हैं, सिंधी नस्ल के घोड़े होते हैं और उनकी चाल चौटाला होती है, दुगामा चाल भी होती है, लेकिन घोड़े जाता तो इसमें सिंधी नस्ल के ही आपको मिलेंगे, मारवाड़ी कम मिलते हैं।
3: कितनी भीड़ रहती है?
4: भीड़ तो बहुत रहती है। आप देखिए लाइन से कैमरा घुमाइए, देखिए चारों तरफ खड़े हुए हैं, बहुत भीड़ है।
3: जो इक्के हैं इनकी चाल से इनको जाना और पहचाना जाता है। तो इस इक्का दौड़ में दूर दराज से लोग आते हैं, अपने घोड़ों का और इक्कों का प्रदर्शन करते हैं। आप कहाँ से आए हैं?
5: चौकंडी
3: ये कहें ये जो एक्का दौड़ है क्या परंपरा है इसकी?
5: इसकी सैकड़ों साल से है, हम लोग की पैदाइश नील बाबा दादा था।
4: ये सावन महीने में हर सोमवार,
3: ये हर सोमवार को की जाती है। तो क्या चाल देखी जाती है? क्या
4: चाल देखी जाती है? सिंधी चाल, जो प्योर चाल है, बिगाड़े नहीं घोड़े। स्पीड कम ज्यादा रहे लेकिन चाल ज्यादा बिगड़े ना, भागे ना, फॉरवर्ड ना।
3: अच्छा, नस्ल क्या होती है?
4: नस्ल इसमें सिंधी बढ़िया चाल में दौड़ते हैं, जो मिक्स रहते हैं वो थोड़ा भागने लगते हैं बीच बीच।
3: कितने सालों से इस एक्का दौड़ में शामिल हो रहे हैं?
4: कई साल से शामिल हो रहे हैं। घोड़ा हमारा है, अभी साल भर का है, बाकी पहले बहुत पुराना शौक है हमारे लोगों का घराना।
3: अच्छा, इस बार एकदम यहाँ पे सेफ रहने के लिए?
4: नहीं तो बाइक वगैरह रहती है तो घोड़े बहुत ज्यादा लड़ने का डर रहता है। घोड़ा है, बिना ब्रेक के गाड़ी है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होंगे। अब बाइक चार चार दस दस बुलेट लगा देते हैं, बड़ा बड़ा आवाज होती है तो लड़ने का डर रहता है।
6: ये आज सावन का सोमवार है, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है और यहाँ घोड़े रेस देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत काफी भीड़ होती है। और इसका झनक उनक जो पैर का झनक उनक होता है, ये सब बहुत अच्छा लगता है।
3: अच्छे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं इस एक्का दौड़ में इसको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम घोड़े हैं, इनकी चाल देखी जा रही है, स्पीड देखी जा रही है और यहाँ पर यह परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और यहाँ पर एम्बुलेंस है और तमाम इक्के हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है इससे लोग अंदर तक आ जाते हैं और जिससे घोड़े भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशानी होती है। फिलहाल किसी तरह का कोई हादसा ना हो इस वजह से पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और बैरिकेडिंग लगा के वहाँ भीड़ को रोक दिया है।
2: सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। ये सिलसिला पूरे सावन यूं ही चलना है। शिव भक्त हरिद्वार से संगम यानी प्रयागराज से और सुल्तानगंज से गंगा का जल उठाकर शिवालयों तक जा रहे हैं। इस कांवड़ यात्रा में भक्ति तो है ही, भावना भी है और नाते रिश्तों के साथ जुड़ी संवेदना भी है। पंजाब का एक परिवार अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बिठाकर हरिद्वार पहुंचा तो मुजफ्फरपुर का एक शिवभक्त अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर देवघर की राह पर है। इसके अलावा भी कांवड़ यात्रा के कई हैरान कर देने वाले रंग हैं। चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।

0: ये यात्रा शिव तक पहुंचने की नहीं, शिव को समझने की है। इसीलिए इसमें सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि सामाजिक संवेदना भी है। समाज जो बनता है परिवार से, और परिवार जिसमें दादी भी हैं और बेटी भी, सभी शिव से जुड़े हैं। 100 साल की सुनहरी देवी, 2 महीने की राधा, एक पटियाला की, दूसरी मुजफ्फरपुर की, अपने अपने परिवार में दोनों प्रेम की पहचान है। और प्रेम ही तो शिव को समझने का सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए दादी को कावड़ में बिठाकर पोते चल पड़े हरिद्वार, और बेटी के लिए एक खास कावड़ बनाकर एक पिता चल पड़े देवघर। शिव भक्ति की यात्रा इसलिए अनोखी है क्योंकि इसमें श्रद्धा भी है और समर्पण भी। महादेव की तरह ही पाने से ज्यादा देने का भाव है। पोता पोती, यहाँ तक कि उनके बेटा बेटी, कुल मिलाकर 25 लोगों का परिवार, और सभी पालकी में बिठाकर अपनी दादी को हरिद्वार ले गए और अब वापस यानी पंजाब के पटियाला जा रहे हैं। सभी सदस्य बारी बारी पालकी को कंधे पर उठा रहे हैं और भगवान शिव का जयकारा लगा रहे हैं।
1: सर, हम पंजाब के रहने वाले हैं, जिला पटियाला, और हमारा गांव मरदेड़ी है। हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर, हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं, और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है, और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते। तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं। बस हुआ कि चलो इनके इनकी कृपा से सब कुछ मिला है, तो एक स्नान इनके नाम से और एक कावड़ इनके नाम की।
0: दादी बेहद खुश हैं, और हूँ भी क्यों ना। हरिद्वार में गंगा के दर्शन किए, डुबकी लगाई और अब जलाभिषेक करेंगे। लेकिन असली खुशी परिवार के इस प्यार मान सम्मान की है। कावड़ यात्रा में कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो रिश्तों के मायने समझाती हैं। इस यात्रा में बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी को कावड़ में बिठाकर लाने ले जाने की तपस्या भी है, और यही इस यात्रा का आनंद भी है।
2: खुशी तारे अंत।
3: अच्छा दादी, देखा जाए तो
2: कमाई तो देखो मुझको देनी कितनी बुजुर्ग, फिर हम खुशी तारे।
3: आप पोते कंधे पे उठाकर लेके जा रहे हैं, कैसे लग रहा है?
2: पोते लेके जाए।
0: इस पिता के आनंद को भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खास तौर पर बनवाई गई खिलौने गाड़ी जैसी एक कावड़, जिसमें सोलर प्लेट है, बिजली के पंखे चल रहे हैं, क्योंकि अंदर एक गुड़िया सोई है। मुजफ्फरपुर के मिथिलेश दंडवत यात्रा करते हुए देवघर यानी बाबा धाम जा रहे हैं। साथ में पत्नी, एक 3 साल का बेटा। लेकिन इस कावड़ यात्रा में फोकस 2 महीने की राधा पर है। मिथिलेश ने महादेव से बेटी की मन्नत मांगी थी, कृपा हो गई तो उसे बाबा का आशीर्वाद दिलाने कावड़ पर ले चले। 2 महीने की राधा रानी के लिए यात्रा बेहद कठिन है, धूप है, गर्मी है, पर पिता ने अपनी तरफ से सब इंतजाम कर दिए हैं, बाकी भोलेनाथ की मर्जी।
4: डन में 6 साल हो गया, बाकी इनकी 6वां साल है। 5 साल डन में गिए, तो बाबा को बोले थे सब भाई की बेटी है, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा के कहे कि मेरा बेटी होना चाहिए बाबा, कि फिर कन्यादान कैसे करेंगे, मनुष्य में जन्म दिए हैं। तो बाबा के सुन लिए तो हम कहे बाबा सुन लिए तो हम बाबा के वचन नहीं झूठा करेंगे। हम भी 10 रुपया लगाए हैं डोली में, सब पंखा उंखा सब लगा के 10 रुपया लगाए, और हम कहे कि नहीं जाएंगे। सब रोका कि 2 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाओ, बच्चा का मन खराब हो। बाबा की कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा, बेटी भाग से मिलता है, बेटा भाग से, बेटी सौभाग से। नहीं, बेटे के जो होगा तो होगा, बाकी हम लेके जाएंगे।
0: बाबा धाम के रास्ते पर ये अनोखी कावड़ बेटी के लिए एक पिता के प्रेम की पहचान नहीं, समाज की बदलती सोच का प्रमाण भी है। महादेव ने बेटी दी है, आगे भी उनका आशीर्वाद रहा तो मिथिलेश की ख्वाहिश उसे डॉक्टर बनाने की है। पटियाला से अपनी 100 साल की दादी को लेकर पोते हरिद्वार गए, और लुधियाना से अपनी 1.5 साल की नातिन को लेकर नाना नानी देवघर आए। 1.5 साल भी कहाँ, 1 साल 4 महीने की है काव्या, और देखिए शिव के भजन पर कैसे ठुमक रही हैं।
5: इसका नाम काव्या है और 1 साल 4 महीने की है। बाबा नगरिया पैदल ही पैदल जा रही है, जल चल रही खुश नजर आ रही है, इसको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार जा रही है।
0: सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर करीब 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा है देवघर की, लेकिन पूरे परिवार के साथ ये बच्ची अपने छोटे छोटे कदमों से ये रास्ता तय कर रही है। सब महादेव की कृपा है।
6: और हम पंजाब लुधियाना से आए, हर साल आते बाबा को जल चढ़ाते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ के मेला देख के। और यहाँ कावड़ में, डाक कावड़ में भी हमने जल चढ़ाया है 5 बार, कावड़िया कई बार हम गए, तो जब भी आता मन खुश हो जाता है। इधर देखो बाबा की महिमा है ये भी, इतने बच्चे को उसने शक्ति दी है डांस करने की, तो ये भी उनकी महिमा है। एक हम इसके दादाजी है, दादी है, नाना है, नानी है, इसकी मम्मी पापा है, सब आए हम, ये हमारे रिश्तेदार है।
0: ये शिव की कृपा नहीं तो भला और क्या है कि एक पैर पर नाचते धूमते एक शिव भक्त बड़ी आसानी से इस लंबी यात्रा को पूरा कर लेते हैं। हरिद्वार के रहने वाले बबलू की यात्रा इसी तरह चल रही है, कहीं ठहर गए, भजन पर झूमकर नाचने लगे और फिर आगे बढ़ते चले गए।

0: चेहरे पर न थकान है और न ही कोई दर्द, बस बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर बबलू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस भक्ति के केंद्र में भोलेनाथ है, लेकिन भक्ति का तरीका अलग अलग है। कोई एक पैर से जा रहा है, कोई स्केटिंग करते हुए। समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बाबा बैद्यनाथ के धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस दल के सदस्य एक दूसरे से जुड़े जो स्केटिंग करना जानते हैं। बस फिर क्या था, समस्तीपुर से सब एक साथ बेगूसराय होते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
1: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का यह दल इसी तरीके से स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
2: हम दो दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे तीन दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। यह जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
3: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, हम लोग सोचे कुछ और अलग करें।
4: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: शिव के भक्तों का ये अद्भुत जमावड़ा है जिसमें 100 साल के बुजुर्ग भी हैं और 2 महीने की राधा रानी भी। कोई दुख से निजात पाने के लिए फरियाद करने जा रहा है, कोई अपने सौभाग्य के लिए शुक्रिया कहने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए महेश रूप में दर्शन, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन हुआ, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ कुरेज में, 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: सावन के पहले सोमवार को महाकाल की भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया डूबा उज्जैन। शाम 4 बजे रजत पालकी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल। भगवान महाकाल ने उज्जैन के लोगों और उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं को मन महेश के रूप में दर्शन दिए। कड़ाबीन और शंख ध्वनि के बीच निकाली गई महाकाल की पालकी, पुलिस के जवानों ने बैंड की धुन पर महाकाल को दी सलामी। वैदिक उद्घोष की थीम पर निकाली गई महाकाल की सवारी, शिप्रा तट पर राह वेद पाठी बटकों ने वेद पाठ किया। अपने प्रजा जनों को आशीर्वाद देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल, सावन और भाद्रपद मास में हर सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलते हैं। सावन के पहले सोमवार के मौके पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बाबा केदार के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में धाम पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का जलाभिषेक किया, केदारनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देश विदेश से पहुंचे लोग। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन, मुश्किल रास्तों और बदलते मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखिए नोटों वाली कांवड़, कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 के नोट। दिल्ली के रहने वाले भोले के भक्त दीपांशु ने अपने कांवड़ में लगाए हैं नोट, 3 साथियों के साथ हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की यात्रा। सावन के पहले सोमवार को झारखंड के रामगढ़ में उमड़े श्रद्धालु चमत्कारी शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़। टूटी झरना मंदिर के नाम से मशहूर इस मंदिर में मां गंगा की प्रतिमा की नाभि से पूरे साल शिवलिंग पर होता है जलाभिषेक। प्रयागराज के एक मंदिर में भगवान के साथ साथ एक जज के रूप में भी पूजे जाते हैं महादेव। मान्यता है कि अपनी अदालत में भक्तों की गलतियां माफ कर देते हैं भोलेनाथ। त्रिवेणी संगम के पास मौजूद शिव कचहरी के नाम से मशहूर इस मंदिर में श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और गलतियों का पश्चाताप करते हैं। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर हरिद्वार के कलेक्टर ने दशेश्वर महादेव में दर्शन पूजन किए। सावन के पहले सोमवार पर चंदौली के कालेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। चंदौली के सकलडीहा में मौजूद भोलेनाथ के इस मंदिर में लोगों की विशेष मान्यता। सावन के मौके पर दर्शन पूजन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार के मौके पर वाराणसी में एनडीआरएफ ने की 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग। आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बाढ़ जल राहत टीम तैनात, अत्याधुनिक उपकरणों मोटर बोट्स भी तैनात। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार पर उमड़ा आस्था का जंजाला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए सुख समृद्धि की कामना। झांसी के हजारिया महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गंगाजल बेलपत्र से बाबा का अभिषेक किया, लगाया हर हर महादेव के जयकारे। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लखीसराय के अशोक धाम में मंदिर में सावन के पहले सोमवार कुमड़ा आस्था का जनसाला, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। दिल्ली में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसाला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 50,000 लीटर से यदुवंशी समाज ने किया बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक। लखनऊ के चंदेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचे, सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम। मुरादाबाद में सावन के पहले सोमवार पर सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम, सीसीटीवी और जटायु ड्रोन से निगरानी। सावन के पहले सोमवार पर डोंबिवली से अंबरनाथ तक निकाली गई भव्य कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। महिलाओं ने एकता सामूहिक सहभागिता का संदेश दिया, बोल बम के जयकारे लगाए। चमोली के बद्रीनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता, भक्तों के बीच बांटी गई खीर। मध्य प्रदेश के खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसाला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। रांची में सावन की पहली सोमवारी पर शिवमय हुआ पहाड़ी मंदिर, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। जयपुर के तड़केश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक, हर हर महादेव। करनाल में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। सावन माह के पहले सोमवार को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट मोड में, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में कावड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से ज्यादा सुसज्जित। कांवड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए 40 कूलर, 30 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। सहारनपुर में कावड़ मार्ग को हजारों रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, रात के समय में रोशनी से जगमगाता रास्ता श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र। तकरीबन 10,000 से 12,000 लाइटों से चमका कांवड़ मार्ग, लाइटों की चमक के बीच शिव भक्त उत्साहित नजर आए। खूबसूरत सजावट देखने के लिए उमड़ रहे हैं स्थानीय लोग भी, मोबाइल कैमरों में कर रहे हैं कैद। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में करीब 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर 6,000 से 7,000 लाइटों की सजावट। दिन भर पैदल चलने के बाद रात में जगमगाती कांवड़ मार्ग से गुजरकर श्रद्धालुओं को मिल रही है नई ऊर्जा। सहारनपुर की यह सजावट कांवड़ यात्रा को बना रही है यादगार। श्री अमरनाथ यात्रा का 32वां दिन आज श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फान के दर्शन किए, यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा, सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू रूप से जारी। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति की लगातार निगरानी, यात्रियों को भी सतर्क रहने के निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा। कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत का दमदार प्रदर्शन, भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा से भारत से आगे रहा, ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड के साथ 171 पदक जीतने में माहिर। बॉक्सिंग बनी भारत की सबसे बड़ी ताकत, भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदक जीते जिनमें से 7 गोल्ड 3 सिल्वर। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेजबानी करेगा भारत, अब तक का भारत का फोकस अहमदाबाद में होने वाले 2030 खेलों पर। पैरा खिलाड़ियों ने भी बढ़ाया देश का मान, पैरा एथलीट्स ने कई पदक जीतकर भारत के अभियान को मजबूती दी। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेट लिफ्टिंग टीम का सम्मान हुआ, स्वर्ण पदक विजेता 30 लाख, रजत पदक विजेता 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को मिला 10 लाख। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन, वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीता 1 गोल्ड 6 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्डन जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की, सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। गुजरात की वक्त के अंगों से कई जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी, अंकलेश्वर में वंदे भारत ट्रेन को रोककर अहमदाबाद भेजा गया युवक का धड़कता हुआ दिल। हादसे में ब्रेन डेड होने के बाद 22 साल के अतुल पटेल के परिवार के फैसला बना मिसाल। दिल्ली में ISSF शॉटगन रेफरी कोर्स की हो गई शुरुआत, निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिफाइड तकनीकी अधिकारी तैयार करना कोर्स का मकसद। 7 अगस्त तक चलने वाला एक कोर्स मैच अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चिली के 15 साल के जेमे ट्रेम बुस्टोस ने रच दिया इतिहास, पेरिस में हुए टूर्नामेंट स्ट्रीट फाइटर 6 का खिताब जीता। टीम फाल्कन्स की ओर से खेलते हुए ट्रैन ने फाइनल में जापान के हिबिकी को 5-2 से हराया। इस जीत पर क्रेम को मिला 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का प्राइस मनी। शेयर बाजार के करोड़ों निवेशकों से जुड़ी हुई है शानदार गुड न्यूज, 544 अंकों की तेजी के साथ 78,639 पर बंद हुआ 30 शेयरों का सूचकांक सेंसेक्स। निफ्टी 50 में देखिए सेंसेक्स से भी ज्यादा तेजी, 390 अंक चढ़कर 24,774 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने शेयर बाजारों में तेजी को दिया सहारा, 4.62% गिरकर $83 पहुंचा। विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटने से भी बाजार में लौटा है भरोसा, विदेशी निवेशकों ने शुक्रवार को की 277.48 करोड़ की खरीदारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया में लगातार छठे दिन रही मजबूती, डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 95.31 रुपए पहुंचा रुपया। हरिद्वार में एसटीएफ के आईजी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, कांवड़ पटरी बैरागी कैंप हर की पैड़ी क्षेत्र का निरीक्षण। सावन के पहले सोमवार के मौके पर प्रयागराज के अरैल इलाके में पारंपरिक इक्का रेस का आयोजन किया गया। एक रेस में शामिल घोड़े ने अपनी अलग अलग पारंपरिक चालों का प्रदर्शन दिखाया। पंजाब में हरमारे राम का होगा नाट्य मंचन, राज्य सरकार में मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने ऐलान किया। मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने कहा रामायण के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे सनातन का संदेश। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव के लिए इनाम का ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 30 लाख रुपए और डीएसपी पोस्ट देने का ऐलान किया। राजस्थान के पाली में स्कूली बच्चों के लिए सुविधाओं की सौगात। कलेक्टर ने ग्रामीण स्कूलों के लिए भेजी 200 स्टडी टेबल। साजा का स्कोर रिलीज होगी पंजाब फिल्म द ग्रेट पंजाब रॉबरी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद असलम अपने अनोखे अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल। विदेशियों से उनकी भाषा में चांदनी चौक की खूबियां बताते हैं असलम। इलाके में 16 साल से रिक्शा चला रहे हैं। बिहार के गया जी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। गायजी में हस्तशिल्प हथकरघा घरेलू सजावट से सजे सामान। मेले में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा। 16 अगस्त तक चलेगा व्यापार मेला। भोपाल में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। दिल्ली पहुंचे कॉमनवेल्थ जीतने वाले खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा का भिवानी में जबरदस्त स्वागत हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। लोगों से जल्द निपटारे के आदेश। कोटा में घर घर कबाड़ जुटाने वाले पिता का बेटा बनेगा डॉक्टर। सागर में नीट में लहराया परचम। जयपुर जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम। 135 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रणजी से लेकर आईपीएल मैचों की मेजबानी करेगा 10,000 दर्शकों की क्षमता। बिहार के पटना में सुबह सुबह हुई जबरदस्त बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के पथाना मथेट्टा में बाढ़ जैसे हालात। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वोट का करना पड़ रहा है सहारा। पथाना मथेट्टा में बाढ़ से कई घरों में घुस गया पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। केरल के कन्नूर में मंत्री सनी जोसेफ ने बारिश से प्रभावित इलाकों में दौरा किया। पीड़ितों को जल्द मदद देने का आश्वासन। गुजरात के मोरबी के डैमी नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे का डायवर्जन बहा। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर हुआ रिलीज। 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल की युद्ध की एक सच्ची घटना पर आधारित। फिल्म एलियास रुक्मिणी का वीडियो हुआ जारी। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज होना ट्रेलर। 26 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग हुई शुरू। 1 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 का टीजर हुआ रिलीज। 11 सितंबर को फिल्म दस्तक देगी।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
6: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
11: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
12: Good news today.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: गर्मी का मौसम हो और दिन भर इतनी तेज धूप पड़े कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो लोग क्या करते हैं। चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू के लोगों ने इसका बड़ा दिलचस्प तरीका खोज लिया है। अब वहां लोग दिन की बजाय रात में घरों से निकल रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है शहर की सड़कें, पार्क और खुले मैदान लोगों से गुलजार हो जाते हैं।
12: दिन भर की गर्मी और फिर ढलती शाम, जैसे सूरज की तपिश कम होती है, चीन के सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू की सड़कों पर जिंदगी एकदम नए अंदाज में दौड़ने लगती है। पार्क हो या ग्रीनवे, हर तरफ साइकिल चलाते लोगों की लंबी कतारें नजर आ जाती है। नाइट साइकिलिंग यहां सिर्फ फिटनेस का जरिया नहीं रही, बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने और तनाव दूर करने का नया ट्रेंड बन चुका है। चीन में बदलती लाइफस्टाइल का असर कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। साइकिल किराए पर देने वाली दुकानों में रात के समय ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, बढ़ती मांग को देखते हुए कई स्टोर्स ने अब 24 घंटे सेवा देना भी शुरू कर दिया है। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, चेंगदू के शॉपिंग मॉल्स भी अब रात में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के नए सेंटर बन चुके हैं। मॉल्स के भीतर बने स्पोर्ट्स जोन युवाओं और परिवारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। लोग खेलते हैं, फिर खरीदारी करते हैं और रेस्टोरों में समय बिताते हैं। यानी फिटनेस के साथ साथ नाइट इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ रही है। चीन के इस शहर में रॉक क्लाइंबिंग भी रात की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में शामिल हो चुकी है। दफ्तर से लौटने वाले लोग बड़ी संख्या में क्लाइंबिंग जिम कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई जिम ने अपने संचालन का समय भी बढ़ा दिया है, ताकि नौकरी पेशा लोग भी आराम से क्लास में हिस्सा ले सके। चीन के चेंगदू शहर की ये नाइट स्पोर्ट्स संस्कृति केवल स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी खूब लुभा रही है। ब्रिटेन से आए नील फॉस्टर ने पहली बार रात में रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव लिया। उनका कहना है कि अपने देश की भीषण गर्मी के मुकाबले चेंगदू की शामें कहीं ज्यादा सुहानी है और दोस्तों के साथ खेलते हुए दिन का अंत करना एक शानदार एहसास है। गर्मी से राहत पाने का ये तरीका अब सिर्फ मौसम से जुड़ी मजबूरी नहीं बल्कि एक नया लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। चेंगदू में रातें अब सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि फिटनेस, रोमांच और बढ़ते कारोबार से भी जगमगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में.
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders. Sage University, transforming your passion into profession.
9: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा. भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन. ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद. हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम. कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर. संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन. रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब. सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन. जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज. श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश. लोगों को गर्मी से मिली राहत. जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ. गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा. 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ.

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो देखिए, सावन का महीना शुरू हो चुका है और आपकी कुंडली में जो भी दुर्योग होते हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, जो अशुभ संयोग बन रहे हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आज पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: देखिए, सावन के महीने में किसी भी दिन सार्वजनिक स्थान पर या पार्क में एक पीपल या बरगद का पौधा जरूर लगाइएगा। अगर आप सावन में ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन से संतान की और धन की समस्या दूर होगी।
0: सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 10:03 तक, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र रात के 9:54 तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:54 तक, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं कि केम द्रुम योग क्या होता है और सावन में इसकी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली के अलग अलग जो अशुभ योग होते हैं उन अशुभ योगों को आप सावन में कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमद्रुम योग की। केमद्रुम योग की समस्या क्या है और इसका उपाय क्या है। देखिए, चंद्रमा से बनने वाला सबसे भयंकर योग केमद्रुम योग माना जाता है। चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो और चंद्र पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, वैसे तो दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं होंगे तो भी केमद्रुम योग बनेगा। ये योग अगर कुंडली में है केमद्रुम योग तो मानसिक बीमारी, अवसाद यानी डिप्रेशन और पागलपन जैसी स्थितियां बन जाती हैं। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा और ये योग होने पर व्यक्ति को कभी कभी घनघोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल है तो ये योग काफी हद तक कमजोर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो सावन में आप उपाय करके इसके दुष्प्रभाव को, इसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। एक तो नियमित जीवन में अपनी माता का और स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी रेगुलर लाइफ में सावन में एक बार भगवान शिव का दूध

0: अगर आप सावन में ऐसा कर लेते हैं और हर साल सावन में ऐसा करते रहते हैं तो केमद्रुम योग के दुष्प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, करियर में इस समय कुछ बदलाव हो सकता है, परिवार में अशांति से बचें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के भी योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि विष योग आखिर क्या होता है और सावन में इसका निवारण क्या कुछ करके किया जा सकता है।
0: अब जिस योग की बात करेंगे वो है विष योग। विषयोग होता क्या है और सावन में इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, ज्योतिष का सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा नकारात्मक योग विषयोग है। शनि चंद्रमा का संबंध बने, या कुछ लोग कहते हैं शनि राहु का संबंध बने, तो ये योग बनता है। वास्तव में शनि चंद्रमा से विष योग कुंडली में बनता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति नशे की आदत का शिकार होता है, दुष्चरित्र और अनैतिक हो जाता है। और शनि चंद्र का विष योग होने से कभी कभी गंभीर दुर्घटना का शिकार भी होता है। विष योग होने पर व्यक्ति अपराधी या आतंकी भी बन जाता है।

0: में विष योग है तो सावन में क्या उपाय करें जिससे विष योग भंग हो जाए। सामान्य जीवन में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और तुलसी दल का सेवन करिए। पूरे सावन में जितना दिन भी कर सकें रुद्राष्टक का पाठ करना जरूरी है और सावन में नियमित रूप से शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिएगा। सावन में एक रुद्राक्ष की माला ले लें, इसको शिवलिंग पर स्पर्श कराकर अपने गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा। अगर कुंडली में विष योग है तो रुद्राक्ष पहनना बहुत आवश्यक है, जरूर पहनिए। और नियमित रूप से अगर रुद्राष्टक का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा।
1: और आगे बढ़ने से पहले दैनिक राशिफल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का।
0: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना।

0: रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका लेने वाले हैं?
0: जी, आज का पहला प्रश्न दीपक परिहार ने हमें लिखा है, रतलाम मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 29 जनवरी 2001 का जन्म है, 12:45 दोपहर में, रतलाम मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर किस तरीके का होगा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, और मेरा विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। दीपक जी, आपकी कुंडली टेक्निकल करियर दिखा रही है, अगर तकनीकी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाएं, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह उम्र के 29 या 30 साल के आसपास होगा, आपकी अपनी इच्छा से। आपके मन में नकारात्मक विचार ना आए, आपका करियर बेहतर होता चला जाए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हुए, अब आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल किसका रहेगा।
0: जी, अगला प्रश्न शशि बाला जी ने हमें दिल्ली से लिखा है, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 23 फरवरी 1990, 4:08 प्रातः, दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शशि बाला जी, जो अभी समय चल रहा है वो आपकी बेटी के विवाह तय होने का समय है। इस समय उनकी शादी तय हो सकती है, लेकिन शादी होने की जो संभावना है वो साल 2027 में है, अगस्त 2027 के पहले। कुंडली मिला लीजिएगा विवाह करते समय एक बार, ताकि वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के बेहतर रहे। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा करके पहना दें, 10

0: को इनको एक ओपल बनवा करके पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी बेहतर होगा।
1: और चलिए अब सावन का महीना चल रहा है तो इससे जुड़ी जानकारियां पंडित जी से ले लेते हैं, जान लेते हैं कि ग्रहण योग क्या होता है और सावन में इसका निवारण कैसे किया जा सकता है।
0: अब बात करते हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग क्या होता है और सावन में इसके लिए क्या करें। देखिए, सूर्य या चंद्रमा अगर राहु के साथ संयोग करें या केतु के साथ संयोग करें तो कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण योग कुंडली में जिस जगह पर बनता है उस सुख को पूरी तरह नष्ट कर देता है। जीवन में खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। तमाम प्रयास करने के बावजूद जीवन में खुशियां नहीं आ पाती। और ग्रहण योग का मतलब ये है कि जो जीवन की सफलता है और आप हैं उसके बीच में ग्रहण लग जाता है और कुंडली के शुभ योग सामान्यतः काम नहीं करते। ग्रहण का मतलब है आपके जीवन में आपकी सफलताओं को ग्रहण लग गया और आपके तमाम प्रयास करने के बावजूद उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो सावन में क्या करेंगे। सावन के जितने भी सोमवार को संभव हो, एक सोमवार, दो सोमवार, चार सोमवार, जितने भी सोमवार को संभव हो उपवास रखिएगा। नियमित रूप से सावन में भी और उसके बाद भी शिवलिंग पर केवल जल चढ़ाइएगा, शिवलिंग पर केवल जलाभिषेक करिएगा और पूरे सावन में रोज सुबह और शाम शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाएं, सावन के अलावा भी, या तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ें या नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें, आपको लाभ होगा।
1: आगे बढ़ने से पहले दैनिक राशिफल जान लेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। यात्रा पर जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, आंखों का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जो राहु केतु से बनने वाले योग होते हैं वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और सावन में क्या कुछ करें जिससे इनका निवारण हो सके।
0: देखिए, कुंडली में कुछ विशेष खराब योग राहु और केतु से बनते हैं। ये होते कैसे हैं? राहु केतु के अशुभ योग और सावन में इनको शांत कैसे करें? राहु या केतु की खराब स्थिति कुंडली को अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से प्रभावित करती है और राहु केतु के खराब योग को लोग काल सर्प दोष या पितृ दोष का नाम देते हैं। वास्तव में उसके पीछे होते हैं राहु और केतु। इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव होता है और राहु केतु के अगर खराब योग हैं तो आप कब ऊंचाई से सड़क पर आ जाएंगे इसका पता नहीं चलेगा। और राहु केतु के खराब योग धीरे धीरे करके जीवन के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अगर राहु या केतु का कोई खराब योग कुंडली में है तो क्या करेंगे? सांप के आकार वाली, सर्प के आकार वाली एक अंगूठी सोने या चांदी में बनी हो इसको धारण करना चाहिए। कच्चे दूध में जरा सी दूर्वा डालकर पूरे सावन में या उसके बाद हर शनिवार को शिवलिंग पर चढ़ाइए और पूरे सावन में नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए।
1: और अब वक्त हो चला है जानने का कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं हल होंगी, कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसके ऊपर आप मेल करके पंडित जी तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जानते हैं कि तीसरा सवाल आज किसका लेने वाले हैं।
0: जी

ने मुरादाबाद से लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 25 फरवरी 1997, 5:30 प्रातः मुरादाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र के व्यवहार से परेशान हूं, वो कुछ नहीं करता, बेवजह के झगड़े करता है, घर में व्यवहार अच्छा नहीं है, नशे आदि का शिकार हो गया है, पूरी तरह से भटक रहा है, तो क्या करूं जिससे मेरे बेटे का जीवन बेहतर हो जाए। देखिए मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली में जो शनि की पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, और शनि की नकारात्मक स्थिति, चंद्रमा की गड़बड़ स्थिति इनकी समस्या का एक बड़ा कारण है। आपके बेटे के अंदर जो सुधार होने की संभावना दिख रही है वो जून 2027 के बाद दिखाई दे रही है। आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें।

0: का दीपक जलाएं तो काफी बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज का आपका चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न मयंक मिश्रा ने फरीदाबाद से लिखा है। 17 फरवरी 2006 का जन्म है। 11:20 प्रातः फरीदाबाद हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी। मयंक जी, आपकी कुंडली पूरी तरह से टेक्निकल कुंडली है और अगर आप तकनीकी क्षेत्र में, खास तौर से कंप्यूटर में, आईटी में अपना करियर बनाएं तो काफी सफल होंगे। उम्र के 26 साल से ऐसी संभावना बन रही है कि आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी। हालांकि करियर की शुरुआत उम्र के 22 वर्ष के बाद आपकी हो जाएगी। करियर में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट करियर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका 4 अगस्त को जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेंगे कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि स्नान करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। हमेशा बैठ करके ही स्नान करना बेहतर होगा। जल पहले नाभि और पैरों पर डालिए और याद रखिए, निर्वस्त्र होकर कभी स्नान मत करिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है।
1: और चलिए अब जानेंगे कि 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है 6:00 से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपकी कर्ज और धन से संबंधित समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 अगस्त मंगलवार 6:00 से 7:30 के बीच में।
1: और आखिर में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की आपकी गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। आपको नियमित रूप से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य मजबूत होगा।
1: और चलिए आज का महा उपाय पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, महा उपाय क्या रहने वाला है?
0: जी,

0: चंदन अर्पित करिए, दोनों समय 108 बार ओम हौं जूं सः इस मंत्र का जप करिए और सावन में शिवलिंग पर स्पर्श करा करके एक रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करिए।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
5: आइए बात करेंगे सावन सोमवार और शिव भक्तों की। श्रावण मास के पहले सोमवार के मौके पर देश भर के तमाम छोटे बड़े शिवालयों और द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के लिए दिन भर भक्तों की कतार लगी रही। मान्यता यह है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस श्रावण मास के दौरान देश के अलग अलग शहरों में कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है और इस यात्रा में आस्था और भक्ति के कई अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं।
6: श्रावण मास का पहला सोमवार, शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, हर तरफ हो रही देवाधिदेव महादेव की जय जयकार। महाकालेश्वर से लेकर ओमकारेश्वर तक, केदार से लेकर काशी और बैद्यनाथ धाम तक और इसी तरह दूसरे शिव मंदिरों में भी आस्था और भक्ति का अनंत सैलाब सावन के पहले सोमवार पर देखने को मिला। इन आस्थावान भक्तों में कोई परिवार संग जलाभिषेक के लिए पहुंचा और कोई दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। ये तस्वीर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई है, जहां तड़के दूध दही और फलों के ताजे रस से पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का भांग और सूखे मेवों से मनोहारी श्रृंगार किया गया। निराकार से साकार रूप में दर्शन देने पधारे बाबा महाकाल को महानिवारणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित की गई और फिर मंदिर के पुजारियों की ओर से मुख्य महाआरती होते ही हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा के इस अलौकिक रूप के दर्शन किए। इस दौरान पूरा महाकाल मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा।
7: बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार के दिन बाबा महाकाल की भस्म आरती की जा रही है। बाबा के दूध दही की से पंचामृत से अभिषेक किया गया है। भगवान की महाआरती की गई है। राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। लाखों भक्त बाबा के दरबार के अंदर आज यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा की एक झलक पा रहे हैं और एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं।
8: यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, बट भस्म आरती जो यहाँ पे होती है उसका अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर में। मुझे इससे काफी शांति मिली है, पीस मिला मुझे इसकी वजह से।
6: मध्य प्रदेश में ही भगवान शिव का एक और दिव्य धाम मौजूद है और वो है ओमकारेश्वर। वहाँ भी सावन के पहले सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना हुई और इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन का सिलसिला हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा। ओंकारेश्वर की विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव दो दिव्य स्वरूप में विराजमान है। नर्मदा के उत्तर तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दक्षिण तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। धार्मिक मान्यता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग के पूर्ण दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। यही वजह है कि सावन के पहले सोमवार पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे।
9: बस महादेव से मना है कि इस पावन सावन महीने में हम लोग को भी उद्धार करे, जिस तरह सबको करते और हम लोग का कष्ट दूर करे, क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर बाबा का आशीर्वाद लग जाए तो मौलतान बाबा सबका कल्याण करता है, तो हम लोग का भी कल्याण हो जाए इस सावन महीने में, और क्या बताए।
6: उधर देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद बाबा केदारनाथ के धाम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद बाबा केदार के इन भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। पूरा मंदिर परिसर दिन भर बाबा केदारनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। आस्था और भक्ति का ऐसा ही अद्भुत और अलौकिक मंजर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी देखने को मिला। तड़के बाबा विश्वनाथ का पंचामृत अभिषेक हुआ और फिर बेलपत्र और फूलों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद देश और विदेश से आए शिव भक्तों के लिए बाबा के द्वार खोल दिए गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मंदिर के बाहर कतार बढ़ती गई। कतार में लगे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए ताकि लोग सुलभ और सुरक्षित दर्शन कर पाए।
10: सावन का पावन महा भोलेनाथ को अति प्रिय है, यही वजह है कि आज सावन के सोमवार के पहले दिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश और विदेश से शिव भक्त पहुंच रहे हैं, बल्कि परंपरा अनुसार जो स्थानीय यादव बंधु हैं वे भी बाबा का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सीधे गंगा स्नान करने के बाद यादव बंधु अपने पात्रों में जल लेकर बाबा के दरबार विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं।
11: ये मेरा पहली बार है, हम लोग बालेश्वर से आए हैं लेकिन तीन दोस्त मिलकर आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब हम लोग नमो घाट से पानी उठाए थे और पैदल चल के यहाँ तक आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। यहाँ की जो सिस्टम है बहुत बैरिकेडिंग बहुत सुरख मैंने बहुत अच्छा से हम लोग डाले, कुछ लगभग या कुछ जो भीड़ इतना ज़्यादा पता नहीं चला।
12: 30 तारीख को आए थे और 22 अगस्त तक रहेंगे, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं।
13: पहला सोमवार है, हम लोग बाबा का जल अभिषेक करते हैं पहला सावन सोमवार को, यादव बंधु लोग।
10: कब से करते चले आ रहे, कितनी पीढ़ी से आप लोग
13: आ रहे हैं? ये करीब सदियों से आ रहा है,
10: आप लोग
13: बाबा दादा पर ज्यादा दादा से आ रहा है।
6: सावन के इस महीने में बाबा बैद्यनाथ का धाम भी शिव भक्तों और कांवड़ियों से गुलजार हो उठा है। दूर दूर से लोग बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। मंदिर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं से खचाखच भरे दिखाई दिए। इनमें ज्यादातर कांवड़िये हैं जो बिहार के सुल्तानगंज से गंगा लेकर लगभग 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँचे हैं।
14: जय बाबा बैद्यनाथ। आज पहला सोमवार है, सोमवार में अनंत भक्त आ रहे हैं, एकदम जन सैलाब चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करे।
11: देखिए आज श्रावणी 2026 का पहला सोमवार है, भीड़ काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। कल का संडे का मतलब रविवार का अगर डेटा देखें तो 1.5 लाख लोग आए थे। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख के आसपास लोग या उससे अतिरिक्त लोग भी जो है वो जलार्पण कर सकते हैं। इसको पिछले साल के लर्निंग के तौर पे हमने लिया था, इस बार हमने बाह्य अर्घा जो है उसे एक्सटेंड कर दिया था, 7 फुट से बड़ा हो गया। जो लोग जलार्पण करने के लिए लंबी कतार में नहीं लग पा रहे वो लोग बाहरी अर्घा से कर सकते हैं। लाइन को व्यवस्थित की गई है, बहुत ज्यादा संख्या में एक्सपेंडेबल बैरियर्स लाए गए हैं ताकि लोगों को व्यवस्थित और मंदिर के अंदर भी कतार में रख सके।
6: श्रावण मास के इस पवित्र महीने में शहर शहर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और उनकी अनोखी कांवड़ भी देखने को मिल रही है, जिसकी एक तस्वीर मुंगेर से आई है, जहां कोलकाता से आए कुछ शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को बाबा महाकाल के स्वरूप में सजाया है और 100 लीटर जल रखा, जो हर श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये सभी शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर निकले हैं और 10 से 12 अगस्त के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, खंडवा से जय नागदा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, वाराणसी से रोशन जायसवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और मुंगेर से गोविंद कुमार, गुड न्यूज टुडे।
5: इस बार राखियां भाइयों तक सही सलामत पहुंचेंगी। राजस्थान के पाली में इसका खास इंतजाम किया गया है। दरअसल यहां के डाकघरों में इस बार राखी और उपहार भेजने के लिए वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और गिफ्ट बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में राखी भेजने के लिए रियायती दरों पर स्पीड पोस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

0: भाई बहन के स्नेह विश्वास और आजीवन साथ का पर्व रक्षाबंधन अब बस आने को है। जहां एक ओर बहनें उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं, वहीं बाजारों से लेकर ई कॉमर्स कंपनियां और डाकघरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, ताकि दूर रह रहे भाइयों तक बहनों की राखी पहुंच सके और बहनों तक भाइयों का संदेश। ये तैयारी है राजस्थान के पाली डाकघर में, जहां इस बार बहनों के लिए वाटरप्रूफ एनवेलप और राखी बॉक्स का इंतजाम है। लिफाफा जिनमें बहनें राखी भेज सकेंगी और बॉक्स रोली कुमकुम उपहार और मिठाई के लिए।
1: डाकघर ने विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे तैयार करवाए हैं, जिन्हें पाली के दोनों प्रधान डाकघरों में और पाली के सभी डाकघरों में बिक्री के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। लिफाफे दो साइज में है, बड़े लिफाफे है वो 15 रुपए कॉस्ट है उसकी, और छोटा लिफाफा है उसकी 10 रुपए की कॉस्ट है। और इसी के साथ में जो है बहनों की तरफ से कुमकुम मोली मिठाई भेजने के लिए भी जो है डाक विभाग ने विशेष रूप से जो है बक्से तैयार किए हैं, जिसमें सुरक्षित रूप से राखी के साथ में जो है अपना उपहार है वो उसमें भेज सकती है, जिसकी कॉस्ट जो है 30 रुपए है।
0: रक्षाबंधन में सबसे खास है रेशम की डोर और उससे बनी राखी। ये केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम विश्वास और स्नेह सुरक्षा का प्रतीक भी है। ऐसे में राखी भाइयों तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, डाकघर की ओर से इसका खास ख्याल रखा गया है। पाली जिले के सभी डाकघरों में विशेष राखी लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ सामग्री से तैयार किए गए हैं। साथ ही स्पीड पोस्ट सर्विस के जरिए इसे कम समय में निश्चित पते पर पहुंचाने का भी इंतजाम है, खासकर उन बहनों के लिए जिनके भाई विदेशों में रहते हैं, उनके लिए रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
1: बहनों के जो भाई विदेश में रहते हैं उन्हीं के लिए जो है बहुत ही रियायती दरों पर 30 देशों के लिए जो है राखी कवर की जो है विशेष व्यवस्था की है डाक विभाग ने, जिससे नाम मात्र शुल्क में जैसे थाईलैंड में 185 रुपए में और यूएसए आदि देशों में जैसे 400 रुपए मात्र में जो है ट्रैकिंग के साथ में ये सुविधा प्रदान की गई है।
0: इन सुविधाओं के लिए महिलाओं के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ महिलाएं जमकर उठा रही हैं। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के स्नेह का पवित्र त्योहार ही नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सुरक्षा का वचन दोहराने का भी पर्व है। बहन राखी बांधकर अपने भाई के प्रति प्रेम और शुभकामनाएं व्यक्त करती है और भाई बहन की रक्षा और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का वचन देता है, और इस डोर को मजबूती देता है राखी, जिसे मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पाली से भारत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे।
2: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता का अंत नहीं है बल्कि एक नए और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत है। खिलाड़ियों की शानदार कामयाबी के अब साथ अब भारत के हिस्से एक और बड़ी जिम्मेदारी भी आ चुकी है, क्योंकि ग्लासगो से अब कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल जो है भारत की ओर बढ़ चुकी है।
3: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी यह ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
4: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
3: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
4: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
3: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
8: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
5: Good news today is really good. In this case, there are stories of the news and the news. At least, people get to hear the news easily. The news! On this, with a good start. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: सावन के महीने में किस तरह कुंडली के दुर्योग होंगे दूर, सावन के महीने में किस तरह जीवन में मिलेगी सफलता, और सावन के छोटे से उपाय से राहु और केतु की बाधा कैसे होगी दूर, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।

नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन कर करो। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िए गंगाजल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानंद। बता दें कि इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है लोग कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
2: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं। और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। अनोखी कांवड़ों की इसी कतार में शामिल है ये नोट कांवड़। भक्ति महादेव की है मगर दर्शन लक्ष्मी के भी भरपूर हो रहे हैं। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के जाने कितने नोट लगे।

0: इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है, बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कांवड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9,000 रुपए का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें, ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
1: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
2: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देशभक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
3: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देशभक्ति के लिए लेके जा रहे। यही है कि अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
1: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कांवड़ मार्ग, सजीता जी कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका है।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का यह अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के।
2: जी, कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा

0: सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
1: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
2: हम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और 2 से 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
3: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, हम लोग सोचे कुछ और करे।
4: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरभंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भरकर बैद्यनाथ धाम पहुँचेगा और फिर वहाँ बाबा को जल अर्पित करेगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले इसी रास्ते पर ये खास कांवड़ भी नजर आई, जिसमें शिव के साथ उनकी शक्ति का स्वरूप भी समाहित था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर इस कांवड़ को श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। हर साल ये युवा अलग और अनोखी कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं।
5: ये हम लोग का बाबा श्री अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हम लोग का सभी भाई लोग का इच्छा के अनुसार अगले साल भी हम लोग लेकर के आए थे बड़ा डोली, जो शिव पार्वती नंदी महाराज गणेश जी के साथ थे, और इस साल हम लोग अर्धनारीश्वर जी को लेकर के आए हैं। बस बाबा से यही कृपा है, आज्ञा है कि बाबा वहां तक हम लोग को सही सलामत लेके पहुंचाए।
6: कितना समय लगा इसको बनाने में?
5: समय कम से कम 1.5 महीने का लगा।
6: खुद से बनाए बनवाए हैं?
5: नहीं, खुद से बनवाए नहीं है, बनवाए हैं, ऑर्डर दे के बनवाए।
6: इसका वजन क्या होगा?
5: वजन वही 90-100 kg का लगभग है। बैटरी वैटरी लगाए, नीचे भारी
6: लाइटिंग वगैरह लगा। आपको कितने का जत्था चल रहा है, कितने का ग्रुप है?
5: हम लोग 25 जन आए हैं, 25-26 जन।
0: यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के वेश में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के वेश में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को थम जरूर आए, तस्वीरें देखिए। जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है, हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों ही एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं, इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई, ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वहीं वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्रीराम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे, लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जाह्नवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्रीराम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष, जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को, पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए, ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस के झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हम एक कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। गिफ्ट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5, 7, 10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे पिक, ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दुल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, खुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पटना के इस्कॉन मंदिर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। क्या इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे असम का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घर जमीन दोस्त हो गए। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
5: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं, उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी। मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह है ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक रीजनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार ATS द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें DD न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है, क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभराकर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
6: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर असम की बाढ़ का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है, ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
6: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल पर भी जांचा, तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल AI डिटेक्शन ने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Hey, music lovers, ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going, so you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
4: और वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
5: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता, और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहां आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्ची की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्ची पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई। घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो। हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
3: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था, बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
4: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
3: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहाँ सभी सुविधाएं मौजूद है।
4: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
3: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवे स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन कर करूं। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िये गंगाजल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानन। बता दें कि इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है लोग कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
2: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं, वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से, उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं। और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। अनोखी कांवड़ों की इसी कतार में शामिल है ये नोट कांवड़। भक्ति महादेव की है मगर दर्शन लक्ष्मी के भी भरपूर हो रहे हैं। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के जाने कितने नोट लगाए गए हैं। इस कांवड़ को तैयार करवाया है दिल्ली के दीपांशु ने। दीपांशु हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। भारी भरकम कांवड़ को एक कंधे पर उठाकर रोज

0: बस इसका यही उद्देश्य है कि मेरा मतलब मन था नोट वाली कावड़ लाने का, इसलिए मैं 2026 में नोट वाली कावड़ लेकर आ गया हूँ। इसमें जो नोट लग रहे हैं वो अनगिनत नोट हैं, इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है, बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कावड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9,000 रुपये का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें, ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
1: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
2: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
3: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेके जा रहे। यही है कि अपने ज्यादा से ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
1: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कांवड़ मार्ग, सजीधा जी कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका है।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
2: कितने किलोमीटर का आपका ये सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं।

0: बिहार के समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
1: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
2: दो दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे तीन दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। यह जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
3: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, हम लोग सोचे कुछ अलग करे।
4: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरभंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का है।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भर कर बैद्यनाथ धाम पहुँचेगा और फिर वहाँ बाबा को जल अर्पित करेगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले इसी रास्ते पर ये खास कांवड़ भी नजर आई, जिसमें शिव के साथ उनकी शक्ति का स्वरूप भी समाहित था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर इस कांवड़ को श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। हर साल ये युवा अलग और अनोखी कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं।
5: ये हम लोग का बाबा श्री अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हम लोग का सभी भाई लोग का इच्छा के अनुसार अगले साल भी हम लोग लेकर के आए थे बड़ा डोली, जो शिव पार्वती नंदी महाराज गणेश जी के साथ थे, और इस साल हम लोग अर्धनारीश्वर जी को लेकर के आए हैं। बस बाबा से यही कृपा है, आज्ञा है कि बाबा वहां तक हम लोग को सही सलामत लेके पहुंचाए।
6: कितना समय लगा इसको बनाने
5: का? समय कम से कम 1.5 महीने का लगा।
6: खुद से बनाए बनवाए?
5: नहीं, खुद से बनवाए नहीं है, बनवाए हैं, ऑर्डर दे के बनवाए।
6: इसका वजन क्या होगा?
5: वजन वही 90-100 केजी का लगभग है। बैटरी वैटरी लगाए, नीचे भारी
6: सब बैटरी वगैरह लगा हुआ है। आपको कितने का जत्था में चलने, कितने का ग्रुप है?
5: हम लोग 25 जन आए हैं, 25-26 जन।
0: यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्कर विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के भेष में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के भेष में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को हम जरूर आए, तस्वीरें देखिए। जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है। हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों ही एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं। इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई, ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वही वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्रीराम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे। लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जानवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जानवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्रीराम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष, जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा को, पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस के झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी, खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हम एक कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है। गिफ्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5, 7, 10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दुल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
3: Good news today.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, खुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पटना के इस्कॉन मंदिर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। क्या इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे असम का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घर जमीन दोस्त हो गए। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: इंडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं, उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी। मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक रीजनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार ATS द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें DD न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठ साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है, क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभराकर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर असम की बाढ़ का बताकर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है, ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
7: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल पर भी जांचा, तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल AI डिटेक्शन ने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
9: To right field, and it will leave.
8: From the first pitch of the season to the stretch run,
9: and that's the ball game.
8: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता, और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहां आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्ची की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्ची पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई। घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है, तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो। हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
4: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
5: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
4: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
5: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
4: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवे स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा। जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
7: Right field, and it will...
6: From the first pitch of the season to the stretch run.
7: And that's the ball game.
6: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन कर करो। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िये गंगाजल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानंद। बता दें कि इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है लोग कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
2: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं। और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश

0: कि मेरा मतलब मन था नोट वाली कावड़ लाने का, इसलिए मैं 2026 में नोट वाली कावड़ लेकर आ गया हूँ। इसमें जो नोट लग रहे हैं वो अनगिनत नोट हैं, इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है, बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कावड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9,000 रुपए का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें, ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
1: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
2: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
3: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेके जा रहे। अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
1: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कांवड़ मार्ग, सजीधा जी, कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका है।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
2: कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर

0: के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
1: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
2: हम 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
3: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, हम लोग सोचे कुछ और लग करे।
4: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरभंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भर कर बैद्यनाथ धाम पहुँचेगा और फिर वहाँ बाबा को जल अर्पित करेगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले इसी रास्ते पर ये खास कांवड़ भी नजर आई, जिसमें शिव के साथ उनकी शक्ति का स्वरूप भी समाहित था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर इस कांवड़ को श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। हर साल ये युवा अलग और अनोखी कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं।
5: ये हम लोग का बाबा श्री अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हम लोग का सभी भाई लोग का इच्छा के अनुसार अगले साल भी हम लोग लेकर के आए थे बड़ा डोली जो शिव पार्वती नंदी महाराज गणेश जी के साथ थे, और इस साल हम लोग अर्धनारेश्वर जी को लेकर के आए हैं। बस बाबा से यही कृपा है, आज्ञा है कि बाबा वहां तक हम लोग को सही सलामत लेके पहुंचाए।
6: कितना समय लगा इसको बनाने
5: का? समय कम से कम 1.5 महीने का लगा।
6: खुद से बनवाए हैं
5: ऑर्डर दे के बनवाए।
6: इसका वजन क्या होगा?
5: वजन वही 90-100 केजी का लगभग है। बैटरी वैटरी लगाए, नीचे भारी
6: लाइटिंग वगैरह लगा। आपको कितने का जत्था में चलने कितने का ग्रुप है?
5: हम लोग 25 जन आए हैं, 25-26 जन।
0: यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के वेश में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के वेश में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को हम जरूर आए, तस्वीरें देखिए। जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है, हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: शिवम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों ही एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं, इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई, ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वही वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्री राम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे, लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जानवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जानवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्री राम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पूरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस के झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
1: Right field, and it will...
0: From the first pitch of the season to the stretch run.
1: And that's the ball game.
0: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ विदेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी, खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हम एक कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है। गिफ्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5-7-10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दूल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
3: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पटना के इस्कॉन मंदिर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। क्या इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे असम का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घर जमीन दोस्त हो गए। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं, उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी। मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यह कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक ओरिजिनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार ATS द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें DD न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
5: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभरा कर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
5: दरअसल सोशल मीडिया पर असम का बताकर, असम की बाढ़ का बताकर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
7: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को AI डिटेक्शन टूल पर भी जांचा तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल AI डिटेक्शन ने भी इसके AI से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: और वक्त है फैक्ट चेक की, आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता, और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहाँ आँख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्ची की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई, तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्ची पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई। घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो। हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
1: स्टे ऑन टॉप ऑफ द एमएलबी सीजन विद ESPN रेडियो। गेट डेली स्पोर्ट्स टॉक कवरिंग एवरी बिग मोमेंट फ्रॉम अराउंड द लीग।
2: Schwarber to right field and it will leave.
1: From the first pitch of the season to the stretch run.
2: That's the ball game.
1: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
3: Good news today.
0: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
5: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
6: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
5: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
6: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
5: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानंद। बता दें कि इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी। भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है लोग कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्धर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
2: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। अनोखी कांवड़ों की इसी कतार में शामिल है ये नोट कांवड़। भक्ति महादेव की है मगर दर्शन लक्ष्मी के भी भरपूर हो रहे हैं। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के जाने कितने नोट लगाए गए हैं। इस कांवड़ को तैयार करवाया है दिल्ली के दीपांशु ने। दीपांशु हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। भारी भरकम कांवड़ को एक कंधे पर उठाकर रोज 18-19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब यात्रा संपन्न होगी तो इन्हीं नोटों से भोले

0: नहीं करी है, बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कांवड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9,000 रुपए का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें, ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
1: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
2: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
3: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेके जा रहे। बस यही है कि अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
1: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कांवड़ मार्ग, सजी धजी कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका है।

0: समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िए शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की ज्योति जलाए हैं। ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रहीं। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
2: कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, 2 बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा, यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से

0: सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के भेष में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के भेष में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है एक बार को थम जरूर आए। तस्वीरें देखिए, जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा नर्मदा क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है। हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं, इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठा कर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया, तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वही वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्री राम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे, लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जाह्नवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्री राम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: You hear it once and remember everything.
1: I'm too sexy for your party. Too sexy for your party.
0: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है बल्कि यह बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी, खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हम एक कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। गिफ्ट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5, 7, 10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोग की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, तो हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दुल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Hey, never.
1: Good news today is really अच्छा लगता है। इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक का प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, खुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
4: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है और कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये, लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मान लेते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाह की आधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये पटना के इस्कॉन मंदिर का वीडियो है जहां पर आतंकी हमला हुआ है। क्या इस वीडियो की सच्चाई, आगे जानिए। इसके अलावा हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसे असम का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से कई घर जमीन दोस्त हो गए। क्या है सच्चाई, आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ और ये वीडियो उसी हमले से जुड़ा हुआ है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए हमारी रिपोर्ट।
6: बिहार की राजधानी पटना के नाम पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तीन शख्स को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते देखा जा रहा है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि जैसे ही तीनों नकाबपोश अंदर घुसते हैं वैसे ही गेट पर खड़े दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर पड़ते हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो के साथ दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि पटना इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में तीन नकाबपोशों को बंदूक के साथ एक मंदिर में गोलीबारी करते हुए घुसते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकवादी हमले का ये वीडियो है और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की। वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और वीडियो की शुरुआत में ही नजर आता है कि तीन नकाबपोश बंदूक लेकर गेट को खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसते हैं उस दौरान वहां मौजूद दो सुरक्षाकर्मी जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई थी। मतलब यह है कि दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक सारे किरदार अपने अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा वीडियो में एक जगह है ये भी देखने को मिल रहा है कि यह आदमी इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब अगर आतंकी हमला हुआ होता तो फिर घटनास्थल पर अफरा तफरी मचनी थी, लेकिन ये शख्स बिना डरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये भी हमें कुछ अटपटा लगा। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, क्योंकि अगर पटना के इस्कॉन मंदिर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ होता या आतंकवादी घुसे होते तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती, हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर होती, लेकिन कहीं कुछ भी जानकारी हमें नहीं मिली। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर वीडियो सच्चा है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुट गई। सर्च के दौरान हमें संबंधित दावों से जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। हालांकि ऐसी खबरें मिली जिसमें बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में एक मॉक ड्रिल हुई थी। 29 जुलाई को पब्लिश एक खबर में बताया गया है कि घटना असली आतंकी हमले की नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को परखने के लिए किए गए मॉक ड्रिल की थी। अभ्यास के दौरान आतंकी हमले का काल्पनिक माहौल तैयार किया गया। खबर में वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। सर्च के दौरान हमें एक रीजनल न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक खबर मिली। 29 जुलाई की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पटना के इस्कॉन मंदिर में मॉक ड्रिल हुई थी। इसी तरह हमें बिहार पुलिस के एक्स हैंडल पर भी मॉक ड्रिल से जुड़ी पोस्ट मिली। 29 जुलाई की इस पोस्ट में कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था, आज दिनांक 29 जुलाई को पटना स्थित इस्कॉन मंदिर में बिहार ATS द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आतंकी हमले अथवा आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों एवं संबंधित हितधारकों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना तथा मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। अभ्यास के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई, परिसर की घेराबंदी, श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी, संदिग्धों की तलाश तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का यथार्थ परख अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जांच के अगले चरण में हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें DD न्यूज बिहार के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें वायरल वीडियो से जुड़ा वीडियो मिला। इसमें वायरल क्लिप वाले हिस्से को भी देखा जा सकता है। वीडियो के साथ साफ तौर पर इसे मॉक ड्रिल बताया गया है। साथ में लिखा गया है कि पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की स्थिति पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सुरक्षा एजेंसियों ने पटना के इस्कॉन मंदिर में आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति पर आधारित मॉक ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले का परिदृश्य तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठ साबित हुआ। पटना के इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा को जांचने के लिए 29 जुलाई को एक मॉक ड्रिल हुई थी। उससे जुड़े वीडियो को अब असली आतंकी घटना बताकर वायरल किया गया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
4: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए मकानों को दिखाया गया और कहा जा रहा है कि असम का वीडियो है, क्योंकि असम में भयानक बाढ़ आई है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद भरभरा कर कई मकान जमींदोज हो गए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
7: बीते 6 दशक की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ के कारण राज्य के 11 जिलों के करीब 7.21 लाख से अधिक लोग, करीब 900 गांव प्रभावित हुए हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 1 मिनट का है, जिसमें बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि यह असम का 28 जुलाई का दृश्य है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि 52 साल में कभी नहीं दिखी ऐसी तबाही। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर लोग, घर तो ताश के पत्तों के माफिक गिर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर भी किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर असम की बाढ़ का बताकर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में बाढ़ में कई घर लैंडस्लाइड होने की वजह से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद एक घर की छत पर कुछ लोग खड़े भी दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि ये बात सच है कि असम में बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। हाल फिलहाल में बाढ़ की विभीषिका से जुड़ी कई तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, लेकिन वायरल हो रहा ये वीडियो असम का ही है, ये जानना जरूरी था। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वायरल हो रहे वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के तौर पर वीडियो में मौजूद पहला घर जिस घर पर गिरता है उसे कोई नुकसान नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक घर की छत पर जो लोग मौजूद होते हैं वो भी काफी अजीब से दिखाई देते हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें दावे की पुष्टि करती कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल वीडियो असम की किस जगह का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर किसी एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, देखिए सच और झूठ क्या है।
7: सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक टिकटॉक अकाउंट पर 27 दिसंबर 2025 को अपलोड किया गया मिला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, हमें इस अकाउंट पर दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच इसी तरह के कई वीडियोज अपलोड किए हुए मिले। इनमें से अधिकांश वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट का लेबल लगा हुआ था। इसके बाद हमने वायरल वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल पर भी जांचा, तो हमें हाइव डिटेक्शन टूल और रिजेम्बल एआई डिटेक्शन ने भी इसके एआई से बने होने की संभावना जताई। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि असम में आई बाढ़ के दावे से शेयर हो रहा ये वीडियो असल में एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: फैक्ट चेक में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
4: और वक्त है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एक माँ ने अपने बेटे की रोज की परेशानी का एक ऐसा मजेदार हल निकाला है कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल इस बच्चे की एक आदत उसकी माँ के लिए सिरदर्द बन गई थी। पढ़ाई के दौरान वो हर थोड़ी देर में अपनी कोई न कोई चीज खो देता था। कभी पेंसिल गायब हो जाती थी तो कभी रबर का पता नहीं चलता, और कभी शार्पनर ढूंढने में ही काफी समय निकल जाता। पढ़ाई से ज्यादा वक्त सामान तलाशने में चला जाता था। माँ भी रोज रोज यही कहानी देखकर परेशान हो गई थी। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा उपाय किया जाए जिससे बच्चे का सामान भी सुरक्षित रहे और उसकी पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। वीडियो में दिखाई देता है कि माँ ने बहुत ही आसान लेकिन कमाल का देसी जुगाड़ अपनाया। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसी में बच्चे की पेंसिल, रबर और शार्पनर को मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस रस्सी को बच्चे के गले में इस तरह से पहनाया, जरूरत पड़ते ही वो आसानी से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सके। अब न तो पेंसिल इधर उधर गिरने का डर था, न ही रबर या शार्पनर खोजने की परेशानी। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बच्चे को भी इस अनोखे इंतजाम से कोई दिक्कत होती नजर नहीं आई।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल सुबह सुबह स्कूल पहुंची इस बच्ची का स्कूल का पहला दिन है। वो प्रेयर की लाइन में खड़ी है, प्रेयर चल रही है, लेकिन इस चंचल बच्ची का ध्यान प्रेयर में नहीं, वो अपने ही मस्ती में मगन है। और सब बच्चे जहाँ आँख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो इतना क्यूट हंस रही है कि उसे देखकर हर चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस बच्ची की हरकतें आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देंगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बच्ची पार्क की बेंच पर लगे स्टैचू को रियल समझ रही है। वो पढ़ने की मुद्रा में बेंच पर बैठे बच्चों के स्टैचू को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही नहीं, वो जब देखती है कि स्टैचू में कोई हरकत नहीं हुई तो वो गोल गोल घूमकर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी ये हरकतें देख सबको बच्ची पर प्यार आ रहा है।

ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश की इन तीन बहनों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपनी मीठी आवाज और दिल को छू लेने वाली गायकी से ये तीनों लोगों का दिल जीत रही हैं। इनकी वीडियो में कोई भारी भरकम सेटअप या दिखावा नहीं होता, लेकिन फिर भी हर परफॉर्मेंस लोगों को अपनी ओर खींच लेती है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शैकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती में डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई।

घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्ही परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है।

देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की इस छोटी सी मदद से महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की एस्ट्रोनॉट सोफी एडोनेट ने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जीरो ग्रेविटी में इन योग करती दिख रही हैं। इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स हैरान भी हैं और इसे जादुई भी बता रहे हैं। दरअसल पृथ्वी पर तो लोग मैट बिछाकर आराम से योग कर लेते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर चीज हवा में तैरती है, इसलिए योग करने के लिए एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन की दीवारों और उसके दूसरे हिस्सों का सहारा लेते हैं। बिना ग्रेविटी के शरीर को सीधा बनाए रखने के लिए कोर स्ट्रेंथ यानी पेट और अंदरूनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। इन योग में शरीर को धीरे धीरे और देर तक खींचा जाता है, इससे थकान दूर होती है।

देश भर में इंसानों के लिए सलून और ब्यूटी पार्लर मिलना बेहद आम बात है, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे पार्लर के बारे में सुना है जहां भैंसों, बैलों और दूसरे दुधारू पशुओं का मेकअप और ग्रूमिंग की जाती हो? हरियाणा के कैथल जिले में एक ऐसा ही अनोखा ब्यूटी पार्लर खुला है जो इन दिनों पूरे देश और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अनूठे ब्यूटी पार्लर की नींव कैथल निवासी संदीप जाखोली ने रखी है। पार्लर में पशुओं के सींगों की पॉलिश, हेयर कट, खुरों की सफाई और टूटे सींगों के लिए नकली सींग लगाने जैसी अनूठी सेवाएं दी जा रही हैं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है।
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का शानदार और भव्य समापन हो चुका है, लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ खेलों का खत्म होने का जश्न नहीं बल्कि एक नए ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत है। ग्लासगो के मंच से अब दुनिया की नजरें सीधे भारत के गुजरात पर टिक गई हैं, जहां पर साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण आयोजित होने जा रहा है।
2: ग्लासगो में होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी सिर्फ गेम्स के समापन का जश्न नहीं था, बल्कि भारत के लिए भी ये ऐतिहासिक पल साबित हुआ। इसी समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का बैटन और ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया।
3: क्लोजिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ 2026 की हो रही है, लेकिन अहमदाबाद 2030 की आज से ही ऑफिशियली शुरुआत हो रही है। कॉमनवेल्थ अहमदाबाद 2030 ये भारत के करोड़ों युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
2: क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया के सामने पेश की गई। मशहूर गायक शंकर महादेवन और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपनी प्रस्तुति से अहमदाबाद 2030 की झलक दिखाई। गुजरात पर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए दुनिया को भारत की परंपरा, विविधता और आधुनिकता का संदेश दिया गया। ग्लासगो में गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि 2030 के राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए अहमदाबाद तैयार है। खेलों के इस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यहां सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
3: भारत के एथलीट्स ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारी जो मेजर गेम्स थी जिसमें हम अवार्ड्स प्राप्त करते थे, वो गेम्स कट डाउन की गई थी, फिर भी हमने नई गेम्स में हमारी जगह बनाई और भारत का तिरंगा ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही शान से लहराया। ये अपने आप में बहुत ही खुशी का विषय है और मैं ये मान रहा हूं कि अहमदाबाद 2030 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, वो भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए।
2: अहमदाबाद में 2030 में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 2030 का संस्करण इसीलिए भी खास होगा क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत 100 वर्ष पूरे होंगे। आपको बता दें कि पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित हुआ था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहकर भारत ने अपने अभियान का अंत किया। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीते, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों को कोई मेडल नहीं मिला। मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया 70 गोल्ड, 45 सिल्वर और 56 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 171 पदों के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं 110 मेडल के साथ इंग्लैंड 29 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर है। कनाडा 19 गोल्ड और कुल 62 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। स्कॉटलैंड 39 मेडल के साथ पांचवें स्थान पर है। भारत और स्कॉटलैंड दोनों ने 13-13 गोल्ड जीते, लेकिन भारत के पास 17 सिल्वर मेडल है जबकि स्कॉटलैंड के पास सिर्फ 9। ज्यादा सिल्वर होने की वजह से भारत चौथे नंबर पर है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, वहीं यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड, जूडो में पहली बार 2 गोल्ड और एथलीट्स में कई ऐतिहासिक सफलताओं ने भारत के इस सफर को यादगार बना दिया। भारत को सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी में मिली, जहां खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीते। वहीं जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। यामिनी मौर्य ने सिल्वर और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे जूडो में भारत को रिकॉर्ड 4 मेडल मिले। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज और 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर सिंह एक ही कॉमनवेल्थ गेम में एथलीट्स के 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय पैरा एथलीटों का कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। पहली बार भारतीय एथलीट ने एक कॉमनवेल्थ गेम में कुल 7 पदकों को अपने नाम किया, जो पिछले सभी संस्करणों को मिलाकर कुल मेडल टैली के बराबर है। अभी भारतीय खिलाड़ी 6 हफ्ते बाद होने वाले एशियाई खेलों में फिर से देश का झंडा बुलंद करने उतरेंगे। एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: महाकाल की नगरी उज्जैन में चांदी की पालकी में निकले बाबा, भक्तों ने किए मन महेश स्वरूप के दर्शन, ढोल लगाड़ों के साथ हुआ शंखनाद। हरिद्वार में पवित्र कांवड़ यात्रा की रौनक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम, कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर। संगम नगरी प्रयागराज में पारंपरिक इक्का दौड़ का आयोजन, रोमांचक प्रतियोगिता को देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब, सावन के पहले सोमवार पर होता है आयोजन। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ, गुरेज में 15 गांवों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, 15 अगस्त तक चलेगा खेल का महाकुंभ।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं। हरिद्वार से दिल्ली के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग नजर आ रहे हैं। आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों के जो है ऐसे अनोखे अंदाज में उन्होंने सजा रखा है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं।

0: शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बन कर करो। कावड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। हर साल असंख्य शिव भक्त कांवड़िये गंगाजल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगाजल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग मार्गों पर ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। अब की बार भी अपने अपने अनोखे कांवड़ और अनोखे संकल्प लिए ये भोले अपने आराध्य की भक्ति में मगन चले जा रहे हैं। एक से एक अनोखी कांवड़ इस यात्रा में शामिल है। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर उतरी इसी कांवड़ को देख लीजिए। दूर से देखने पर लगता है किसी मतवाले भक्त ने भोले बाबा को सुपर कार में सवार करवा दिया है और बाबा शान से मैक्लारेन की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की सवारी कर रहे हैं। लेकिन सवारी जब कुछ नजदीक आती है तो समझ आता है कि वास्तव में ये मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार की थीम वाली कांवड़ है। कांवड़ यात्रा के दौरान मैक्लारेन जैसी दिखने वाली इस कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। इस कार की छत पर भोलेनाथ विराजे हैं, तो स्टीयरिंग व्हील खुद पवन पुत्र बजरंग बली के हाथों में है और उनके बगल में बैठे हैं महादेव के लाडले गजानन। बता दें कि इस अनोखी कांवड़ को तैयार करने में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आया है। इसकी डिजाइन असली मैक्लारेन से प्रेरित है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए है।
1: बैठे बैठे एक प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं। ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं।
0: ये अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली के नवादा तक की यात्रा कर रही है। जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है लोग कौतूहल से इसे देख रहे हैं। मैक्लारेन थीम कांवड़ के बाद अब देखिए जिम वाली कांवड़। मन में भक्ति कितनी ही प्रगाढ़ हो लेकिन तन में शक्ति न हो तो आस्था के मार्ग पर चलना कठिन है। कुछ यही संदेश समेटे है ये अनोखी कांवड़। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। इस कांवड़ के साथ कभी मुग्दर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक की करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले। अपनी इस कांवड़ यात्रा से अमित युवाओं को नशे से दूर रहने और शरीर को फिट रखने के लिए प्रेरित करते चल रहे हैं।
2: सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए। अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे। और लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं वो इससे जुड़ के फिटनेस के, बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं। उनको जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: अमित समेत 4 लोगों ने जल उठाया है, साथ में 3 लोग और हैं। और पूरी टोली जब इस विशेष कांवड़ के साथ चलते हुए बागपत पहुंची तो लोग देखते ही रह गए। आस्था के इस सफर में फिटनेस और नशे के खिलाफ अमित की मुहिम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कांवड़ यात्रा अनुशासन, स्वास्थ्य और अटूट आस्था का प्रेरणादायक संदेश दे रही है। अनोखी कांवड़ों की इसी कतार में शामिल है ये नोट कांवड़। भक्ति महादेव की है मगर दर्शन लक्ष्मी के भी भरपूर हो रहे हैं। इस कांवड़ में 10, 20, 50 और 100 रुपए के जाने कितने नोट लगाए गए हैं। इस कांवड़ को तैयार करवाया है दिल्ली के दीपांशु ने। दीपांशु हरिद्वार से दिल्ली तक 200 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। भारी भरकम कांवड़ को एक कंधे पर उठाकर रोज 18-19 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। जब यात्रा संपन्न होगी तो इन्हीं नोटों से भोले के भक्तों के लिए भंडारा करवाने का इरादा है।
3: बस इसका यही उद्देश्य है कि मेरा मतलब मन था नोट वाली कांवड़ लाने का, इसलिए मैं 2026 में नोट वाली कांवड़ लेकर आ गया हूँ। इसमें जो नोट लग रहे हैं वो अनगिनत नोट हैं, इनकी हमने काउंटिंग नहीं करी है, बस भोले बाबा के प्यार में और भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने नोट लगा रखे हैं आपके आगे। इसमें जो इसका कांवड़ का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये हमने हर की पौड़ी पे से 9000 रुपए का लिया था। बाकी ये जो ऊपर के जो नोट लग रहे हैं इसमें, ये अनगिनत नोट है। ये नोट जो है हमारे जहाँ पे शिवालय पे जल अभिषेक होगा वहाँ पे हम इन नोटों का भंडारा करवाएंगे।
0: कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे अनोखे कांवड़ खूब दिख रहे हैं। लक्ष्मी माता को समर्पित कांवड़ के बाद अब भारत माता के रंग में रंगी कांवड़ भी देख लीजिए। देशभक्ति की भावना से सराबोर इस कांवड़ को यूपी के बागपत से आए कांवड़ियों का दल पैदल लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 221 फीट लंबा और 11 फीट ऊंचा तिरंगा लेकर जा रहा कांवड़ियों का ये दल पैदल ही बागपत तक जाएगा और 11 अगस्त को शिवालय में ये दल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करेगा।
4: ये है हमारा 221 फीट लंबा है ये, और ये 11 फीट के ऊंचाई है इसकी। सर ये तिरंगा अपने देश के लिए, देश की शान, हमारे देश भक्ति हमारे अंदर उसके लिए है।
1: अपना अपनी आन बान शान सब कुछ है, देश भक्ति के लिए लेके जा रहे। अपने ज्यादा ज्यादा प्रेम करे, अपने तिरंगे की शान बढ़ावे।
0: सावन का महीना है, स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है। ऐसे में कांवड़ यात्रा मार्ग पर ईश्वर की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति के बादल भी खूब बरस रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कांवड़ मार्ग सजी धजी कांवड़ तो तस्वीर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग भी देखने को मिल रहा है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन कर रहे हैं। कई कांवड़िए अनोखे प्रण और संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। 7 नौजवान पोते अपनी 100 साल की दादी को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, तो एक पिता अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर कांवड़ मार्ग पर उतरे हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का अपना अपना तरीका।

0: सहारनपुर में 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी करवाई। गंगा जल लाने के संकल्प के साथ हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा बुजुर्ग दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव बन गई। पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रही। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का ये अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ को निहारते रह गए। परिवार का कहना है कि माता पिता और बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं और कोई भक्ति नहीं। उनके लिए दादी को कांवड़ यात्रा कराना किसी दायित्व से बढ़कर सौभाग्य और ईश्वर की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया।
1: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के।
2: जी, कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
1: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, दो बुआ जी हैं और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी के साथ चल रहे हैं।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के ऐसे ही रंग झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम के रास्ते में भी दिख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर के युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्केटिंग करने वाले ये युवा सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर समस्तीपुर से एक साथ बेगूसराय होते हुए सब बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े।
3: समस्तीपुर जिले से करीब 1 दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने, जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप बनाया और एक साथ ये लोग बाबा नगरी देवघर के लिए निकले हैं।
0: 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
4: 2 दिन में बेगूसराय कंप्लीट कर दिया है, तीसरा दिन जल उठाएंगे और दूसरे 3 दिन में मतलब 6 तारीख को जल चढ़ा देंगे। यह जो मेरा जितना भाई है 11 टीम है, जो सबका घर का कुशल मंगल हो और मेरा भी हो।
5: हम लोग सोचे जो कुछ अलग करे, सब तो पैदल गाड़ी से जाते ही है, मगर हम लोग सोचे कुछ अलग करे।
6: ड्रीम है जो देवघर जाना है स्केटिंग के माध्यम से, और मैं दरंगा का पहला लड़का हूँ जो स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ देवघर यात्रा पर, लगभग 450 किलोमीटर का।
0: बेगूसराय से युवाओं का ये दल सुल्तानगंज से जल भरकर बैद्यनाथ धाम पहुंचेगा और फिर वहां बाबा को जल अर्पित करेगा। बैद्यनाथ धाम जाने वाले इसी रास्ते पर ये खास कांवड़ भी नजर आई जिसमें शिव के साथ उनकी शक्ति का स्वरूप भी समाहित था। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को केंद्र में रखकर इस कांवड़ को श्रद्धालुओं ने सजाया है। कांवड़ियों का ये दल कोलकाता से पहुंचा है। हर साल ये युवा अलग और अनोखी कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। यूं समझिए कि कांवड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है, महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। मुजफ्फरपुर से संदीप सैनी, मुंगेर से गोविंद कुमार और बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: पौराणिक इतिहास में कांवड़ यात्रा की कहानी रावण से जुड़ती है। सावन के महीने में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक श्रद्धालु ने कांवड़ यात्रा करते रावण की तस्वीर को एक बार फिर से जीवंत करके दिखाया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव शंकर का भक्त रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर पहुंचा। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक विमान पर सवार रावण के भेष में शिव भक्त को देखने के लिए मुजफ्फरनगर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। ये कांवड़िया रावण के भेष में हरिद्वार के हर की पौड़ी से 1 अगस्त को गंगा जल उठाकर निकला था। ई रिक्शा पर बनाए गए पुष्पक

विमान से ये दिल्ली तक की अपनी यात्रा कर रहा है। ये यात्रा सावन की शिवरात्रि को दिल्ली के समयपुर बदली में मौजूद शिवालय पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। रास्ते में जो भी इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देख रहा है, एक बार को थम जरूर आए। तस्वीरें देखिए। जो भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके प्रति ये भक्तों की अगाध आस्था ही है कि वे सैकड़ों किलोमीटर दूर गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर महादेव को चढ़ाते हैं। कई कांवड़िए हरिद्वार तो कई गौमुख गंगोत्री से गंगा जल भरकर लाते हैं। दरअसल सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा की जड़ें पौराणिक इतिहास की बहुत गहराई तक जाती हैं। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मनोरथ के साथ कांवड़ यात्रा की है। हाँ, लेकिन हर बार हर युग में इस यात्रा के केंद्र में महादेव रहे। यानी कांवड़ यात्री कोई भी रहा हो, लेकिन आस्था और समर्पण का ये मार्ग पहुंचा भोलेनाथ तक ही है। चलिए आपको सुनाते हैं युगों पुरानी कांवड़ यात्रा की कहानी।

0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कांवड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर पड़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है। लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण के इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। तब वे कांवड़ लेकर गंगा जल लाने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। उस समय सावन महीना ही चल रहा था। माना जाता है कि इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई।
1: भगवान परशुराम जो है भगवान नारायण के अवतारों में से एक है, और आप ये सभी जानते हैं कि भगवान नारायण और शिव दोनों ही एक दूसरे को भजते हैं। वो चाहे किसी भी अवतारी के रूप में हो, उनकी पूजा का विशेष ध्यान उनको रहता है। परंतु जब 21 बार इस धरती से आतताई क्षत्रियों को भगवान परशुराम ने जब हनन कर दिया, परंतु उसके पश्चात उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ कि कुछ भी है मेरे कारण से अनन्य जीव हत्याएं तो हुई ही हैं। इस प्रायश्चित के स्वरूप में उन्होंने सबसे पहले जल उठाकर और पूरा महादेव में सबसे पहले जलाभिषेक किया था। तब से ही ऐसा माना जाता है कि इस कांवड़ यात्रा का आरंभ हुआ है।
0: तो वहीं कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। ये कथा बताती है कि श्रवण कुमार के माता पिता देख नहीं सकते थे। वृद्धावस्था में श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी।
1: श्रवण कुमार ने, अगर हम कहें कि सीधे सीधे कांवड़ यात्रा की, ऐसा नहीं, ऐसा हम कहेंगे कि चूंकि माता पिता का परम भक्त था श्रवण कुमार, और वो जब सभी तीर्थ स्थलों की यात्राएं करते हुए माता पिता को अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, तब हरिद्वार होते हुए यहाँ से भी उसने जल लिया था, और जब वो निकलते हुए जब पूरा महादेव पहुंचे तब उन्होंने वहां जलाभिषेक किया। तो इस प्रकार कांवड़ यात्रा की गई, ऐसा कहा जा सकता है।
0: तो वहीं वाल्मीकि रामायण की एक कहानी कांवड़ यात्रा को त्रेता युग में ही श्रीराम से भी जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा की धार साथ लेकर निकले थे। लेकिन सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई थी। इससे क्रोधित होकर जाह्नवी ऋषि पूरी गंगा को पी गए थे। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को बाहर निकाला था। माना जाता है कि यहीं से जल भरकर श्रीराम ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से जोड़ती है। इस कहानी के मुताबिक देव और दानवों ने मिलकर अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। तब समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने पी लिया था। विष पीकर भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। तब विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की थी। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई।
1: भगवान शिव के अनन्य भक्त होने के कारण जब विष जब समुद्र मंथन के पश्चात हलाहल निकला और इस संसार की पीड़ा से मुक्त करने के लिए भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, परंतु वो कंठ से नीचे ना जाए ऐसा माता सती ने इस प्रकार व्यवस्था की, हाथ लगाकर भगवान को कंठ में ही उस हलाहल को रख लिया। लेकिन उससे होने वाली भगवान को पीड़ा को देखते हुए उनका परम भक्त, उनका अनन्य भक्त रावण ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जल उनको अर्पण किया। जब उठाकर लेकर जल अर्पण किया
0: कालांतर में कांवड़ यात्रा करने के तरीके जरूर बदले, लेकिन इसका स्वरूप लगभग समान रहा। यात्रा चाहे किसी भी तरह की जाती, लेकिन उसका आरंभ कांवड़ में गंगा जल लाने से और अंत महादेव को समर्पित करने से ही होता रहा। आज कांवड़ यात्रा 5 तरीकों से होती है। पहली है बोलबम कांवड़। इसमें लोग बिना जूता चप्पल के यात्रा करते हैं, थकने पर आराम के लिए बैठ सकते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़। इस यात्रा में लोग खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। सहयोगी को कांवड़ को लगातार हिलाते डुलाते रहना होता है। तीसरी है झूला कांवड़। इसमें बांस के झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर मार्गों पर इनके लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। डाक बम कांवड़ियों के कपड़ों का रंग सफेद होता है। पांचवी होती है दंडवत कांवड़। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं। अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। यात्रा करने का तरीका चाहे जो हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं। आजादी के बाद के दशकों में कांवड़ यात्रा करने का चलन वक्त के साथ कम होता चला गया, लेकिन यूपी में 1990 के राम मंदिर आंदोलन के बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा का चलन फिर से लोकप्रिय होने लगा। 1990 को कांवड़ के विस्तार का साल कहा जाता है। 90 के दशक से पहले कांवड़ यात्रियों की जो संख्या लाखों में होती थी, उसके बाद के दशकों में देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। इस बार भी पावन सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए महादेव के अभिषेक की संकल्प यात्रा कर रहे हैं। पवित्र नदियों के तटों पर कांवड़ियों की भीड़ दिखने लगी है। गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल भरकर महादेव का अभिषेक करने का संकल्प लिए कांवड़िए इस पावन यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गिफ्ट एक्सपो की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। जहां पर नजर आप डालेंगे वहां रंग बिरंगे और अनोखे गिफ्ट्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह एक्सपो सिर्फ खूबसूरत तोहफों की नुमाइश नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वक्त के साथ गिफ्ट देने और लेने का अंदाज कितना बदल चुका है।

0: गिफ्ट एक्सपो में आपको गिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं, लेकिन कई बार ये समझ में आता है कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो वेडिंग गिफ्ट्स है उनकी पूरी परिभाषा चेंज हो चुकी है। पहले लोग क्या देते थे रिटर्न गिफ्ट में शादियों में, और अब वो कितना आगे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ वीरेश कालरा जी हैं। तो सर, अभी हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेडिंग में गिफ्टिंग किस तरह से चेंज कर दी खासकर आप लोगों ने?
1: सी, आज से 25 साल पहले मोमेंट्स में हम एक कलेक्शन लेके आए थे जो फॉर एजेस टार्निश नहीं होती, सेम रहती है। और हमारा ये मानना है कि एक शादी की एक अच्छा गिफ्ट होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है। गिफ्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी बिलीव इन मेकिंग एंड क्राफ्टिंग ए रिटर्न गिफ्ट जो जिसको भी दिया जाए उसके घर से 5-7-10 साल नहीं हिले। हमने, अगर मैं आपसे शेयर करूं, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ये जैसे ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डल जाएं, चॉकलेट्स डल जाएं। ये हमने एक वेडिंग के लिए पेयर ऑफ स्वैन बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग गिफ्ट।
0: ये भी आप लोगों की क्रिएशन है?
1: ये हमने एक डोली बनाई और इसको किसी के भी घर पे जाएगा तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस इन द फैमिली। इसी का बल्कि फिर एक हमने अभी शादी की लंदन की, जिनको थोड़ा छोटा साइज चाहिए था, हमने इसी डोली को एक छोटे साइज में भी क्राफ्ट किया। इसके अंदर गणेश जी अपने हाथों से दूल्हा और दुल्हन का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ब्राइड एंड ग्रूम का। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी यूनिकली क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स।

0: हर साल नया कलेक्शन आता है। कॉर्पोरेट में भी अब ऐसी जो छोटे छोटे स्मॉल मूर्तियां हैं उनका भी कलेक्शन जाता है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि किस तरह से गिफ्टिंग का ट्रेंड भी साल दर साल चेंज होता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो अगर आप भी अभी भी लिफाफा लेकर जाते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट में लिफाफा मिल रहा है, तो आपको भी रुक कर सोचना चाहिए कि क्या अब आपका भी वक्त है बदल जाने का गिफ्टिंग के लिहाज से। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।